ओम शांति। सदा खुश रहना परमात्म संतान का अधिकार है। सोच लें, यदि भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो भला इस संसार में कौन खुश रहेगा। जिनका प्रभु मिलन हुआ, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान ने किया, जिनको आँख खुलते ही भगवान से मिलन होता है, जिनका भगवान पर अधिकार हो गया, वे ही यदि खुश नहीं रहेंगे तो भला कौन खुश रहेगा। सोचो, जिनके द्वार पर स्वर्ग की बादशाही खड़ी हो, भगवान जिनके सम्मुख

जिससे सेवाओं में सरलता आ जाती है। ऐसी खुशी को हम अपने जीवन का अविनाशी अंग बना लें। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, जाने वाली बातों से अपनी खुशी को क्यों नष्ट करें। देखिए दूसरों की बातों का महत्व ही कितना होता है। जरा अगर गहराई से चिंतन करें तो जो व्यवहार दूसरे लोग करते हैं या जो बोल वो बोलते हैं वो तो मूल्यहीन हैं। उन मूल्यहीन बातों के कारण हम अपनी मूल्यवान खुशी को क्यों नष्ट कर दें। इसलिए अपने विचारों को जरा ऊपर उठा दें, अपनी महानताओं की ओर आगे चलें और ये छोटापन, ये सेंसिटिव नेचर, ये फीलिंग आने की आदत, ये छोटी बातों पर मूड ऑफ हो जाना, इससे जरा ऊपर उठ जाएं। हम महान हैं, हमें महान कार्य करने हैं, हम कोई छोटे नहीं हैं। देश का भी कोई बड़ा नेता हो वो छोटी बातों में नहीं रहता। सोचो प्राइम मिनिस्टर जिसको बड़े बड़े कार्य करने हैं वो यदि फीलिंग में रहे तो वो बड़े बड़े कार्य कैसे करेगा, क्योंकि इन छोटी छोटी फीलिंग्स से उसकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। हम तो सबसे बड़े हैं, हमें सबसे महान कार्य करने हैं, संसार का कल्याण करना है। हम पूर्वज हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम तो बाप समान हैं। हमारी खुशी का प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है। हम यदि खुश रहते हैं तो संसार की अनेक आत्माएं खुश होंगी, सुखी हो जाएंगी। और यदि हमने खुशी खो दी तो उसका प्रभाव करोड़ों करोड़ों आत्माओं पर पड़ेगा। तो अपने को ऐसा रेस्पॉन्सिबल समझते हुए ज्ञान के चिंतन के द्वारा अपनी खुशी की खुराक को बढ़ाते चलें। जितने सुंदर संकल्प हमारे मन में होंगे उतना ही हमारा दृष्टिकोण ऊंचा होगा और छोटी बातें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। तो आज सारा दिन हम इस संकल्प से बहुत खुश रहेंगे, इस जीवन में मुझे किसका साथ मिला। खुशी और नशे से हमारा चेहरा सारा दिन चमकता रहे और सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, अपने स्वरूप को निहारेंगे, फिर चारों ओर देखेंगे। संसार में करोड़ों करोड़ों आत्माएं ज्योतियां हर एक के शरीर में चमक रही हैं। अब हम सभी को वापिस चलना है। मैं आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन को छोड़कर उड़ चली परमधाम में, पहुंच गई शांति के सागर के पास। उसकी शांति की तरंगें मुझ में समाने लगी। परमात्मा शांति स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापिस आई, भ्रकुटी की कुटिया में पुनः विराजमान, और मुझसे ये शांति की तरंगें चारों ओर फैलने लगी। संसार की सभी आत्माओं को शांति का दान मिलने लगा। ये अभ्यास हर घंटे में एक दो बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।

0: रुक रुक रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जीवन में हास्य एवं विनोद कला का बहुत महत्व है, क्योंकि जीवन में सिर्फ रूखापन हो तो वह जीवन नीरस हो जाता है। हम उस जीवन से उब जाते हैं और जीने की इच्छा नहीं रहती। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि हास्य और विनोद कला को अपने जीवन में कैसे निखारें। यूं तो ईश्वरीय ज्ञान रमणीक है, जिसे ज्ञान की गहराई में उतरना आता है, उसके जैसी खुशी और किसी को नहीं होती। जिसका जीवन योग युक्त है, वो आनंद विभोर होता है और उसे स्थूल विनोद की जरूरत महसूस नहीं होती। जो दिव्य गुणों के मोती चुकता है और क्षीर ले लेता है अथवा नीर को अलग कर देता है, उस सद्विवेकी व्यक्ति को स्थूल हास्य में कोई विशेष रस नहीं मिलता। जो सेवा में लगा रहता है, उसका मन सदा मुस्कुराता रहता है। बाह्य मुखता पर आधारित हंसी विनोद की आवश्यकता उसे होती है जिसे अभी रूहानी नशा नहीं चढ़ा। परंतु जब तक मनुष्य के जीवन में ज्ञान पूरी तरह से रंग लाए और योग उसके जीवन में सुगंध ही भरे और गुणों में रमण करते करते वो उसके रस में डूब जाए, तब तक उसे कभी कभी रमणीकता की आवश्यकता महसूस होती है। इस प्रयोजन से व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो कोई गीत सुन ले, कोई नाटक देख ले, उसे हंसी की कोई बात सुना दी जाए, उस जिससे कि वो ज्ञान की गंभीरता से ऊपर आकर थोड़ा हल्कापन अनुभव करे। अतः यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कला आती हो कि वो ज्ञान युक्त हंसी की कोई बात सुना दे, जिससे गंभीर समस्या सामने होने पर भी सुनने वाला खिलखिला उठे, वो कोई ऐसी कविता सुना दे जिससे कि व्यक्ति के मन में एक नई उमंग जाग जाए, गीत की कोई दो पंक्तियां ही ऐसी गा दे जिससे मनुष्य का मन झूम जाए और बात को ऐसे चुटकुले में बदल दे कि चिंता व्यक्ति के मन से छूट जाए और उसे ऐसे लगे कि वो यूं व्यर्थ ही चिंता कर रहा है, तब इससे भी काफी सेवा हो जाती है। इसलिए जीवन में सदा खुश रहने के लिए और दूसरों को खुश रखने के लिए थोड़ी बहुत हास्य और विनोद की कला का आना भी जरूरी है। इससे व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कटुता अथवा नाराजगी को छोड़कर हंस पड़ते हैं, दुख दर्द को भूलकर एक नई शक्ति का प्रवाह अपने जीवन में महसूस करते हैं और वे एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखना

व्यक्तियों के जीवन में केवल रूखापन हो, जो कभी भी अवसर आने पर हास्य या विनोद कला के किसी भी रंग ढंग को प्रयोग करना न जानते हो, लोग उनसे उकता जाते हैं, वे उसके प्रति आकर्षित नहीं होते और मेल जोल को सहज नहीं मानते, बल्कि दूर दूर रहते हैं। इससे ऐसे व्यक्तियों का जनसंपर्क के कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। लोगों के मन को जीतने की उस कला में कमी रह जाती है। नीरस व्यक्ति की अपनी नीरसता के कारण वातावरण में भी नीरसता छा जाती है और लोग उसे अपनी महफिल में शामिल करने के लिए हिचकिचाते हैं। वे ये चाहते हैं कि कभी तो वे जी खोलकर बोल सकें, अनौपचारिक रूप से मिल सकें और दोस्ताना तरीके से बातचीत कर सकें। इसके लिए वे हंसी और विनोद वाले व्यक्ति को अपनी संगत में रखना चाहते हैं। हंसी और विनोद का अभिप्राय यह नहीं है कि अभद्रता और उच्च श्रृंखलता और चंचलता और चपलता से बोलचाल या व्यवहार किया जाए। इसका ये भी भाव नहीं है कि इतना खिलखिलाया जाए, जोरदार कहकहे लगाकर हंसा जाए और मजाक का गोल गप्पा खाया जाए कि आत्मा और परमात्मा की सुध बुध ही भूल जाए और लक्ष्य तथा पुरुषार्थ की विस्मृति हो जाए। रूहानियत के बिना तो हंसी और विनोद समय गंवाने वाले, बाह्य मुखता में लाने वाले, वातावरण को बिगाड़ने वाले और देह अभिमान में लाने वाले होते हैं। ज्ञानी और योगी को ऐसे हंसी और विनोद प्रिय नहीं होते जो उसे अपने प्रियतम प्रभु से दूर कर दें और योग की ऊंचाइयों से उतार कर धराशयी कर दें, बल्कि शिष्टता, सज्जनता, मर्यादा से युक्त होकर अच्छे प्रकार के हंसी और विनोद के तरीके, गीत, कविता, नाटक, कहानी आदि ही ठीक प्रकार के ऐसे साधन होते हैं जो आमोद प्रमोद विनोद भी करते हैं और मनुष्य को घटिया प्रकार की भाव अभिव्यक्ति में लोटपोट नहीं करते। ऐसी हंसी और विनोद की कला का विकास करने के लिए न तो कोई टॉनिक लेने की आवश्यकता है और न ही कोई अधिक चुटकुले इकट्ठे करने की जरूरत है, बल्कि स्वयं खुशी में रहने की आवश्यकता है, जिससे कि सहज भाव से ही मनुष्य के ऐसे बोल निकलेंगे कि मनुष्य का मन खिलखिला उठेगा। इसके अतिरिक्त गीत, नाटक, कहानी भी ऐसे होने चाहिए जो न केवल मनोरंजन के साधन हो, बल्कि मन को लुभावने तरीके से अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाले हों, जिसका जीवन निश्चिंत हो, व्यर्थ सोच से फारिग हो, उसका अपना हल्कापन उसमें स्वतः ही ऐसी कला को स्फुटित और विकसित करता है जिसे कि वह उच्च कोटि का हंसी के स्वभाव वाला मानव कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में हास्य और विनोद कला को निखारते चले जाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जानेंगे स्वास्थ्य कला के बारे में। आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य कला भी कोई कला होती है क्या? जी बिल्कुल, ये कहावत प्रसिद्ध है कि यदि मनुष्य का स्वास्थ्य गया तो मानिए कि उसका कुछ महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। स्वास्थ्य के बिना मनुष्य के शारीरिक कार्य क्षमता में अंतर आता है। शारीरिक कमजोरी से मनुष्य कई अच्छे काम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाता। और तो क्या, मनुष्य की साधना में भी अस्वस्थता कुछ न कुछ बाधा उपस्थित करती है और उसका ध्यान महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सेवाओं की ओर ले जाने और लगाने की बजाय शरीर की ओर खिंचवाती है। अतः स्वास्थ्य एक अनमोल निधि है, परंतु दवाइयों के आधार पर शरीर को चलाते रहना स्वास्थ्य नहीं है। वास्तविक स्वास्थ्य वो है कि स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रीति से निर्विघ्न रूप से स्वयं चलित हो। उसके लिए जीवन में कई प्रकार की धारणाओं की आवश्यकता है। यद्यपि पिछले अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के चुकता होने के लिए भी अस्वस्थता मनुष्य को आ घेरती है, तो भी जीवन के कुछ एक महत्वपूर्ण नियमों के पालन से भी काफी हद तक स्वास्थ्य बना रह सकता है। आज ये माना जा रहा है कि मनुष्य को कई रोग उसके वंश के पूर्वजों से मिलते हैं और इसलिए उनका मुख्य कारण अनुवंशिकीय होता है, और कुछ एक रोग दुर्घटना से, प्राकृतिक प्रकोपों से, पर्यावरण प्रदूषण से और अनायास ही खाने पीने की चीजों में मिलावट से उसको आप पकड़ते हैं। निसंदेह कर्मों के सूक्ष्म प्रभाव के रूप में ये सब कारण तो होते हैं, परंतु जहाँ तक मनुष्य के स्वास्थ्य की एवं उस द्वारा देखभाल करते रहने की बात है, वहाँ ये भी सत्य है कि जीवन के कई ऐसे विधि विधान हैं जिनको पालन करने से मनुष्य को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने की सुविधा होती है। उन नियमों तथा विधि विधानों का पालन करना भी स्वयं एक बहुत बड़ी कला है, जिसे हम यहाँ स्वास्थ्य कला कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सदा खुशी में रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कहा गया है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता को चिता के समान माना गया है। भय भी मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने वाला विकार है, जो उसके हृदय, मस्तिष्क और सारे स्नायु मंडल को झकझोर देता है। चिंता और भय से भोजन भी शरीर में विकृत रूप ले लेता है और विषक्त होकर शरीर को रुग्ण अवस्था में ले जाता है। इसके विपरीत कोई मनुष्य दिनों दिन हृष्ट पुष्ट होता जाता है, मानो कि वो कोई पुष्टिवर्धक पदार्थ खाता हो।

कहा गया है कि यदि मनुष्य के भोजन में सब विटामिन हो, परंतु यदि खुशी रूपी विटामिन न हो, तो शरीर के विकास और स्वास्थ्य में कमी आ जाती है। परंतु मनुष्य सदा खुश तब रह सकता है जब वो ईश्वर में निश्चय बुद्धि होता है, भावी में विश्वास रखता है, कर्मों की गति को समझता है और इन सब बातों को जानकर अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है और फिर परिणाम के बारे में व्यथित नहीं होता। ये सब तो ऐसे ज्ञानी और योगी ही के लक्षण हैं जो पुरुषार्थ में पूरे रूप से तत्पर रहता है और कर्म फल की चिंता छोड़ दे।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसका स्वास्थ्य भी स्वाभाविक रूप से ठीक बना रहता है। सात्विक भोजन से अभिप्राय यह है कि उसमें मांस मदिरा, प्याज, लहसुन, तंबाकू, उत्तेजक पदार्थ, अनेक प्रकार के तेज मिर्च मसाले इत्यादि नहीं होते और जो बासी बिगड़े हुए स्वाद वाला, चीरकाल से रखा हुआ, भारी, देर से हजम होने वाला इत्यादि दोषों से रहित होता है। इस पर भी विशेष बात यह है कि जिस भोजन को बनाने वाला व्यक्ति पवित्रता का पालन करता हो और भोजन बनाते समय ईश्वर की याद में हो, वही भोजन सात्विक है। इतना ही नहीं बल्कि भोजन को सात्विक कोटि वाला बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाने वाला व्यक्ति भी खाते समय प्रभु को याद करके उसका सेवन करे। जो व्यक्ति योगयुक्त होकर भोजन करता है वो स्वाद के वशीभूत होकर पदार्थ को जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं लेता। जो पदार्थ उसके शरीर के अनुकूल ना हो उसे भी वो नहीं लेता और भोजन को एक प्रकार से प्रसाद मानकर मन की मुदित एवं निश्चिंत अवस्था में उसे स्वास्थ्यप्रद मानकर स्वीकार करता है। ऐसे भोजन से मनुष्य के मन में हर्ष उत्पन्न होता है, उसे शरीर में हल्कापन महसूस होता है और वो आलस्य के अधीन नहीं होता। जिस व्यक्ति को सकारात्मक विचार करने का अभ्यास है उसके शरीर में स्फूर्ति, लचक और हल्कापन होता है। निराशा भरे विचारों वाला व्यक्ति दूसरों के जीवन में त्रुटियां देखने वाला अथवा छिद्रान्वेषी व्यक्ति हर एक चीज में कमी कमजोरी देखकर अपने भाग्य को कोसते रहने वाला व्यक्ति, दूसरों के प्रति कटु दृष्टि रखने वाला व्यक्ति और सदा हृष्ट एवं असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति अपने ही स्वास्थ्य को स्वयं बिगाड़ता है। वो स्वास्थ्य रूपी चंदन के पेड़ों को स्वयं ही जलाकर उनका कोयला बना देता है। वह स्वयं पर नकारात्मक विचार रूपी कांटे अपने तन मन में लगाकर स्वयं ही दुखी होता है और इस विधि से अपने स्वास्थ्य को गंवा बैठता है। परंतु सकारात्मक चिंतन में वो प्रवृत्त हो सकता है जिसकी ये स्थिर मान्यता हो कि मेरा कल्याण होने वाला है, मेरा हाथ प्रभु के हाथ में है, इसलिए कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं स्वयं ही अभी अपूर्ण हूँ, इसलिए दूसरे की अपूर्णता देखना गोया स्वयं को धूल धूर्षित करना है और कि जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा कर्तव्य तो अच्छा करना है और दूसरों की कमियों को, कमजोरियों को न देख करके मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसलिए ये मानना होगा कि ईश्वरीय ज्ञान की ठीक प्रकार की धारणा से ही मनुष्य में सकारात्मक विचार करने की कला आती है और सकारात्मक विचारों से सहज रीति स्वास्थ्य बनाए रखने की कला आती है।

जो व्यक्ति प्रायः जल्दी उठकर स्नान ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनका भी तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ तन और मन वाला व्यक्ति स्वस्थ तो होता ही है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता और निर्मलता है, वहाँ निश्चित रूप से स्वास्थ्य बनाए रखने में सफलता होती ही है। मल और विक्षेप भी स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले होते हैं, और जो व्यक्ति इनसे मुक्त है वो स्वाभाविक तौर पर स्वस्थ होता ही है। फिर ब्रह्मचर्य तो स्वास्थ्य का स्रोत ही है, उससे अदम्य उत्साह होता है, शरीर में शक्ति का संचय भी होता है और वृद्धि भी होती है। मनुष्य का मनोबल बढ़ता है, वो निर्भय बन जाता है और स्वयं में स्वास्थ्य का एक झरना सा महसूस करता है, जो सतत निरंतर उसमें शक्ति का संचार करता रहता है। ब्रह्मचर्य व्रत का तो वही पूर्ण पालन कर सकता है जो देह में अनासक्त हो, देह के आकर्षणों से मुक्त हो, देहाभिमान से ऊंचा उठ जाए और आत्म स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को अमृत पुत्र मानता हुआ प्रतिदिन ज्ञानामृत का सेवन करते हुए जीवन जिए। ब्रह्मचर्य से मनुष्य के जीवन में, शरीर में रोगनाशक क्षमता बढ़ती है और इसलिए वो रोगों के आक्रमण से बचा रहता है। जिसे औरों की दुआएं मिलती हों, उसे भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहयोग मिलता है। लोगों की दुआओं का अपना एक प्रभाव मंडल होता है। उस प्रभाव मंडल से घिरा हुआ व्यक्ति रोगों के आक्रमणों से दुखी नहीं होता, बल्कि यदि रोग हो भी जाएं, तो वो उन्हें सहज रीति से झेल लेता है। दुआएं तो उसको ही मिलती है जो लोगों का भला करता है, उनके भले की बात सोचता है और भलाई करने में रात दिन लगा रहता है। वो उनके मन को इतना जीत लेता है कि वे अपने अंतर मन से सूक्ष्म सहायता करते हैं और रोग शमन शक्ति में अपनी शक्ति भी प्रदान करते हैं। जितना कोई अधिक योग में रहता है, प्रभु की याद में रहता है, उतना वो रोग से बचकर रहता है। स्वरूप में स्थित होना ही योग है। स्व में स्थित होने को ही स्वास्थ्य कहा गया है। इसलिए स्व में स्थिति से स्वास्थ्य का लाभ होना स्वाभाविक है। योग से मनुष्य में कर्म की कुशलता आती है, क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ बना रहता है। योग के फल स्वरूप मनुष्य को 21 जन्मों तक कंचन समकाया प्राप्त होती है, जिससे वो कमजोरी और बीमारी से ऊपर उठा रहता है। जो व्यक्ति ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, उसे ईश्वरीय सहायता मिलती रहती है। उस सहायता से उसका स्वास्थ्य बने रहने की संभावना होती है। सेवा वाला व्यक्ति का शरीर अपने लिए न होकर जनहित के लिए होता है, और जनहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रभु अपना प्यार देते हैं, और जिसे प्रभु का प्यार मिले, उस प्यार में स्वास्थ्य या रोग को झेलने की शक्ति उसमें समाये होती है। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान, योग और सेवा इत्यादि से ही मनुष्य स्वास्थ्य कला में आता है। यहाँ तक कि उसमें अपने शुभ संकल्प दूसरों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद होते हैं। कहने का भाव यही है कि सदा खुश रहो, खुशी बांटो, सुख दो, सुख लो, तो इस प्रकार से आप सदा स्वस्थ रहेंगे। और यह तभी संभव है कि आप हर कार्य में, हर वक्त प्रभु की याद में रहें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में।

0: भैया, आदिकाल से घूम रहा हूं। मैंने इस सृष्टि का सुनहरा व स्वर्णिम दौर देखा है, तो कलियुगी संसार के विकारों से वशीभूत मानव की पीड़ा एवं समस्याओं से भी अनजान नहीं हूं। इंसान का जीवन किसी भूल भुलैया के समान हो गया है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वह असल में कौन है, उसके भीतर कौन सी शक्तियां छिपी हैं। अज्ञानता के घोर अंधियारे में डूबा मनुष्य अपनी ही विशेषताओं से अनभिज्ञ है, जिस कारण संस्कार एवं मूल्य सब नकारात्मक होते जा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को जैसे ही परमात्मा ने उनकी असल पहचान बताई कि वह एक आत्मा है, ज्योति पुंज है, शांति शक्ति प्रेम आनंद उनके मूल गुण हैं, उस एक क्षण से बाबा का जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास अर्थात पुरुषार्थ शुरू कर दिया और समयांतराल में अपनी तपस्या के बल से संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। मुंबई के गामदेवी सेंटर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के नेहा इस पर और प्रकाश डाल रही हैं कि आखिर ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया कि वे संपूर्ण एवं संपन्न बन गए।
1: अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से पालना ली।
2: ओम शांति। आध्यात्मिकता का अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति स्वयं को सही रीति से पहचान ले कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या क्या शक्तियाँ समाई हुई है, और ये रियलाइजेशन जब व्यक्ति को हो जाता है तो उसका सोच और उसका नज़रिया दोनों बदल जाता है। क्योंकि परमात्मा ने बताया हुआ है कि हर आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, उनकी ओरिजिनल जो स्थिति है, वो तो परफेक्ट है। बहुत ऊंची क्वालिटीज़ हर आत्मा के अंदर छिपी हुई है, ऊंचे गुण वैल्यूज़ आत्मा के अंदर समाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर अज्ञानता का लेयर आ गया है, हमारे बुरे कर्मों के लेयर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारा एटीट्यूड सब नेगेटिव हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। टेंशन होता है या लिमिटेशंस फील होती है या कुछ कर नहीं पाते हैं, शक्तियाँ कम महसूस होती हैं। लेकिन जब ये महसूस हो जाता है कि ओरिजिनली तो मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, ओरिजिनल फॉर्म तो मेरा परफेक्ट है, ब्लिसफुल हूँ, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो इस ओरिजिनल क्वालिटी तक पहुंचना यही आध्यात्मिकता की एक यात्रा है। और इस यात्रा में पुरुषार्थ भी लगता है, जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। क्योंकि हम सभी के अंदर जो एक बॉडी कॉन्शियसनेस है कि भाई मैं फलानी व्यक्ति हूँ, ये इतना गहरा है और इतने जन्मों का है कि उससे बाहर आना यही एक बड़ा तप है। जब हमें ये ज्ञान मिलता है कि मैं वास्तव में एक वो एनर्जी हूँ, शक्ति हूँ, छोटी सी आत्मा जो पूरे बॉडी को तो कंट्रोल करती है, लेकिन अपने संकल्पों से वो पूरे यूनिवर्स को भी कंट्रोल कर सकती है, उतनी भी उसमें शक्ति है। लेकिन हम नेगेटिविटी में, अपने आप को मेंटल लिमिट्स में बांध कर रखते हैं। तो पहला पुरुषार्थ जो हमें आध्यात्मिकता में करना पड़ता है वो है स्वयं को डीपली रियलाइज करना कि मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ जो ये शरीर में विद्यमान है। सेकंड, मैं आत्मा शक्तिशाली, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये आत्मा के सात ओरिजिनल गुण हैं। तो पहली यात्रा यहीं से शुरू होती है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये शरीर क्या है? ये मेरा साधन है जिसके द्वारा मुझे कर्म करना है, लेकिन मैं तो वो शरीर नहीं हूँ। तो हमारा कंट्रोल हमारे शरीर की इंद्रियों पर होना चाहिए, मन पर होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस जब आ जाती है ना, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता है और धीरे धीरे उसके जीवन की कमी, कमजोरियाँ, नेगेटिविटीज़ सबसे वो बाहर आ जाता है। और जब वो रियल सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाता है, जो ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से ये तपस्या शुरू की और इतनी मेहनत की ब्रह्मा बाबा ने, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा के परिवार वालों के लिए भी बाबा लिखते थे, उनके युगल थे, यशोदा आत्मा है, बेटा नारायण आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, लिखा, डायरिया भरी, दीवारों पर लिखा। तो पूरा एक सेल्फ को ये रियलाइज इतना डीपली ब्रह्मा बाबा ने करवाया कि वो इतने आत्माभिमानी हो गए कि उनके सामने कोई जाते थे तो वो भी थोड़े समय के लिए अपने देह भान और ईगो को भूल जाते थे, तो भी एकदम लाइट लाइट फील करते थे। और यही तपस्या को लेकर ब्रह्मा बाबा ने वो संपूर्णता तक अपने आप को पहुंचाया जहाँ पे आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में सदा के लिए स्थित हो जाती है। फिर वो भले वो बॉडी में है लेकिन उसकी पूरी कंट्रोल होती है अपने इंद्रियों पर, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, और उसकी इतनी शक्तियाँ बढ़ जाती है कि संकल्प की भी सिद्धि, वाणी की भी सिद्धि, सारी सिद्धियाँ मिल जाती है। क्योंकि इस स्टेज में आत्मा परमात्मा से एकदम करीब हो जाती है, निरंतर की साथी हो जाती है और शिव बाबा परमात्मा निरंतर उसके साथ रहता है। तो ये जो स्टेज है इसमें प्राप्तियाँ जबरदस्त है क्योंकि इस स्थिति में हमें कोई दुख की महसूसता नहीं होगी, दुख भी हमें सुख भासेगा, खेल लगेगा, हर नेगेटिव परिस्थिति को हम एंजॉय कर सकेंगे, नेगेटिव समस्याएं हमारे लिए तोहफा बन जाएगी, तूफान तूफान नहीं रहेगा। तो ये एक आध्यात्मिक जीवन की बहुत सुंदर स्थिति है कि जिसमें एक योगी सब कुछ करता है लेकिन वो अपने अतींद्रिय सुख की स्थिति में रहता है, इंद्रियों से कार्य करवाता है और उनके जीवन की समस्याएं उनको खेल लगती है और फिर वो औरों के लिए भी एक प्रेरणादायक बन जाता है, वो अनेकों के जीवन को सुखमय शांतिमय बना देता है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन की ये स्थिति हम सभी ने सुनी है, दादियों के द्वारा हमने सुना है कि कैसे बाबा तपस्या में लीन रहते थे, कैसे बाबा के सामने इतनी सारी समस्याएं आई लेकिन एक सेकंड के लिए बाबा के चेहरे पर या मन में कोई संकल्पों की हलचल नहीं थी, सदा वो बेफिक्र बादशाह थे, सदा खुशियों में रहते थे। तो ये आध्यात्मिकता की संपूर्ण स्टेज है कि जिसमें व्यक्ति जीवन का एक सही आनंद ले सकता है और उस आनंद को संसार की कोई बातें, परिस्थिति या व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया एक लगन से अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को पक्षी के आँख की पुतली दिखाई देती थी, बाकी सबको तो पेड़ भी दिखाई दिया, आसमान भी दिखा, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखा क्योंकि उनका लक्ष्य था। वैसे हमें भी ऐसे लक्ष्य को पक्का करना पड़ेगा कि मैं भी आत्मा हूँ, ज्योति, और जिसको भी हम देखें उसमें भी उस ज्योति को देखें, सोल टू सोल कनेक्शन। तब ये आध्यात्मिकता की इस अंतिम स्थिति को हम पा सकते। तो ये फर्स्ट स्टेप है और यही फर्स्ट स्टेप पे शक्तिशाली बनना तो यही हमारी आखिरी मंजिल भी बन जाती है जो हम सहज रीति से पार कर सकते हैं। तो ये तपस्या प्यारे ब्रह्मा बाबा ने की, संपूर्णता को पाया। हम सभी को भी यही तपस्या इस रीति से करनी पड़े।
3: दीदी, ब्रह्मा बाबा तो 1969 जनवरी में अपना भौतिक शरीर त्याग किया, अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो उसके बाद आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े। आपने साकार में तो नहीं देखा ब्रह्मा बाबा को, लेकिन आप उनको कैसे अनुभव करते हैं, कैसे उनकी प्रेजेंस को फील करते हैं, कनेक्टिविटी महसूस करते हैं उनके साथ?
2: तो जैसे विश्वविद्यालय के फाउंडर ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना और उसके विकास के लिए 1969 तक तो अपना समय, शक्ति, दान, मान, धन सब कुछ लगाया, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा जो परमात्मा के माध्यम रहे, उन्होंने जब अपने देह का त्याग किया तो उन्होंने अपनी आत्मा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दी संपन्नता के स्टेज पे कि वो फरिश्ता बन गए। और ये फरिश्ता स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें आत्मा अपनी पवित्रता की शक्ति से उस एंजेलिक फॉर्म में और तीव्र गति से सेवा कर सकती है। जैसे हमने शास्त्रों में सुना है कि वे फरिश्ते आए, मदद करके चले गए, तो ये स्थिति ब्रह्मा बाबा की है। और इसी के कारण जैसे आदि में भी ऐसे हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया, शिव बाबा परमात्मा के साथ वो मगन रहा करते थे, तो कईयों को साक्षात्कार होता था और सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा का वो पोज दिखाई देता था और वो ढूंढते ढूंढते आते थे, फिर बाबा का या फोटो देखते थे, मिलते थे, अच्छा इनको तो हमने देखा, उसकी भावना बन जाती थी क्योंकि वो परमात्मा का मैसेज था कि उसको साक्षात्कार हुआ। तो अब जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद जो सेवा की स्पीड है वो कई गुना बढ़ गई है। तो पहले ब्रह्मा बाबा थे साकार में थे, जब साकार शरीर में कोई आत्मा होती है तो उसकी मर्यादाएं होती है, शरीर की शक्ति के आधार से वो सेवा कर सकती है, शरीर को रेस्ट भी चाहिए। लेकिन ये फरिश्ता स्थिति में ये बातें नहीं होती है, वो 2400 घंटा शक्तिशाली रूप में पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अब फरिश्ते स्वरूप में पूरे विश्व की सेवा में उपस्थित हैं और इसलिए आपके अव्यक्त होने के बाद सेवाएं इतनी बढ़ गई, हम कहेंगे कई अनेकों गुना बढ़ गई, विदेशों में भी बढ़ गई। और आज विदेशों में भी जो विदेशी आते हैं उनको ब्रह्मा बाबा के चित्र से इतना प्यार रहता है कि वो ये देखते हैं और कहते हैं कि हमने तो इनको स्वप्न में देखा, हमको तो साक्षात्कार हुआ, हमें तो इससे बहुत फीलिंग आती है कि ये जैसे सूक्ष्म में हमको शक्तियाँ दे रहे हैं। वैसे कईयों को ऐसा अनुभव होता है, आज बाबा के चित्र को देख के भी लोगों को लगता है कि हमें जैसे एनर्जी मिल रही है, हमने याद किया शिव बाबा को और हमें मदद मिल गई और हमारे काम हो गए। तो ये सारी जो मदद की लीलाएं हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा अब 2400 घंटे ईश्वरीय सेवा में है, क्योंकि शक्ति इतनी आत्मा की संपूर्णता तक पहुंची कि वो परमात्मा के साथ रहकर के सेवा करते हैं। और इसलिए आज विश्वविद्यालय में पहले कहाँ 300, 400 या हजारों लोग थे, आज 13 लाख से भी ऊपर और लाखों की संख्या में जो सेवाएं बढ़ते बढ़ते भाई बहन अपने जीवन को इतना महान बनाते हैं, ये जाहिर करता है कि ब्रह्मा बाबा की भी सूक्ष्म में अनेक गुना मदद है और वो अभी भी 2400 घंटा इस ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो एंजेलिक फॉर्म में है, सूक्ष्म स्वरूप में है, दिखता नहीं है लेकिन अनुभव होता है, और इसका एक प्रैक्टिकल प्रमाण आज हम देख रहे हैं।
3: ये तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की मदद थी, उनकी याद से, उनके डायरेक्ट ज्ञान सुन करके उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण बनाया। अभी कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता को फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत सारे बाबाएँ हैं और गॉड कॉम्प्लेक्सेस भी बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन सत्य को कैसे पहचाने? और ये जो राजयोग मेडिटेशन है, यही वो रास्ता है हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में संपूर्णता को प्राप्त करने की ओर। कैसे वो महसूस करे, कैसे वो समझे?
2: देखो, परमात्मा के नाम पे तो आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ बातें हो रही है, लेकिन परमात्मा की पहचान की सबसे पहली बात तो ये है कि वो सर्वशक्तिमान है, जिसकी पहचान और जिसके संबंध से शक्तियाँ हमारे जीवन में स्वतः ही आ जाती है। और अगर परमात्मा से हम जुड़े हैं और वो भगवान है, तो भगवान का कार्य तो दिनों दिन प्रगति की ओर जाना चाहिए। जो हम देख रहे हैं, समस्याएं आएगी, नाव हिलेगी, डोलेगी, लेकिन वो डूबेगी नहीं। तो आज हम ये विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि ये परमात्मा का कार्य है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ पवित्रता है, सच्चाई है। जहाँ परमात्मा है वहाँ शांति है, सद्गुणों भरा व्यवहार होता है। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं, और परमात्मा को खुद को प्रत्यक्ष करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं ही उनकी शक्तियाँ ही प्रत्यक्ष करती है कि ये परमात्मा है। तो आज हाँ दुनिया में है कि भगवान के नाम पे अनेक लोग अनेक सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन जहाँ सत्य परमात्मा से हमारा कनेक्शन है, वहाँ जीवन में परिवर्तन पहले आएगा। जैसे अंधकार है, जैसे प्रकाश आएगा तो अंधकार निकल जाएगा। तो जिसकी याद से मेरे जीवन में परिवर्तन आता है जो आज तक नहीं आया, जिसकी याद से मेरे भीतर वो शक्तियाँ जागृत हो जाती है जो आज तक नहीं थी, जीवन में दिव्यता आ जाती है, कदम कदम पर उसकी मदद का अनुभव होता है। तो ये परमात्मा का कार्य है। तो इन निशानियों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि सचमुच परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं, और परमात्मा जहाँ पर है उनके लिए सब धर्म की आत्मा एक समान होती है, क्योंकि आत्मा के नाते सब परमात्मा के बच्चे। तो वहाँ कोई धर्मों का बंधन, जाति का बंधन भी नहीं होता है, कोई भेदभाव भी नहीं होता है। उनके दर पे सब समान रीति से आते हैं और जीवन का परिवर्तन करते हैं। तो इसी निशानियों से हम शिव बाबा या परमात्मा को पहचान सकते हैं।
3: जी, जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, इस ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन करने की जब प्रेरणा लेते हैं, कौन सी ऐसी पहली मुख्य चीज़ है, या कौन सी ऐसी पहली चीज़ है जिनसे उनको शुरुआत करना है ताकि वो आध्यात्मिकता की पहला कदम ले सके?
2: पहले तो जीवन में अगर ये महसूसता आ गई कि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, या तो जीवन को मुझे सार्थक बनाना है, और जो सुख शांति की प्यास है हमारी, जिसके लिए हम बाह्य जगत में भटक रहे हैं, हमें ये है कि हमारे पास भौतिकता हो जाए, हमें कोई पोजीशन मिल जाए, हमारा समाज में नाम हो जाए। प्रायः लोगों में यही होता है, ये सब कुछ हो जाए तो हमारा जीवन बस, हमने कुछ पाया। लेकिन जिन लोगों ने इन सबको पा लिया है, वो टॉप पे है, उनको भी आप देखेंगे कि उनका मन तो और नई नई ख्वाहिशें कर रहा है। तो ये मन की एक दौड़ है जो मृग तृष्णा का अनुभव कराती है। तो पहले तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए, या तो ये स्वीकार होना चाहिए कि बाह्य जगत से ये सब कुछ मिलना नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मेरे भीतर से आंतरिक जगत में से ही मिलेगा। पहला कदम तो स्वयं को जानकर, स्वयं को रियलाइज करके अपनी अंतर यात्रा को शुरू करना चाहिए। तो उसमें जैसे ही हम स्वयं को जानेंगे तो स्वयं के पिता को भी हम बहुत सहज रीति से जान सकेंगे।
0: मैं काल चक्र भी ब्रह्मा बाबा एवं यज्ञ वत्सों की तरह इस सच को स्वीकार करता हूं कि आध्यात्मिकता में जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को सही रीति से पहचान सकता है। उसकी सोच एवं नजरिया दोनों बदल सकते हैं। उसमें सकारात्मकता का संचार होता है। परमात्मा शिव कहते हैं कि हर आत्मा विशेष होती है और हमें हर मानव में विशेषता देखने का ही अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं इसका शत शत पालन कर अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अपने इसी पुरुषार्थ के बल पर वे परमात्मा के इतने समीप पहुंच गए कि उन्हें दुख दर्द मान अपमान किसी भी बात की महसूसता नहीं रही। वे अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर शक्तिशाली अनुभव करने लगे। संकल्प वाणी सब में सिद्धि हासिल कर ली। योग एवं तपस्या ने उन्हें उस फरिश्ता स्थिति तक पहुंचा दिया जहां से वे संपूर्ण विश्व की सूक्ष्म रूप से सेवा कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। अगर हम देखें तो हम तलाश रहे हैं उसे जिसे सबसे पहले तलाशना चाहिए था, और वो है हमारी अपनी पहचान, हम खुद। Who am I? ये सवाल कब से हमारे पीछे लगा हुआ है, और अभी तक हमने इस सफर में जो जाना वो ये है कि मैं वो शरीर या वो नाम या वो प्रोफेशनल जो मैं हूँ वो नहीं हूँ, उन्हें हम नेगेट करते गए हैं, और कहीं ना कहीं हम पिछली कड़ी में सोल तक पहुँच गए थे। इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
3: ओम शांति।
2: सिस्टर शिवानी, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअली मैंने इस बात को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरा शरीर है, मेरे ये ड्रेस है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा नाम है, लेकिन मैं खुद जो इस उन पूरी चीज़ों को गवान कर रही हूँ वो एक आत्मा हूँ। अब हुआ ये है कि जब से मैंने इस बात को समझा है, मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस जितने भी दर्शक हैं वो भी शायद इससे गुजरे होंगे कि अब मैं जब बार बार अपने आप को कह रही हूँ तो मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं ये कप उठा रही हूँ, या मुझे लगता है कि मैं या मेरा हाथ उठा रहा है, यू नो, ये एक कॉन्फ्लिक्ट लेके आती हूँ मैं, और फिर मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि
3: मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा इस शरीर को कह रही हूँ।
2: अच्छा, अगेन मेरी आत्मा में फिर मैं कुछ और हो जाऊंगी।
3: मैं कुछ और नहीं, मैं आत्मा मींस पावर। सी अगेन, इट्स नॉट, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द लेबल्स कि आत्मा कोई और अब लेबल नहीं है। मैं इस, जैसे मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है इज अ थॉट, तो मैं ये संकल्प क्रिएट करती हूँ, मैं ये विचार करती हूँ मुझे प्यास लगी है। इंस्ट्रक्शन ब्रेन को फीड होता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और आपका हाथ उस ग्लास की तरफ चला जाता है। मुझे प्यास लगी, इट स्टार्टेड विद दैट। तो मैं आत्मा, उसने ये संकल्प क्रिएट किया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, बॉडी ने उसको फॉलो किया, आपने उठाया। तो जब आप उठा रहे हैं, जैसे आपने कहा, तो आपको ये अवेयरनेस है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये ग्लास को उठा रही,
2: या मैं शरीर को कह रही हूँ, अपने हाथ को, कहा मैंने कि ये कब उठाए, तो मैं जो हूँ अल्टीमेटली आत्मा हूँ। ये एक्सेप्ट किया, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगी। कहीं ये मुझे लगता है यही दर्शकों के साथ भी शायद थोड़ा हो रहा होगा कि कहीं ये मेक बिलीव है, क्या ये ऑटो सजेशन है, क्या मैं अपने आप को बार बार ये सजेस्ट कर रही हूँ कि लॉजिकली वी हैव अंडरस्टूड, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन अंडरस्टूड, लेकिन क्या कहीं मैं अपने आप को बार बार ये सजेस्ट तो नहीं कर रही कि मैं आत्मा ये करवा रही हूँ अपने शरीर से।
3: ये लॉजिकली पहले अगर देखे, बिकॉज मैं कौन हूँ ये अनुभव करना है, यू नो, दिस हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड, बट इवन लॉजिकली अगर देखा जाए तो वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि आई एम द पावर विच चूजेस टू डू व्हाट आई वांट टू डू। एवरी वर्ड दैट आई से, ये मुंह बोलता है, लेकिन मैं चूज करती हूँ कि इस मुंह के द्वारा कौन से शब्द बोलने हैं। मीठे शब्द बोलने हैं, कड़वे शब्द बोलने हैं, बहुत गुस्से वाले बोलने हैं, वो पावर।
2: लेकिन वो माइंड भी तो हो सकता है, वो मेरा, यू नो, लाइक जो अगेन इज माइंड द सोल,
3: राइट? सी, दैट्स व्हाट, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू क्लियर अप। जैसे आपने कहा आत्मा शक्ति है, हमें उसको अनुभव करना है, राइट? हमें एक्सपीरियंस करना है। कैसे समझ में आएगा कि सचमुच कुछ है, या वी आर जस्ट मेकिंग इट अप एंड हम बार बार बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो अभी तक मैं कनुप्रिया थी, अब मैं आत्मा हो गई? नो, इट्स अबाउट रियलाइजिंग दैट कि आई एम दैट पावर, मैं आत्मा इस शरीर में बैठ कर क्या करती हूँ। उससे फिर ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि ये मेक बिलीव है या लॉजिकली ये वर्क करता है। जैसे आपने कहा माइंड अलग है, आत्मा अलग है, ब्रेन, लोग ब्रेन और माइंड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है?
2: ब्रेन इज दैट यू टोल्ड मी सुपर कंप्यूटर.
3: हाँ, और माइंड?
2: माइंड इज द थॉट्स जो जनरेट हो रहे हैं.
3: मोटे रूप में दोनों में फर्क ये हो जाएगा कि ब्रेन फिजिकल है,
2: जो माइंड है दैट इज
3: एनर्जी. अगेन, आप ब्रेन को देख सकते हैं, मन को
2: नहीं. माइंड एंड मन आर सेम.
3: मन सोचने की शक्ति.
2: दिमाग क्या हुआ?
3: ब्रेन.
2: ओके,
3: द ब्रेन दिमाग, मन माइंड.
2: तो मन पे लगाम देनी चाहिए. मन
3: द माइंड इज लाइक अ हॉर्स व्हिच हैज टू बी कंट्रोल्ड. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू से.
2: बट मन माइंड और सोल तो मैं ही हूँ. नहीं,
3: हाँ, दैट्स व्हाट. लेट्स सी, मन क्या है और ब्रेन क्या है. ब्रेन फिजिकल है, मन फिजिकल नहीं है. राइट, हमें ब्रेन की पिक्चर दिखाई जा सकती है. अगर हम उसमें कहें इसमें मन कहाँ है,
2: तो वो आई डोंट थिंक सो.
3: है ना?
2: हाँ, नहीं बताया.
3: अब आप कैसे बिलीव करेंगे कि फिर मन है? इज दिस ऑल्सो ऑटो सजेशन कि मन है? मन,
2: मन है? तो है, तो हम मानते हैं.
3: कैसे?
2: Because we feel it, I think.
3: Experience. आपको किसी ने बचपन से भी, एक बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता है कि थॉट कैसे क्रिएट करना है. बच्चे को मन क्या है ये सिखाया भी नहीं जाता है. ब्रेन क्या है ये सिखाया जाता है. थॉट्स क्या है ये सिखाया नहीं जाता है. इनफैक्ट दैट्स अनफॉर्चुनेट कि हमें नहीं सिखाया जाता है ये. वी आर हैव टू बी यू नो इन द अवेयरनेस. लेकिन संकल्प, विचार, थॉट्स, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन क्रिएटिंग. And that's why we are aware. We don't need a scientist to tell me that there is a mind. हमने कभी किसी से नहीं पूछा प्रूफ करो माइंड है कि नहीं. Why we didn't need a proof? क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एक्सपीरियंस के ऊपर कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता. प्रूफ तब तक चाहिए जब तक एक्सपीरियंस नहीं है,
2: अनुभव नहीं.
3: अगर एक चीज आपने अनुभव कर ली ना, उसके बाद सारी दुनिया एक तरफ. अगर सारी दुनिया भी आज कहे कि माइंड कोई चीज नहीं है, कनुप्रिया माइंड कोई चीज नहीं है, आप कहेंगे है. मैं सारा दिन उसको फील करती हूँ. यू डोंट नीड टू सी इट, यू डोंट नीड एनी एक्सपेरिमेंट फॉर दैट. तो मन वो शक्ति है, सोचने की शक्ति है. राइट, अब आत्मा एक शक्ति है. आत्मा तीन रोल्स प्ले करती है. ठीक है, जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ, मैं सोचती हूँ. जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ, वी कॉल इट द माइंड.
2: ओके,
3: लाइक यू कनुप्रिया, व्हेन यू आर विद योर डॉटर, यू आर कॉल्ड द मदर.
2: ओके,
3: आप एक हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों के साथ हैं तब आप माँ हैं. जब आप अपनी मम्मी के साथ हैं आप बेटी हैं. जब आप अपने स्टूडियो में हैं आप एक प्रोफेशनल हैं. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं आप एक फ्रेंड है. वन पर्सन,
2: डिफरेंट रोल,
3: डिफरेंट.
2: सिमिलरली वन सोल,
3: वन एनर्जी, डिफरेंट फैकल्टीज. जैसे वन बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स. एक शरीर में पांव भी है, हाथ भी है, ये सारे अंग है. इसी तरह एक शक्ति है. मैं आत्मा एक शक्ति हूँ. मैं तीन फैकल्टीज के द्वारा ये कार्य करती हूँ, या तीन रोल्स में प्ले करती हूँ.
2: तो मैं, आपने कहा कि मैं जब सोचती हूँ तो माइंड होती हूँ. इट मींस मैं जो सोल, जो एनर्जी हूँ, वो मैं कन्वर्ट हो रही हूँ थॉट एनर्जी.
3: कन्वर्ट नहीं होता, मैं थॉट क्रिएट करती हूँ.
2: नो नो, बट देन एनर्जी इज टू बी क्रिएटेड, राइट? इन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड. सो वो
3: नो, एनर्जी एग्जिस्ट, राइट? इट इज वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, इट गिव्स लाइट, right? Through the tube, through the fan, through different.
2: Okay.
3: Okay, it will give you heating here, it will give you cooling through the AC, it will give you light through this. It is one electrical energy.
2: Okay.
3: But the different manifestations that it will take. Similarly, मैं एक शक्ति हूँ जो तीन कार्य कर सकती है. One energy, not different energies. One energy plays three different roles or three different tasks. तो सबसे पहला जो मेरा काम है वो है मन, संकल्प क्रिएट करना. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, हम उसको लेबल देते हैं मन. आपको चाहिए आप लेबल हटा सकते हैं. दिस इज अगेन जस्ट अ फ्रेगमेंट, यू नो,
2: डिविजन.
3: या जस्ट टू मेक इट इजियर. अदरवाइज इट इज मैं संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ, तब हम कह देते हैं मन ने ये संकल्प किया. तो द थिंकिंग फैकल्टी, थिंकिंग, जैसे ही थॉट्स क्रिएट होंगे, इमोशंस, feelings, desires,
2: destiny, then the whole journey.
3: Yeah. So it is the thinking faculty. The second faculty of the soul is intellect, buddhi. Man ne sankalp kiya, right? Let's say, pehli baar koi kisi ko cigarette offer karta. Man mein do prakar ke sankalp chalte hain. Loon ya nahi loon. To man dono taraf se, jaise do lawyer hote hain, wo dono pros and cons hame bata deta. Nahi, bahut nuksan hai. नहीं लेना चाहिए. कभी कभी लेने से क्या होगा, एक बार लेके देख लेते हैं. अब मैं आत्मा दोनों संकल्पों को इवैल्यूएट करती हूँ.
2: ये बुद्धि कर रही है?
3: हाँ, अच्छा. मैं आत्मा ही कर रही हूँ.
2: ओके,
3: राइट. दोनों संकल्पों को इवैल्यूएट करती हूँ, परखती हूँ और निर्णय लेती हूँ, लेनी है या नहीं लेनी है.
2: ओके,
3: तो किसने निर्णय दिया? बुद्धि ने.
2: इंटेलेक्ट,
3: नॉट ब्रेन. इंटेलेक्ट. ब्रेन डजंट गिव द डिसीजन, ब्रेन इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन.
2: आई गॉट योर पॉइंट.
3: राइट. बुद्धि कहेंगे, बुद्धि से काम लो. ब्रेन तो सबके पास है, लेकिन जब हमें कोई लगता है ना कि कोई सही निर्णय नहीं है, बुद्धि से काम लो अपने. तो बुद्धि मतलब डिसीजन मेकिंग फैकल्टी, माइंड थिंकिंग फैकल्टी, इंटेलेक्ट डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, जजमेंट.

0: मीनिंग इट गॉट स्टोर्ड समवेयर, वो इम्प्रेशन बन गया. इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग. कोई फिजिकली खोलकर कोई दिखा नहीं सकता आपको ये सारी आपकी मेमोरीज स्टोर्ड हैं इसमें. इम्प्रेशन स्टोर हो गया. दिस इज कॉल्ड द संस्कार. इम्प्रेशन जो बाहर मैंने कर्म किया उसका इम्प्रेशन मार्क जो मेरे ऊपर बना, दैट इज अ संस्कार या पर्सनालिटी ट्रेट हैबिट.
1: ओके,
0: यू नो कोई भी कर्म हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, इट विल बिकम अ हैबिट. अब संस्कार किसके होते हैं? कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, बहुत पुण्य संस्कारों वाली आत्मा है. हम कभी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाला शरीर है. आत्मा के संस्कार. तो मैं आत्मा, तीन फैकल्टीज.
1: एक बात ये पूछना चाहते हैं कि तीनों फैकल्टीज एक साथ भी काम कर रही
0: है? तीनों. इट्स वेरी फास्ट.
1: एक बार में एक ही काम हो रहा है.
0: इट्स वेरी फास्ट. इट्स सी एट वन टाइम ओनली.
1: इट कैन वर्क ओनली वंस.
0: सी
1: वन ऑफ फैकल्टीज.
0: आप एट अ टाइम ही आप वाइफ भी हैं, मदर भी हैं, डॉटर भी हैं. यू कैन बी विद ऑल थ्री पीपल टुगेदर.
1: या ओके,
0: राइट. बट the minute with your daughter, you're a mother, you know immediately your role, how to play, even though it would be happening very very fast. But jaise aapki ye consciousness hai ki main ek mother hu, different kind of feeling. Your consciousness, main ek daughter hu, different kind of feeling.
1: To ye teen jo faculties hai, it's like okay, very very it's actually it looks very logical, you know, the three faculties, the soul exercises.
0: Iska matlab ये था कि जो आप कह रहे थे ना कि आत्मा प्रूफ कैसे होगी. मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों के लिए कोई प्रूफ चाहिए?
1: नहीं, because
0: तीनों है. तीनों को एक्सपीरियंस किया हुआ है. मन को सारा दिन एक्सपीरियंस किया है. निर्णय लेने वाली कोई शक्ति है? पता नहीं चल रहा है क्या करूं, राइट या रॉन्ग. हाँ, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है. निर्णय लेने वाली शक्ति है? फिजिकल है? नहीं, शक्ति है. संस्कार मेरे बनते जा रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स बनती जा रही है. तीनों चीजों के लिए आई डोंट नीड एनी इक्विपमेंट टू प्रूव इट टू मी. आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल थ्री. ये तीन शक्तियां ही मैं आत्मा हूँ.
1: लेकिन क्योंकि ये डिफाइन फिजिकल नहीं है, सो आई जस्ट कांट सी इट, ओनली आई कैन फील.
0: आई कैन फील इट. तो आत्मा एनर्जी को हम फिजिकली देख नहीं सकते, हम उसको अनुभव कर सकते हैं. तो ये तीन जो इसको हम कहते हैं सूक्ष्म कर्म इंद्रिया, सूक्ष्म फैकल्टीज, ये स्थूल फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, थ्री सटल सेंस ऑर्गन्स. इन सबको हमने मास्टरी पानी है इसके ऊपर, क्योंकि ये मन बुद्धि भी तो बहुत.
1: हाँ, यही मैं आना चाहती हूँ कि अगर I the soul, okay, yes. I'll not say मेरा soul, हाँ. I the soul,
0: right.
1: If it plays these three characters, ये जैसे इंद्रियां भी तो हावी हो जाती है. कोई इंद्रिय हावी हो गई एंड देन इट्स सेड कि उन पे लगाम लगानी चाहिए, बिकॉज एक बैलेंस क्रिएट करना है. सो ये मन, बुद्धि और हैबिट,
0: राइट,
1: ये जब हावी हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली सही कौन होगा?
0: Absolutely.
1: बुद्धि सही होगी,
0: राइट,
1: या मन सही होगा?
0: एब्सोल्युटली. मन सोचने का काम करता है. आप देखो तीनों इंटरकनेक्टेड है, वो एक सर्कल बन जाएगा. मन ने सोचा कुछ, बुद्धि ने उस पर निर्णय दिया, कर्म में आया, कर्म आया, इम्प्रेशन बना. अब जो इम्प्रेशन बना है उसी के आधार से अगला
1: कर्म होगा, अगला थॉट आएगा.
0: सो इट विल बिकम अ साइकिल.
1: अगला थॉट आएगा कि मैं सिगरेट पी सकता हूँ.
0: हाँ, yes, तो था, हाँ, अच्छा, राइट. हाँ. तो नेक्स्ट टाइम फिर मन कहेगा पियो, नहीं पियो. बुद्धि कहेगी कोई बात नहीं, पिछली बार कहाँ गलत हुआ था, पी लो. दो बार, चार बार, छह बार, उसके बाद वो आपका डीप रूटेड संस्कार बन गया. उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वो सामने आएगी आपके चीज, मन में दो थॉट्स नहीं उठेंगे.
1: तो बॉडी तक कब जाएगा वो
0: तो बाद में, वो इंस्ट्रक्शन जो फीड होगी. अब लेकिन क्या हुआ, पहले इंटेलेक्ट अपना रोल प्ले कर रही थी, निर्णय लेने का. लेकिन अब विल पावर जैसे जैसे खत्म होती गई, इंटेलेक्ट अपना रोल प्ले ही नहीं करती. इंप्रेशन बना हुआ है सिगरेट पीने का, सीधा थॉट आया और पी लिया. वी बाईपास दैट फैकल्टी. मन, बुद्धि, संस्कार, इम्प्रेशन बन गया है, आदत बन गई है सिगरेट पीने की. जो संस्कार होगा वैसा ही थॉट होगा, एंड वी गो इनटू द साइकिल.
1: बहुत से केमिकल चेंजेस भी होते हैं हमारे ब्रेन में. अगर हम देखें तो कहा जाता है कि दे आल्सो, फिजिस्ट बहुत टाइम से काम कर रहे हैं कि लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड एक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो एनर्जी है, अगेन इट कैन बी अ केमिकल एनर्जी आल्सो, लाइक वी नेवर नो,
0: राइट?
1: डू वी नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी?

0: It is.
1: Yes, it is a metaphysical. It's not physical. It cannot be mixed with those chemicals. लेकिन जो आत्मा है, उसका लोकेशन क्या है? ये थिंकिंग फैकल्टी है, मन है, बुद्धि, संस्कार, ये कहाँ पर है? हाउ इज द कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द बॉडी? आप एक्शन में तो आए, लेकिन सोल और बॉडी का कनेक्शन क्या है? वो है वो थॉट पावर. थॉट पावर से आप अपने बॉडी के थ्रू वो कर्म को बाहर लेकर आते हैं. तो ब्रेन के अंदर एक रीजन है,
0: ब्रेन में जो हमारा ब्रेन है.
1: ब्रेन के अंदर सेंटर में एक रीजन है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड. ये चारों के बीच बना हुआ एक सेंटर पोर्शन है, जिसको कहते हैं सीट ऑफ द सोल. और अगर हम फिजिकली देखें तो राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन अंदर डालते हैं, इट्स दैट वेरी पॉइंट देयर
0: समवेयर इन
1: इनसाइड. इफ यू पुट अ लाइन हियर एंड यू पुट अ लाइन बीच में फ्रॉम टॉप, वेयर इट विल इंटरसेक्ट दोनों में जाके, दैट इज द सीट ऑफ द सोल, मुझ आत्मा का रहने का निवास स्थान. अब वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल लेवल में अगर ऊपर नीचे होता है तो शरीर का कोई ना कोई अंग अफेक्ट होता है.
0: बिल्कुल
1: पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द सोल. जो थॉट्स सोल से उधर जाएंगी, वो फर्स्ट चीज पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे, एंड देन द एक्शन विल बी सेंट हियर. स्ट्रेस हुआ, एंगर हुआ, हैप्पीनेस हुई, कुछ भी डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस दैट आर क्रिएटेड, हार्मोनल लेवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विल फ्लक्चुएट, एंड अकॉर्डिंगली वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले सकती है
0: ये
1: शरीर में.
0: एंगर हुआ, ये स्ट्रेस हुआ, ये दिस इज अ
1: थॉट्स है
0: थॉट
1: ना,
0: एक्चुअली. हाँ,
1: थॉट्स
0: द
1: है,
0: थॉट की एनर्जी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को
1: अफेक्ट
0: अफेक्ट
1: करेगी,
0: करती
1: तो
0: हुई.
1: उसके हार्मोनल लेवल को इफेक्ट कर दिया, कि जो किस तरह के हार्मोन सिक्रीट किए, या ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो गए या कम सिक्रीट हुए, तो कहीं ना कहीं जो शरीर का कमजोर अंग होगा उसके ऊपर वो अफेक्ट कर जाएंगे. तो इससे भी समझ में आता है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, आत्मा पता नहीं कहाँ रहती है, मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ, तो वो हमें पता चलता है कि वो जो सोचने की शक्ति है मन, वो कहाँ पर है. जस्ट थिंक ऑफ इट राइट नाउ, कि मन कहाँ पर है, कहाँ बैठा है.
0: Somewhere you can make
1: यू
0: it out
1: कैन मेक
0: actually,
1: इट
0: you know, when
1: आउट,
0: you realize, feel like from where the thoughts are coming.
1: एब्सोल्युटली, जस्ट सिट बैक राइट नाउ, वी कैन ट्राई इट राइट नाउ, बस आधे मिनट के लिए सिर्फ एकदम हल्के होकर बैठ जाओ. बाहर जो भी आवाजें आ रही हैं, कमरे के बाहर या कमरे के अंदर भी जहां आप बैठे, उन सब से बुद्धि को हटाते हुए बस अपने ऊपर ले आइए. और शरीर को भी हल्का छोड़ते हुए एकदम लाइट, किसी भी अंग में कोई टेंशन ना हो, शरीर के एक एक अंग को महसूस करते हुए चेहरे पर आ जाइए. और फिर भ्रुकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, इन द मिडल ऑफ द आईब्रोज, अपने विचारों को देखने का प्रयास कीजिए. कौन से विचार चल रहे हैं इस समय? जैसे ही आप अपने विचारों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो बिल्कुल धीमे हो जाते हैं, इतने स्लो हो जाते हैं जैसे आपको लगेगा कोई विचार ही नहीं है. लेकिन महसूस कीजिए कि वो सोचने की शक्ति कहाँ बैठती है. वो निर्णय करने की शक्ति, बुद्धि कहाँ बैठती है?

अपने आप महसूस होगा कि मस्तिष्क के बीच मैं आत्मा वो शक्ति विराजमान है यहां से बैठकर मैं इस पूरे शरीर को चलाती हूं आंखों द्वारा देखती हूं मुख द्वारा बोलती हूं चैतन्य शक्ति हूं ये शरीर ये मेरा वस्त्र है जिसे मैं यूज करती हूं

मैं मालिक हूं इन कर्म इंद्रियों के, मैं मालिक हूं मन बुद्धि संस्कार के।

0: Did you feel anything?
1: Oh, yeah.
0: Can you feel the difference between, you know, there's a certain energy suddenly on top. It's always there. But like in jaise hum uski taraf dekhte hain, we can start feeling it. It actually produces lightness. Kyunki jitna aap is sharir se thoda sa detach ho jate hain aur energy bilkul yahan focus ho jati hai, to aapko jaise lagta hai jaise ye sharir, jaise na aap bahut der aise baithe rahe, तो थोड़ी देर के बाद हाथ की कॉन्शियसनेस ही नहीं रहती है, जैसे कि ये है ही नहीं. है वो वहाँ पे, लेकिन हमें लगता है जैसे वो है ही नहीं. तो जब हम इस कॉन्शियसनेस में बैठ कर इस अटेंशन में बैठते हैं, तो थोड़ी देर के बाद ऐसे लगेगा कि ये शरीर जैसे बहुत हल्का होता जा रहा है. तो इसको बार बार हर थोड़ी देर के बाद कुछ क्षणों के लिए ट्राई कर सकते हैं कि मैं शक्ति हूँ, मैं मास्टर हूँ इसकी, मेरी चॉइस है कि इन कर्म इंद्रियों द्वारा क्या करना है. सो व्हाट हैपेंस एवरी टाइम आई रिमाइंड माई सेल्फ, स्लोली दैट मास्टरी विल डेवलप. यू नो, थोड़ा भी कुछ ऐसे मुझे लगे आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहे हो, नहीं सोचना चाहिए फिर भी सोच रहे हो, बैक
1: अगेन. यहाँ इंद्रियां हमारी खुद तो काम कर नहीं रही. हमारा वही माइंड ही है जो मेन कल्प्रिट, अगर हम कहें. अगर हम देखें, यू नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम,
0: राइट?
1: द सोल व्हेन यू नो क्रिएट्स थॉट इज अ माइंड,
0: राइट?
1: एक बार और रिकैप कर लेते हैं. व्हेन इट स्टार्ट्स यू नो लाइक जजिंग और एक डिसीजन लेता है, तो इट बिकम्स बुद्धि, इंटेलेक्ट, एंड देन संस्कार, व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट.
0: जो नहीं, जो भी कर्म हम करेंगे, इट विल लीव अ मार्क. और ये इम्प्रेशन जिसको हम कहते हैं मार्क, इम्प्रेशन, संस्कार, ये बनता जाएगा, एंड देन दैट बिकम्स अ साइकिल. ये तीन फैकल्टीज के द्वारा अपना सारा कार्य करती है सारा दिन. नाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, यू नो, एंड द कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द बॉडी थ्रू द थॉट, वो तो समझ में आ गया, एंड देन थ्रू द बॉडी टू द रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. सो द सोल विद द थॉट पावर थ्रू द बॉडी गेट्स कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट, एंड देन एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट लीव्स अ मार्क again on the soul. So it's a continuous cycle mein ye hota rahega.
1: Isko main ek thoda sa jaldi se recap bhi kar leti hu ki when we say soul acts in three faculties, right? Teen tarah se kaam karti hai. Ek jab wo thought create karti hai to wo mind kehlati hai. Jab wo intellect pe hoti hai, jab wo decision le rahi hoti hai, ek decision bahut zaruri hai, to wo buddhi kehlati hai. Aur jab wo action hota hai, impression, ek जब हम एक्शन लेते हैं, इंप्रेशन पड़ता है, वो इंप्रेशन रह जाता है, हैबिट बन जाता है, वो भी सोल पे भी है, सोल पे ही है, वो संस्कार है कि संस्कार लेकर आए हैं. आई वॉन्ट टू आस्क यू, इसमें कल्प्रिट कौन है फिर?
0: बुद्धि जो है वो निर्णय लेती है, वो परखती है. अब आत्मा की शक्ति जिसको कहेंगे, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये कमजोर आत्मा है, नहीं कहते, बहुत कमजोर आत्मा है बुद्धि के आधार पर.
1: Yeah, I think we should actually clarify that intellect and intelligence
0: separate
1: are two different things.
0: Two
1: right?
0: different things, absolutely. Intelligence brain ka hissa hai. You know, jo padhai mein bahut intelligent hai, academically bahut you know sharp hai, ya kisi ki grasping power bahut achhi hai, lekin buddhi वो एक डिफरेंट फैकल्टी है.
1: वो डिसीजन मेकिंग है,
0: डिसीजन मेकिंग, परखना, समझना और निर्णय लेना,
1: सही गलत की बात,
0: सही गलत. यू कुड हैव नेवर गॉन टू स्कूल, आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी परख और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी.
1: विजडम जिसे हम कहते हैं,
0: विजडम,
1: वाइज है, बहुत बुद्धिमान है,
0: बुद्धिमान है. बुद्धि जो है विजडम है, नॉलेज, इनर नॉलेज, नॉट एक्सटर्नल नॉलेज, नॉट अकेडमिक नॉलेज, लेकिन वाइज जो है, वाइज वो होगा जो सही निर्णय लेगा. उसके जो प्योर संस्कार्स हैं, उसी को वो कर्म में लाएगा, उसके कहेंगे बहुत बुद्धिवान है, आत्मा बहुत शक्तिशाली है. तो ये तीन फैकल्टीज कनेक्टेड है, इनका बहुत गहरा कनेक्शन है, कि जब अगर आत्मा शक्तिशाली है, मतलब बुद्धि स्ट्रोंग है, तो जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है. अभी क्या हो रहा है कि अगर बुद्धि कमजोर है, तो जो संस्कार है वो संस्कार मन के थ्रू, वो संकल्प क्रिएट, देखो जो संस्कार मेरा होगा, लेट्स से मेरा गुस्सा करने का संस्कार है, ठीक है, तो मन ने संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि को बाईपास ही करके वो कर्म में आ जाता है, मतलब उतना सोचते ही नहीं,
1: इतना फास्ट हो जाता है,
0: इतना फास्ट हो जाता है कि जो हम कहते हैं ना, सोच समझ कर करो, मतलब माइंड, इंटेलेक्ट, एक्शन, लेकिन हम समझ वाला पोर्शन हटा देते हैं.
1: हम सिस्टर शिवानी, ये जो हमने तीन एस्पेक्ट्स देखे कि सोल तीन फैकल्टीज में काम करता है, एक जब थॉट क्रिएट होता है तो थिंकिंग, और इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि, और उसके बाद हम आगे पहुंचते हैं और एक कर्म होता है जो कि इंप्रेशन छोड़ा जाता है. ये तीनों चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये कैसे होता है? आपने कहा कि बुद्धि सबसे स्ट्रांग होनी जरूरी है, तभी जो है सही जिंदगी जी जा सकती है. ये मुझे अभी मुझे लगा है, पता नहीं आगे आप क्या कहेंगे और क्या है वो एक्चुअली. सो अगली कड़ी में हम जरूर इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड, वन और दूसरा ये कि कहाँ से किसको स्ट्रांग करके अपनी जिंदगी जो है हम बेटर जिंदगी एंड हु एम आई की जो बात कर रहे हैं वो जान सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया
0: आपका.
1: बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी, बहुत से सवाल होंगे, क्योंकि मेरे पास भी सवालों का भंडार है अभी आगे जानने के लिए. तो आपका स्वागत है, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. ओम
2: शांति. अभी बजे हैं सुबह के 8. स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज 3 सितंबर 2026 आज का तारीख है और राष्ट्रीय शिक्षा 1948 12 गते 18 भाद्रपद गुरुवार आज है। विक्रम संवत 2083 भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार कृतिका आज है। इस्लामी हिजरी 1448 20 रबी उल अव्वल जुमेरात सुरैया आज है। इसके साथ ही किशन महाराज, प्यारे लाल, उत्तम कुमार, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही आइए हम लोग कुछ खास बातें आज के दिन की करते हैं। और सदगुरुवार के दिन हम सभी किसी गुरु को याद करते हैं और उनसे जो है प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, भाई जी नमस्कार। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जन्मदिन है तो उनका एक गाना है सर
0: जी।
1: ज्योतिष ज्योतिष जगा ते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो और आप हम साथ में चलते चलो। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद गुड़ीलाल जी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और चलिए गुड़ीलाल जी ने एक अच्छा जो भजन है वो याद किया है तो उसी को सुनते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: प्यारे लाल हैं, जो अपने 8 दर्शकों से अधिक लंबे समय तक हिंदी सिनेमा के सबसे सफल संगीतकारों में से एक इनको माना जाता है। महान संगीतकार प्यारे लाल ने संगीत सम्राट लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर के साथ मिलकर हिंदी सिने जगत को असंख्य सुपरहिट गीत दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दोस्ती, हम सब उस्ताद है, आए दिन बहार के, मेरे हमदर्द मेरे दोस्त, मेरा गांव मेरा देश, बॉबी, रोटी कपड़ा और मकान सहित सदाबहार गाने बनाए। संगीतकार प्यारेलाल को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्ण संख्या पर 2024 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और विशेष संगीतकार प्यारेलाल लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित है। तो आइए इनके बारे में अधिक जानते हैं, कैसे संगीत की शुरुआत हुई इनके जीवन में और कैसे संगीतकार बने, इसके बारे में भी जानेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए इनके सुपर डुपर हिट गाने, जो दोस्ती फिल्म ब्लैक एंड वाइट का जो फिल्म था वो गाना आपको सुनाता हूँ, जो सबको अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं दोस्ती का ये खूबसूरत नगमा, अभी आपके नाम, और ये गीत जो है 1964 में ये रिलीज हुई थी और संगीतकार विशेष लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीत से सजाया था। इसमें कास्टिंग किया था दो नए कलाकारों को, सुधीर कुमार और सुशील कुमार संजय खान, और इसके साथ में इसे गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने और मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, राही मनवा दुख की चिंता। अभी आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो।
1: जब सदा संग रहे ना कोई

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्ती के खूबसूरत गाने आप सुन रहे थे, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये पहला फिल्म जिसमें उन्होंने गाने कंपोज किए थे। तो अब आइए बात करते हैं प्यारेलाल जी के जीवन में। वैसे देखा जाए तो प्यारेलाल जीवन उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा। उनकी माँ उनके बचपन में ही गुजर गई थी। पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल भी वायलिन वगैरह सीख ले तो हालत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उस समय उनकी नाजुक हालत थी, फाइनेंस या पैसे की कमी थी। तो घर घर जाते थे, जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता था तो साथ में प्यारेलाल को भी ले जाते थे। और प्यारेलाल का मासूम चेहरा देखकर सब रुक जाते थे। और एक बार पंडित जी उन्हें ट्रम्पेट बजाने के लिए कहीं जाते थे, तो एक बार किसी ने लता मंगेशकर के बारे में बताया उन्हें और उनको कहा कि आपको वहाँ जाना है उनके पास। तो पंडित जी प्यारे को भी साथ में लेके गए। तो लता मंगेशकर के घर गए, तब लता जी ने देखा ट्रम्पेट तो पंडित जी अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में प्यारेलाल जो खड़े थे वो भी वायलिन वादक बड़े प्यार से बजा रहे थे। तो प्यारेलाल को देखकर लता जी बहुत खुश हो गए, उनकी वायलिन वादन को देखकर खुश हुई। और उस ज़माने में उन्हें जो है लता जी ने 500 रुपए इनाम में दे दिए थे, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। आप सोचिए 1960 के दशक में 500 रुपया अगर इनाम में मिल जाए तो कितनी बड़ी होती। तो वो घंटों वायलिन का रियाज करते थे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने मुंबई के रंजिता स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी पाई। उस समय उन्हें मासिक वेतन यानी पूरे महीने में 85 रुपये मिला करते थे। तो अब उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में सातवीं ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला भी ले लिया, पर 3 रुपये की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालतों ने भी उनके हौसले कम नहीं किए। वे बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था। तो ये थी कुछ खास बातें प्यारेलाल जी की। आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और प्यारेलाल जी का ही खूबसूरत गीत आपको सुनाने वाला हूँ। और ये इनके वैसे देखा जाए तो काफ़ी गाने हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ और वो गाने आपके लिए बड़ा खूबसूरत है।

तो चलिए एक और गीत आपको सुनाते हैं और ये गाना भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। और ये गाना जो है बहुत ही पॉपुलर है और चलिए अब आपको एक मज़ेदार बहुत ही खूबसूरत गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का ही सुनाता हूँ।

0: आप लोग कल आज हमारे यहाँ खाना खाइएगा सर। मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं।
1: काहे के वास्ते?
0: सर वो भाभी को देखना चाहते हैं।
1: काहे के वास्ते?
0: सर सर
1: हम आएगा, हम जरूर आएगा। हम अपना बेटी की खुशी के वास्ते किसी का भी दरवाजे पर

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी खुशियों के साथ। ना मांगू सोना चांदी, ये गीत आप सुन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत थे सरापुर, ये गीत आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म का। तो चलिए, वक्त हो गया है अब सीधे समाचारों का, दिल्ली चलते हैं और समाचार सुनते हैं अभी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
3: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment
5: where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
1: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
7: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
8: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
10: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
11: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
12: अपडेट रहे, आगे रहे एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
13: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्तप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़ैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं, मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवी की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: हाय, दिस इज ग्रेसी सिंह एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्माकुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग।

0: ओम शांति, मैं खुशान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ 9:25 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग प्यारेलाल जी के बारे में, जिनका जन्मदिन आज है। और इनकी जो है, जैसे मैंने कहा, बचपन से ही संगीत के प्रति काफ़ी लगाव रहा। और ट्रम्पेट इनके पिताजी बजाते थे और ये वायलिन बजाते थे, और वायलिन में इतने इनको जो है महारत हासिल थी कि लोग एक बार सुन लेते तो सुनते रह जाते। और हेलो जी, नमस्कार।
2: हाजी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से, कैसे हो सर?
1: बढ़िया बढ़िया सुरेश जी, स्वागत है आपका, बोलिए कैसे हैं आप?
2: बस बिल्कुल अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आज तो बहुत अच्छा दिन भी हमारे, आज शीतला सातम मनाया जाता है। तो शीतला माँ तो कहते हैं कि कोई भी शांत रखता है, शीतला माँ की पूजा करें तो हम शांत और शीतल रहेंगे। तो आज के दिन की भी शुभकामना सभी मित्रों को। और कल बताओ तो गोकुल अष्टमी है, हमारे यहाँ बहुत सारे मेला भी होते हैं कल, और कई सारे मेले में बहुत लोग आते हैं। तो कल कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो सभी को कल के दिन की भी शुभकामनाएं, और सभी हमारे मित्र अच्छे रहे। और कहीं ना कहीं कहते हैं हमारे भारत में कहीं ना कहीं त्योहारों की तो
1: जी त्योहार चलते रहते हैं।
2: तो एक जो गाना है सर शीतला माता का,
1: जी, जी।
2: तो कई सारे हैं शीतला माता का, लेकिन एक हमारे गुजराती में गाना है जो मेले का है। तो मैं आपको लाइन सुनाऊं चाहे जो आपको पता चले तो ठीक है, वरना कोई और गाना सुना देना
1: जी।
2: जाओ

0: मेरे मोरनियो तहु के छे, ये लाइन है सर गाने की, शायद आपको जब मिल जाए तो सही है, वरना और गाना जरूर बता देना शीतला माता का। ठीक है सर, हमारे सभी साथियों, बलाराम जी है, मुरलीलाल जी है, कुमचंद भाई है, दयाराम भाई है, सभी हमारे जो सुन रहे मित्रों को, सुभाष भाई है, सबको
1: हाँ
0: नमस्ते सर, ओम शांति। हेलो
2: जी
0: जी जी सर, नमस्ते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। सुरेश जी जोटाना से याद कर रहे थे और शीतला सप्तम की याद दिलाई उन्होंने। आज शीतला सप्तम है, वैसे कल ही सभी जो है खाना बना के रखते हैं और आज बासी खाना खाने का रिवाज है, मतलब घर में कोई भी चूल्हा नहीं जलाते हैं, तो इसलिए इसको एक साल में एक बार ये शीतला सप्तम आता है जहाँ पर एक दिन हम बासी भोजन खाते हैं और पूजा अर्चना में समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, तो इसीलिए इसका महत्व है। और सभी लोग जो है एक दिन पहले भोजन बना के रखते हैं और दूसरे दिन उसका उपयोग करते हैं, और दूसरे दिन जो है आपको कोई कामकाज नहीं करना है, बस आपको अपनी आराधना में मगन रहना है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा था प्यारेलाल जी के बारे में। प्यारेलाल जी अपने संगीत के अनुभव को साझा करते हुए एक बात बताते हैं कि मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप मद्रिगल सिंगर ज्वाइन किया, पर वहाँ मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग पारसी और ईसाई वादकों को अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैं सब कुछ सहन करके टिका रहा कुछ समय तक, पर मेरे पिता ये सब अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाने का जिम्मा उठाया और वो उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 1500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी। तो ये प्यारेलाल जी का खुद का अनुभव है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ शीतला सप्तम का ये खूबसूरत भजन आपके नाम, गुजराती में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। शीतला सप्तम का बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। तो चलिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को याद करते हुए, प्यारेलाल जी का आज जन्मदिन है, तो प्यारेलाल जी को 2024 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था और 2024 में ही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और फिर 7 बार उनके जो है सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी उनके नाम है। अगर बात करें उनके गीतों का, तो हिंदी सिनेमा जगत में सावन का महीना, दिल विल, प्यार व्यार, बिंदिया चमकेगी, महंगाई मार गई, डपली वाले, तू मेरा हीरो है, यशोदा का नंदलाला, चिट्ठी आई है, 1 2 3, चोली के पीछे क्या, इस तरह के जो खूबसूरत गीत है वो उन्होंने बनाए थे और इसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, किशन महाराज जी के बारे में बातें करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। और ये भारत के एक ऐसे पॉपुलर तबला वादक रहे हैं, बनारस घराने के वादक रहे, कला क्षेत्र में योगदान देने के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किशन महाराज तबले के उत्साह होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के विशेषज्ञ भी रहे हैं। तो आइए इनके बारे में अधिक जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत पर एक बहुत ही खूबसूरत गजल की तरफ ले चलता हूँ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और नाम फिल्म का ये खूबसूरत गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये गीत था। उस समय में काफ़ी पॉपुलर हुआ 1986 में और लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया था। पंकज उदास ने गाया था चिट्ठी आई है ये गीत नाम फिल्म के लिए 1986 में। अमृता सिंह संजय दत्त पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं तबला वादक किशन महाराज जी के बारे में बातें कर रहा था। किशन महाराज ने तबले की थाप की यात्रा शुरू करने के कुछ साल के अंदर ही उस्ताद फैज खां, पंडित ओमकार ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, वसंत राय, पंडित रविशंकर, उस्ताद

0: सुखविंदर सिंह नामधारी सहित अन्य नाम शामिल है। तो ये विशेष रूप से किशन महाराज जी की बातें थी जो आपको मैंने बताया, और इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, लोग इनको काफ़ी पसंद करते थे और माथे पर एक लाल टीका और हमेशा लगा रहता था। संगीत सभाओं में जाते, संगीत सभाएं लय ताल से परिपूर्ण हो, गंधर्व सभाओं की तरह गीत गति और संगीतमय जो वातावरण है वो बना देते थे। और तबला बजाने के लिए वैसे पद्मासन में बैठने की पद्धति प्रचलित है, किंतु पंडित किशन महाराज जी दोनों घुटनों के बल बैठकर वादन किया करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर। नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन भाई बोलिए, स्वागत है आपका।
1: जी जी जी, हम सुबह से सुन रहे हैं सभी प्रोग्राम और बड़ा अच्छा लग रहा है, और आज का दिन भी बड़ा अच्छा है, सब गुरुवार है और बहुत कुछ समाया हुआ है, और बस कल जन्माष्टमी भी है और आज से ही मतलब सब श्रृंगार हो रहा है कन्हैया का, और बस और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, और हम रेडियो मधुबन को नमस्कार करते हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं, और जो फोन से या मोबाइल से या रेडियो से सुनते हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। रेडियो मधुबन को और नवी किरण को और हमारे रमेश जी को बहुत बहुत अनेक अनेक शुभ भावना, और हमारे आज यानी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मतलब है रेडियो पे, उनका यादगारी बड़ा अच्छा है, उनका तो इस समय में इतने टाइम में उनकी बात करना भी कम पड़ जाएगी। बहुत सारी पिक्चरें हैं और उन्होंने दोस्ती जोरदार थी नंबर वन, और जैसे दोस्ती और संगम में उनको अवार्ड मिलने वाला था, बाजी मार गई दोस्ती, और बड़ा गाना अच्छा था

0: भी बहुत एक समय में जब प्यारेलाल जी अपना इरादा बदल दिया था जा रहे थे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें रोका मत जाओ, और उनको रोकना उनको प्यारेलाल लक्ष्मीकांत मिल गए और एक गाना और भी उनका दोस्ती बनी रही, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, और फिर तो उनकी जोड़ी बनती रही, बहुत सारे जरों में संगीत देते रहे, जैसे मनमोहन देसाई की पिक्चर को और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं उनकी, सलिया अलिया और बहुत सारी पिक्चरें उनको, आज हम सख्त सख्त नमन करते हैं उनके संगीत को और उनकी स्वभाव को और भी संगीत कलाकारों को और रेडियो मधुन को, बस गाना लगा दिए दोस्ताना का या दोस्ती का। नमस्कार सर, ओम शांति, और हमारे सभी बहनों को और हमारे सभी भाइयों को और मधुबन को थैंक्स करता है मदन लाल जी, नमस्ते, ओम शांति।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मदन भाई, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, किशन महाराज जी के बारे में बातें हो रही थी और दोनों घुटनों के बल बैठकर वो अपना जो है जादुई तबला बजाते थे, ख्याल गायन के साथ साथ उनके तबले की संगीत श्रोताओं पर जादू का काम करती थी। उनके ठेके में एक भराव था और दाएं बाएं तबले का संवाद श्रोताओं और दर्शकों पर विशेष प्रभाव डालता था। कहते हैं ना, महान कलाकार एक महान इंसान भी होते हैं, ऐसे ही महान आदरणीय स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी भी थे। उन्होंने बनारस में दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए भूख हड़ताल भी की और संगत कलाकारों के प्रति सरकार की ढुलमुल नीति का भी पूरे जोर से विरोध किया था। किशन महाराज बहुत ही बिंदास शैली के थे, जीने का अंदाज भी उनका बड़ा बिंदास रहा। जिंदगी को हमेशा आज के आईने में देखा और अपनी मर्जी के मुताबिक बिंदास जीवन जिया। लुंगी कुर्ते में पूरे मोहल्ले की टहलना और पान की दुकान पर मित्रों के साथ जुटना ताजगी उनका शगल बना रहा, और मर्जी हुई तो बैरो सरदार को एक्के पर साथ बैठाए और घोड़े को हाँक दिया। तबीयत में आया तो काइनेटिक होंडा में किक मारी और पूरे शहर का चक्कर मारा है। तो इस तरह का उनका जो है बिंदास शैली था, और अपने शौक के साथ साथ मित्रों से गप्पे मारना भी उनका जो है एक बड़ा वो था, और साथ में पूजा पाठ टहलना रियाज ये उनके बड़े इंटरेस्टिंग जो है रुचि के विषय रहे, और ज़िंदगी

0: आखिरी घड़ी तक ये उनका बना रहा। और दुविधा कई उलझनें उनके सामने आती तो उसे जल्दी से जल्दी दूर कर देते थे ताकि ना रहे बाज ना बजे बांसुरी। 60 साल पहले शेविंग के दौरान मूछें सेट करने में एक तरफ छोटी तो दूसरी तरफ बड़ी हो जाने की दिक्कत महसूस की तो जट जट से उसे पूरी तरह साफ कर दिया। इसके बाद कभी मूछें रखने की हिम्मत नहीं उठाई। उनके दिनचर्या बड़ी नियमित थी और 6 बजे तक उठ जाते थे। बगीचे की सफाई, सीढ़ियों को दाना पानी और फिर टहलने निकल जाते थे। तो ये कुछ ख़ास बातें थी बिरजू महाराज किशन महाराज जी के बारे में। किशन महाराज खान पान का भी बड़ा अलग स्टाइल था उनका। दाल रोटी चावल के साथ छेना या केला और लौकी चाप उन्हें काफ़ी पसंद था। और गर्मी के सीज़न में दोपहर में सप्ताह में 2-3 रोज सत्तू भी खाते थे। परंपरागत बनारसी नाश्ता पूड़ी कचौड़ी उन्हें पसंद नहीं था। कभी कभार किसी पार्टी में पंडित जी पैंट शर्ट में भी जलवा बिखेरते थे, मगर अलीगढ़ पैजामा और कुर्ता उनका सबसे पसंदीदा पहनावा था। गहरेबाजी, पतंगबाजी और शिकार के शौकीन रहे पंडित जी क्रिकेट और हॉकी भी ज़्यादा दिलचस्पी से देखा करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो आज विशेष मुमताज महल नूरजहां की पुत्री रोशन आरा बेगम का जन्मदिन है। 1617 में इनका जन्म हुआ था और भारतीय राजनीतिक लेखक, पत्रकार और आज़ादी के दीवाने कमलापति त्रिपाठी, इनका भी जन्मदिन 1905 में आज ही के दिन हुआ था। सुप्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज जी का जन्मदिन आज ही के दिन 1923 को हुआ। भारतीय सिनेमा के, हिंदी और बंगाल के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार जी का जन्मदिन भी आज ही के दिन 1926 को हुआ था। चिकित्सा और राजनीति और केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व राज्यसभा सांसद रहे सीपी ठाकुर का भी जन्मदिन आज है। 1931 में इनका जन्म हुआ। विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय और भारतीय मूल के योगी जग्गी वासुदेव का भी जन्मदिन आज ही के दिन 1957 को हुआ। हिंदी सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसमें से एक नाम प्यारेलाल का जन्म आज है। 1940 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रघु साघवी, 1974 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता विवेक ओबराय का भी जन्मदिन आज है। 1976 में इनका जन्म हुआ। भारतीय मूल की अंग्रेजी उपन्यासकार किरण देसाई का जन्मदिन भी आज है 1971 में। और भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक, 1992 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

आप सभी को शीतला सप्तमी, जो गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है आज इस त्योहार को, तो शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। जो भी आप करें नियम व्रत कथा, तो उसको आप सच्चे दिल से करिए तो मन की मनोकामना जरूर पूरी होती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कटहल खाने के क्या फ़ायदे हैं, कौन सी बीमारियाँ ठीक करते हैं, ज़रूर आप जानेंगे। फिर शीतला सप्तमी कैसे मनाते हैं, अभी दशा माह के दिन भी चल रहे हैं, तो इन त्योहारों की बात करेंगे। और रेसिपी भला कैसे भूल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं बताइएगा, नहीं तो फिर हम अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, कौन सी रेसिपी सिखाएंगे वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, आशियाना सुनिए जान जाएंगे। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग आशियाना में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि सलाह दो तो सही दो, जो भी करो नियम से करो, दिल से करो तो वो सार्थक होता है, और सलाह सही देंगे तो हमारा ही भला होगा, नहीं तो कभी भी लौट के हमारे ऊपर आ सकता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में आज शीतला माँ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। तो दो देहरानी जेठानी होती है। जेठानी रोज़ शीतला माँ को ठंडा करने जाती है, कोरा कलश झलका भर के लेके जाती है, माता रानी के चढ़ाती है, और शीतला सप्तमी के दिन रांधा पुआ करके जो भोजन रात का बना होता है वो सुबह लेके जाती है, पूजा भी करती है, चढ़ाती भी है माता रानी के, और इस तरह वो व्रत उपवास करती है। और देरानी की परिस्थिति बहुत गरीब होती है, जेठानी पैसे वाली होती है, तो देरानी जेठानी के घर पे काम करने आती है। वो उनके गाय भैंस होती है, उनका काम करते हैं, इसके बदले में जेठानी थोड़ा सा खाना बचा हुआ रात का दे देती है, उससे देरानी के परिवार का गुजारा चल जाता है। इस तरह चल रहा था तो देरानी के भी मन में आया कि ये हमारी भाभी जी रोज़ पूजा करने कहाँ जाते हैं, अच्छा लगता है उसको भी, वो भी चाहती है कि पूजा करे, तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस तरह माता रानी की पूजा करूँ, जिनकी भी ये पूजा करते हो क्या करते हैं मैं भी पूछूँ। तो उसने अपनी जेठानी से पूछा कि भाभी जी बताएं ना, आप रोज़ जाते हैं जल का लोटा ले करके और आज भी आप पूजा करके आए, मुझे नहीं पता आप कहाँ जाते कैसे करते, लेकिन मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी करूँ, तो आप मुझे बताओ ना कैसे क्या करता है। तो बोलेगी अरे इसमें करना क्या है, सुबह उठ करके हंडी चढ़ानी है चूल्हे पर, अच्छा सा पानी गर्म हो जाए, वो गर्म गर्म पानी माता रानी को चढ़ा देना है। बोले अच्छा ऐसे करते हैं? बोले हाँ ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, देरानी सीधी सादी थी, भोली भाली थी, तो उसने तो वैसा ही किया, हंडा चढ़ा दिया, अच्छा सा गर्म हो गया और ले गई और माता रानी के चढ़ा के आ गई। तो माता रानी ने कहा कि हे पापी दुष्टि, तूने मेरा पेट जलाया, तूने मुझे जलाया, जा तेरे पेट जलेगा। तो घर पे आके देखा तो बच्चे तो रो रहे, अरे जल गए जल गए जल गए, बच्चे तो रो रहे। तो देरानी को तो विचार आया कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो आज आराम से श्रद्धा से मैं माता रानी के जल चढ़ा के आई और ये क्या, घर पे तो सभी जलू जलू कर रहे, अब क्या करें। अड़ोस पड़ोस के इकट्ठे हो गए बच्चों की आवाज़ सुनकर, कह रहे तुम्हारे बच्चे इतने क्यों रो रहे, क्या हो गया क्या हो गया। बोले कि पता नहीं, मैं तो माता रानी को ठंडा करने गई थी और इधर आके देखा तो बच्चे रो रहे और बोल रहे जल रहे जल रहे, और फपोले कहाँ से पड़ गए पता ही नहीं चल रहा है, कैसे जले मुझे तो कुछ पता नहीं। बोले कि अच्छा तुम माता रानी को ठंडा करने गई तो क्या किया तुमने? तो बोले कि मैंने तो अपने जेठानी से पूछा था, उन्होंने कहा हंडा गर्म चढ़ाना, उसमें से तुम पानी ले जाना और माता रानी को चढ़ा देना। तो पड़ोसियों ने डांटा कि अरे ऐसे थोड़ा होता है भाई, रात को कोरा कलश में पानी भर के रखो, वो पानी माता रानी को चढ़ाने का होता है, तूने तो गड़बड़ कर दी। बोले कि अब मैं क्या करूं? बोले अब तुम्हें वापस माता रानी का मतलब उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और अच्छी तरह तुम ऐसे खाना बनाओ, और रात का खाना सुबह ठंडा खाना है, और पहले माता रानी को पूछ के आना है। तो उसने कहा ठीक है, फिर उसने ऐसे ही किया, रात को जो जो भी पड़ोसियों ने बोला है इधर उधर से ला करके उसने बनाया, और बना करके सुबह श्रद्धा प्रेम से प्रायश्चित करते हुए या सुबहाते हुए माता रानी की पूजा की और बोला कि माता रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा कैसे होती है, लेकिन आज मेरी पूजा को स्वीकार करना, और बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से पूजा की। पूजा की तो माता रानी को पता था कि ये तो भोली भाली है, इसको तो जो कहा गया वही उसने किया है। तो माता रानी की कृपा से पूजा करके आई तो देखा कि घर की झोपड़ी तो उड़ गई, महल बन गया, बच्चे तो बड़े किलोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहे, कोई क्या कर रहे। बोले अरे ये क्या हो गया? उधर जेठानी ने कहा कि आज देरानी काम करने नहीं आई, भाई क्या बात हो गई, जाके देखती हूँ। तो देखा तो झोपड़ी का तो ठिकाना ही नहीं, और महल है, मतलब अच्छा सा पक्का मकान है, और बच्चे झूले झूल रहे खेल रहे हैं। तो बोले कि अरे ये तूने क्या किया, क्या मेरे घर से चोरी करके तूने ये इकट्ठा किया क्या, ये तेरा घर कब से बन गया, मुझे तो पता ही नहीं और मुझे बताया भी नहीं तूने। उसने कहा कि देखो भाभी जी, मुझे तो कुछ पता नहीं, आपने तो मुझे ऐसी शिक्षा दी जो मैं गर्म पानी चढ़ा के आई, मेरे बच्चे तो जल गए थे,
लेकिन वो तो अड़ोस पड़ोस के कहने पर मैंने माता रानी की सच्चे दिल से पूजा की, ठंडा पानी चढ़ाया, तो ये माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है। लेकिन आपने तो मुझे सही सलाह नहीं दी और अब मैं आपके घर पर नहीं आऊँगी काम करने, आप अपना करो मैं अपना करूँगी। तो जेठानी समझ गई कि भाई अब इसके पैसा भी हो गया, मकान भी हो गया और गलती तो मेरी थी कि मैंने गलत सलाह दी। तो वो चुपचाप चली गई और तब से देरानी के घर में शांति रही। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये तो देखिए दृष्टांत आपको दे रहे हैं, लेकिन हम सही मायने भी में भी जीवन में सच्चाई सफाई से चले। और किसी को सलाह देना हो तो हमें अच्छी सलाह देना आते हैं तो देवे, नहीं तो नहीं देवे, ठीक है। और जो भी व्रत नियम हम अगर करते हैं तो शुद्ध मन से करिए। तो मन का कहते हैं ना कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं ज़रूर पूरी होती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुनते हैं एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देंगे। कटहल खाने के क्या फायदा है और कमरक खाने के क्या फायदा है। ठीक है, तो पहले कटहल के बारे में बता रही हूँ। देखिए, कटहल वैसे हमारे राजस्थान में अब तो मिलने लगा है, बाकी पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी मिल रहा है। तो आप छानिएगा कि आप कैसे खाएंगे, क्यों खाएंगे। देखिए, वैसे तो कच्चा कटहल क्या है, कसेला, दाहक और मल बांधने वाला होता है। ठीक है, गरिष्ठ और वात पैदा करता है ये। तो कसेला होता है, दाहक होता है, मल बांधने वाला होता है, गरिष्ठ होता है और वात पैदा करने वाला होता है। जो ये कच्चा कटहल अगर आप खाते हैं तो, और पक्का फल मतलब कटहल जब पक जाता है, इसके खाने से शीतल, दुष्पाच, पित्त व वायु का नाश होता है, शक्तिदायक होता है, मांस बढ़ाता है, मृदु रेचक होता है, रक्त स्तंभक है, क्षत क्षय आदि विनाशक होता है। मतलब क्षत और क्षय की बीमारी, जो टीबी की बीमारी है, उसमें कटहल खाना ज़रूरी हो जाता है, तो उसको ठीक करता है। फिर देखिए कमरक, कमरक क्या है, पित्त विकार को ठीक करता है। कमरक का अगर आप शरबत बना करके पीते हैं तो पित्त विकार ठीक करता है। वह कहते हैं ना, शरीर में तीन बीमारियां मुख्य है, कफ, वात, पित्त और कफ। ये तीन मेन है, इनसे ही फिर सारी बीमारियां है। ठीक है, तो किसी के शरीर में पित्त ज़्यादा होता है, किसी के कफ ज़्यादा होता है, किसी के वात ज़्यादा होता है। तो पित्त विकार ठीक करना हो तो कमरक का शरबत बना करके लीजिएगा। फिर देखिए कफ, पित्त, रक्त विकार में कच्चा कमरक को कूट पीस करके रस निकाल करके आप एक चौथाई रहने तक धीमी अग्नि पर पका करके थोड़ी देर जमीन पर रस नितारिए और इसको रखिएगा। ठीक है, फिर ऊपर से आप नितार दीजिए। फिर उचित मात्रा में सेंधा नमक, धनिया, पिसा हुआ जीरा मिला करके इसमें सिरका तैयार कर लीजिए। सिरका भी डाल दीजिए और इसे 10-10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए, रोगी को दीजिए। ठीक है, तो इससे रक्त विकार ये सब ठीक हो जाता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिर देखिए विसर्प है तो कमरक का रस जौ के आटे में मिला करके लेप करके बांध दीजिए, तो इससे विसर्प ठीक हो जाएगा। और देखिए पक्का फल अपने माधुर्य, रुचिकर, शक्तिदायक, पित्त को शांत करने वाला, वात कफ बढ़ाने वाला, रक्त विकार नष्ट करने वाला तथा प्यास को शांत करता है पक्का कमरक। इसमें भी कच्चा और पक्का दोनों ही। तो कच्चा से क्या फ़ायदा है, पक्का से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो आपने जाना है। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा और फिर आप जवाब दीजिएगा। आधी रात को आती हूँ, खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते, भजन होते, कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भूरीलाल जी जुड़ चुके हैं मानपुर से। नमस्कार भूरीलाल जी।
1: नमस्कार बहन जी। नमस्कार।
0: हाँ जी,
1: अभी खाना बना करके बैठा हूँ। और अब मेरे पहले का विचार तो ये है कि भाई सपना हो सकता है, सपना।
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: हाँ
1: ठीक है, देखो चलो जो कुछ होगा जो बाद में आएगा। मेरे को बाद मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ दुकान पे।
0: अच्छा,
1: जरा आगे नीचे बुला रहे हैं इसलिए मैं फोन करके फिर जाऊँ।
0: अच्छा अच्छा, जी
1: मेरा प्यार भरा नमस्कार,
0: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। देखिए, दुकान पर जाना है, जल्दी है, फिर भी आप जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज गुजरात में शीतला सप्तमी है और दशा माँ का त्यौहार भी चल रहा है। कल जन्माष्टमी है पूरे भारत

0: देश में, और फिर गुजरात में दशमा का त्यौहार भी आ रहा है, और बहुत सारे त्यौहार, सावन भादवा तो त्योहारों से ही भरा हुआ है, इसलिए सावन आता है उसका सभी को इंतजार रहता है कि अरे वाह सावन आ रहा है, क्या बात है, अब ये तो खुशियाँ खुशियाँ लेके आ रहा है, हरा भरा, इसलिए हरा भरा कहते हैं सावन भादों को, क्योंकि दोनों ही महीने इतना त्यौहार रहता है कि अच्छी बात है ना। वैसे तो हमेशा ही त्यौहार मनाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी त्यौहारों का एक अपना ही आनंद है, एक अपनी ही रौनक है। त्यौहार आते हैं तो अपने आप ही मन में वो ही संकल्प चलते हैं, अरे भाई कल तो जन्माष्टमी आने वाली है, कल तो कन्हैया का जन्म है, जबकि आप हम सभी जानते हैं कि जन्म कन्हैया का हर साल हम मनाते हैं इसी तरह जन्माष्टमी, तो हर साल थोड़े ना किसी का जन्म होता है, फिर भी मनाते हैं, खुशी है। तो मन हमेशा कैसे भी करके इन किन प्रकारण मन हमेशा खुश रहना चाहिए, तो खुश रहने के तो फायदे ही फायदे हैं। अब आप सुना सकते हैं खुश रहने के क्या फ़ायदा है ना, तो किस तरह त्यौहार मनाते हैं, या फिर मन में हर दिन त्यौहार होना चाहिए। ठीक है, त्यौहार तो एक दिन दो महीना आके चले जाएगा, उसके बाद क्या हम उदास हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो कौन उदास नहीं होगा, वो आप जुड़िएगा, जिनको उदास रहना हो वो नहीं जुड़े, जो सोचते हैं कि नहीं त्योहारों पर डिपेंड नहीं है, हम रोज़ खुश रहते हैं, वो ज़रूर जुड़े और अपनी बात को ज़रूर रखे। ठीक है, और कैसे इन त्योहारों को मना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। हेलो,
1: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोलता हूँ, जितना
0: नमस्ते सुरेश भाई, क्या बात है, आप तो हमेशा खुश रहते हैं।
1: रहना ही चाहिए दीदी
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: कहते
1: हम ऐसे ही बैठ रहेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, ऊपर से नुकसान है, तो
0: जी
1: ऐसे ना करके बस खुश रह रहे पूरे दिन। और मैं तो दीदी बताऊं तो खुश रहने तो कई सारे फायदे हैं, एक तो हमारे माइंड में टेंशन नहीं आता और कोई दूसरा ऐसा विचार भी नहीं आता, तो कई सारे फायदे हैं खुश रहने के लिए, है ना। खुश रहना ही चाहिए दीदी, क्योंकि आज जो दुनिया में हो रहा है, सभी घर में परिवार में कुछ ना कुछ तो लोगों को ऐसा कोई टेंशन तो रहता ही है, ऐसा नहीं है कि सबको टेंशन रहता है, लेकिन टेंशन रखने के कोई फायदा नहीं है,
0: जी जी जी जी
1: जो आया वो चला जाएगा, दुख आएगा
0: बिल्कुल
1: चला जाएगा, सुख आया भी चला जाएगा।
0: जी
1: कई सारी मुसीबतें देखो, आज जो नेपाल में वो बाढ़ आई है, कितने लोगों को कितनी परेशानी, कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए हैं,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा होता रहा था, लेकिन बाद में सुख आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा सभी। तो मेरा तो मतलब दीदी है कि है, चाहे कुछ भी हो बस खुश रहो, अच्छे अच्छे त्योहार आ रहे हैं, परिवार के साथ रहो,
0: जी जी
1: परिवार के
0: जी
1: साथ खुशियां मनाओ, कहीं बाहर जाओ घूमो,
0: अभी तो
1: तो हमारा मन भी हल्का हो जाएगा।
0: गुजरात में 8 के बाद छुट्टियां ही छुट्टियां है, कहाँ जा रहे हैं आप?
1: हाँ, बस बहुत अच्छा था दीदी, अब तो जो आज से 17-17 कल को कुलस्तमी है, कल भी कार्यक्रम रात को पूरा होगा, बहुत कार्यक्रम जोरों से होगा
0: जी
1: मंदिरों में, सभी मंदिरों में,
0: जी
1: और बाद में सावन महीना पूरा, और बाद में भाद्र आएगा, भाद्र में कई सारे पूरा महीना देखो, कोई अंबाजी जाता है, कोई तो रणुजा जाता है, कोई कहीं ना कहीं जाता है, गांव में भी पूरा बहुत हरा भरा रहता है मंदिरों में, तो
0: जी
1: बस हर दिन खुशियाँ है दीदी मानो तो, वरना
0: बिल्कुल
1: तो कई लोग ऐसे दीदी बोलना बुलाते थे बोलते नहीं, ऐसे बैठ रहे थे भाई, ऐसे क्यों बैठते हो,
0: सही
1: इतना
0: बात
1: क्यों
0: है,
1: कष्ट हुआ है आपको।
0: सही बात
1: तो
0: है,
1: ऐसा नहीं रहना है, बस खुशियाँ मनाते रहो जीवन में,
0: जी जी जी जी
1: तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, आपका कोई ऐसा नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा कोई, बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी। नमस्ते,
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: सभी
0: जी
1: मित्रों को आज को शीतला स्थापन की बहुत बहुत शुभकामनाएं,
0: जी
1: नमस्ते।
0: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, त्योहार का आनंद लेते हैं सभी, लेकिन हमेशा खुश रहना ये बहुत बड़ी विशेषता है, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि आप हर दिन खुश रहते हैं। परिस्थितियाँ सभी के जीवन में आती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, किसके जीवन में नहीं आती है, और परिस्थितियों के बिना तो हमें अनुभव भी कहाँ से मिलेगा, एहसास भी कहाँ से होगा, क्या दुख होता है क्या सुख होता है, कोई अनुभव ही नहीं, इसलिए कोई भी परिस्थिति आए हर हाल में खुश रहना चाहिए, हमें खुश रहने के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं रहना है। ठीक है, बाकी गुजरात में शीतला सप्तमी है आज, कल तो सभी ने, आपने भी सुना, सगुणा बेन भी जुड़े, सुरेश भाई भी बता रहे थे, कंचन भाई भी बता रहे थे, भाई खाने की तैयारी चल रही है, तो कल खाना बना के रख दिया, आज पूरे दिन ठंडा खाएंगे, जैसे राजस्थान में चैत्र महीने में मनाते हैं रांधन छठ के दिन, एक दिन पहले वही प्रोसेस वही है, मनाने का तरीका बस थोड़ा सा अलग अलग है। बाकी इसी तरह छठ के दिन बनाते खाना, सातम के दिन पूरे दिन ठंडा खाते हैं। और गुजरात में रिवाज है महिलाएं खाली मतलब ऐसे जल चढ़ा के आ जाती है इतना पूजने का, जितना जो राजस्थान में रिवाज देखा मैंने, राजस्थान में शीतला सप्तमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। गुजरात में मेले लगते हैं जगह जगह, जहाँ शीतला माँ के मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है, तो वहाँ पर भक्तों का आना जाना रहता है, भीड़ रहती है, मेले की रौनक तो आप सभी जानते ही है। और बाकी जो पूजा करने का रिवाज है वो यहाँ नहीं देखा, लेकिन मेले का रिवाज राजस्थान से भी ज़्यादा गुजरात में है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार।
2: जय माता दी, जय श्री हरि
0: जी,
2: और नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
2: और बस गुजरात वासियों को, गुजरात के सभी भाई बहनों को शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं, और आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी।
2: और मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और सुना शीतला सप्तमी आई तो
0: जी
2: गुजराती
0: जी,
2: तो बस आज तो गुजरात वासियों के लिए, बहनों के लिए आज तो छुट्टी होगी, रजा होगी, तो मेरा तो
0: आज खाना बनाने की छुट्टी।
2: हाँ, तो सभी बहनों से ये गुजारिश है कि आज के दिन तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा रेडियो में जुड़ो।
0: सही बात है, आज तो भोजन बनाना ही नहीं है।
2: हाँ, तो आज तो जुड़ सकते हैं ना।
0: बिल्कुल, जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते,
2: जुड़ना चाहे तो नहीं, जुड़ना चाहिए।
0: वही तो हम तो यही कहेंगे, जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, और जुड़ना भी
2: जुड़ना
0: चाहिए।
2: नहीं, जुड़ना चाहिए,
0: क्योंकि चाहना अपने अंदर रहती है तभी जुड़ पाते हैं ना। जैसे आप लोग, इच्छा होती है अंदर, चाहना होती है तो आप जुड़ जाते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं पर भी हो, चाहे सफर में हो, कहीं पर भी, है ना। जी,
2: वो मन जुड़ने को कहता है ना, तो जुड़ जाते हैं
0: जी।
2: मन जुड़ने को कहता है तब तन फोन की तरफ भाव चलाता है, फिर फोन से हो जाता है काम, और मुंह फिर बातें करने लग जाता है
0: जी।
2: अब मन और तन का जब मिलन होता है तो सब काम हो जाते हैं ना। और आज क्या है टॉपिक?
0: आज टॉपिक यही है कि क्या हमें खुश रहने के लिए इन त्योहारों पर आश्रित रहना पड़ेगा या हमेशा खुश रहेंगे।
2: तो वो तो मैंने कल बात बताई थी ना। अगर इंसान हर दिन को एक त्यौहार माने ना दीदी, त्यौहार तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, मगर अपने अंदर खुशी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान हर दिन एक त्यौहार माने तो कभी खुशी कम होगी नहीं ना। हर दिन को अपने आप एक हर दिन एक नई किरण के साथ में आता है ना
0: जी।
2: हर दिन एक सूर्य की नई किरण के साथ में दिन आता है, तो हर दिन एक नया दिन हुआ ना, हर दिन एक त्योहारी हुआ ना
0: जी।
2: तो हर दिन एक त्योहार आप मानोगे तो जरूर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगी। आपके जीवन को बेरंग नहीं करना है, हर दिन को रंगीन करना है। आपके जीवन अगर रंगों को हटा दिया, बेरंग हो गया, तो फिर खुशियां चली जाएगी रंगों के साथ।
0: बिल्कुल,
2: आपको जीवन को हरा भरा कर रखना है
0: जी।
2: देखिए कि अपन हर दिन मतलब अपन सूर्य की नई किरण के साथ में जोश उल्लास से अपन घर का मतलब जो भी काम है वो करते हैं, तो खुशी को शामिल क्यों नहीं कर सकते
0: जी।
2: आप हर चीज जोश के साथ में करते हैं कि देखिए कि आज ही देखिए सुबह हो गई, तो जोश के साथ में हर चीज आप सुबह उठते हो फिर करते हो, तो खुशी भी तो उसमें शामिल होनी चाहिए ना।
0: जी

0: करना चाहिए, हर समय याद करना।
1: जी जी जी
0: सही है ना?
1: बिल्कुल।
0: परमात्मा अगर आप लोगों के ऊपर आश्रय रहते हो, इससे बेहतर परमात्मा के ऊपर आश्रय रहिए तो आपके जीवन हर दिन एक त्योहार रतन है बन के रहे।
1: जी
0: किसी को दोष इसमें दोष देने की बात नहीं है, वो अपन को खुश रहना।
1: अच्छा
0: तो कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता।
1: जी जी
0: सही है ना? गलत बोल रहा हूँ?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: हाँ मतलब अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दो कुछ लोग क्या है, जैसे इतना बड़ा कुछ हो गया तो वो इतने दुखी होंगे जैसे कि कोई पहाड़ गिर गया हो। मगर मैं तो कहता हूँ छोटा बड़ा हो गया तो हो गया, बाबा के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, अपनी डोर तो उसी के हाथ में है, वो जितने में रखे उतने में रहो
1: जी,
0: आपको खुशी रखेगा वो। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी हो, वो तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी रह सके।
1: चलिए
0: बाकी तो आप अपने मन अंतरात्मा से पूछिए कि हम कैसे खुश हैं।
1: अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आज की पहेली का जवाब देंगे?
0: क्या है पहेली?
1: आधी रात को आती हूँ, खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते हैं काना के, जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन?
0: जन्माष्टमी।
1: चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। आप कार्यक्रम सुनिए, कार्यक्रम के अंत में हम जवाब देंगे। ठीक है?
0: नहीं सही, ठीक है ठीक है, ओके।
1: चलिए जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार। ठाकुर भूपत सिंह सिखपुरिया।
0: हाँ जी भूपत सिंह जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ दीदी, आपका भी स्वागत। आप भी, आपको भी थोड़ी कोई ट्रेजेडी हुई थी, कोई फ्रैक्चर वैक्चर हुआ था।
0: ठीक है,
1: सुरेश ने बताया था
0: जी
1: कि दीदी अभी तो करते ही है।
0: जी जी जी ठीक है।
1: हाँ तो ठीक हो गए आपको?
0: जी चल रहा है अभी तो।
1: हाँ हाँ,
0: अभी प्लास्टर है, फिर कटेगा, फिर पता चलेगा।
1: हमारी दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाए।
0: जी जी बिल्कुल, थैंक यू।
1: सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। आज तो शीतला सातम है और कल जन्माष्टमी है, कल खाना पधारेंगे।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: तो सभी खुशियां तो मनाएंगे।
0: जी जी,
1: अभी सुरेश बात कर रहा था कि खुशी खुशी खुश कहना चाहिए, खुशी कहाँ से मिलती है?
0: जी,
1: खुशी तो कोई दीदी दिखाने वाली चीज तो है नहीं।
0: बिल्कुल,
1: खुश तो अंदर दिल से रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, फिर भी वो खुशी की झलक चेहरे पर दिखाई देती है भाई जी।
1: हाँ हाँ दिखाई देती है। हाँ। लेकिन अब थोड़ी देर खुशी आती है, लेकिन बाद में कोई संबंधी के इधर किधर घर में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई।
0: जी जी जी,
1: तुरंत खुशी चली जाती है,
0: स्थाई नहीं रह सकती खुशी।
1: हाँ स्थाई नहीं रहती, क्षण भंगुर है खुशी, तो क्षण भंगुर है
0: जी।
1: बस खुश कैसे रहना चाहिए, बस परमात्मा की प्रार्थना करो कि हमको इंसान बनाया।
0: सही बात,
1: नहीं
0: है।
1: तो पशु पक्षी बनाया होता तो क्या करते हम।
0: सही,
1: खुश इसमें रहना चाहिए, खुशी इससे मनानी चाहिए, परमात्मा से एक लगाव रखना चाहिए, कांटेक्ट रखना चाहिए ना
0: जी।
1: हर देश रात को हम सो जाते हैं ना
0: जी,
1: तो हम चले जाते हैं, सुबह हमारा दूसरा नया जन्म होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो सुबह उठ के तुरंत परमात्मा की प्रार्थना करो, करना करनी चाहिए कि प्रभु हम जिंदा है
0: जी,
1: बस इसमें इसमें खुश रहना चाहिए
0: जी।
1: बस सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। मधुबन रेडियो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: चलिए बहुत बहुत आभार, ऐसे आप कभी बीच बीच में आते रहिए।
1: ठीक है दीदी, आना है मंडपो में, आना है।
0: आइए आइए, स्वागत आपका, पधारिए।
1: सबको मिलना है
0: जी, अभी वैसे ही गुजरात में आठम की छुट्टियां रहती ना, तो आ जाइए आठम पे।
1: दो तीन दिन से तो छुट्टियां है ना
0: जी, आठम के बाद छुट्टियां रहती है, थोड़ा लोग इधर उधर ही जाते हैं घूमने।
1: हाँ एक दो दिन रहती है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: ओके
0: जी, आभार आपका। तो ये थे ठाकुर भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, और आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी खुशी क्या त्योहारों पर डिपेंड करेगी, या फिर हम अंदर से हमेशा खुश रहेंगे? हाँ, जैसे कि ठाकुर भूपत सिंह जी बता रहे थे कि कभी कभी कुछ परिस्थितियां आ जाती है कि मन उदास हो जाता है, तो वो स्वाभाविक है। देखिए सभी हम इंसान ही है ना, और इंसान हमेशा समाज में ही रहता है, और समाज में परिवार में रहते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि थोड़ी देर के लिए उदासी आ जाती है, लेकिन उदासी को स्थायी नहीं रखना है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते। ओम शांति।
0: ओम शांति। नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे है, आज तो हमारा त्योहार है सातम का।
0: जी जी जी जी। और क्या किया फिर?
2: आनंद है, और खुश रहना सदा अच्छा ही है
0: जी,
2: खुशी जैसी खुराक नहीं बोलते ना।
0: बिल्कुल, तो कैसे मनाया आज के त्योहार को, क्या किया आपने?
2: हम तो देखो जल्दी उठे सुबह में, पहले तो बाबा की याद में बैठे
0: जी,
2: फिर नहा धो के पूजा किया
0: जी,
2: चाय नाश्ता करके गए दुकान पे।
0: पूजा घर में ही करते हैं, घर में करते हैं या बाहर जाते
2: हैं? मैं तो घर में ही करती।
0: अच्छा,
2: सब लोग बाहर जाते हैं, लेकिन मैं तो देखो पहले तो मेरे बाबा को भोग लगाती हूँ
0: जी,
2: फिर सबको सब रचना तो उसकी है
0: जी।
2: हाँ अभी भाई जी ने बताया प्रभु को याद करना बहुत अच्छा है सुबह उठ के, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं तो पहले बाबा को याद करते हैं।
0: जी जी, पहले मेडिटेशन करेंगे उसके बाद ही सारा कार्य। बहुत अच्छी बात है।
2: नहीं तो खुशी, तो खुश रहना बहुत अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल, सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं और खुशी बरकरार रहती है।
2: चार्ज हो जाते बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम, जैसे दिन होता है ऐसे आप कार्यक्रम रखते, बहुत अच्छा लगता है दीदी।
0: थैंक यू। और आज की पहेली का जवाब देंगे?
2: पहेली का जवाब तो है शीतला माता।
0: अच्छा, शीतला माता, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सगुना बहन।
2: ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, और आपने भी कैसे शीतला माँ का मतलब आज सुबह से शुरुआत की है, मेडिटेशन से शुरुआत की है, फिर आपने पूजा वगैरह की है, बहुत अच्छी बात है। और गुजरात में मैंने देखा है कि देखिए दशा माँ का भी त्यौहार अभी धूमधाम से चलता है, तो दशम तक इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है और सांडनी ला करके घर में स्थापित की जाती है। फिर आसपास वाले, मतलब हर घर में नहीं होती है, जैसे मोहल्ले में एक घर फिक्स होता है, वहाँ फिर आसपास की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर के सुबह शाम माता रानी की आरती करेगी, पूजा करेगी, और शाम को भी घंटों घंटों पूजा और आरती में जाता है। सुबह भी जैसे घर का काम से फ्री हुई नहीं 11-12 बजे, उस समय आरती पूजा करेंगे, और आज के दिन तो पूजा करके प्रसाद भी वितरण किया जाता है और पूरे दिन ठंडा खाया जाता है। तो ये सानने का रिवाज गुजरात में देखा मैंने, इधर राजस्थान में नहीं है। हाँ, राजस्थान में वो आबू क्या है, थोड़ा सा टच में है ना, बॉर्डर आ गई गुजरात की, तो आधा कल्चर गुजरात का आधा राजस्थान का, बाकी आप मध्य राजस्थान में चले जाएंगे तो ये रिवाज नहीं है। वो इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ, चार कोस में पानी बदले आठ कोस में वाणी। आप एक से दूसरी जगह जाएंगे तो काफ़ी कुछ भिन्नता आपको नज़र आएगी, लेकिन खुशियाँ वही है। तो हमेशा खुश रहिए, खुश रहने के लिए हमें डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, परिस्थितियाँ आती है, परिस्थितिवश कभी कभी हम उदास भी हो जाते हैं, भाई अपने ही सगे रिश्तेदार, मतलब भले यार दोस्त के या कोई रिश्तेदारों के यहाँ कुछ घटित घट जाता है, कुछ हो जाता है तो भी उदास हो जाते हैं, वो स्वाभाविक है, ठीक है। अपने ही घर में किसी के भी साथ कुछ भी होता है, कोई बीमार है, शिमार है या कुछ भी होता है तो हम उदास हो जाते हैं, वो भी एक स्वाभाविक है, वो उदासी आना वो स्वाभाविक है। लेकिन कोई कोई तो आप देखिएगा हमेशा उनका मुंह चढ़ा ही रहेगा बिना कारण ही। अगर आप रास्ते में क्रॉस हो गए, आमना सामना हो गया और आपने बोल दिया जय श्री कृष्ण राम राम सा, तो मुंह फेर के निकल जाएगा, ऐसे करके निकलेंगे, तब आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। अरे अभी कह रहे थे कि ठाकुर भूपत सिंह जी भी कह रहे थे कि देखिए इंसान बने ये सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, अच्छी बात है कि इंसान का चोला है, फिर हम जानवर भी बेचारे ऐसे नहीं करते होंगे ऐसे हम हूँ करके निकल जाते हैं, तो कैसा लगेगा वो व्यवहार देखिए आप। और कोई सामने जब क्रॉस होता है और हम नमन करते हुए खुशी से जय श्री कृष्ण या राम राम सा जो भी हमारे हम संबोधित करते हैं वो करते हैं, ठीक है, तो कैसे खुशी से हम करते हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स मिलता है तो बोलो एनर्जी से एनर्जी टकराती है, कितनी खुशियाँ बढ़ जाती है ना। तो हमेशा मिलिए किसी से भी, कोई भी आपको सामने मिल जाए तो खुशी से पेश आइए, उस समय क्या उदास और हूँ करके निकलना है। और देखा है कि कभी कभी कभी कभार कोई उदास होता है तो तुरंत लोग पूछते हैं क्या हुआ, हमेशा वो खुश रहते हैं, आज क्या हो गया उनको, तो 10 जने पूछेंगे क्या हुआ हमें भी बताइए, तो बताएंगे कि भाई आज ये बात हो गई। लेकिन हमेशा मुंह फुला रहता है, कभी कभार खुश दिखाई देते हैं तब लोगों का आश्चर्य होता है, फिर उनकी खुशी का राज कहते हैं अरे आज क्या हुआ, रोज़ तो मुंह फुला रहता है, आज क्या हुआ, आज कैसे आप खुश हो बोलो, पूछते हैं ऐसे ही डायरेक्ट पूछते हैं लोग। फिर बोलते हैं अरे आज तो बात ही ऐसी इसलिए हम खुश है। अरे तो क्या रोज़ आप उदास ही रहोगे क्या जीवन में, खुशियाँ तो कभी कभार आएगी। कोई हाँ भाई बच्चा पढ़ने में अच्छा अव्वल आ गया है, एक दिन का रिजल्ट, वो एक दिन आप खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, तो ऐसे थोड़ा होता है, खुश हमेशा रहिए। उदासी कभी कभी आती है, लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर इनके घर में कोई मुश्किल आई है, तो वो शेयर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि आप बताइए, फिर वो कहते हैं आश्वासन भी देते हैं, देखिए इंसान सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तो स्वाभाविक है कुछ होता है, तो एक दूसरे को आश्वासन भी देते, घबराइए नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या हिम्मत आ जाती है कि चलो अपनों ने कहा है, चलो क्यों घबराना है, सब ठीक है। लोग हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर कहेंगे आप क्यों चिंता करते हो, हम आपके साथ हैं, कुछ भी काम हो तो बोलना, ठीक है। तो तुरंत ही इंसान कहेगा नहीं कि ये काम है आप कर लो, लेकिन एक मन के अंदर ताकत मिलती है कि चलो कोई तो है जिन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट किया कि भाई कोई भी बात हो हमें बताइएगा और हम आपके साथ हैं। इतना कहना भी बहुत कुछ मायने रखता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसलिए कभी दुखी नहीं होना है, ठीक है, सिचुएशन आई है वो बात अलग है, वो चली जाएगी और चली भी जाती है और वापस हम खुश भी रहते हैं, लेकिन हमेशा मुंह फुलाए रखना ये अच्छी बात नहीं है। ईश्वर ने इतना सुंदर चेहरा दिया है तो इसको हमेशा मुस्कुराहट के साथ रखिए, और मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की नहीं अंदर की होनी चाहिए। अंदर की जो खुशी होती है ना वो चेहरे पर आती है, तो आप देखिएगा उसका चेहरा ऐसे खुशनुमा नज़र आएगा, चमकता हुआ नज़र आएगा, और व्यंग्यात्मक हंसी जो हंसते हैं ना वो भी पता चलता है कि भाई ये तो व्यंग में हंस रहा है, तो हमें ऐसी हंसी नहीं हंसनी है, ठीक है। और त्यौहार मनाइए आराम से, और हम भी यही चाहेंगे कि भाई हर त्यौहार का आनंद लीजिए, हर दिन को खुशनुमा बनाइए, हर पल को खुशनुमा बनाइए बस। और विषय अब यहीं समाप्त करते हैं और आइए आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली बड़ी ही सुंदर है, सरल है, आप चाहे तो जुड़ करके अपनी बात को रख सकते हैं। आधी रात को आती हूँ, खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते हैं, कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे हम आशियाना के किचन में मेथी का थेपला। मेथी का थेपला के लिए सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। आज तो वैसे शीतला सप्तमी है, घर घर में थेपले बने होंगे क्योंकि थेपले तो बनाते हैं, बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं खाना, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन थेपला तो ज़रूर बनाते हैं। हर घर में थेपला बनता है, क्योंकि थेपला क्या है, ऐसी चीज़ है कि आप सफ़र में ले जा सकते हैं, आप 8 दिन 10 दिन का भी आप इकट्ठा बना करके ले जा सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा थेपला का। आजकल तो जैसे कल हमारे कौन श्रोता बंधु बता रहे थे कि थेपला भी मॉल मिलता है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन एक अपना हाथों का जो हम बनाते हैं ईश्वर की याद में भोजन, तो स्वाद ही अनोखा होता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं बनाने की कोशिश करें भोजन, बाकी दूसरा काम आप करवाइए, लेकिन भोजन स्वयं बनाइए। अच्छे भाव के साथ बनाएंगे तभी तो कहते हैं ना कि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो मन शुद्ध कब होगा, जब हम स्वयं भोजन बना करके अपने इष्ट देव को भोग लगा करके फिर खाते हैं, तब मन शुद्ध होता है। और मन शुद्ध होता है तो अच्छे कर्म होते हैं। तो चलिए थेपला के लिए आपको मैं सामग्री लिखवा रही हूँ, आप ले लीजिए मेथी की भाजी, फिर आप लीजिए हरी मिर्च, अदरक, दूध, फिर दही, अब आप लीजिएगा तेल, आपको लेना है नमक, लाल मिर्च पाउडर, तिल लीजिएगा, आप बाजरी का आटा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, और हरा धनिया। तो ये हो गई सामग्री, थोड़ा सा अजवाइन भी लीजिएगा, ठीक है। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, आप मेथी की भाजी लीजिएगा, दूध लीजिए, दही लीजिए, आप लीजिएगा गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, तिल। तो ये हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप मेथी की भाजी साफ कर दीजिए, धुलाई करके इसको बारीक काट लीजिए, ठीक है। और गेहूं का आटा लिया है उसको छानिएगा, उसमें थोड़ा सा बाजरी का आटा भी डाल दीजिए छान करके, और इसी में अब आप ये मेथी जो साफ की है धुलाई करके काट के डाल दीजिए आटे में, फिर आप तिल डाल दीजिए आटे में ही, अदरक हरी मिर्च की पेस्ट करके आप आटे में ही डाल दीजिएगा, और आप डालिएगा थोड़ा सा अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब आप डाल दीजिए इसी आटे में, ठीक है। और अच्छा सा तेल का मोवन डालिए, और खटास के लिए भले आप नींबू डालिए, भले आप दही, खट्टा है तो दही डालिए, हाँ। और आपको अब डालना है शक्कर, शक्कर डाल दीजिए, शक्कर पीसी हुई होगी तो अच्छी बात है, पीसे हुई शक्कर पाउडर डाल दीजिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए आटे को, फिर आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा दूध डालिए, क्योंकि आटा अभी भी बिखर रहा है, क्योंकि इतना गीला तो हुआ नहीं है। हाँ, दही आपने, अगर दही ज़्यादा खट्टा नहीं है और थोड़ा सा खटास मिठास का टेस्ट आप कर सकते हैं, जैसा भी खट्टा मीठा आपको पसंद है उस अनुसार आप उसको आटे को गूंदिए, ठीक है, आटे में डालिएगा। और फिर अगर ऊपर से डालना चाहे तो आप दूध डालिए, दूध डाल के इस आटे को गूंद लीजिए, टाइट गूंदना है, और अति टाइट भी नहीं, जैसे हम गेहूँ की चपाती बनाते हैं इससे हल्का सा टाइट, पूरियाँ बनाते हैं ना, ऐसा आटा आपको गूंदना है। फिर गूंद करके इस आटे को आप आधे घंटे के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए, क्योंकि जितना आटे को हम गला के रखते हैं ना, उतने पूरी में, मतलब वो बनाते तो लोच अच्छी आती है, और दूसरी बात है कि पूरियाँ हमारी सॉफ्ट बनती है, ठीक है। तो आधा घंटा आपने लपेट लिया गीले कपड़े में, और अब आप उसका लुआ तैयार करिए, लुआ बना करके थेपला बनाइए गोल गोल चपाती की तरह, और फिर इसको आप तवे पर सेकिए, दोनों तरफ तेल की पोती लगानी है, अच्छी तरह सिक जाए तो फिर आप इस तरह सारे थेपले सेक दीजिए,
बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ऐसे ही खाइए कोरे। वैसे तो इसका आप सूखी सब्जियाँ, जैसे आप आलू बैंगन की सब्जी है, खाली आलू की सूखी सब्जी है, या फिर चटनी है, अचार है, केरी का छुंदा है, मुरब्बा है, आप हर एक के साथ खा सकते हैं। और कुछ नहीं है तो अचार के साथ भी अच्छा लगेगा, और भी कुछ नहीं तो आप ऐसे ही खाइएगा तो भी टेस्टी लगेगा। और ये जो थेपले आप सफ़र में भी लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर जाते हैं, अरे मैंने तो देखा है कि जैसे लोग विदेश घूमने जाते हैं ना 10-10, 15-15 दिन के लिए, तो विदेशों का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए थेपले लेके जाते हैं, बना करके इकट्ठे लेके जाते हैं, ताकि थोड़ा वहाँ का जो खाना मिल जाए वो, और थोड़ा अपना खुद का खाना खाए। तो ऐसे थेपले भी बना के ले जाते हैं। यहाँ पर भी जैसे भारत में भी कहीं टूर पर जाते हैं लोग, तो इस तरह थेपले बना करके लेके जाते हैं। थेपले ऐसी रेसिपी है जिससे अन मना नहीं आता है, कभी ऐसा नहीं होता अरे बार बार क्या थेपला खाना है, मन अपने आप ही प्रिपेयर रहता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और ये खाएंगे तो संतुष्टि मिल ही जाएगी। तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत दूसरा खाएंगे, लेकिन लास्ट में एक दो थेपला खा लेंगे, फिर कहेंगे हाँ अब संतुष्टि मिली। इसलिए आप थेपला ज़रूर बनाइएगा, एक बार किसी ने नहीं बनाया हो तो ज़रूर बनाइएगा, बना करके ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन कैसे, अपने इष्ट देव को भोग लगा करके, ठीक है। तो चलिए फिर से आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, आधी रात को आती हूँ, खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते, कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
3: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
4: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और रेसिपी में जो आपको थेपला बनाना सिखाया है मेथी का, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बड़ी सुंदर थी, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आधी रात को आती हूँ खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। इतनी सरल पहेली, फिर भी हमारे कुछ कुछ श्रोता बंधुओं के जवाब गलत है। तो सही जवाब देने वालों का मैं नाम सुना रही हूँ। एक तो मैसेज आया है जय माता दी लिखा हुआ, आपने सही जवाब दिया है। आज की पहेली का जवाब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। फिर सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, फिर शोभा जी कपासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, अलका जी कपासन से, भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, दीपा बहन कपासन से, सगुणा बहन ने गलत जवाब दिया है, शीतला सप्तमी बोला है जो गलत जवाब है, ज्ञानेंद्र जी यादव, राधेश्याम जी चित्तौड़गढ़ से, राम नारायण जी आबू राज से, आप सभी का जवाब सही है, इसलिए आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आप सभी विषय में भी जुड़े, जो भी विषय में जुड़े उनके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। आज का मीठा मोती है कर्मों द्वारा सत्य और असत्य को परखना सहज है, सत्य मार्ग में सुख होता है और असत्य मार्ग में हमेशा दुख ही होता है। अब मैं आपको श्री कृष्ण जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ, और आप जाते जाते हम फिर से शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और गोकुल अष्टमी जो कल आ रही है उसका स्वागत करते हैं, और इन एडवांस में आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। तो आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया

सत्संग ही बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है, वृंदावन की गलियों में मेरे

सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का

मंदिर में पाया है, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।

आजाद हवा में सांस लेते हैं, आजादी का जश्न हर वर्ष मनाते हैं। वतन पर मर मिटे जो परवाने, कुछ गीत उनके देश प्रेम को आज भी गाते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा में। जरा सोच कर देखिए, आज शहर हो या गांव, कोने कोने में इंटरनेट पहुंच गया है। कोई वीडियो या तस्वीर डालो और देश दुनिया में वायरल यानी पहुंच सकती है। लेकिन एक गीत एक नारा ऐसा भी था जो वायरल होने के लिए किसी माध्यम का मोहताज नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंदे मातरम की, हमारे राष्ट्रगीत की, जो उस वक्त बिना इंटरनेट बिना सोशल मीडिया के ही सबके दिलों तक पहुंच गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन कुछ पंक्तियों ने ऐसी शक्ति ज्वाला के रूप में जगाई कि वो देश को स्वतंत्र करने की मुहिम बन गई। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक अनोखे सफर पे, एक नारे से राष्ट्रगीत बनने के बेमिसाल सफर पे। पर ये कहानी आपको मैं नहीं सुनाऊंगी, सुनाएगी वंदे मातरम खुद। तो फिर चलिए आपकी मुलाकात राष्ट्रगीत से करवाते हैं।

मैं एक गीत हूँ। क्या आपको पता है कि मुझे जन्मते ही बैन यानी प्रतिबंधित कर दिया गया था? क्यों? क्योंकि मेरा जुर्म देश प्रेम था और उस वक्त भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन्हें देश से प्रेम करने वालों से खतरा था। देशभक्ति से भरे गीत उनके मन में खौफ भर देते थे। इतनी ताकत थी मुझ में जन्म से। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक प्रतिबंधित गीत आज हर स्कूल कॉलेज की किताबों में, हर बच्चे की जुबान पर देश प्रेम की शान एक राष्ट्रगीत कैसे बना? तो चलिए मेरे साथ ताल से ताल, सुर से सुर मिलाकर शुरू करते हैं मेरी ये यात्रा, एक गीत की यात्रा, जन्म से आज तक।

0: powiedział: left, right, left, left, right, left. Ik, do, ik, do, daimol. Left, right, left. Ik, do, ik, do, out. अरे हटो मेरे रास्ते से, क्यों खड़े हो बीच में? और ये सब, ये क्या पहन के रखा है? अक्षरों और शब्दों से बने कपड़े और स्वरमाला, स्वरमाला पहने हुए हो? ताल की पायल सजाकर रास्ते के बीच में क्यों खड़े हो?
1: मैं तो यहाँ बरसों से खड़ी हूँ, तुम यहाँ कैसे पहुंची? इतनी नन्ही सी जान, क्या काम है तुम्हें? और वैसे कौन हो तुम?
0: सत्यार्थी हूँ मैं, टांगे मेरी सवारी है। सारथी भी हूँ मैं, मेरे मन की मालिक हूँ मैं। जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ मैं। आजाद भारत की बेटी हूँ मैं, माँ भारत की सुपुत्री। और मेरा नाम पता है क्या है? मेरा नाम बन्नो है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ, 12 साल की हूँ। मगर आप कौन हो?
2: भूत हो क्या?
1: मैं भूत नहीं, भूत काल से हूँ। मैं एक गीत हूँ, एक नारा हूँ, तुम्हारी दुलारी माँ भारती की आजादी का एक अंग हूँ। मेरा नाम पहले वंदे मातरम था, अब मुझे वंदे मातरम बोला जाता है। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में कितने प्रेम से मेरे जन्मदाता श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी ने मुझे गढ़ा है, भारत माँ को अर्पित करने के लिए। तब से लेकर आज तक लोग मुझे वही प्यार और सम्मान देते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और मेरे स्वरों का लुत्फ उठाते हैं।
0: अच्छा, कुछ अपने स्वरों के बारे में बताओ ना दीदी।
1: देश राग में मैं गढ़ी हूँ बेटा, जिसका ठाट है खमाज, जाति औधाव संपूर्ण, वक्र ऋषभ और पंचम वादी और संवादी है। आरोह है सारे मापा नीसा, अवरोह है सानी धापा मागा रेसा।
2: बस बस बस करो, इतना भारी भरकम ज्ञान मुझे समझ नहीं आता।
0: अरे अरे, कहाँ चली गई? ये क्या, आप तो जादू से गायब हो जाती हो। कहाँ हो, कहाँ गए आप? कहाँ हो आप? मैं आपको देख नहीं सकती, कहाँ हो?

0: जो सुन रहे हैं ना आप, ये पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की आवाज है। 1947 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय संसद में मध्य रात्रि को वंदे मातरम गाया गया था। अगले दिन आकाशवाणी में सुबह 6:30 बजे वापस बजाया गया था। और ये जो सुन रहे हैं आप, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। अभी तक आपने सुना कैसे बन्नों की मुलाकात वंदे मातरम गीत से तो हो गई, पर अब वो किसी और से भी मिलने वाली है। किसी खास से, किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने भारतीय होने का एहसास हर भारतीय को दिलवाया था। वैसे ये गीत गायब कहाँ हो गई? मुझे लगता है हम सब के दिलों में जाकर छुप गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में तो राष्ट्रगीत कई बार गाया और सुना है, लेकिन इसका जन्म कैसे और क्यों हुआ? तो चलिए बन्नों को और आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां हमारे राष्ट्रगीत के निर्माता तो हैं, लेकिन तब तक वंदे मातरम का निर्माण नहीं हुआ था।
1: सर सर, एक मिनट।
2: आज से 1858 में अंग्रेजों ने भारत पर पूरा कब्जा कर लिया है। 1858 में भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। मैं पत्रकार हूं और आज जेसोर डिस्ट्रिक्ट आ पहुंचा हूं। अभी हम खड़े हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में।
3: देखो ना, मैं खुद बिजी हूं। मैं प्लीज प्लीज प्लीज बाद में बात करते।
0: ये है श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी, डिप्टी ऑफ जेसोर डिस्ट्रिक्ट, और आगे जाकर यही हमारे राष्ट्रगीत की रचना करने वाले हैं। लगता है हमारी 21वीं शताब्दी की बन्नों 19वीं शताब्दी में पहुंचकर काफी उत्साहित है, और ये तो बंकिम चंद्र चैटर्जी जी से बात करने पहुंच गई है। चलिए सुनते हैं क्या बात हो रही है।
4: आज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना अत्याचारी शासन से मुक्त कर दिया है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अपना शासन छीन लिया है, किंतु हमारे मन में एक तूफान सा है, ये सोचकर कि ब्रिटिश क्राउन सीधे सीधे नियंत्रण ले लिया है भारत पे। कैसे लोग अपना कर्ज चुकाएंगे? उनके खाने के भी पैसे नहीं है। बंगाल को खोखला करने के पीछे पूर्वी इंडिया कंपनी का ही हट है।
5: काकू, क्या आपने गीत को देखा है? ओ काकू, क्या आपने गीत को देखा है? बोलो ना।
6: हैं? काकू? के काकू?
7: अमी बंकिम चंद्र। और ये गीत कौन है? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? और आपकी माँ कहाँ है?
0: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना कंठालपाड़ा नेहाती में जन्मे। उनके पिता का नाम यादव चंद्र चैटर्जी था। बंकिम चंद्र ने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की। वो हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंस

0: कॉलेज में पढ़ते थे। 1857 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले वो पहले भारतीय थे। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर रहे, जहां उन्हें राय बहादुर और सीआईई की उपाधियां भी मिली। 1869 में तो उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की और 1891 में सेवानिवृत्त हो गए। उनकी शादी 1849 में 11 साल की कम उम्र में ही हो गई थी। वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 वर्ष बाद ही 1859 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनकी दूसरी शादी लक्ष्मी देवी से सन 1860 में हुई। बंकिम चंद्र जी हमेशा से ही साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने कई लेख और उपन्यास लिखे। उन्होंने अपना पहला उपन्यास राजा मोहन्स वाइफ, जो अंग्रेजी भाषा में था, 1864 में लिखा था। उन्होंने 1865 में दुर्गेश नंदिनी, 1866 में कपाल कुंडला जैसी रचनाएं की। उन्होंने अपनी कृतियों में सामाजिक कुरीतियों से होने वाले उत्पीड़न को दर्शाया और तत्कालीन समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। बंकिम चंद्र जी ने कई ऐसी रचनाएं की जिसके कारण दार्शनिक श्री अरबिंदो घोष और अन्य लोग उन्हें ऋषि या दृष्टा मानते थे। वैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना की तो अब तक बात ही नहीं हुई है। कौन सी? अरे बताऊंगी, पहले हमारी बन्नों को वापस वर्तमान में तो ले चलूं, क्योंकि अगर यहाँ बन्नों को बंकिम चंद्र जी के पास छोड़ दिया तो बन्नों की बातें सुन सुनकर वो अपनी रचनाएं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बन्नों और आप सबको ले चलती हूँ फिर से आज के समय में।
1: अरे काकू कहाँ गए और ये क्या, मैं वापस सड़क के किनारे कहाँ से आई?
2: कैसा रहा तुम्हारा सफर बन्नो?
1: गीत, मैं तो अभी काकू से मिलके आ रही हूँ।
2: हाँ मुझे पता है, तुम मेरे जन्मदाता साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चैटर्जी जी से मिलकर आ रही हो ना?
1: हाँ, मैं 18वीं शताब्दी में गई थी, मैंने उन्हें देखा, पर वो मेरी किताब में जो उनकी तस्वीर है ना, वैसे तो बिल्कुल नहीं लगते।
2: हाँ, तुम उनकी युवावस्था के समय उनसे मिलने गई थी ना?
1: पर मुझे उनसे और बात करनी थी, और प्लीज अब आप कहीं फिर से गायब मत हो जाना।
2: मैं तो यही हूँ बन्नो, जो मुझे प्यार से गाते हैं बस उनके पास दिलों में देशभक्ति बनकर और आवाज में शक्ति बनकर चली जाती हूँ।
1: फिर तो मैं ही आपको हमेशा गाती रहूँगी।

0: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: देश का हर बच्चा बन्नों की तरह राष्ट्रगीत को सुर में गाए या ना गाए, पर गर्व से जरूर गाता है। वैसे सुना ना आपने अभी, बन्नों को बंकिम चंद्र चटर्जी से और बातें करनी है। और आपको भी तो जानना है ना कि ऐसी कौन सी घटना घटी या ऐसा कौन सा विचार आया जिसने वंदे मातरम की उत्पत्ति की। आप ये सब कुछ जान पाएंगे एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले अध्याय में। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद जय भारत। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद जय भारत।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को और रेडियो मधुबन के हमारे तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ। अच्छा। वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंडिंग सर, तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया हो।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: तो जो, और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहाँ पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहाँ से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग देख पा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी, लेकिन जहाँ मैथमेटिक्स की, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री की बात आती थी तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि 7th में आते आते जैसे कुछ नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें, और स्क्विंट भी आई मेरा। हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
0: अच्छा,
1: लड़की
0: परिवार
1: देखो।
0: में ही?
1: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी, मतलब नॉट इन माई फैमिली, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो बस गया ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह
0: जी
1: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
0: जी
1: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया, 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
0: बिल्कुल
1: पर
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
0: अच्छा
1: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्या चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
0: ओहो,
1: दौरान
0: अच्छा
1: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
0: जी
1: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे, और उसका साइड
0: जी
1: इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसका मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। +2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
0: क्या
1: तो
0: बात है, वाह,
1: हाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
0: ये
1: टैलेंट
0: प्लस टू का
1: देखकर
0: बता रहे हैं
1: के।
0: आप? 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
1: जी
0: टॉप किया
1: ट्वेल्थ का
0: ना?
1: बता रही हूँ, जी 12th में मैंने
0: क्या
1: कॉन्स्टिट्यूशन
0: सब्जेक्ट उस
1: स्टेट्स,
0: समय,
1: हाँ
0: 12th में सब्जेक्ट
1: जी,
0: क्या रहे आपके? हिंदी
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और हिंदी
0: मीडियम
1: जो
0: या इंग्लिश
1: कास्ट
0: मीडियम?
1: में हिंदी भी इंग्लिश मीडियम, 10th तक
0: इंग्लिश
1: देखिए,
0: मीडियम।
1: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय, तो
0: जी
1: उसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए,
0: जी
1: फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना,
0: जी
1: और तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मेनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक यू। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला, +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में
0: जी
1: मैंने पाया, तो आई वाज सो हैप्पी, लेकिन 10th सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, है ना। तो हाँ जी, समझ आया। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना। हमारा
0: आंखों का क्या
1: मतलब
0: ठीक हो गया था, वापस
1: जी
0: बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था
0: अच्छा, मतलब आपकी
1: जी।
0: रोशनी वापस से ठीक होने
1: नहीं
0: लग गई थी?
1: रोशनी
0: ओके,
1: नहीं, रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था, तिरछापन जो था पुतलियां, वो अपनी
0: टेढ़ा
1: सही जगह पे
0: टेढ़ापन
1: था।
0: था।
1: हाँ, वो सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
0: ओके, तो
1: तो
0: आपकी
1: इन द
0: एंगेजमेंट
1: ईयर
0: आपके जैसे
1: जी
0: व्यक्ति से हुई थी या
1: नहीं
0: सामान्य
1: नहीं
0: व्यक्ति से?
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें,
0: आप
1: कहीं
0: इस
1: लिखा
0: स्थिति
1: होता
0: में
1: था
0: नहीं
1: सर।
0: रहे कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
1: हाँ
0: परिवार
1: बिल्कुल
0: में। हाँ,
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था, आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रहे।

0: जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी, दहेज।
1: ओहो
0: ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर लो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई। ठीक है, वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
1: जॉब वगैरह थी,
0: कुछ नहीं था सर,
1: कुछ
0: अपने
1: भी नहीं
0: फैमिली के
1: था।
0: टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
1: नहीं नहीं कोई बात
0: क्योंकि
1: नहीं,
0: यहाँ
1: कोई
0: पे
1: बात
0: हाँ जी हाँ,
1: नहीं।
0: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
1: वो
0: जो
1: वैसे भी
0: भी
1: पर्सनल,
0: हाँ
1: हाँ वो वैसे भी
0: जी
1: पर्सनल लाइफ है,
0: हाँ
1: रही है आपकी,
0: जी
1: तो कोई बात
0: तो
1: नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया। ठीक है, देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000। यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
1: ओहो
0: टू
1: ओहो
0: थाउजेंड फोर में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैनॉट बी क्योर्ड। वो क्योर नहीं हो सकता, आप
1: एक
0: इतनी
1: ऐसी
0: मुश्किल से बचा
1: परेशानी
0: रहे
1: से
0: हो
1: आप
0: और
1: जूझ रहे हैं जो
0: कई
1: ठीक
0: सालों
1: नहीं हो
0: से,
1: सकता।
0: कई सालों से मतलब, है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
1: अच्छा।
0: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते
0: हाँ
1: नहीं है, न जाने क्या
0: हाँ तो
1: हुआ है
0: बोले कि
1: जो।
0: हाँ, वो कहते नहीं यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूं और मैं आराम से खाना पका लूं या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूं, इस तरह का स्विमिंग, इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके, फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया। आई वाज इन यू नो डिप्रेशन, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस
1: और
0: एंड
1: उन्हें
0: है नहीं। हाँ
1: बेटे का लालन पालन भी साथ में चल
0: वो
1: रहा
0: सब
1: है
0: तो
1: और ये
0: मैं,
1: सब।
0: हाँ वो सब तो देखिए सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग मतलब बच्चे का लालन पालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस, और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे वाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने, और
1: आपने
0: उन्होंने
1: ब्रेल लिपि
0: मुझे
1: भी सीखी
0: काफी,
1: मैडम?
0: जी मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल हैं, उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना। कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो एनवीडीए सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया। फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था, और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ, और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई। थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे, कुछ 2-3 लाख रुपए, वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो
1: नहीं
0: ये
1: लटक रही,
0: चीज जब
1: सही
0: दूर
1: बात
0: हो गई
1: है।
0: ना, तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की, जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कांटेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो हॉस्पिटल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे, जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है, कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है। सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया, मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया, मैंने हाथ में सीखा, कहते हैं है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ। वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी
1: ओ
0: जितनी
1: क्या
0: इंग्लिश की
1: बात है।
0: किताबें होती थी सब मुझे, बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी। ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे कोई ले जाना, झारसुगुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो आज वो नहीं है, बट वट एवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को,
1: आपके जीवन
0: और
1: में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा समझ में
0: बहुत
1: आ रहा
0: बड़ा
1: है।
0: हो रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्पलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती,
1: हम
0: सब
1: समझ
0: को
1: रहे हैं
0: एक
1: कि आप
0: मेनक बन के रहते हैं जी।
1: भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए,
0: जी जी
1: निश्चित
0: तो
1: रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
0: तो ही वॉज अ बैकबोन टू मी, एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूँ तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से। वो कहते थे मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना, तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते हैं।
1: वाह क्या
0: धन्य
1: बात
0: है, मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी
1: है।
0: हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो
1: जी
0: उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहाँ, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे
1: जी
0: भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, अजीबो गरीब।
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: आपको
1: नहीं,
0: बताऊं,
1: बिल्कुल
0: हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर
1: जी
0: आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस, कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों ने तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो चल रहे हैं उनके साथ भी है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर।
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: है ना। तो ये बात है। तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है, बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा, और भगवान ने बहुत बहुत तरक्की दी। मोर देन यू नो 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग दी है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारे, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे जो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाइप किया, टाइप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाइप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपर्णा एक है, उन लोगों ने टाइप किया, तो इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन के सैटरडे संडे इनके यहाँ जाकर के पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वाज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
1: समय, मतलब आपने यही लक्ष्य बना लिया कि बस अब तो मुझे,
0: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी, तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो 2 मैंने कोर्स बुक लिखी सर और 2 लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहुजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए, तो ये जो 2 कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और 2 हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के, तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से, ये मेरा एक
1: बात,
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया, कोशिश की, लेकिन बट चूंकि वो जो हमारा एरिया था ना वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए, तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले है इस तरह के, तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक OTV है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को तो उस समय पे, और तो काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे, और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे, अच्छा जी जी
1: आपने कहा होगा भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है
0: नहीं नहीं सर देखिए एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है, मतलब हमारे समाज में हम जिस तरह के माहौल में
1: और फिर
0: रहे
1: क्या होता है ना
0: हैं
1: कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी
0: नहीं सोचता इंसान, है ना, नहीं सोचता बस, है ना, क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई, है ना, उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 इयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और स्टार्टअप है उसका अभी, हाँ जी। तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है, देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो, तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बात हुई, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है, तो क्या हुआ कि 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया,
1: अच्छा
0: ओरल कैंसर जी, तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा, मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन द ईयर 2018 तो दैट वॉज अ ग्रेट लॉस टू आर फैमिली, तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ, और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने से रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था, एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना वो रहा, तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको ले करके नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में, तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना, तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए, और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ, दैट इज तो ये
1: छत्तीसगढ़ में कौन से शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है वहाँ जी।
1: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया एंड उन्होंने ही हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ, है ना, एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर, फिर जमीन वगैरह
1: 2008 से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में ही अपने आपको मतलब
0: बचपन से ही पूरा
1: सरवाइव भी किया, फ्लरिश भी किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर वहीं देखे आपने। एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में
0: जी,
1: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी, लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
0: जी
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
0: जी जी जी, मैं वही बताती हूँ। देखिए एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये, तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही। है ना, जिसने एक प्लस ऐड ऑन किया,
1: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि
0: जी
1: उनको पढ़ाने वाला
0: हाँ
1: टीचर जो है वो शायद
0: हाँ
1: ब्लाइंड है।
0: ब्लाइंड है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को, ओके। और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास जाओ, सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ जो भी आता था, और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में है ना, तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ।

0: आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत
1: तो वहां
0: तरीके से
1: आपने
0: करती हूँ।
1: रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी या अपना कुछ खुद का ही खरीद
0: जी
1: लिया था? कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया। वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा
1: उसी
0: हॉल
1: पर ही
0: पहले
1: करते रहे
0: था,
1: थ्रू आउट आप?
0: हाँ बस एक हॉल जैसे था, तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी, तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, दैट वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी, और बाकी फिर जहां भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहां पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग को ऑपरेट करते थे, तो
1: ये
0: इस तरह
1: ओडिशा में कौन
0: से
1: सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा,
1: जादूगोड़ा है?
0: जी झारसुगुड़ा सर, JHAR
1: झारसुगुड़ा।
0: झारसुगुड़ा, हाँ ये बिल्कुल राउरकेला के नजदीक है सर, और ये
1: ओके।
0: वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: जी,
0: यस
1: तो एक बात बताइए,
0: जी
1: जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए,
0: जी
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर, कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं
1: हाँ,
0: देखा,
1: ये
0: इवन
1: क्योंकि मेरे मन में
0: लिटिल
1: एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो अब।
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया, है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात
1: बिल्कुल
0: देखे
1: ठीक
0: को भी
1: बात
0: पता
1: है,
0: है बहुत अच्छी तरह से जी।
1: बिल्कुल ठीक बात है। बहुत जबरदस्त, मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से, मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम हैं आप। दिल्ली में हैं एक नीतू सिंह मैम
0: जी
1: हैं, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही
0: जी
1: कोचिंग सेंटर चलता है।
0: जी
1: तो दुनिया, मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए। वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर, सबका अपना अपना संघर्ष होता है। अब
0: सबके होते
1: इस
0: हैं सर,
1: कार्यक्रम
0: किसी के
1: के
0: सामने
1: माध्यम
0: आते
1: से
0: हैं
1: जो
0: किसी के
1: लोग
0: नहीं आते
1: आपको
0: हैं।
1: सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं। अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात
0: जी
1: कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही, बहुत अच्छी, और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर, तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई?
0: जी मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ, अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो
0: लेखन
1: हमें यह समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक
0: जी
1: चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है, कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं
0: जी
1: उस ओर
0: बिल्कुल
1: तो।
0: जी, और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो
1: अरे
0: मैं
1: वाह,
0: उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो
1: बिल्कुल
0: रहता
1: बिल्कुल
0: है कि,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो भी
1: डेफिनेटली
0: रहा
1: डेफिनेटली जी, अब
0: जी।
1: बताइए
0: और
1: अब आप।
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो
1: हाँ
0: काम
1: जी,
0: कर
1: हाँ
0: रहे
1: जी,
0: थे
1: हाँ
0: उस समय
1: जी।
0: पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को
1: आपको
0: रखते
1: याद हो तो
0: थे
1: मैम, दो लाइनें हो जाए।
0: जी जी बिल्कुल सर होती है तो वो
1: जी
0: पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं सुनाती हूँ,
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है वह मंजिल यहीं कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास है, मन मेरा बेचैन है, अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश, जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊजी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे। कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी तो तब तब ये हाल है ना,
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
1: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
0: जी
1: जी,
0: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के, किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही। तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है, जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं है ना। तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है तो है ना, लिखने मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर। और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर, मतलब मैं आपको बताऊं मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा, और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, तो कल्पनावादी संसार होता है ना उसमें बस उड़ रहे थे कि
1: उसमें बस की उड़ान, तो बस एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही, बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके आया, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती है उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं, दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे, तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए, फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हुई, तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस, और इसी

0: क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियाँ। और मैं आपको बताऊँ सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक आर्टिकल आता था पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहाँ पे सचिव का काम कर रही थी क्योंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी, इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारे चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी का नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपकी जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोगों ने, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखता है। ओके तो ये रही, तो उसपे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो अच्छा। वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में, तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग विम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी
0: जी,
1: तो यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है,
0: कनेक्टिंग वेंचर शुरू किया जिसका नाम कनेक्टिंग विम्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से है, और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ब्लाइंड पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया, और उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, और सब लोग बोलते थे कोमल नहीं हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बार बताती हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े।

0: उन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है। तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी। और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे यही डील करते हैं। और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से
1: जी
0: रिलेटेड, वो सारा कुछ
1: जी
0: मैं करती हूँ, और ओम बिनावरिया बेस में ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग बीम्स हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और हैं, जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं, और बाकी हमारी टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं के। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं, 80% लोग अराउंड, सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लो विजन है,
1: बहुत
0: कोई
1: अच्छी बात
0: कंप्लीटली
1: है
0: ब्लाइंड है। तो
1: जी।
0: लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई। इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने
1: बिल्कुल
0: एक
1: समझ गया मैं।
0: सब्सक्रिप्ट
1: वो
0: लिखी।
1: वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है।
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैन आई होल्ड योर हैंड बनाया। एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है,
1: जी
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है, यस आई एम 40। आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, और बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें। वो किस तरह से जॉर्ज को यूज करते हैं, और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से, हम साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को, सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो
1: बहुत
0: सकता है कि
1: खूब
0: हम बहुत बहुत रीच नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर
1: हो
0: होगा,
1: जाएगी
0: आज
1: बिल्कुल।
0: कल होगा।
1: आज नहीं तो
0: हाँ
1: कल जो
0: आज
1: सोचा है वो तो होना ही वाला है। जी
0: अगर
1: हाँ
0: हम आज 4-5 हज़ार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो हो सकता है कल ये संख्या में जीरो और लग जाए। तो ऐसा हो
1: बिल्कुल।
0: सकता है, हम पॉजिटिव कहते हैं, कीप योर फेस टू द
1: एक क्या
0: सनशाइन।
1: अनेक जीरो लग जाएंगे,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अनेक जीरो
0: तो
1: लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो? कितने मतलब टोटल, ऐसे
0: बिल्कुल
1: एक
0: मैं
1: संख्या में
0: बताती
1: कभी
0: हूँ।
1: नोटिस तो। जी
0: जी हाँ, संख्या में अगर हम मैं बताऊं तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई, जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जो पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट, कहानियां, कविताएं तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: और
0: खत्म
1: उपन्यास
0: करने का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है, का नाम कैन आई होल्ड योर हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं। और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं, अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा। और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी, डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी, तो
1: बहुत
0: वो
1: अच्छी
0: भी
1: बात है।
0: ब्लाइंड।
1: एक मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है।
0: जी बिल्कुल, टोटली ब्लाइंड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब। तो कभी
0: जी,
1: अगर
0: इनका हमारे साथ टाई अप
1: अवसर
0: है, कोलैबोरेशन
1: अवसर मिला
0: कनेक्टिंग।
1: तो उनके साथ भी हम मन की आंखों से
0: जी
1: कार्यक्रम जरूर
0: बिल्कुल,
1: करने की कोशिश करेंगे।
0: हाँ वो बहुत
1: और ये
0: प्रतिभावान।
1: अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना?
0: जी अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है, और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा और हमने उनका भावोन्मेष, उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है और पूरे कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है। और गोष्ठी, कुछ काव्य गोष्ठियाँ हमने की हैं कनेक्टिव ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोइट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावों की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और रक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट, कॉम्पिटिशन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, तो ये बात है तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियाँ लिखने का सर ऐसा है कि कहानियाँ बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियाँ लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा, छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के आने के बाद आपने किए या लेखन के कार्य पहले आपने किसी को रखा हुआ था या खुद ही लिख के देखने से करते थे, क्योंकि ब्रेल आपकी तो आपने बहुत ज्यादा सीखी नहीं, क्योंकि ब्रेल की आपने बहुत ज्यादा सीखी नहीं,
0: लेखन का काम जो भी वैसा कंप्यूटर के आने के बाद जो भी वैसा कंप्यूटर के आने के बाद।
1: अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा और उसी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल भी किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर, वो वाला ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती।
1: बहुत जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ, लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, अब ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी, मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आप उठिए चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सर वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया सा जो सुकून है क्या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी लेती है तो सुकून भी जिंदगी के पास है, आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ निवाणी को विराम देती हूँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया, तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ ना कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद बहुत बहुत।
0: जी बहुत शुक्रिया।
2: अभी बचे हैं दोपहर के 1।

0: ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगी। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुखवंत सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। काफी लंबे समय से डीपीएस से जुड़े रहे, प्रिंसिपल का काम भी आपने किया है और फिर एक अच्छे टीचर का जो सम्मान है आपको दो बार मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम आपने किए हैं जिसके लिए आपको सम्मान प्राप्त है और आज भी लोग आपको एक शिक्षाविद के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं अपने स्थान पर भोपाल में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने लंबे समय से कम 3 दशक तक आपने एजुकेशन फील्ड में काम किया है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, एक बहुत बड़ा अनुभव है। आदमी अगर 3 दशक किसी फील्ड में रहता है तो उस फील्ड का पूरा जो है निचोड़ उनके पास हो जाता है। तो बिल्कुल आपके एजुकेशन शिक्षा के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसकी पूरी आपको जो है ज्ञान भी है और आप बच्चों से अगर जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे बेहद खुश होते होंगे और आपको पसंद भी करते होंगे। और आपने इंग्लिश बच्चों को पढ़ाया है और मैं चाहूंगा कि आगे की जो बातें हैं, जितना मुझे जानकारी हो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन अभी हम लोग सर से ही अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। तो आप सभी की तरफ से सुखवंत सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर।
1: नमस्कार सर
0: जी, कैसे हैं आप?
1: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला और ये भी एक परमात्मा की देन मैं समझता हूँ कि वो हमें मिलाता है और साधन बनते हैं। साधन हमारे यहाँ से जो आपके ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है उनके थ्रू मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि आप इस तरह से शो कंडक्ट करते हैं और जी, आपने जी, मुझे इस काबिल समझा, ये मेरा सौभाग्य है।
0: अरे सर जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनने का। एक सौभाग्य है मेरा कि मैं आप जैसे एजुकेशनिस्ट को सुन पा रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे कि शिक्षा प्रणाली में काफी अच्छा जो बदलाव आए हैं, इसके अलावा और क्या बदलाव होने चाहिए, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अपना विचार हमारे साथ साझा कीजिए।
1: सर अभी तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की,
0: हाँ,
1: उसमें बहुत बदलाव जो हैं वो सारे जो होने चाहिए उस ओर मतलब एक बहुत
0: ही
1: अच्छा एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को प्राप्त हुई है और आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। और जो एक रॉट लर्निंग पहले होती थी कि चीजों को कंटेस्ट कर लिया जाए और उसको फिर एग्जाम कंडक्ट हो और बच्चे जो लिख देते थे, जो कंटेस्ट करने की क्षमता रखते थे वो अव्वल नंबर पा जाते थे और जो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते थे वो पीछे हो जाते थे। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा मतलब इसका तालमेल अब चेंज होगा और अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और क्वेश्चंस भी उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे और जो आउटपुट होगा इसका निश्चित रूप से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, नए पॉलिसी में काफी कुछ बदलाव किए हैं और जो हमें चाहिए था वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, दो कैटेगरी के बच्चों को जो बाहर कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं, उन दोनों को भी न्याय मिलेगा और साथ ही साथ जो सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जितना तक वो पढ़ता है उतना तक उसको सर्टिफिकेट, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर काम हो रहा है एजुकेशन नए पॉलिसी में। तो अब मैं चाहूंगा कि जैसे आज के समय में जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं और आप 30 यानी पूरे 30 सालों तक आप एजुकेशन फील्ड में काम किया है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज से अगर हम लोग पीछे चले जाते हैं, 30 ईयर्स बैक चले जाते हैं, 3 दशक पीछे चले जाते हैं, तो उस समय आपकी जब शुरुआत एजुकेशन फील्ड में आप एंट्री कर रहे होंगे तो उस समय का जो सिनेरियो था वो कैसा था और आप किस लक्ष्य को लेकर वहां पहुंचे थे और कैसे कैसे आप में क्या बदलाव आया, वो भी मैं चाहूंगा कि जरूर।
1: एक प्रश्न पूछा जाता है शिक्षकों से, जो शिक्षक जो शिक्षा की लाइन में होते हैं, कि आप इस फील्ड में अपनी इच्छा से आए या किसी
0: मजबूरी
1: दूसरे
0: से
1: कारण
0: आए
1: से आए। तो अगर आप मेरे से ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा था, एक वक्त ऐसा आ गया था जब हम लोग, मैं 83-85 के दौरान मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था रेवेन्शा कॉलेज कटक से,
0: जी जी जी
1: और उसी दौरान कुछ ऐसा हो गया था कि हम लोग उड़ीसा में रहते थे, लेकिन जो 84 के जो रायट्स हुए थे उसमें हमारे पिताजी का, और उस कारण से जब मेरी एमए कंप्लीशन की तरफ थी तो कुछ आर्थिक समस्याएं गई, और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दिल्ली पढ़ने के लिए जाऊं, आगे अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, लेकिन मैंने जब घर के
0: जी
1: हालात
0: जी
1: देखे तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ नौकरी की ओर भी जाना चाहिए, और मैंने वहीं से एक मैं अगर आप समय दें तो मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरह डीपीएस में आया, और मैं अपने जीजा जी के साथ में गया हुआ था वेलोर में, और वेलोर में
0: अच्छा
1: जीजा जी का इलाज चल रहा था, मुझे वहां पर करीब 4 महीने रुकना था, 87 की बात मैं कर रहा हूँ, और उस दौरान जब एक दिन सुबह मैं जीजा जी को नाश्ता करा के लौट रहा था तो जीजा जी ने कहा कि आज लंच जब लेके आओगे हॉस्पिटल में तो डाब लेके आना मेरे लिए, नारियल का पानी जो होता है।
0: नारियल का पानी डाब। हाँ
1: आते वक्त अपने होटल से जब खाना लेके जा रहा था जीजा जी के लिए तो रास्ते में एक पान की दुकान थी, उसमें से मैंने 2 डाब लिए जो 4 रुपए के आए, और मैंने जब
0: जी
1: पान वाले को 5 रुपए दिए तो उसने कहा मेरे पास में अभी चेंज नहीं है तो आप बाद में ले लीजिएगा, और मेरी नजर एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे पड़ी, मैंने वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज
0: अच्छा
1: ले लिया, और उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज को पढ़ने के लिए मेरे को 2-3 दिन का और समय लग गया था, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो उसमें डीपीएस कोरबा के की एक एडवर्टाइजमेंट थी, और
0: अच्छा
1: डीपीएस जो था नाम, इससे मैं वाकिफ था क्योंकि ये हमारे उड़ीसा के जयपुर जहां का मैं रहने वाला हूं उसके बगल में दामन जोड़ी है, दामन जोड़ी में 83 में डीपीएस की ब्रांच खुली थी, और हम दोस्त लोग थोड़ा सा मतलब मन में ये कहते थे कि अगर ये हम लोग के स्कूलिंग के दौरान डीपीएस खुला होता तो हमें हम हमें इसमें पढ़ने का हमें भी मौका मिलता, तो वो हमने लोगों ने मौका
0: जी
1: मिस किया था। जब मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में डीपीएस देखा तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आए, और मैंने कहा देखिए स्कूल में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला और यहाँ पर मुझे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए, तो मैंने वहीं से वेलूर से ही एक प्लेन पेपर में मैंने चिट्ठी लिखी डीपीएस कोरबा के मैनेजमेंट को कि मैं इस तरह से जीजा जी के इलाज के लिए आया हुआ हूँ और मेरा ये बायोडाटा है, मैंने एमए तक शिक्षा ग्रहण की हुई है और मैं नॉन बीएड हूँ, मेरे पास में सर्टिफिकेट्स नहीं है, मेरे को आप अगर मौका देंगे तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हो सकता हूँ। मैंने वहां से वो चिट्ठी पोस्ट कर दी वेलोर से, और जब वापस विशाखापट्टनम आया मैं, जब विशाखापट्टनम हम लोग रहते थे क्योंकि जयपुर से हम लोग शिफ्ट कर गए थे, विशाखापट्टनम से डैडी ने रेजिडेंस अपना विशाखापट्टनम कर लिया था, तो
0: अच्छा,
1: विशाखापट्टनम में एक दिन मेरे को अचानक से कॉल लेटर आ गया डीपीएस कोरबा का,
0: अरे
1: और
0: वाह,
1: मैं प्रिपरेशन कर रहा था आंध्रा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, मैं जाता था वहां पर, एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको हम बबला बबला सर कहते थे, तो उनके अंडर में मैं
0: अच्छा।
1: प्रिपेयर कर रहा था सिविल सर्विसेज की, 2 सब्जेक्ट मैंने लिए थे साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी की अनुमति दी हुई थी वो यूज करने की, और आंध्रा यूनिवर्सिटी की उस लाइब्रेरी ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने, मतलब उस दौरान पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिली मुझे, तो बबला सर को जब पता चला तो वो नाराज हुए, बोले क्यों जाना चाहते हो, मैंने कहा सर मैं क्योंकि अभी इस वक्त खाली बैठा हूं तो काफी लोग मेरे को यूज करते हैं, यूज करने का सेंस है कि अगर मामा जी को अपने ससुराल जाना है तो कहते हैं कि मेरी दुकान में आके बैठ जाओ, चाचा जी को कहीं जाना है तो कहते हैं मेरी दुकान में आके थोड़े दिन बैठ जाओ, तो मेरी पढ़ाई में इफेक्ट होता है, इसलिए मुझे कोई एक ऐसा जॉब मिल जाए जहां पर मैं बैठ के पढ़ाई अपनी कर सकूं, तो मैंने
0: बिल्कुल
1: वहां से
0: बिल्कुल
1: जब अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद में फिर मैंने पिताजी से अनुमति मांगी कि मेरे को नौकरी करने का मौका दिया जाए, मैं जाके अपनी प्रिपरेशन जारी रखूंगा, तो
0: बिल्कुल
1: पहला साल जो था 87 का वो मैंने इस कंडीशन पे ज्वाइन किया था कि मैं अपनी साथ साथ में तैयारी रखूंगा, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो नौकरी मेरे को मिली है एक बहुत ही अच्छे विद्यालय में मिली है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ में मिली है, और मैं मुझे तब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पता चली कि नहीं भाई आप इसमें कंटिन्यू करोगे तो आपके दो बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी। मैं उस वक्त बैचलर था, लेकिन फिर भी ये एक जो पॉइंट था कि दो बच्चों की पढ़ाई मैं फ्री करा सकूंगा अपने बच्चों की। तो मुझे लगा कि अगर मैं आईएएस नहीं बनता तो नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन बचता था बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का।
0: बिल्कुल।
1: तो मैंने सोचा कि अगर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन गया तो दो बच्चों की पढ़ाई अगर मैं डीपीएस के जैसे स्कूल में अगर करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो मेरे पास में जो ऑप्शन था मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं एक अच्छा शिक्षक बनने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट सेशन जो था मेरा दैट वॉज आउट ऑफ प्योर चॉइस और आज की डेट तक मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो सब बातें पीछे रह गई। मैंने वहां से प्रयास किया कि मैं एक अच्छा टीचर बनने का प्रयास करूंगा इसी विद्यालय में और फिर आगे चल के हमारी शादी हुई, एक बच्ची हुई, दो बच्चे तो नहीं हुए हमारे, एक ही बच्ची है और उसको भी डीपीएस में पढ़ने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि मेरा ये जो कैरियर था मतलब अभी तक जो चल रहा है मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और बच्चों को पसंद करता हूँ और शायद बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आज से 30 साल पहला जो चीजें आपके सरकमटेंस आ गए ऐसे कि आपको इस तरह आपको जाना हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे गीता का जो शब्द है वो लिखते हैं कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होगा,
1: वो भी अच्छा होगा।
0: तो बिल्कुल, मानसी जी ने याद भेजा है ओम शांति करके। मानसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सवाल हो तो जरूर पूछिए शिक्षा के क्षेत्र की। और हमारे कर्नल सर भी जुड़ गए हैं, सोलंकी सर राजस्थान से, उन्होंने भी याद भेजा है और आपको भी याद किया है। सुखवंत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं। और शिक्षक तो बच्चों के भविष्य बनाते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद कर्नल सर याद करके मैसेज करने के लिए। अब आइए मैं आपको जोड़ना चाहूंगा फिर से सुखवंत सिंह सर से। जैसे कि अब आते हैं बात करते हैं हम लोग कि आज से 30 साल पहले जब आप पढ़ाना शुरू किया बच्चों को तो उस समय आपकी जैसे कि बिल्कुल हम लोग फर्स्ट टाइम बच्चों से मिलते हैं तो आपको कितने टाइम में ऐसे लगा कि मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाऊंगा और ये बहुत अच्छा कर पाऊंगा मैं?
1: सर पहली क्लास, पहला दिन और पहली क्लास से मुझे लगा कि मैं बच्चों के बीच में बहुत अच्छी जगह में आया हूँ। मुझे आज भी अच्छा। वो क्लास याद है, क्लास 5 थी वो, 87 की बात कर रहा हूँ, 87-88 की बात है। और मुझे क्लास 5 का टीचर बनाया गया था, हालांकि मैं क्लास 10 तक जाता था पढ़ाने के लिए लेकिन क्लास 5 का टीचर था मैं। तो जब उस क्लास के अंदर में मैं जब गया और मुझे छोटे बच्चे दिखे और उसमें मुझे अच्छे से कई सारे बच्चों के नाम भी याद है, श्रीजीत चक्रवर्ती वो आज डॉक्टर है, शोभी अब्राहम वो न्यूजीलैंड में है, उसके बाद में मोनिका नागपाल एक थी वो डॉक्टर है, फिर मुक्ता करके एक लड़की थी बड़ी प्यारी सी, उसके बाद मतलब इसी तरह से कई सारे बच्चे उस क्लास के हैं जो आज भी मेरे टच पे हैं फेसबुक के द्वारा। और मुझे उस क्लास में जाके बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा कि एक अच्छे विद्यालय में और अच्छे बच्चों के साथ में होना एक मतलब एक बड़ी ही किस्मत की बात है जो मुझे उपलब्ध थी उस वक्त। और उन बच्चों के साथ में आई से टॉट देम एंड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि उस वक्त के माहौल और पढ़ाने के जो टेक्निक्स होती थी वो बड़ी बेसिक्स होती थी हमारे पास में। जैसे हम लोग रिजल्ट भी बनाते थे जब, तो रिजल्ट हम लोग प्लेन शीट्स में स्केल पेंसिल रबर लेके हम लोग लाइनें खींचते थे और उसमें सब्जेक्ट का स्लॉट बनाते थे, फिर मार्क्स लिखते थे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी की जो हेल्प होती थी वो एक कैलकुलेटर होता था, छोटा सा हमारे पास में कैलकुलेटर था, पॉकेट कैलकुलेटर, उसको खोल के हम लोग टोटलिंग करते थे। और उस वक्त जो मेरे सीनियर कोलीग्स थे जैसे आर एन त्रिपाठी सर और कुछ उस विद्यालय के जो कुछ और पुराने टीचर्स जो थे वो हमें कहते थे अपना पुराना 10 साल का एक्सपीरियंस, इस तापर जी आपके पास में तो आज कैलकुलेटर है, हम लोग तो एकदम से मतलब मेंटल टोटलिंग करते थे और उसको परसेंटेज निकालते थे। आपके पास में तो आज कैलकुलेटर है, तो हम लोग, मैंने अपना कैरियर जब चालू किया तो हम लोग रिजल्ट कैलकुलेटर हमारे पास में मैक्सिमम एक टेक्नोलॉजी की हेल्प होती थी। और जब टाइम टेबल भी बनाते थे हम लोग बैठ के, टीचर्स का टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल, तो वो भी हमें एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके, उसमें पहले तो करीब करीब एक आध घंटा लग जाता था लाइंस ड्रॉ करने के, फिर उसमें टीचर्स के नाम लिखते थे, टीचर्स के नाम आगे सब्जेक्ट लिखते थे, फिर क्लासेस अलॉटमेंट होती थी। तो बड़ा समय लगता था उस टाइम टेबल को बनाने में। और इधर आज के जमाने में आपके पास में एक्सेल शीट्स हैं और टेक्नोलॉजी की पूरी हेल्प है आपके पास में। क्वेश्चन पेपर्स जब हम बनाते थे तो मुझे
0: जी
1: याद है न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स काट के उसको हैंड रिटन लिख के, या मैक्सिमम अगर प्रिंसिपल परमिशन तो उसको कहीं बाहर से या स्कूल ऑफिस से उसको जीरोक्स करा के उसको लगाते थे और उस पर क्वेश्चंस बनाते थे। आज एट अ प्रेस ऑफ ए बटन वी हैव वेरियस सैंपल पेपर्स अवेलेबल विच टीचर्स आर यूजिंग। तो फर्क थोड़ा सा ये आ गया है सर कि उस वक्त हम लोग काफी इन्वॉल्व रहते थे क्वेश्चन पेपर बनाने में, और आज जो रेडीमेड जो मिल जाता है उसमें मुझे थोड़ी सी कभी कभी क्वालिटी की कमी नजर आती है, कि मतलब जो एक पूरा ध्यान लगा के जो टीचर्स क्वेश्चन पेपर बना देते थे पहले, वो एक उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती थी, जो कि आज हम लोग सैंपल पेपर से इजीली उठा लेते हैं। जो टीचर सारे क्वेश्चन पेपर्स सैंपल पेपर से ना उठा के खुद बनाए, वो मेरे ख्याल से
0: बेटर
1: बच्चों को
0: ज्यादा
1: भी
0: है।
1: पसंद आएगा, पेरेंट्स को भी पसंद आएगा।
0: जी सुखवंत सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या सिचुएशन होता है, और बच्चों को पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें रम जाते हैं जैसे आप रम गए, पर पहले दिन ही आपको एहसास हुआ कि मैं बच्चों के साथ अच्छा कर पाऊंगा। तो निश्चित तौर पे ये एहसास ही हमें जो है 30 साल तक बांध के रखा है, और आपने उसको बखूबी निभाया है। तो अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कई बच्चों का शिकायत होती है कि वो कुछ चीजें नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आप बताएंगे, बच्चों के साइड से क्या एफर्ट्स होना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए टीचर्स का क्या एफर्ट होना चाहिए?
1: सर, ये आपने एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है स्कूल सिनेरियो के लिए।
0: जी।
1: मैं हमेशा ये मान के चलता हूं, अपने टीचर से भी कहता हूं, और ये आप ऑब्जर्व भी करते हैं, आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे आपने भी देखा होगा, कि
0: जी
1: जो
0: जी
1: टीचर नॉलेजेबल है वो कभी भी बच्चों से गुस्सा नहीं करते। क्लास में बच्चा अगर जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब वो जरूर देते हैं। गुस्सा कौन करता है? जो अपने में उसका कॉन्फिडेंस कम हो, शायद समझ लीजिए जो बच्चा क्वेश्चन को पूछ रहा हो उसका उत्तर उसको ना आता हो और वो स्वीकार ना कर पा रहा हो कि मुझे ये उत्तर नहीं आता। जिस दिन एक टीचर ये कहना सीख जाए कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता बच्चे, मैं तुमको ये कल बताऊंगा, तो मैं उस टीचर की रेटिंग काफी हाई करूंगा। मतलब उस
0: बिल्कुल
1: टीचर में एक कम से कम क्वालिटी है कि अपनी कमी को वो स्वीकार कर रहा है। जिस दिन हम अपनी कमी को भी स्वीकार कर लेना सीख जाते हैं, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। और बच्चों को हम बहुत आ, आ, देर तक या बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे निश्चित रूप से समझ जाते हैं कौन किस टीचर के पास में कितनी नॉलेज है और ये हमें क्यों डांट रहा है, ये सब बच्चे पकड़ते हैं।
0: जी जी चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और सोलंकी सर ने एक शायद विचार भेजा है, लिखते हैं, ओम शांति, मैंने तो बीएड भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और डीपीएस आर के पुरम नई दिल्ली में, तीन विषयों में पढ़ाया बच्चों से, बहुत सीखने को मिला जो पूरे जीवन काल में काम आया, और पूर्ण रूप से सहमत हूँ। चलिए
1: थैंक यू सो
0: बहुत
1: मच।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सोलंकी सर, बहुत ही
1: अगर
0: अच्छा
1: मुझे
0: लगा
1: भी अभी जैसे
0: आपने।
1: इन्होंने आरकेपुरम की बात की है, तो
0: जी जी जी जी
1: मैं कहूंगा जब मैंने 87 में डीपीएस कोरबा ज्वाइन किया था मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर बी सिंह, बीकम सिंह के साथ में काम करने का। और
0: जी
1: डॉक्टर
0: जी जी
1: बीकम
0: जी
1: सिंह 10 साल वो करीब डीपीएस आरकेपुरम में काम करके आए थे, एज फिजिक्स पढ़ाते थे क्लास 11th 12th में। तो आरकेपुरम का जो कल्चर जो था वो उन्होंने डीपीएस कोरबा में इंप्लीमेंट किया, और उनके अंडर में रह के 7 साल वो हमारे साथ रहे। उसके बाद फिर वो चले गए रामपुर में, मोदी एकेडमी में। तो 7 साल हम लोगों ने उनसे डीपीएस का कल्चर ग्रहण किया। वो जब वहां से निकले थे तो उनके साथ में मिस्टर एम आई हुसैन, ये चले गए थे डीपीएस भिलाई, और त्यागी सर गए थे डीपीएस बोकारो। तो त्यागी सर और आपके एम आई हुसैन सर और डॉक्टर बीकम सिंह, इन तीनों ने डीपीएस कोरबा, डीपीएस भिलाई और डीपीएस बोकारो को बनाया, और इनके अंडर में रह के हम लोगों ने सीखा। और मेरे साथ में थे जय महंती, डॉक्टर अरुण प्रकाश, मैं और कई सारे टीचर्स जो थे। हम लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा, और आगे जब हम लोगों को जिम्मेवारियां मिली डीपीएस चलाने की, तो ये जो परंपरा है डीपीएस की, उसको हम लोगों ने आगे और बढ़ाया। डॉक्टर अरुण प्रकाश काफी विद्यालयों में रहे, और वो गए वहां से न्यू बुनगाईगांव, फिर गुवाहाटी, फिर बिलासपुर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद वो जेड्डा चले गए, इंटरनेशनल स्कूल्स कुछ चलाए उन्होंने। फिर वो चले गए साई इंटरनेशनल भुवनेश्वर, जो नंबर 1 स्कूल कहलाता है के स्कूल कैटेगरी में। वहां से फिर वो चले गए अपने इलाहाबाद, वहां पर उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है, लॉरल्स इंटरनेशनल। जय महंती सर ये भी मेरे कोलीग रहे हैं, और वो वहां से कोरबा से निकले और वो आए डीपीएस विंदनगर, फिर यहाँ डीपीएस विंदनगर से गए डीपीएस रांची, और डीपीएस रांची से अब चले गए हैं वो डीपीएस नवी मुंबई। तो जो कहते हैं एक जोत कोई जलती है, उसे जोत से जोत जलाते चलो, तो ये डीपीएस मथुरा रोड की जोत जो है, जो 1947 में जली, जो स्थापित होके जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया आए थे, तो उन्होंने एक रिफ्यूजी कैंप टाइप का स्कूल चलाया था, और टेंट्स में ये स्कूल चला था डीपीएस मथुरा रोड। और आगे चल के 1972 में डीपीएस आर के पुरम की ब्रांच चली। उसके बाद 1972 से लेकर 83 तक दो ही ब्रांचेस थी, मथुरा रोड और आर के पुरम। 83 में डीपीएस स्प्रेड करना चालू किया आर एस लुखानी सर के अंडर में, बीएचईएल भेल, दैट इज रानीपुर हरिद्वार में स्कूल एक खुला, और साथ साथ दामन जोड़ी। 85 में डीपीएस कोरबा भिलाई और बोकारो खुला, और उसके बाद फिर कई सारे स्कूल्स खुलते गए। आज की डेट में करीब 240 से ज्यादा दिल्ली पब्लिक स्कूल्स हैं, और इंडिया में हैं, अब्रॉड हैं, और मेरे ख्याल से सब सारे स्कूल अच्छा कर रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
0: सुकुन सिंह, बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, आपने डीपीएस स्कूल के बारे में बताया, उसका इतिहास। और अब मैं चाहूंगा कि आपको जो नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है 2013 एंड 14, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे आपको प्राप्त हुआ। जी
1: सर, इसकी एक रिपोर्ट मांगी जाती है आरओ ऑफिस द्वारा,
0: हाँ
1: और उसको वो एनालाइज करते हैं, आपका पर्सनल डाटा लेते हैं, स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं पिछले कई सालों की,
0: अच्छा
1: और जो प्रिंसिपल्स और जो स्कूल का जो रिजल्ट्स रहता है उस पे उसको एनालाइज करते हुए एक रिपोर्ट मांगी जाती है, जो काफी पन्नों में होती है, और
0: अच्छा अच्छा
1: उसकी फिर एक आपके जो सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसके भी कई सारे मार्क्स होते हैं उस पे। वो फिर पूरे देश में से करीब 30 से 35 टीचर्स प्रिंसिपल्स को ये अवार्ड देते हैं। अब उसको और स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, अब वो काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस साथ में लेते हैं, जो कि आपके वीडियोस हो गए और आपके टीचिंग पैटर्न क्या है, आपके स्कूल के रिजल्ट्स क्या है, ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है, आपका इंटरेक्शन क्या है सीबीएसई के लिए, आपने क्या क्या काम किया हुआ है। जैसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1993-94 में सीबीएसई के साथ जुड़ने का। मैं आपको एक अच्छा एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं 87 में मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया, डॉक्टर बी सिंह
0: जी
1: आके जुड़े, और 88 में एक लेटर आया था सीबीएसई की तरफ से,
0: अच्छा
1: और वो लेटर था, सीबीएसई एक एनालिसिस करना चाहती थी और इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है उसके बारे में वो एक अच्छा सर्वे करके कुछ बदलाव लाना चाहती थी। तो वो चीज 88 में जो लेटर आया था उसमें लिखा था कि आप उस टीचर का नाम फॉरवर्ड करें जो कम से कम 5 साल कक्षा 10वीं को पढ़ाया हो। और मैंने तो सिर्फ 1 साल ही हुआ था मुझे ज्वाइन करे हुए, तो मैंने वो बोट मिस कर ली। मुझे अफसोस हुआ कि मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया भी कि जब नया हो तो इसमें अफसोस करने की कोई बात भी नहीं। खैर वो पीछे छूट गया। जब आगे समय आया 93-94 तो सीबीएसई से फिर लेटर आया कि 88 से जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था उसमें हम लोगों ने पूरे इंडिया से करीब 30 टीचर्स को चुन के, जो टीचर्स जो थे वो पब्लिक स्कूल से भी थे, केंद्रीय विद्यालय से भी थे, नवोदय विद्यालय से भी थे और दूसरे कई सारे स्कूल से थे, और उनको उन्होंने ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा था। उन्होंने ये सर्वे करके पाया था कि एक अजीब सा पैटर्न सामने आया था। वो पैटर्न ये था कि पब्लिक स्कूल के जो बच्चे पढ़ाए हुए होते थे इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते थे, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, और जो दूसरे विद्यालयों से गवर्नमेंट स्कूल के विद्यालयों से बच्चे आते थे वो कम्युनिकेशन में ठीक नहीं होते थे। लेकिन एक दूसरी बात, दूसरा एंगल भी था कि पब्लिक स्कूल के बच्चों को जब ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे अलग से तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये पाया गया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ग्रामर तो वो लोग काफी अच्छा कर लेते हैं लेकिन पब्लिक स्कूल के तरह बच्चों के वो कम्युनिकेट नहीं करता, लिखने में कमजोर है, बोलने में कमजोर है। तो लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव को जब ध्यान दिया गया तो ये ग्रुप ने पाया कि नहीं, हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बेसिकली कम्युनिकेशन के। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ते हुए हम इंटरैक्टिव अप्रोच में आए कि हमें लैंग्वेज की 4 स्किल्स, लिसनिंग स्किल, स्पोकन स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, इन 4 पे हमें फोकस करना। तो ये जो 30 टीचर्स का ग्रुप जो था इन्होंने 88 से लेकर 93 तक इस पे पूरा ध्यान दिया और इसके लिए मटेरियल नया तैयार किया। मटेरियल तैयार करने के लिए अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हो, मटेरियल चेंज कर रहे हो, तो निश्चित रूप से टीचर्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग ग्रुप भी एक बना उसी में से। और 93-94 में सीबीएसई ने इस टास्क को फिर ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया। जब ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया तो उनको लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है, पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स को ट्रेन करना, इस नए पैटर्न पे लाना, इंटरेक्टिव अप्रोच कैसे अडॉप्ट करना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे और रिसोर्स पर्सन चाहिए। तो मुझे मौका मिला था 11 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने का इंदौर में दिल्ली कॉलेज में। अच्छा, 94 की बात कर रहा हूँ। तो 94 में जब मैं वहां बात ट्रेनिंग ले रहा था तो एस के गंगल सर थे वहां पे, जो इस सीबीएसई के ईएलटी प्रोजेक्ट के ऑफिसर थे, मेन थे, मेन पर्सन, और साथ में थे ही साधना पराशर मैम, आज भी वो सीबीएसई में है, गंगल सर रिटायर कर गए। तो उस 11 दिन के दौरान तीसरे या चौथे दिन मेरे को गंगल सर ने अलग से अपने ऑफिस में बुलाया और मेरे से उन्होंने वहीं दिल्ली कॉलेज इंदौर में मेरे से कहा कि हमें और टीचर्स की जरूरत है जो इस ईएलटी प्रोजेक्ट में जुड़ सकें, तो क्या आप जुड़ोगे? मैंने कहा सर मैं तो जुड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे प्रिंसिपल मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं निश्चित रूप से जुड़ूंगा, क्योंकि मैं बिना प्रिंसिपल के परमिशन के मैं आपको हाँ नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम आपके प्रिंसिपल से भी बात कर लेंगे। तो मैं जब वापस आया कोरबा तो माय प्रिंसिपल वाज वेरी हैप्पी बिकॉज बाय दैट टाइम आई थिंक गंगल सर हैड स्पोकन टू डॉक्टर बीकम सिंह एंड ही टोल्ड मी दैट यू शुड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स। तो हमें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड तो नहीं भेजा गया था लेकिन हैदराबाद भेजा गया था इस ट्रेनिंग के लिए। तो हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टाफ था और प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से रिसोर्स पर्सन आए थे हमें वहां ट्रेन करने के लिए, जो नेक्स्ट 30 टीचर्स का ग्रुप था। तो वहां से मैं फिर सीबीएसई के साथ जुड़ा और काफी सारी वर्कशॉप्स मैंने इंग्लिश टीचर्स के लिए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, और दूसरे पब्लिक स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, इन सब के लिए मध्य प्रदेश में, उस वक्त जब छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के टीचर्स के लिए मैंने ये वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट, तो वो सब जो बैकग्राउंड था मेरे ख्याल से उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने मुझे 13-14 के लिए मुझे चुना था. एंड अगेन आई एम थैंकफुल दैट ये रिकॉग्निशन मेरे को सीबीएसई की तरफ से मिली.
0: चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया. आइए आगे बढ़ते हैं, इस खुशी के मौके पर हमारे साथ ममता जी जुड़ गई हैं, तो आपके लिए गीत जो है छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको एक गीत डेडिकेट करेंगे. बहुत बहुत स्वागत है ममता जी.
3: ओम शांति.
0: ओम शांति. जी जी
3: तो भगवान की याद से और
0: जी,
3: हमारे सामने जो गुरु है उनकी उनको डेडिकेट करेंगे.
0: बिल्कुल

0: अच्छे हो हमारे करम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि
2: सही लाइन।
0: हे बस यही कामना, सतगुरु परमात्मा। ओम शांति।
1: ओम
2: बोलो जी।
1: शांति। धन्यवाद ममता जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और इस गीत के साथ मैं फिर से सुखविंदर जी को जोड़ना चाहूंगा और हमारे कुछ
2: सुखवन
1: सवाल आए। सुखवंत सॉरी, सुखवंत
2: सर,
1: सर को
2: अगर आप
1: जोड़ना
2: इजाजत
1: चाहूंगा।
2: दें तो एक मैं यहां पर मानसी देवनीकर जी का एक क्वेश्चन देख रहा
1: हाँ
2: हूं,
1: वही सब सवाल है
2: उस
1: उनका,
2: क्वेश्चन को अगर ले
1: वो
2: लिया जाए तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लिखती है कि आज के समय में जो है टेक्नोलॉजी है और टीचर्स भी अच्छे हैं, बट एज पेरेंट्स वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, सो हाउ आई बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी, बिकॉज नाउअडेज चिल्ड्रंस आर वेरी ऑलरेडी वेरी गुड क्वालिटी, हैविंग क्वालिटीज,
2: ऑलराउंड पर्सनालिटी रहती है जी।
1: ऑलराउंड क्वालिटीज।
2: मानसी जी, मैं इसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा। मैं याद करता हूं कि जब एक वक्त था जब हम लोग टीवी ऑन करते थे तो एक फिक्स टाइम में कुछ कुछ चीजें आती थी। एज अ टीचर व्हेन आई वाज इन डीपीएस कोरबा, मुझे याद है कि शाम 8:30 बजे मैं 8:40 मिनट में न्यूज आती थी, 8:40 मिनट से लेकर 9 बजे तक, और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता था और 9:05 मिनट से कोई सीरियल आता था। तो मैं क्योंकि बैचलर होता था तो मैं उन 40 मिनट में या आधे घंटे में मैं अपना रात का जो खाना होता था, दो तीन रोटियां, कुछ भुजिया और कुछ साथ में बना के दाल वगैरह कुछ रख के खा लेते थे टेबल पे और सीरियल देखते थे। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको याद करना चाहूंगा कि हम लोगों को, आपको याद होगा सर, वेंसडे और फ्राइडे को शायद चित्रहार आता था दूरदर्शन, तो हर कोई चित्रहार देखता था उस वक्त। और बड़े बड़े
1: बिल्कुल
2: शहरों
1: बिल्कुल
2: में उसी वक्त चोरियां भी होती थी बहुत सारी, क्योंकि चोर भी जानते थे कि सारे घर के मेंबर ड्राइंग रूम में बैठे होंगे और वो अपना काम कर जाते थे, हम लोग इतना एनग्रॉस्ड होते थे। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमारे पास में सारी चीजें 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। जब भी हम चाहें न्यूज लगाएं, न्यूज आ रही होती है, कोई भी चैनल हम देखना चाहें उस वक्त वो आ रहा होता है, सीरियल्स हर वक्त आते हैं, हर एक चैनल आता है। अब हमें अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, वी हैव टू नॉट सकम टू द थिंग्स अराउंड अस, बट वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल देम। हमें अपना टाइम डिसाइड करना
1: बिल्कुल
2: है कि हमें, ठीक है, कुछ पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं कहते हैं कि सर मैंने बच्चे का टीवी बंद कर दिया है, मैं टीवी नहीं देखने देता, मैंने उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया है, हम मोबाइल नहीं देते। लेकिन सर दैट इज नॉट द राइट थिंग, बच्चा अपने आप को खोया हुआ पाएगा। जब क्लास में बच्चे बहुत सारी कुछ बातें करेंगे और उसको पता ही नहीं होगा उन चीजों का, तो ही विल नॉट डेवलप इन टू उस सर्कमस्टेंसेस, मतलब प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, हम उसकी ग्रोथ को इम्पीड कर रहे
1: बिल्कुल
2: हैं। तो राइट वे ये है मानसी जी कि आप बच्चे को समझाएं, अपने आप को भी समझाएं कि मुझे जो चाहिए, अगर आपके बच्चे को कुछ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ठीक है, उसको एक समय निर्धारित कर दीजिए कि मैं इस समय से इस समय तक मैं देखूंगा। अब जैसे मैं सुबह उठता हूं तो मैं मोबाइल, अनलेस अनटिल देयर इज अ फोन कॉल, आई डोंट टच इट टिल आई रीच द स्कूल ऑफिस। स्कूल ऑफिस आने के बाद में जब सारा कुछ सेटल हो जाता है, एट दैट टाइम आई ओपन माई व्हाट्सएप टू सी इफ देर आर एनी मैसेजेस फ्रॉम सर्टेन इंपॉर्टेंट एरियाज। उसके अलावा अगर मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेजेस हैं तो मैं उनको ओपन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है। उस तरह से वी हैव टू सेट अवर प्रायोरिटीज। बच्चे को सीरियल अच्छा लगता है, उसको सीरियल देखने दें, उसको कहें कि आपका कौन सा कन्वीनियंट टाइम है जिसमें आप देखना चाहोगे, और उतना उसको अलाउ कर दें, बिल्कुल बंद ना करें। तो मेरे ख्याल से दैट वे विल बी एम्पावरिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को एम्पावर करें। ये ताकत जो है कि मुझे अपना समय कैसे यूटिलाइज करना है, ये मेरे पास होना चाहिए, ना कि सरकमस्टेंसेस के पास। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से आप अपने व्यस्त समय से भी समय निकाल के आप बच्चे को गाइड कर पाएंगी। और बच्चे की अगर इस समझ से चलता है तो वो भी अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुकवंत सिंह जी। आशा करूंगा कि मनसी जी को आपकी बात सुनकर समझ आ गया होगा कि क्या करना चाहिए उन्हें। और आज के समय में जो है जैसे कि मानसी जी लिखती हैं आगे, रियली थैंक यू वेरी मच सर करके मैसेज किया है। मानसी जी समझ गई हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और ममता जी के गीत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा गीत करके मैसेज किया है। सोलंकी सर ने भी याद भेजा है और गीत के लिए बड़ी प्यार से उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, बहुत अच्छा गीत ममता जी करके मैसेज किया। अब आइए हम लोग एक और बात, जैसे कि अब फिर बच्चों की बात ही हो रही है क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो बच्चों को लेकर काफी काम किया है और टीचर्स के साथ भी आपने काफी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं और कंडक्ट भी किए हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है। तो निश्चित तौर पर आज जैसे कि हम लोग शुरू मैंने बात की कि बच्चे अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं कोप अप कर पाते, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे पास आउट होने में दिक्कत हो जाते हैं उनको, तो ऐसे बच्चे फिर कैसे वो क्या अल्टरनेटिव चीजों को ले वो अपने आप को अपग्रेड बना के रखे, क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा वो बताइए सर जी।
2: सर इसमें हमें थोड़ा सा बच्चों को यही बताना होता है मेरे ख्याल से कि अगर तुम में कोई घबराहट हो रही है, कई बार बच्चे बोलते हैं ना हम नर्वस हो रहे हैं सर, तो बच्चों को मैं ये समझाता हूँ कि बेटा कोई अच्छा काम करने से पहले, बड़ा काम करने से पहले नर्वस होना बहुत नॉर्मल बात है। तो अगर बच्चे को समझ में आ जाए कि ये नॉर्मल है, हर कोई नर्वस होता है, हम इतने साल प्रिंसिपल रह चुके हैं लेकिन अगर हमें कोई मंच पे बोलने के लिए कुछ बोलता है तो निश्चित रूप से हम भी थोड़ा सा कुछ सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे हम। तो ये नर्वसनेस अगर बच्चे के साथ हम शेयर करें कि हम भी नर्वस होते हैं बेटा, तुम कोई अलग से नहीं हो रहे हो, तो बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होता है। और हम किसी को भी, किसी बच्चे को भी किसी दूसरे के साथ में कंपेयर कभी ना करें, उसके भाई या बहन के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और हम बच्चे को कहें कि आज आप क्या, कल क्या थे, आज उससे अच्छा बनने का प्रयास करें, आज जो है और कल आने वाले कल में आज से अच्छा बनने का प्रयास करें, आप खुद से कंपीट करें ना कि किसी और से। और इसी के साथ एक और भी बात ऐड करना चाहूंगा कि हम बच्चे की प्रोग्रेस बच्चे के हिसाब से ही करें। अगर पिछले एग्जाम में उसने 40 मार्क्स लाए थे और अगले एग्जाम में वो 50 ला रहा है तो उसको 10 मार्क्स का जो इंक्रीज हुआ है उसका क्रेडिट हम उस बच्चे को जरूर दें। हम लोग तभी देखते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम्हारे इस दोस्त को 80 मार्क्स आए, तुम अभी भी 50 में पढ़े हो। मोटिवेट हम डीमोटिवेट ना करें और कोई भी बच्चा खराब करना नहीं चाहता अगर वो सही तरह से गाइडेंस में हो, तो कभी भी कोई भी बच्चा ना टीचर खराब नहीं करना चाहता, उसको बस अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्या अल्टरनेट कर सकते हैं हम लोग, बच्चों को समझना और उसको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है और ग्रेस मार्क की भी कभी कभी उसको जरूरत पड़ती है, तो हमें वो सर्कमटेंस और सिचुएशन बच्चे की कैपेसिटी को देखकर उसको बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ सके और आगे बढ़ते रहे बच्चे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो और अच्छा कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिसर्च की भी जरूरत है और टीचर या प्रिंसिपल जो स्कूल में है और जो बच्चे नहीं कर पा रहे ऐसे बच्चों को टारगेट करके उनको एक्स्ट्रा अगर मेरे ख्याल से थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोग 10th तक जो है बच्चों को पढ़ाते जाते हैं और बच्चे जो है कुछ जो बच्चे हैं वो अपने 5th से 8th 9th 10th में ही अपना करियर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस और जाना है, इस और बढ़ना है, और कुछ बच्चे जो है उनको ये फ्रेमिंग ही नहीं आता है कि भाई मुझे क्या बनना है, क्योंकि उनके घर के माहौल अलग रहते हैं, उनको तो बस पढ़ाई करके पास होना है, यही मकसद उनका रहता है सर्टिफिकेट पास का मिलना, ऐसा सोचते हैं कई बच्चे, तो क्योंकि उनके यहाँ वो चीजें शायद होती नहीं है तो वो थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो ऐसे बच्चों का सरकमटेंस देखने के बाद उन बच्चों को शायद उस तरह का कुछ ऐसी मोटिवेशन वाली टॉक्स बीच बीच में हो

0: हर एक के साथ में एक अपनी घड़ी होती है प्रोग्रेस की, वो जल्दी कर जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें बच्चों को भी नर्वस नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स को भी नर्वस नहीं होना चाहिए कि हर एक के साथ में अपना अपना समय बंधा है। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से गाइड कर लेते हैं घरों में, क्योंकि वो खुद काफी आगे होते हैं इस ओर, दे आर वेल एजुकेटेड, व्हाट आई मीन टू से, एंड दे आर एबल टू गाइड देयर चिल्ड्रन बैक एट होम इन द राइट डायरेक्शन एट अ वेरी यंग एज। ऑन द अदर हैंड, यस, देर आर फ्यू केसेस वेयर द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ हैविंग दीज काइंड ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स, तो उनके लिए तो निश्चित रूप से स्कूल के टीचर्स बढ़ जाता है ताकि उनको अच्छे से गाइड कर पाए। और हमें उन बच्चों को एक चीज बतानी होती है कि कभी भी कोई एक रास्ता मतलब आप निर्धारित करके ना चले। जैसे कई, मैं आपको बहुत अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूं कि 90%+ वाले जो बच्चे होते हैं, नर्वसनेस उनमें ज्यादा होती है। जो 70s 80s में रहते हैं, मतलब बेसिकली बड़े खुश रहते हैं वो बच्चे, जब रिजल्ट दिन भी आते हैं ना, रिजल्ट निकलता है उसके बाद जब मुलाकात होती है, तो 94% वाले का जब कंग्रेचुलेट किया जाता है कई बार, तो वो बड़ा दुखी सा दिखता है और उसको हम कहते हैं क्या हो गया बेटा, बोलता है नहीं सर, मैं 96 ला सकता था लेकिन सिर्फ 94 लाया। दूसरी तरफ 72-74% वाले जो बच्चे आते हैं रिजल्ट लेने के लिए, तो उनसे मेरी मुलाकात होती है तो वो बड़े खुश नजर आते हैं, सर वी आर हैप्पी गोइंग फॉर दिस कोर्स दैट कोर्स, एंड लाइफ में बड़ी जल्दी सेटल भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि 90+ वाले बच्चे सेटल नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन वो थोड़े से ज्यादा नर्वस रहते हैं। इस नर्वसनेस को हमें रिकॉग्नाइज करना है और उसको कम करने का प्रयास करना है, बोथ एज पेरेंट्स एंड टीचर्स। इट इज आर ड्यूटी टू टेल द चिल्ड्रन, बच्चे अगर IIT में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं होते। FMC और एम्स में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते भी हैं। हमें बच्चों को हमेशा कई सारे ऑल्टरनेटिव्स बता के रखने चाहिए, नहीं तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे का IIT में चयन नहीं हुआ और हम देखते हैं वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा ना हो, गलत कदम उठाने वाले हमेशा वही बच्चे होते हैं जिनको पीछे बता
1: बिल्कुल
0: के रखा जाता है कि बेटा तुम्हारा अगर इसमें नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ ठीक नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, ऐसे करके उनको हम कभी डीमोटिवेट ना करें, यही मेरा कहना है।
1: एक और सवाल मानसी जी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपने को, और लिखते हैं पेरेंट्स एक्सपेक्शन एंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ विद गुड रिलेशनशिप।
0: हाँ जी सर,
1: पेरेंट्स की जो अपेक्षा है और विद्यार्थियों का स्ट्रेंथ विद गुड रिलेशनशिप, ये वो पूछ रही है।
0: मैं इसमें ये कहूंगा कि एक अच्छा विद्यालय वो होता है जिसमें टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आर एसेसिबल टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर टीचर्स को पेरेंट्स ना मिल पाए, मतलब उनको हम बहुत ज्यादा ये कर दें कि मतलब आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप आके मिल सकते हैं, और
1: भी हम सोच समझ के देंगे। मेरे ख्याल कुछ ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जो करते हैं, लेकिन बड़ा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, उससे पेरेंट्स कम स्कूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं मोटिवेट करता हूँ पेरेंट्स को भी कि आपको जब कभी कुछ अगर लगता है आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत पहले जब ये व्हाट्सएप भी नहीं आया था, तब से मैंने अपने स्कूल के टीचर्स के फोन नंबर भी पेरेंट्स को अवेलेबल कराए हुए हैं, मेरा नंबर भी अवेलेबल है, और कोई भी पेरेंट जब भी चाहे वो उस फोन पे कॉल कर सकता है। इतनी लिबर्टी होने के बाद में भी सर, कोई ऐसा नहीं होता कि हम दिन भर फोन ही अटेंड कर रहे हैं, या मेरे टीचर्स आके मेरे को बताएं कि सर आज तो 20 पेरेंट्स ने फोन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ गिने चुने ही पेरेंट्स फोन करेंगे और जो जिनको जरूरत होती है वही करते हैं, और बिल्कुल
0: इससे एक
1: सर,
0: रिलेशनशिप अच्छा बनता है।
1: मेरे चैम्बर में संजोग से दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा है जो ऑफिस की

0: से आता है। निश्चित रूप से कोई पेरेंट्स या विजिटर जब आते हैं तो वो उस दरवाजे से आते हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ताकि वन टू वन मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूं। दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा जो मेरा है वो स्कूल एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ खुलता है, और उस रास्ते से मैंने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ये कहा हुआ है कि आप मेरे बाहर दरवाजे के आके आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप दरवाजा खोलें और निश्चित रूप से अंदर आ जाएं। अगर मेरे पास में कोई पेरेंट बैठे हो, कोई बैठे हो, विजिटर बैठे हो, मैं हो सकता है आपको रोक दूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप बाहर वेट नहीं करेंगे, यू जस्ट कम इनसाइड और अपनी समस्या जो है आप मेरे को बताएं, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा। चाहे क्योंकि टीचर अपना काम छोड़ के आ रहा है, बच्चे भी अपनी क्लास छोड़ के आ रहे हैं अगर मेरे को मिलना चाहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ यू नो सिचुएशन आई थिंक वी आर रेडिली एसेसिबल टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स, एंड टीचर्स शुड बी एसेसिबल टू द पेरेंट्स ऑल्सो। सो दैट वे पेरेंट्स को भी खराब ये नहीं लगेगा कि नहीं नहीं मुझे इस टीचर से मिलने के लिए या बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अगर हम मैनेज अच्छा से कर लें तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और पेरेंट्स को बच्चे को
1: देखिए,
0: जब पता चलता है कि माई पेरेंट्स कैन टॉक टू माई टीचर एट एनी टाइम और ए हेल्दी रिलेशन। मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ जब ओपन डे होता है कि पेरेंट्स जब आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पेरेंट को टीचर बच्चे की शिकायत ही करें, अच्छी बातें भी बताएं।
1: अच्छी
0: और
1: बात ही
0: वैसे
1: बता
0: पेरेंट्स को
1: सकते
0: मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप मेरे टीचर से जब मिलें खाली कंप्लेन मत करें, उनके अच्छे पॉइंट्स भी बताएं। और मैं एक स्लोगन स्कूल के कैंपस में मैं लगा के हमेशा रखता हूँ कि जो भी विजिटर आए, पेरेंट्स आए, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे विद्यालय की कोई चीज अच्छी लगती है तो आप बाहर जाके सबको बताएं, और अगर कोई कमी नजर आ रही है तो
1: बिल्कुल
0: हमें बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मानसी जी और नीता नायक जी लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें, और गिव सम सजेशन प्लीज सर करके बोला है, तो बहुत सारे सजेशन आपको मिल गए हैं। नीता जी लिखते हैं, ऐसा ही प्रिंसिपल होना चाहिए ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को मिलने में आसानी हो और उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी से रिजॉल्व हो सके। तो चलिए सुकुंद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, और निश्चित तौर पे जो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स अगर सुनेंगे आपको ये एपिसोड फिर से, तो उन्हें काफी कुछ बातें क्लियर होगी और विद्यार्थी का जीवन बेहतर होने के लिए वो निश्चित तौर पे काम करेंगे जिस तरह से आपने बताया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत
1: एंड
0: धन्यवाद सर,
1: मंगला
0: थैंक
1: जी,
0: यू,
1: मैं चाहूंगा जाते जाते दो लाइनें आप गुनगुनाइए, उसी के साथ पूरा करेंगे जी, दो लाइनें सिर्फ गुनगुनाइए।
0: आवाज नहीं आ रही।
1: तुमसे
0: हाँ, बाय।
1: उजारा
0: आ गया, आ गया।
1: जीवन।

0: मेरा बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ममता जी। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। आशा करूंगा सुखवंत सिंह सर की बातें आपको अच्छी लगी हो, तो जरूर उसे अमल में लाएं और अपने जीवन को और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं अभी अभी दौड़ लगा कर आया हूँ और मुंह हाथ धोकर बिल्कुल तरोताजा हो गया हूँ। मीना, राजू और दीपू भी किसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। चलो चलकर देखें वो क्या खेल रहे हैं।
1: दीपू, अब तो मैं ऊंच नीच का पापड़ा खेलते खेलते थक गई हूँ।
2: हाँ मीना, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं। तब तक मैं एक नया गाना सुनाता हूँ, सुनो।
3: सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर ला ला ला ला ला ला ला ला ला, हाथ करे फिर पानी में छम छमा छम छम, क्योंकि साफ हाथ में ही है दम।
1: वाह दीपू, साबुन वाला नया गाना, मैंने इसे रेडियो पर भी सुना है।
3: हाँ मीना, था ना अच्छा गाना।
4: दीपू, गाना तो अच्छा था पर तुम बीच की एक लाइन भूल गए।
3: भूल गया? कौन सी लाइन राजू?
4: मैं बताता हूँ, लो सुनो। सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर हाथ पे नाचे साबुन रंगीला, हाथ करे फिर पानी में छम छम छम छम, क्योंकि साफ हाथ में ही है दम।
2: ओहो, साबुन से हाथ धोने वाली लाइन तो मैं भूल ही गया था।
1: अरे दीपू, तुम जब भी कुछ भूल जाते हो तो अपने नाखून क्यों चबाते हो? और अब फिर से नाखून चबा रहे हो?
5: नाखून चबा रहे हो, मेल खा रहे हो।
2: मीना देखना, कल मैं एक भी लाइन नहीं भूलूंगा।
4: मुझे तो लगता है तुम कल भी भूल जाओगे।
3: मैंने कहा ना राजू, मैं कुछ नहीं भूलूंगा।
4: भूल जाओगे?
3: नहीं भूलूंगा।
4: चलो ठीक है, अगर कल तुमने ये गाना बिना कोई लाइन भूले सुना दिया तो मेरे सारे कंचे तुम्हारे।
1: राजू, बहन जी कहती है शर्त लगाना बुरी आदत होती है।
4: मैं शर्त थोड़े ही लगा रहा हूँ, मैं तो बस दीपू को इनाम दूंगा अगर वो कल एक भी लाइन नहीं भूला तो। क्यों दीपू, ठीक है ना?
3: मुझे कोई इनाम विनाम नहीं चाहिए राजू, कल मैं तुझे पूरा गाना सुनाऊंगा बस।
2: राजू, अब मुझे भागना पड़ेगा।
4: क्या हुआ दीपू? अरे दीपू,
1: दीपू अचानक अपना पेट पकड़ के भाग क्यों गया राजू?
4: पता है मीना, दीपू का पेट एकदम से खराब हो जाता है और फिर वो ऐसे ही भाग जाता है शौच करने।
1: कल उससे मिलके पूछना पड़ेगा कि अचानक उसे हो क्या जाता है।
0: लेकिन जब अगली शाम को मीना और राजू दीपू के घर पहुँचे तो उन्हें कुछ और ही पता चला।
6: नमस्ते चाची।
7: अरे राजू, मीना खुश रहो बच्चों।
1: चाची, दीपू कहाँ है?
7: वो तो कल शाम से ही बीमार है, उसके पेट में दर्द है।
1: ओह, लेकिन चाची दीपू तो पिछले हफ्ते भी बीमार पड़ गया था, है ना?
7: अब क्या बताऊँ मीना, मुझे तो उसकी सेहत को लेकर चिंता सताई जा रही है। मीना, राजू, मेरा एक काम करोगे?
4: जी चाची, कहिए।
7: तुम दोनों जरा डॉक्टर बाबू को बुला लाओगे?
1: जी चाची, अभी बुला कर लाते हैं। चलो राजू।
0: जल्द ही मीना और राजू डॉक्टर बाबू को लेके दीपू के घर पहुँचे।
2: नमस्ते डॉक्टर बाबू।
8: खुश रहो दीपू, अब तबीयत कैसी है?
2: अभी भी पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर बाबू।
8: ये बताओ तुमने खाने में क्या क्या खाया?
7: डॉक्टर बाबू, ये तो घर में पकाया हुआ ताज़ा खाना ही खाता है।
8: दीपू, भूख लगी है? कुछ हल्का फुल्का खाओगे?
2: बाद में, अभी तो मुझे शौचालय जाना है।
0: और जब दीपू शौचालय से बाहर निकला तो डॉक्टर बाबू, मीना और राजू तीनों ने देखा कि उसने पानी से अपने हाथ तो धोए लेकिन साबुन का इस्तेमाल नहीं किया।
8: दीपू, बहुत जल्दी धो लिए तुमने अपने हाथ।
2: जी वो
8: भाई, मैं तो अपने हाथ धोने से पहले उन्हें अच्छी तरह रगड़ता हूँ, साबुन से झाग बना के, आगे पीछे, उंगलियों के बीच में, हथेलियों पे नाखून रगड़ के। लेकिन दीपू, तुमने साबुन से हाथ क्यों नहीं धोए?
2: मैंने पानी से हाथ धो तो लिए।
8: नहीं दीपू, शौच के बाद सिर्फ पानी से हाथ धोना काफी नहीं है, साबुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
2: ऐसा क्यों डॉक्टर बाबू?
8: क्योंकि शौच के बाद हाथों में कीटाणु हो सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं।
2: डॉक्टर बाबू, क्या वो कीटाणु पानी से नहीं धुलते?
8: नहीं, इसीलिए साबुन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साबुन का इस्तेमाल नहीं किया तो हाथ साफ होंगे ही नहीं। और अगर गलती से भी गंदे हाथ हमारे मुंह में चले गए तो ये कीटाणु हमारे पेट में पहुंचकर हमें बीमार कर देंगे।
4: दीपू, तुम तो अपने नाखून भी चबाते हो, है ना मीना?
9: हाँ राजू। दीपू, याद नहीं बहन जी कहती है कि नाखूनों में जमे मैल में कीटाणु होते हैं, और जब तुम नाखून चबाते हो तो वही कीटाणु तुम्हारे मुंह में चले जाते हैं।
8: ओह, तो ये बात है मीना, अब पूरी बात समझ में आई। देखो दीपू, साबुन से धोए बिना गंदे हाथ मुंह में डालोगे तो बीमार तो पड़ोगे ही।
2: डॉक्टर बाबू, मैं अब हमेशा याद रखूंगा कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है।
8: ये हुई ना बात दीपू। पता है, इसे याद रखने के लिए मेरे पास एक गाना भी है, सुनोगे?
2: सुनाइए ना डॉक्टर बाबू।
8: सबसे पहले होता है हाथ गीला,
3: फिर हाथ में नाचे साबुन रंगीला, हाथ करे फिर पानी में छमछमा छमछम, क्योंकि साफ हाथ में ही है दम।
1: अरे वाह दीपू, आज तो तुम हाथ धोने वाली लाइन भूले ही नहीं।
2: मीना, अब मुझे सब याद रहेगा, सिर्फ गाना ही नहीं सचमुच साबुन से हाथ धोना भी। देखा राजू, इस बार कोई भी लाइन नहीं भूला।
4: अब तो मानना पड़ेगा दीपू, इस बार तो तुमने पूरा गाना गाया बिना कोई लाइन भूले।
7: दीपू बेटा, डॉक्टर बाबू और टीचर बहन जी की बात हमेशा याद रखना, अब साबुन से हाथ धोना कभी मत भूलना।
2: कभी नहीं भूलूंगा माँ। राजू, अब देखना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम साथ में फिर से कंचे खेलेंगे।
4: हाँ हाँ दीपू, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे।
5: ठीक हो जाओगे, साबुन से कीटाणु भगाओगे।
0: तो सुना दोस्तों, शौच के बाद सिर्फ पानी से हाथ धोना ही काफी नहीं होता है, साबुन सचमुच कीटाणु दूर रखने के लिए बहुत जरूरी है। असली सफाई तो साबुन से धुले खुशबूदार हाथों में ही मिलती है ना? चलो अब देखते हैं मीना और मिट्टू क्या कर रहे हैं।
1: जब भी निकलो शौच के बाद, लो पानी और साबुन,
5: रगड़ रगड़ के धो लो हाथ, सफाई है अच्छा गुण।
0: क्यों दोस्तों, बढ़िया कविता थी ना? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अब समय है एक बढ़िया गीत सुनने का, चलें।

0: सच में बहुत मजेदार गीत था। अरे दोस्तों, आज बहन जी क्लास में कौन सा खेल खिला रही हैं? चलो हम भी चलकर देखें।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम्हें नए शब्द बनाने हैं उस शब्द के हर अक्षर से। ठीक है?
2: जी जी।
1: तो आज का शब्द है जीवन।
3: बहन जी, मैं पहला शब्द बताता हूँ। जीवन का पहला अक्षर है ज, और ज से होता है जामुन।
1: शाबाश कृष्णा, ज से जामुन, एक खट्टा मीठा फल जो सबको पसंद है ना?
2: जी बहन जी।
1: अब अगला शब्द कौन बताएगा?
4: बहन जी, जीवन का अगला अक्षर है व, और व से होता है विमान।
1: ठीक कहा मीना, विमान, जिस पर यात्री एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकते हैं। और हमारी वायु सेना भी हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ाकू विमानों का उपयोग करती है। अगला शब्द कौन बताएगा?
5: मैं बताती हूँ बहन जी। जीवन का आखिरी अक्षर है न, और न से होता है नीम।
1: शाबाश रोशनी, न से नीम, एक ऐसा पेड़ जो हमारे कई काम आता है। इस पेड़ से कई तरह की औषधियाँ बनती हैं।
6: नीम से हमें दातून भी मिलता है ना बहन जी?
1: सही कहा सोमा, नीम की टहनी को हम दातून की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, आया ना मजा?
2: जी बहन जी।
0: दोस्तों, मजा तो हमें भी काफी आया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, 9वां पाठ, आधा और चौथाई, पृष्ठ 94। मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली दोस्त थे। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई।
2: इसे मैं लूंगा। नहीं, इसे मैं लूंगी, मोटू ने कहा।
1: जब वो दोनों लड़ रहे थे तभी वहां टीटू बंदर आया।
2: अरे लड़ क्यों रहे हो, क्या समस्या है,
1: उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा,
3: हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें।
1: तब टीटू ने कहा,
2: अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा।
1: चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा।
3: हे, ये बराबर नहीं है, बायां भाग ज्यादा बड़ा है,
1: मिंटू और मोटू ने कहा।
2: ओह कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा,
1: कहकर टीटू ने बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। टीटू बोला,
2: अब देखो ये बराबर है।
3: अरे अब दायां भाग ज्यादा बड़ा है,
1: बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा।
2: मुझे माफ करना,
1: ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा,
2: ये मेरे काम का मेहनताना है।
1: टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। इस पृष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में टीटू को रोटी के दो छोटे और बड़े हिस्सों के साथ दिखाया गया है और उसके साथ दो बिल्लियां खड़ी हैं, और दूसरे चित्र में टीटू को रोटी के छोटे और बड़े टुकड़ों के साथ दिखाया गया है और साथ ही दो बिल्लियां खड़ी हुई हैं। पृष्ठ 95, आधा आधा। अगर बिल्लियां तुमसे कहें कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम उसे कैसे बांटोगे? यहां पर चपाती का एक चित्र दिखाया गया है। अगर तुम टीटू की तरह चालाकी ना करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा। यहां पर एक चित्र में दो बिल्लियों को रोटी के दो बराबर हिस्सों के साथ दिखाया गया है। आधे का आधा। अगर दो बिल्लियां और आ जाएं और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? यहां पर एक चित्र में चार बिल्लियों के साथ एक लड़की का चित्र है। दो बिल्लियों के मुंह में रोटी के दो चौथाई भाग हैं और दो चौथाई भाग लड़के के हाथ में दिखाए गए हैं। एक बिल्ली ने कहा,
4: म्याऊ म्याऊ, हाँ हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया, तुम सही बंटवारा करती हो।
1: कई टुकड़ों के आधे। रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। यहां पर चॉकलेट का एक चित्र है जिसके 6 बराबर हिस्से दिखाए गए हैं। उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिला। पृष्ठ 96, चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं, रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? रिक्त स्थान। यहां पर रानी के चेहरे का चित्र है। रानी कहती है,
4: हाँ आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितने की पूरी चॉकलेट।
1: आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियां। एक पन्ना लो, उसे दो बराबर तिकोनों में काटो ताकि हरेक तिकोन आधे पन्ने के बराबर हो। दोनों तिकोनों को अलग अलग रंगों से भर दो। अब इन तिकोनों से अलग अलग आकृतियां बनाओ। यहां एक ऐसी आकृति दिखाई गई है। यहां पर दो तिकोनों की आकृतियों के चित्र हैं। अब तुम यहां पर अपनी आकृतियां बनाओ। आधा करने के बहुत से तरीके। यहां पर एक आयत को जिगजैग तरीके से दो भागों में बराबर बांटकर दिखाया गया है। साथ ही एक बच्चे के चेहरे का चित्र है। बच्चा कहता है,
2: मैंने एक आयत बनाई और उसे दो बराबर भागों में इस तरह बांटा। हर भाग आधा है। हम इसे इस तरह लिखते हैं, 1/2। इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग। तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर हैं या नहीं। 1 को 2 के ऊपर रखकर देखो।
1: पृष्ठ 97। तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग कर सकते हो। 5 अलग अलग तरीके से यहां बनाकर दिखाओ। यहां पर 5 आयत हैं। इन 5ों को तुम अलग अलग तरह से बराबर बराबर भागों में बांट कर दिखाओ। क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं या नहीं। 1/4 करने के कई तरीके। यहां पर एक आयत का चित्र है जिसे बराबर बराबर 4 त्रिभुजों में बांटा गया है। बच्चा कहता है, मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूं। हर एक हिस्सा 1/4 है और मैं इसे लिख सकता हूं 1/4। इसका मतलब 4 में से 1 भाग।
2: एक आयत को तुम कितने अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांट सकते हो। 5 अलग अलग तरीके यहां बनाकर दिखाओ। यहां पर 5 आयतों के चित्र बने हैं। इन 5ों आयतों को तुम बराबर बराबर 4 भागों में बांट कर दिखाओ। क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं?
1: पृष्ठ 98। केक को काटो। रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी मां और पिताजी के लिए। यहां पर एक चित्र बना है जिसमें रजनी को केक काटते हुए दिखाया गया है और रजनी के सामने उसके मम्मी पापा और भाई खड़े हैं। हर हिस्से में अलग अलग रंग भरो। हर एक को कितना मिला? रिक्त स्थान। पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिलेगा। 4 भागों में से रजनी को रिक्त स्थान भाग मिलेंगे जो कि केक का आधा हिस्सा होगा। इसलिए वो इसको लिखेगी 1/4 या 1/2। पिताजी के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का 1/2 भाग था। यह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। राजू के हिस्से में रंग भरो। रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला? उनके हिस्से में रंग भरो। कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। इस पृष्ठ पर दाहिनी तरफ 4 गोले बने हैं। प्रत्येक गोलों को 4 बराबर भागों में बांटा हुआ दिखाया गया है। पृष्ठ 99। लालची कुंदू। कुंदू एक लालची आदमी है। वो जब भी बाजार जाता है वो चीजें तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है पर ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपए में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वो बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। कद्दू बेचने वाली बोली, इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपए है। पूरे कद्दू की कीमत होगी रिक्त स्थान रुपए। कुंदू ने कहा,
5: अरे 10 रुपए में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए।
1: कद्दू बेचने वाली बोली,
6: फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएं, वो आपको 1/2 कद्दू 10 रुपए में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूं।
1: यहां पर एक कद्दू बेचने वाली का चित्र है और उसके साथ कुंदू का चित्र भी बना है। कद्दू बेचने वाली के पास कुछ कद्दू रखे हैं। कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कुंदू ने कहा,
7: इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपए में दोगे?
1: दूसरा कद्दू बेचने वाला बोला,
8: आधा।
1: पूरे कद्दू की कीमत होगी रिक्त स्थान रुपए, पृष्ठ 100। कुंदू। कुंदू बोला,
2: भैया इसी कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा।
1: दूसरा कद्दू बेचने वाला बोला,
2: भागो यहां से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचता है, वो तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपए में दे देगा।
1: लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा,
2: क्या तुम मुझे ये पूरा कद्दू 10 रुपए में दोगे?
1: तीसरा कद्दू बेचने वाला बोला,
2: तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते, वहां से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में।
1: कुंदू बहुत खुश हुआ, वो उस घर की छत पर चढ़ गया। और फिर यहां पर एक चित्र बना है जिसमें कुंदू को छत से गिरते हुए दिखाया गया है और साथ ही कद्दू भी दिखाया गया है। यहां पर एक भाव सूची का चित्र है जिसके दो भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है वस्तु और दूसरे भाग में लिखा है भाव रुपए में प्रति किलो। आइए अब हम सूची को पढ़ते हैं। टमाटर 8 रुपए प्रति किलो, आलू 12 रुपए प्रति किलो, प्याज 10 रुपए प्रति किलो, गाजर 16 रुपए प्रति किलो और कद्दू 4 रुपए प्रति किलो। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। भाव सूची का उपयोग। क, 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? रिक्त स्थान। ख, किसकी कीमत ज्यादा होगी, 1/2 किलो प्याज की या 1/4 किलो गाजर की? रिक्त स्थान। ग, 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी? रिक्त स्थान। घ, कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है, उसके पास केवल 20 रुपए हैं, क्या वो सूची में लिखी सभी चीजें खरीद सकती है? ळ, इस भाव सूची को देखकर तुम खुद 2 प्रश्न और बनाओ। प्रश्न 1, रिक्त स्थान, और प्रश्न 2, रिक्त स्थान। यहां पर कीर्ति का चित्र है जिसके हाथों में भाव सूची और नोटों को दिखाया गया है। पृष्ठ 101। अभ्यास का समय। क, पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है, हर एक आकृति के नीचे लिखो। यहां पर 2 आकृतियां बनी हैं। पहली आकृति के 2 भाग हैं, इसके 1 भाग को रंगा हुआ दिखाया गया है और दूसरी आकृति के 4 भाग हैं, इन चारों में से 2 भागों को रंगा हुआ दिखाया गया है। अब तुम इन्हें देखकर अपने उत्तर लिखो। पहली आकृति, रिक्त स्थान। दूसरी आकृति, रिक्त स्थान। ख, हर आकृति के उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। यहां पर 6 आकृतियों के चित्र हैं। पहली आकृति अष्टभुज, जिसके 4 बराबर भाग हैं और नीचे लिखा है 1/2। दूसरी आकृति गोले की है जिसके 1/4 भाग को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है 3/4। तीसरी आकृति 6 भुजाओं वाली है जिसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उसके नीचे लिखा है 3/4। चौथी आकृति एक आयत की है जिसे 4 बराबर त्रिभुजों में बटा दिखाया गया है और नीचे लिखा है 1/4। पांचवी आकृति एक और आयत की है जिसके 6 बराबर भाग हैं और उसके नीचे लिखा है 1/2। और आखिरी और 6ठी आकृति भी एक आयत की है जो खाली है और उसके नीचे लिखा है 3/4। अब आपको इन 6 आकृतियों को देखकर उतने भाग को भरना है जितना कि उसके नीचे लिखा है। ग, आधा काटें। एक रेखा खींचकर यहां दी हुई आकृतियों को आधा करो। यहां पर 3 चित्र बने हैं। पहले चित्र में एक पक्षी का चित्र है, दूसरे चित्र में एक सितारा बना है और तीसरे में कद्दू है। अब तुम इन 3 आकृतियों को एक रेखा के माध्यम से 2 भागों में बांटो। पृष्ठ 102। घ, आधी आकृतियों में रंग भरो जैसा कि यहां दिखाया गया है। यहां पर तीन चित्र हैं। पहले चित्र में 8 आयत दिखाए गए हैं, इनमें से 4 आयतों को रंगा गया है। दूसरा चित्र गोलों का है, यहां पर 18 गोले दिखाए गए हैं। और तीसरा चित्र फूलों का है, इसमें 10 फूल दिखाए गए हैं। दी हुई आकृतियों में 1/4 भाग रंगिए। यहां पर 3 आकृतियां दी गई हैं। पहले चित्र में 4 जिगजैग आकृतियां बनी हैं। दूसरा चित्र बूंदों का है, यहां पर 8 बूंदें दिखाई गई हैं। और तीसरा चित्र घन का है, यहां पर 4 घन दिखाए गए हैं। च, रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा कि दिखाया गया है। यहां पर एक तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में 4 अष्टभुज दिखाए गए हैं। प्रत्येक अष्टभुज को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। पहले अष्टभुज के 2 भाग रंगे हुए दिखाए गए हैं, दूसरे अष्टभुज का 1 भाग, तीसरे अष्टभुज के 4 भाग और चौथे अष्टभुज के 3 भाग रंगे हुए दिखाए गए हैं। तालिका के दूसरे हिस्से में सबसे ऊपर चौथाई लिखा है, उसके नीचे आधा, उसके नीचे 3/4 और सबसे आखिर में पूरा लिखा है। तालिका के अंतिम भाग में सबसे ऊपर 3/4 अंकित है, उसके नीचे 4/4, उसके बाद 1/2 और सबसे नीचे 1/4 लिखा हुआ है। इसमें से 1 को करके दिखाया गया है, जैसे दाईं तरफ की सबसे ऊपर वाली आकृति जिसके 4 भागों में से 2 भाग रंगे हुए हैं, उसे हमने एक रेखा द्वारा आधे से मिलाया और फिर हमने एक रेखा द्वारा 1/2 से मिलाया। अब बाकी 3 चित्रों को ऐसे ही मिलाओ। पृष्ठ 103, 6, दूसरे आधे हिस्से को बनाएं। यहां 1/2 चित्र दिया गया है। क्या तुम बचे हुए आधे हिस्से को बनाकर चित्र को पूरा कर सकते हो? यहां पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र आधे फूल का है, दूसरा चित्र आधी तितली का है और तीसरा चित्र आधी मकड़ी का है जिसकी 4 टांगें दिखाई दे रही हैं। ज, ये चित्र का चौथाई भाग है, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? इसको पूरा करने के लिए तुम्हें कितने चौथाइयों की जरूरत पड़ेगी? रिक्त स्थान। यहां पर एक चित्र में सूरज के 1/4 भाग को दिखाया गया है, 1 मीटर का आधा और चौथाई। अपने मीटर स्केल के सहारे 1 मीटर लंबी रस्सी काटो। इस पर 1/2 मीटर, 1/4 मीटर और 3/4 मीटर पर निशान लगाओ। अपनी रस्सी की सहायता से जमीन पर 1/2 मीटर लंबी रेखा खींचो। यह रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी है? रिक्त स्थान। याद रखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या cm। यहां पर एक लड़की को रस्सी की मदद से मीटर स्केल को नापते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 104। अब बताओ, अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो। 1/2 मीटर बराबर रिक्त स्थान सेंटीमीटर यानी cm। 1/4 मीटर बराबर रिक्त स्थान सेंटीमीटर यानी cm और 3/4 मीटर बराबर रिक्त स्थान सेंटीमीटर यानी cm। तुम देख सकते हो कि जब हम 1/2 और 1/4 जोड़ते हैं तो हमें 3/4 मिलता है। दूध को बांटो। ये बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। ये दूध बाकी 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि हर बोतल में 1/4 लीटर दूध है। हर बोतल में रंग भरकर दूध का स्तर दिखाओ। यहां पर 5 बोतलों का चित्र है। याद रखो, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? रिक्त स्थान। शान ने एक लीटर दूध दो बोतलों में इस तरह डाला कि पहली बोतल में 3/4 लीटर दूध आया और दूसरी बोतल में 1/4 दूध आया। यहां पर दो बोतलों का चित्र बना है। इनमें तुम एक को 3/4 लीटर दूध से और दूसरी बोतल को 1/4 लीटर दूध से भरो। दोनों बोतलों में जहां तक दूध आया उतने हिस्से में रंग भरो। हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? पृष्ठ 105। बराबर भाग। यहां पर 10 बाटों का चित्र है जिन पर लिखा है 1 किलो, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम। खाली पलड़े में सही वजन लिखकर दोनों पलड़ों को बराबर करो। कितने तरीकों से तुम इसे बराबर कर सकते हो? क: खाली पलड़े बट्टे बनाओ और बराबर करो। याद रखो, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। यहां पर एक तराजू का चित्र है जिसके दो पलड़े हैं। एक पलड़े पर 2 किलो का बाट रखा है। ख: कितने अलग अलग तरीकों से तुम 3/4 किलो भार की बराबरी कर सकते हो? यहां पर एक तराजू का चित्र है जिसके दो पलड़े हैं, जिसके एक पलड़े में 3/4 किलो बाट रखा है। अब तुम इन खाली स्थानों को भरो। 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान और 3 रिक्त स्थान। पृष्ठ 106। ये गलत क्यों है? कर्णन ने कुछ भागों में रंग भर दिया, लेकिन उसकी दोस्त मिनी कहती है कि ये गलत है। क्या तुम बता सकते हो कि ये गलत क्यों है? यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र आयत का है जिसके 3 भाग बराबर हैं और 4th भाग कुछ बड़ा है और ये रंगा हुआ है। त्रिभुज का एक छोटा हिस्सा रंगा हुआ दिखाया गया है। आयत के नीचे बॉक्स में गलत का निशान है और त्रिभुज के नीचे बॉक्स में 1/2 लिखकर उसे काटा गया है। अभ्यास का समय। अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो। यहां 60 आम हैं। 1/2 पके हुए हैं। कितने आम पके हुए हैं? यहां 32 बच्चे हैं। 1/2 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 20 तारे हैं। उनमें से 1/4 लाल हैं। कितने तारे लाल हैं? कितने तारे लाल नहीं हैं? रवि को एक पेंसिल खरीदनी है। इसकी कीमत 2 रुपए है। उसने 1 रुपए का सिक्का दिया, 1/2 रुपए का सिक्का दिया और 1/4 रुपए का सिक्का दिया। क्या ये काफी था? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे एक बच्चे को पेंसिल से कॉपी पर कुछ लिखते हुए दिखाया गया है और यहां पर एक दूसरे चित्र में कुछ सिक्के दिखाए गए हैं जिनमें 25 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के और 2 रुपए के 3 सिक्के दिखाए गए हैं। इसी के साथ 9वां पाठ आधा और चौथाई यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, जो कि होती है बहुत ही प्यारी, बहुत ही रंगीन और बहुत ही क्यूट, क्योंकि हमारे साथ हैं तीन बहुत प्यारे प्यारे बच्चे स्टूडियो में। तो एक बार आप लोग सब अपना अपना नाम और क्लास बता दीजिए। वहां से शुरू करते हैं, नील से।
2: मेरा नाम है नील, मैं थर्ड क्लास पे गया हूँ।
3: मेरा नाम है मयंक वाधवानी, मैं फोर्थ क्लास में हूँ।
4: मेरा नाम है देव।
1: कौन सी क्लास में हो आप?
4: KG1।
1: अच्छा, आप लोग कौन से गेम्स खेलते हो?
2: क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस।
4: टेनिस
1: आता है? टेनिस खेलना है?
3: हाँ। नहीं, हम लोग कई चीटिंग करके बोल रहे हैं।
1: हाँ,
4: मैं करता हूँ।
3: अच्छा, अच्छा से खेलता है।
1: छुपन छुपाई कौन खेलता है?
3: हम।
4: मैं।
1: कहाँ छुपते हो?
3: पकड़ाई।
1: अच्छा, फेवरेट जगह छुपने की कहाँ? देव कहाँ जाके छुपते हैं पहले ये बताओ।
3: बाथरूम में।
1: बाथरूम में?
4: हाँ।
3: जनरल वॉशरूम।
1: कहाँ छुपते हो?
4: टेबल के नीचे।
1: टेबल के नीचे। और आप नील कहाँ छुपते हो? है सीक्रेट जगह कौन सी है?
2: पर्दा के पीछे।
1: पर्दे के पीछे?
2: और कोई रूम खाली होगा उधर कहीं छुप जाना, वॉशरूम पे छुप जाना।
1: जल्दी पकड़ में कौन आता है?
2: जल्दी पकड़ पे देव।
1: किसको सबसे जल्दी पकड़ लेना है बताओ?
4: मैं।
1: हाँ।
3: खुद पकड़ जाता है।
1: खुद पकड़ जाता है, बाहर
4: निकल जाता है। दिया। बोलो ना, बोलो ना, क्या किया?
1: और सब...
4: बोलो ना, क्या किया?
1: और सबसे अभी सबसे लास्ट में को? अभी गाना बांट ले, पहले बात कर रहे हैं ना।
4: हाँ,
1: सबसे
4: ठीक है।
1: पहले क्वेश्चंस का आंसर देंगे फिर गाना, ठीक है? सबसे लास्ट में कौन पकड़ में आता है?
2: सबसे लास्ट में हम दोनों।
1: और क्या क्या खेलते हो गर्मी की छुट्टियों में? क्या करते हो मुझे ये बताओ।
3: हम लोग घूमने आते हैं माउंट आबू।
1: और क्या करते हो गर्मी की छुट्टियों में? डांस करते हो, गाना गाते हो, क्या करते हो?
2: वाटर पार्क पे जाते।
1: वाटर पार्क में जाते हो?
2: गर्मियों की छुट्टियों में मैं गया था वाटर पार्क।
4: मैं भी।
1: आप भी गए थे?
4: हाँ।
1: आप भी गए थे? तीनों गए थे?
4: हाँ।
2: अरे तू कैसे गया था?
4: हाँ।
2: नहीं गया था?
1: मयंक नहीं गया था?
2: हाँ दीदी।
1: हाँ।
3: मैं, ये लोग तो अलग रहते हैं, मैं तो कटनी में रहता हूँ। ये लोग तो किसी और शहर में रहते हैं, तो इनको कैसे पता?
1: हाँ, वो दूसरे वाटर पार्क गया होगा, है ना? चलो बताओ, स्कूल को मिस नहीं करते? जब छुट्टी होती है तो स्कूल की याद नहीं आती?
3: नहीं,
1: बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्त भी तो होते हैं स्कूल में, दोस्तों की याद नहीं आती?
3: नहीं।
4: जब मैंने ये तोड़ा था ना, तो इसने झोल दिया था।
1: स्कूल की याद किस किस को बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती?
3: नहीं।
1: दोस्तों को मिस नहीं करते?
3: नहीं।
1: नहीं, तो घर पे क्या करते? दिन भर तो खेल नहीं सकते, फिर क्या करोगे दिन भर?
3: हम दिन भर ही खेलते हैं।
1: दिन भर खेलते हो? घर के अंदर इतनी धूप होती है बाहर तो गर्मियों में, फिर
3: हम लोग बाहर खेलते हैं।
1: गर्मी नहीं लगती इतनी धूप में? नहीं, पसीना नहीं आता ऐसे बहुत सारा?
2: पसीना तो बहुत आता है हमारे को तो।
1: हाँ, तब भी थकते नहीं हो?
3: नहीं
2: नहीं,
1: दिन भर खेलते रहते हो? ऐसा तो नहीं है मम्मी बुलाती तो होगी कि अब घर आ जाओ?

0: बहुत हो गया।
1: नहीं, हम खाना खाने ही बस जाते।
0: बस खाना खाने जाते हो और खेलते रहते हो दिन भर।
1: रात भर खेलते ही।
0: रात भर खेलते हो?
1: क्योंकि ट्यूशन भी नहीं रहती और स्कूल भी नहीं रहती।
0: हाँ, केजी वन की ट्यूशन भी नहीं रहती होगी। नहीं देव,
1: मेरी छुट्टी लग गई।
0: छुट्टी लग गई इसलिए। लेकिन फिर नींद नहीं आती रात को?
1: नहीं।
0: अच्छा, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हो?
1: नहीं।
0: भूत वाली स्टोरीज
1: नहीं
0: है? कोई सुनाता है?
1: नहीं।
0: फिल्में देखते हो आप लोग? हॉरर वाली, भूत वाली?
2: हाँ, मैं भूतों की कहानियां देखता हूँ।
0: देखते हो?
1: मैं नहीं देखता, नहीं तो नींद नहीं आती।
0: नींद नहीं आती ना, डर लगता है ना? मुझे भी लगता है भूत वाली कहानी से तो मुझे।
1: और मुझे रोज ही भूत सपने पे दिखता है,
0: है ना?
1: फिर मैं स्वामान बोलता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ।
0: खुद को स्वामान अपना याद दिलाते ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मास्टर सर शक्तिवान हो। वेरी गुड। आपको नहीं मयंक डर लगता भूत वाली कहानियां देखते हो तो?
2: नहीं
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी तो सपने में भूत आता होगा।
2: हाँ।
0: फिर
2: कुछ नहीं होता।
0: कुछ नहीं होता
2: क्योंकि वो सब तो नकली होता है।
0: हाँ, नकली तो होता है, ये बात तो सही कही।
1: डरावने दिखते हैं।
0: हाँ, लेकिन वो देखने में कैसा डरावना सा होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मुंह होता है, एक आंख होती है, ऐसे खून लगा होता है, कितना डरावना लगता है वो।
1: हाँ,
0: तो डर नहीं लगता?
2: डर नहीं लगता।
0: नहीं,
1: ऐसे बहुत खतरनाक खाने वाली होगी तो
0: तब भी नहीं लगता? नहीं, मुझे तो लगता है भाई भूत से डर।
1: मुझे भी
0: है ना?
1: मुझे भी।
0: आपको भी लगता है? हाँ, थोड़ा लगता है कि बहुत लगता है?
1: बहुत।
0: अच्छा, अगर डर लगता है तो किसको बताते हो घर में जाके सबसे पहले?
2: किसी को नहीं।
1: किसी को भी नहीं?
0: किसी को नहीं बताते? नील, आपको तो डर लगता है तो फिर किसी को क्यों नहीं बताते?
1: मैं मम्मी को बताता।
0: मम्मी को बताते हो? तो मम्मी क्या बोलती है फिर?
1: मम्मी बोलती है कि सामान बोलो, मैं मास्टर सरस्वतीमान आत्मा हूँ, तो फिर सपने नहीं आएगा डरावने। तो मैं बोलता हूँ तो सपने हट जाते हैं।
0: हट जाते हैं? क्योंकि हम जब भगवान को याद करते हैं ना, और याद करते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो सब डर के भाग जाते हैं, सारे भूत भाग जाते हैं, है ना? वेरी गुड। आप लोग तो बहुत ब्रेव हो यार, बहुत ब्रेव हो आप लोग तो, दोनों ही। और फिर
1: मेरे को भूत पकड़ता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वो बोलता।
0: आपको पकड़ता है भूत? हाँ, कब पकड़ा आपको भूत ने? रात को पकड़ा कि सुबह पकड़ा?
1: सुबह तो कैसे पकड़ेगा, मैं रात में ट्रेन में सोया तो ट्रेन में मेरे को भूत दिखा।
0: ट्रेन में भूत दिखा?
1: हाँ,
0: फिर
1: जाला था।
0: वाइट कपड़े पहना था।
1: उसकी डरावना सी आइस थी।
0: डरावनी आइस थी। फिर क्या किया?
1: उसमें और लवेश मामा भी थे मेरे
0: यश मामा भी थे
1: और लवेश मामा की दीदी।
0: फिर क्या किया आपने भूत दिखा तो?
1: मैंने लवेश मामा को बोला भूत देखो।
0: उनको दिखा दिया भूत? उनको देख के तो भूत भाग गया होगा, है ना? उसने बोला होगा ये तो बड़े बड़े लोग हैं साथ में इसके, तो भाग जाता हूँ मैं। भागा नहीं भागा भूत?
1: बजरंग बली को बुलाओ कि लाल पली शाह को बुलाओ?
0: आपने बोला ऐसा कि बजरंग बली को बुला लूंगा मैं अभी?
1: तो बोला था तो भूल गया।
0: भूल गए, भूत भाग गया होगा। आपने बोला ना मैं बजरंग बली को बुलाऊं तो भाग गया होगा फिर। अच्छा, मम्मी से डांट पड़ती है किसी को?
1: पड़ती है।
0: पड़ती है? क्यों पड़ती है?
2: इसकी मम्मी से।
1: तूने बहुत हो गया।
0: हाँ, अब उसको थोड़ी देर दे
1: दो। अरे मुझे तो दे दो, मैंने तो किया ही नहीं हूँ।
0: अच्छा,
1: मुझे दे दे।
0: अच्छा, एक एक करके, एक एक करके।
1: अरे मैं इसके बाद तो मुझे होना।
0: अच्छा, अब नील का चांस, फिर उसके बाद वापस देव का चांस। अच्छा, उसको थोड़ी देर दे दो भाई। थोड़ी देर बाद नील भैया को दोगे? पक्का?
1: हाँ।
0: पक्का? ठीक है, चलो। हाँ, बीच पे लाएंगे। पहले रुको, पहले बताओ देव, बताओ क्यों डांट पड़ती है मम्मी से? मैं बंद कर दूंगी अभी, आपको बोलना नहीं है अभी आपको। क्यों डांट पड़ती है मम्मी से?
1: हम इधर उधर चले जाते हैं तो
0: खेलने में खेलते खेलते कहाँ चले जाते हो खेलते खेलते?
1: हम हमारी को पगड़ी देखी तो हम ये कमर कुंच बोलता है तो हम कमर कुंच घूम के आते तीन नंबर के ट्रांसपोर्ट तक जाते।
0: मतलब कहीं भी चले जाते हो बिना बताए मम्मी को तो डांट पड़ती है। और मयंक को पड़ती है डांट?
2: हाँ, इसकी मम्मी चिल्लाती है।
1: तेरी मम्मी नहीं चिल्लाती क्या?
2: नहीं।
0: क्यों नहीं। आपकी मम्मी से डांट नहीं पड़ती आपको?
1: नहीं, मार पड़ती है मगर।
0: मार पड़ती है?
1: मार पड़ती है।
2: पड़ती है।
0: लेकिन मम्मी को बता के जाना चाहिए ना जहाँ भी जाना चाहिए। ये सही बात है या नहीं पहले सब लोग बताओ, मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं? है मयंक? मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं सब जगह?
2: हाँ, मैं तो जाता हूँ।
1: मैं भी।
2: ये लोग बग्गी में, मैं तो जाता हूँ अपनी मम्मी को बता के। इन लोग की मम्मी अभी ना ब्रेड डिपार्टमेंट से भाग के आ गए तो इसकी मम्मी ने मुझे डांटा। इन लोग को थोड़ी ना डांटा।
0: तो आप नील बता के नहीं जाते मम्मी को? तो बताओ फिर नील, आप बता के क्यों नहीं जाते मम्मी को जहाँ जाते हो?
1: क्योंकि हम आ जाते हैं
0: टाइम से, आ जाते हैं कि देर करते हो?
1: मगर मम्मी बॉस नहीं देर आती। बॉस देर आएगी तो मम्मी टाइम बोलेगी तो मैं टाइमिंग देख के आ जाऊंगा।
0: अच्छा, मतलब घड़ी चाहिए आपको, घड़ी देख के टाइम देख के। तो मम्मी को बोला आपने कि मम्मी मेरे को घड़ी चाहिए ताकि मैं टाइम से आ जाऊं?
1: मैं बोला था फिर भी नहीं दिलाई।
0: फिर भी नहीं दिलाई? अच्छा, कोई बात नहीं मम्मी, हो सकता है आपको बड़े हो जाओगे आप थोड़ा तब दिलाएंगी वॉच। बड़े लोग पहनते हैं ना वॉच, है ना? आप लोग छोटे
1: छोटे नहीं?
0: नहीं,
1: मम्मी इसीलिए नहीं बनाती है क्योंकि घूम कर देता।
0: घूम कर देते हो?
1: अभी घूम नहीं करूँगा, घूम नहीं करूँगा बोल रहा हूँ फिर भी नहीं दिला रही।
0: तो आप अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे ना उनको, सब चीजें जगह पे रखोगे, बता के जाओगे तो फिर मम्मी दिलाएंगे वॉच, है ना देव? चलो, तो हम सब इस गर्मी की छुट्टियों में अपनी अपनी मम्मी को प्रॉमिस करेंगे कि हम बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, उनको बता के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पहले बोलो यस। सब लोग बोलो यस।
1: यस,
0: हम प्रॉमिस करते हैं।
1: हाँ, प्रॉमिस कर ले।
0: मयंक ने बोला ही नहीं।
2: हम प्रॉमिस करते हैं।
0: फिर से 1 2 3 यस।
1: यस,
0: हम प्रॉमिस करते हैं।
2: हम प्रॉमिस करते हैं
0: जहाँ भी जाएंगे,
2: जहाँ भी जाएंगे
0: मम्मी को बता के जाएंगे,
2: मम्मी को बता के जाएंगे
0: और टाइम से घर वापस जाएंगे,
2: टाइम से घर वापस जाएंगे।
0: ये वेरी गुड। तो अब बजाएंगे हम गाना। अच्छा, और लेते हैं इजाजत रेडियो मधुबन 107.8 FM से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।
2: बाय बाय।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म। उन्वान है चंद नसीहतें। शायर हैं डॉक्टर इकबाल। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। मिल नहीं सकती निकम्मों को जमाने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। खाक मेहनत हो सकेगी, हो न जब हाथों में जोर, तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए। खुश मिजाजी सा जमाने में कोई जादू नहीं, हर कोई तहसी कहे ऐसी तबीयत चाहिए। हंस के मिलना राम कर लेता है हर इंसान को, सबसे मीठा बोलने की तुमको आदत चाहिए। एक ही अल्लाह के बंदे हैं सब छोटे बड़े, अपने हम जिंसों से दुनिया में मोहब्बत चाहिए। है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना, आज सब कुछ करके उठो गर फरागत चाहिए। जो बुरों के पास बैठेगा बुरा हो जाएगा, नेक होने के लिए नेकों की सोहबत चाहिए। साथ वाले देखना तुमसे न बढ़ जाए कहीं, जोश ऐसा चाहिए ऐसी हमीयत चाहिए। हुक्मरां हो कोई हो, अपना हो या बेगाना हो, दी खुदा ने जिसको इज्जत उसकी इज्जत चाहिए। देख कर चलना कुचल जाए न चोटी राह में, आदमी को बेजबानों से भी उल्फत चाहिए। है इसी में भेद इज्जत का अगर समझे कोई, छोटे बच्चों को बुजुर्गों की इताअत चाहिए। इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। सब बुरा कहते हैं लड़ने को बुरी आदत है ये, साथ के लड़के जो हो उनसे रफाकत चाहिए। हो जमात में शरारत करने वाले भी अगर, दूर की उनसे फकत साहब सलामत चाहिए। बाप दादों की बड़ाई पर न इतराना कभी, सब बड़ाई अपनी मेहनत की बदौलत चाहिए। चाहते हो गर के सब छोटे बड़े इज्जत करें, शर्म आंखों में निगाहों में मुरव्वत चाहिए। बात ऊंची जात में भी कोई इतराने की है, आदमी को अपने कामों की शराफत चाहिए। गर किताबें हो गई मैली तो क्या पढ़ने का लुत्फ, काम की चीजें हैं जो उनकी हिफाजत चाहिए।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है राकेश पंडित और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश

0: स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में। आज हम एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, बचपन की निष्पक्षता में मन, बुद्धि एवं संस्कार का विकास। बचपन जीवन का वह चरण है जब बच्चों का मन निष्पक्ष और ग्रहणशील होता है। यह समय उनके कौतूहल, रचनात्मकता, सहानुभूति, करुणा, नैतिकता और मूल्यों के विकास का होता है। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे बचपन की निष्पक्षता बच्चों के मन, बुद्धि और संस्कार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु कौतूहल और जिज्ञासा, बच्चों की जन्मजात जिज्ञासा और नई चीजों को जानने की उत्सुकता। रचनात्मकता और कल्पना, बच्चों की रचनात्मक सोच और नई चीजों का निर्माण करने की क्षमता। सहानुभूति और करुणा, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने की क्षमता। नैतिकता और मूल्य, नैतिकता और मूल्यों का विकास जो सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। संस्कार, परिवार, समाज और शिक्षा के माध्यम से बच्चों में संस्कारों का विकास। विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ विशेषज्ञ और शिक्षाविद जो बच्चों के मनोविज्ञान और विकास पर अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सभी मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहानुभूति और नैतिकता को प्रोत्साहित करे। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे हम अपने बच्चों के मन, बुद्धि और संस्कार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बचपन की निष्पक्षता जो मन, बुद्धि और संस्कार से जुड़ा हुआ है। इस विषय को लेकर, इस पाठ्यक्रम को लेकर हम बातें करने वाले हैं। और पिछले कुछ एपिसोड में हमने सार्थकता पर, नवीनता पर बातें की, तो आज मन, बुद्धि और संस्कार, बच्चों का निश्चल मन को लेकर काम करेंगे। तो आइए, हमेशा की तरह अजय सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, जिनसे हम लोग इस विषय को लेकर बाल मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बाल संसार, बाल संसार।
3: बहुत आनंद में, बहुत अच्छा लग रहा है। बाल संसार एक नए आयाम को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ रहा है और बहुत ही महीन बातों को, बहुत ही सूक्ष्म बातों को आपने प्रश्न के माध्यम से उठाते भी हैं और उसके समाधान के लिए हम लोग मिलकर चर्चा करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है।
1: तो आइए आज हम लोग बचपन की निष्पक्षता और निर्मलता, मन, बुद्धि और संस्कार, इस विषय को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहला एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि बचपन की निष्पक्षता बच्चों के मन, बुद्धि और संस्कार के विकास में कैसे मदद करती हैं, इस विषय पर कुछ बातें बताइए।
3: बहुत सूक्ष्म बात को लेकर आपने आज का मुद्दा उठाया है और निश्चित तौर पर जब बच्चों को निष्पक्ष स्थिति में हम देखते हैं तो उनकी निष्पक्षता को अलग अलग तरीके से जीवन में हम अनुभव भी करते हैं। एक उदाहरण में लेता हूँ कि एक पेपर उन्होंने अपनी कॉपी में से निकाल के और इसकी उसकी बॉल बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब हमारे मन में लगता है कि बॉल का मतलब है कि जो प्लास्टिक की बॉल है या रबड़ की बॉल है, भले वो खेलने में बच्चे यूज करते हों, लेकिन वो बच्चे के पास में रबड़ या प्लास्टिक की बॉल नहीं है, तो उसने कागज़ की एक बॉल बना के दिया। अब यहाँ पर एक उसके मन में अपेक्षा है कि मुझे फीडबैक अच्छा मिले। अब हमारे साथ क्या है कि हम लोग मैच्योर हैं, परिपक्व हैं और हम तुरंत बोलने वाले हैं कि अभी ये भी कोई बॉल है क्या, और ऐसे बॉल बनती है क्या? मतलब अगर रबर या प्लास्टिक की बच्चा बॉल नहीं बना सकता, लेकिन वो उस पेपर से बॉल के समकक्ष या समतुल्य या उसको एक शेप देने का प्रयास कर रहा है कि पेपर हमारा चौकोर है, चौकोर को वो गोल करता है या कुछ विधि से और नहीं हो पाता है, तो लास्ट में वो दोनों हाथों में उसको मूव करते हुए छोटी सी बॉल बना के देता है। तो हम उस स्थिति में उसको एक निराशाजनक जवाब देने की स्थिति में रहते हैं और लगता है कि अरे भाई, ये थोड़ी ना तुम्हारी, ये कोई सोच है क्या? ऐसा होना चाहिए कि एक तो तुमने पेपर कॉपी का निकाल के उसको वेस्ट कर दिया, ऊपर से ये छोटी सी बॉल, ये बॉल ले गया, इसको बॉल स्वीकार नहीं कर, जाओ तुम्हें एक अच्छी बॉल बना के लाओ। अब इस पूरी परिस्थिति का अवलोकन आप करें तो आप पाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण केवल बॉल को लेके बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए उसने एक बोट बनाया, तो क्या उस बोट को हम स्वीकार कर लेंगे? अब वो नाव अगर बनाता है पेपर की, तो आप तैयार हैं इस बात के लिए कि एक बड़े से पात्र में आप जल लेंगे और बहुत खुश होंगे कि चलो पूरे घर के परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, टेबल पर इस पात्र को रखते हैं, इस नाव को हम चलाने का प्रयास करते हैं। अब वहाँ भी हमारा जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, हम उसको तुरंत बहुत बड़ा मान के चल रहे हैं कि नहीं, नाव का मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक जैसी नाव होती है वैसी होना चाहिए, वैसा ही तुमको बनाना चाहिए, और तुम बना नहीं पाते हो, उसके बाद भी हमारा टाइम तुम वेस्ट करते हो, दिखाते हो। कुल मिला के ये सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहता है? फिर मैं एक प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूँ। एक और तीसरी बात रखना है कि प्रयास करता हूँ कि बच्चे अक्सर स्कूल के अंदर छोटा सा एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अब उसने कुछ बनाया और वो रॉकेट के मूड में है या फ्लाइंग करने के मूड में, अब वो उसको भी क्लास में वो फूंकता है, बनाता है, उसको डांट पड़ती है, टीचर के पास जाता है, कान

0: करते हैं टीचर, फिर वो घर आता है, फिर एक बार ट्राई करता है कि मैं बनाऊँ, फिर वो आपको दिखाता है। हम क्या कर रहे हैं, पिछली बातों में गए। अभी तुमने बॉल बनाई, उसमें तुम असफल हो गए, एक नाव बनाई कागज़ से, उसमें तुम असफल हो गए, अब तुम चले हो हवाई जहाज बनाने, ये उड़ेगा क्या? अब ना बॉल उसको खेलने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, ना उस नाव से उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और ना ही वो कागज़ के जहाज से जिसको वो फूंक के उड़ा रहा है उससे आप उसको मोटिवेट कर पा रहे हैं। तीनों ही चीज़ आपके रिजेक्शन जोन में चली गई और डांट डपट के आपने चीज़ों को एक तरफ कर दिया। अब ये उदाहरण मैंने क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि हम सब बचपन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रोसेस को करते थे, लेकिन रेयर केस में टेक्निकल नो हाउ वेल नोन होने पर जो पेपर की फोल्डिंग है वो बिल्कुल आप सिस्टमेटिक करेंगे, जरा से उसमें फूंक देंगे तो बॉल बिल्कुल खिल जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बॉल बनाने में भी आपको कई साल लगे, वो नाव बनाने में भी आपको कई साल लगे, वो बिल्कुल नोक उसकी बराबर हो हवाई जहाज की और उसको आप बना लें और बिल्कुल आप टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस में लेके जाएं, टारगेट अचीवमेंट के लिए निशाने लगाने की आप बात करें, तो ये सारा चीज़ भी आपने एक लंबे समय तक किया है, उसमें जूझे हैं। लेकिन जब उसका कोई निष्कर्ष उस समय आपने क्या निकाला था मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय वो बच्चा, तीन शब्दों को मैं यहाँ दे रहा हूँ कि उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो संस्कार है, वो है तो एक आत्मा ना, और ये आत्मा की कंपोनेंट है, लेकिन उस बच्चे की निश्चलता को जब वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है तो उसमें मन, बुद्धि और संस्कार तीनों का समावेश रहता है, और उस समावेश में उसकी जो अपेक्षा है वो भावना के बदले कुछ आपसे चाह रहा है, इमोशंस के बदले कुछ फीडबैक चाह रहा है, एक्सपेक्टेशन है उसके मन में, उसके बदले वो कुछ फीडबैक चाह रहा है, लेकिन हम निरंतर उसको कुठाराघात कर रहे हैं। कुठाराघात इससे मतलब है कि हम बार बार उसको दबा रहे हैं, डोंट माइंड कर दे रहे हैं, डोंट केयर कर दे रहे हैं, और वो आपकी एक मैच्योर सिस्टम के अंदर वो चीज़ कहीं फिट नहीं बैठ रही है। अब बच्चों को जन्म तो दे दिया हमने, लेकिन उसके साथ जो भाई जी ने कई बार प्रश्न भी करते हैं कि खेलना कूदना, और वो सारा कुछ खेलना कूदना इसलिए नहीं कि वो ऑफिस का टाइम लेना चाह रहा है या आपका कुछ एकेडमिक लाइफ में कुछ बैरियर, वो आपकी जो स्पीड है, जो वर्किंग कल्चर अभी क्रिएट हो गया है और जो कार्य का दबाव है, चाहे आप मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट टेक्नीशियन में, उस कल्चर के कारण जो प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं, जिस स्ट्रेस के साथ आप जी रहे हैं, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने का आपके घर में एक रिसोर्स है, लेकिन उसके प्रति हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। यही किसी दूसरे परिवार में आप जाएंगे और वो बच्चा कुछ बोलना चाहेगा तो वहाँ आप इंजॉय कर रहे हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छा बेटा तुमने, बड़ा रिस्पेक्ट किया मेरा और इतनी चीज़ बनाई, क्योंकि वहाँ आपकी मजबूरी है कि किसी दूसरे के घर में उस बच्चे को मोटिवेट करना है, उसके लिए सारा फीडबैक आपने दे दिया, वो बच्चा आपका देख भी रहा है कि जब यहाँ किसी और की बारी है तो अपनी इमेज बिल्डिंग के चक्कर में हमने सारा बिहेवियर बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में और उसको मैनेज कर लिया कुल मिला के कहें, लेकिन जब वो हमारा बच्चा ही हमसे बातचीत करना चाह रहा है तो हम उसे जुड़ के अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते थे, इन्जॉयमेंट कर सकते थे। आपको अलग से अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में कन्वर्ट करने के लिए जाना नहीं था, कुछ पैसा नहीं खर्च होना था, लेकिन फ्री के संसाधन होने के बावजूद भी हम ना अपना भला कर पाए और ना बच्चों का भला कर पाए, और परिवार में वो बच्चा लास्ट में कहूँगा कि निश्चल मन से आया था, वो मन महसूस के कोने में बैठ गया और ये उसने मान लिया कि अपन पैदा तो हो गए लेकिन अपन ठीक नहीं है कुल मिला के, और वो फिर एक नई स्थिति में अर्थात निराशा में, डिप्रेशन में जा सकता है। वहाँ पर कुछ बच्चे हो सकते हैं कि मैनेज करके और थोड़ा सा बाहर आ जाएँ, ठीक है आपने बोल दिया भोजन कर लो, चलो बेटा बात जो हो गई सो डोंट माइंड कर दो, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉन्शियस माइंड से जो बच्चा देख रहा है, हमें परसीव कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, जी रहा है, ये कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद वही बच्चा जब वो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करेगा तो माता पिता से कट ऑफ होगा, फ्रेंड सर्कल में वो शेयर करेगा, तो एक दिन आपको लगेगा मेरा बच्चा मेरे से ही क्यों नहीं बात कर रहा है। तो बात करने की जितने उम्मीद थी, जितने भी एनवायरमेंटल लेवल पर क्रिएशन हुआ, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमने ये शेयरिंग प्रोसेस को नहीं ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो दूरी बढ़ती जाएगी और जो बाल मन की निश्चलता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो चालाकी में कन्वर्ट होगी, वो मैनेज करेगा, वो इस बात को ध्यान देगा कि इनको आखिर क्या तरीका है इनको खुश रखने का, तो उन तरीकों पर जाएगा, तो फिर आपके मन में एक दर्द होगा कि यार इतना अच्छा बच्चा है, निश्चल मन था, अभी ये चालाकी ओरिएंटेड कैसे हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भविष्य में भी पैदा होने वाले हैं। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और जहाँ पर बाल मन की बातें चल रही हैं, मन बुद्धि और संस्कार की बातें हो रही हैं, तो बच्चों का मन जो है जिज्ञासा व्रत कुछ ना कुछ बनाते रहता है। और उसे पूरा ज्ञान भी नहीं रहता है, तो वो जो भी करता है शायद हो सकता है उसमें वो सफल ना हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा मोटिवेशन देने का अगर आपने मन बना लेते हैं बच्चों के लिए, तो शायद बच्चा जो है विकसित हो पाता या उसे सफलता मिल जा रहा। तो अब बच्चों से हम सफलता पहले से ही अगर अपेक्षा करते हैं तो शायद वो चीज़ें जो है नहीं होता, फिर उसका मन जो है हम खुद ही उसको चालाक बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। और आगे बढ़ते हैं, एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि जीवन के इस आपाधापे में काफ़ी चीज़ें जो हैं माता पिता और भाई बहन या जो भी रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास के जो फैमिलीज होते हैं, और वहाँ पर जो है ना एक रोजी रोटी ब्रेड एंड बटर की बड़ी समस्या होती है। अब वो खुद उस समस्या में जूझ रहे हैं तो वो समाधान की तरफ तो बढ़ ही नहीं सकते ना।
0: जी जी।
1: तो कहीं ना कहीं वो कम्प्लीटनेस को नहीं प्राप्त करते हैं, उनको लगता है कि हमारा अपना जीवन जीने में संघर्ष इतना ज़्यादा है तो बच्चे की तरफ वो शायद ही नहीं ध्यान देते हैं, और बच्चा उनके लिए एक टूल बन जाता है कि अपना डिप्रेशन भी उनके ऊपर वो निकाल दे।
0: जी जी बिल्कुल सही।
1: तो यहाँ कैसे उसको उन चीज़ों को मैनेज किया जाए?
0: अच्छी बात है। देखिए, जीवन को हम ये मान के चलें कि जीवन एक संघर्ष है, और जीवन संघर्ष में ये जो हमारी अपेक्षाएं हैं परिवार को ठीक ठाक रखने की और रोजी रोटी कमाने की, इसको बैलेंस करने की, कई बार आप ओवरनाइट वर्क भी करते हैं, ये सारी बातें मान रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए कि आप जो कुछ भी कमा के ला रहे हैं माता पिता के रूप में, जो भी बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसका फीडबैक चाहते हैं कि नहीं? अगर हम उसका फीडबैक चाहते हैं और वो बच्चा आपके ऑफिस से आने के बाद में वार्म वेलकम नहीं करे आपको, वो कोने में जाके छिप जाए और आपको ढूंढ के निकालना पड़े जैसे कोई सामान निकालना पड़ रहा हो, तो आपको क्या फील होगा कि आप 5:30 या 6 बजे या 7 बजे अगर मेट्रो है तो 1-2 घंटा ट्रेवलिंग में आपका लग रहा है, तो वो बच्चा अगर आपके बेल बजाते ही और बिल्कुल वार्म वेलकम करता है, आप उसको गोद में उठा लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि 8 घंटे का स्ट्रेस रिड्यूस हुआ और आपसे वो डर के भाग के कहीं और चले जाए, पड़ोस के यहाँ चले जाए, और रात को 10 बजे आए जब आप सोने लगें, देन वॉट टू डू? उस समय आपको कैसा लगेगा? उस समय फील होगा ना। इसी प्रकार से जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं और बच्चे की माँ ने आपको गुड विशेस नहीं दिया, ऑल द बेस्ट नहीं बोला, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके वो गेट तक आपको छोड़ने नहीं आई, तो आप बताइए आप रोबोट हैं या मनुष्य हैं? जब आप भी चाह रहे हैं कि आपको वार्म वेलकम भी हो, सेवा भी बहुत अच्छे से किया जाए, आपकी केयरिंग किया जाए, आपका बच्चा दौड़ के आपको आपका बैग दे दे, आपका लैपटॉप दे दे, आपकी एसेसरीज दे दे, आपका जो रूटीन में हम चीज़ें सपोर्ट में चाहते हैं, क्योंकि वो भी कह सकता है कि आप मेरे पिता हैं, मनुष्य हैं, और अपनी चीज़ों को ठीक से रख लो और लेके चले जाओ, बात खत्म हो गई, आप अपना ऑफिस से आओ और काम करो और आप पैसा कमा रहे हो, आप महान हो, मैं आपकी आरती उतरता हूँ। तो प्रश्न की इस प्रकार से समाधान नहीं होने वाला है। देखिए, अगर घर में आने के बाद एक कप चाय नहीं मिली आपको, तो चाय तो बाहर भी मिलती है, लेकिन उस चाय के प्रति जो हमारा नज़रिया है, हमारी सोच है कि ठीक है, जब आप गृहस्थ आश्रम में जुड़े थे तो बहुत स्नेह से प्यार से चाय दी जाती थी, लेकिन जब दूरी बढ़ेगी ना तो चाय बना के रख दी जाएगी, चाय आपको खुद ही पीना पड़ेगा, फिर ये कहा जाएगा कि अभी चाय पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, अवॉइड किया जाएगा, दूध नहीं है, आप तीनों की व्यवस्था भी कर देंगे तो सामने वाला ये भी बोल देगा कि बनाने की इच्छा भी नहीं है, आप बना लो और पी लो, तो आप अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो हुआ क्या है कि हमने क्या किया कि छोटी छोटी बातों को अवॉइड किया, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की बजाय हमने दुख को ढूंढा, और जब ब्रह्मांड में ये मैसेज गया कि ये जो प्राणी है ना, ये केवल दुख पैदा करना और दुख ढूंढना, और किन चीज़ों से दुख हो सकता है उसके प्रति अवेयर है, तो रिफ्लेक्शन में आपके पास में क्या आएगा?
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ कि जो हम देंगे वही रिटर्न में आएगा। तो जब आपने बच्चे से, अपने घर में अन्य सदस्यों से, सब में कमी कमजोरी, दुख परेशानी पीड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे प्रभु, तूने ये मनुष्य जीवन दिया है इतना शानदार जीने के लिए, अब मैं देख तेरी ही छोटी सी इस दुनिया में सब कुछ दुख ढूंढ के तेरे को बताता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ना आप उसको चैलेंज गलत तरीके से कर रहे हैं, और अगर आपने इसको सही तरीके से किया तो आप देखेंगे कि हर पल हर क्षण आप अपने जीवन को जी सकते हैं। और एक छोटा सा मेरे को सॉन्ग याद आता है, उसमें ये बात आई है, पूरा गीत मुझे याद नहीं है, उसकी लाइन है, आज मेरे संग हंस लो, आज मेरे संग लो। तो ये जीवन का पर्याय होना चाहिए, ना कि बाकी शेष चीजें। जी
1: जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बात आपने बताया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आशा करूँगा हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, अभिभावक सुन रहे होंगे, तो दोनों के लिए ये कार्यक्रम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों तरफ जो है चीज़ें संवरना और समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग जो है बाल मन

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग बच्चों की बातें करते हैं तो डॉक्टर अजय शुक्ला जी उसे विस्तार से आपको बताते रहते हैं। तो आइए आप हम लोग जो है थोड़ा सा उस पैराग्राफ को चेंज करते हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए।
1: जी देखिए, बच्चों को उमंग उत्साह दिलाना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक इंसान के लिए खुशी में रहना और खुशी के पलों को ढूंढना, आनंद की स्थितियों में स्वयं को लेके जाना। कुल मिला के आप मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते आप जितना एनवायरमेंटल रूप से अपने अंदर खुशी के थॉट्स, उमंग के थॉट्स या अपनी जो पास्ट लाइफ है उसमें से जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को निकालते हैं, जब आपने किसी की मदद की, जब आपने किसी को कुछ देने का प्रयास किया, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखा, ब्लेसिंग देने का प्रयास किया, मनी मन कह दिया मे गॉड हेल्प यू, तो उस समय आप देखेंगे जो फीडबैक का इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। कुल मिला के आपसे देने की क्रिया वहाँ संपन्न होती है और कोई स्थूल चीज़ के लिए बहुत अधिक आप खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट और एक छोटा सा फूल किसी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन ये जब हम शब्दों के संसार में बात करते हैं ना, तो फूल भी दुनिया में बहुत हैं और मुस्कुराहट भी हमारे अंदर बहुत है, लेकिन इन दोनों के ऊपर गम के बादल को लेके हम बैठना चाहते हैं और हम गम के बादशाह बन के जीना चाहते हैं। हम लोगों को चैलेंज करते हैं कि ये सब चीज़ हमसे नहीं होगा, हम कुछ और करेंगे। ये जब कुछ और करेंगे सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वही हमारे दुख का कारण होता है और हम अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, बाह्य तनाव कार्य और कार्य से जुड़े हुए विभिन्न परिस्थिति के जो आपकी अंडर में नहीं है, आपके कंट्रोल

0: नहीं है, वहां से तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल से चार दीवारी हमने बनाई, एक छोटा सा आपने घरौंदा बनाया, उस घरौंदे में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर की एक्सटर्नल प्रॉब्लम को हम बहिर्मुखी होकर लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस आत्म जगत के अंतर स्वरूप को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये द्वंद बढ़ता जाएगा और किसी मार्ग पर जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो भाई जी पूछ रहे हैं कि आखिर इन सब चीज़ों से मुक्त होके इस ओर हम कैसे अपने कदम को बढ़ाएं, तो कई बार समस्या के स्रोत को हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसका आखिर रूट कहाँ है, और रूट अगर मिल गया तो उसका कॉज कहाँ है, हम समाधान कैसे ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज बनता है कि देखिए, मैं अगर अपने आसपास के परिवेश को खुश रखने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये किसी बनावटी प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बने हैं, दार्शनिक हमारे सिद्धांत बने हैं, उन सबके पीछे एक बहुत गहरा मनस्थिति का राज छिपा हुआ है, मानवीय चिंतन के पक्ष छिपे हुए हैं, और कुल मिलाकर मानवता के कल्याण या मंगलकारी उसके स्वरूप को कहीं ना कहीं देखा गया है, स्वप्न बुना गया है और साकार होने की प्रक्रिया में उस ओर कदम उठाए गए हैं। तो आखिर वो कदम क्या है? तो जब मैं डिलीवरेशन दे रहा हूँ या अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं स्वयं को कैसे आनंद में लेके आऊं। अब मुस्कुराहट या प्रसन्नता उसके छोटे छोटे रूप हो सकते हैं, लेकिन अगर मुस्कुराते हैं हम या प्रसन्न रहते हैं या अपने आप को खुश रखने के प्रयास करते हैं, तो ये तीनों ही चीज मिलके हमें स्थायी आनंद की ओर ले जाने की स्थिति में होंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वयं को प्रसन्न रखने, आनंद में रखने या खुश रहने के उपायों से अलग लेके अगर चलते हैं, तो उस स्थिति में अपने बच्चों के प्रति जो उमंग उत्साह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास में है या अकाउंटेबिलिटी है, तो उसे हम अगर केवल काउंसलर की एडवाइस तक सीमित रखेंगे कि नहीं अभी आफत आएगी, परेशानी आएगी और बच्चे के मनोबल जब क्षतिग्रस्त होगा उस समय हम इसको उठाएंगे, तो उस समय बहुत देर हो जाएगी और उस समय आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसका हम अभ्यास डाल लें, देखिए ये बात सही है कि हमारा व्यक्तित्व रातों रात नहीं बदलता है और इसको नाटकीय तौर पर भी हम नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ समय के लिए ड्रामा आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत किसी सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखने के लिए हम अगर अभ्यास करते हैं, भले ही वो मेडिटेशन के थ्रू हो, अच्छे साहित्य को हम पढ़ने का प्रयास करें, हम किसी अच्छे डिस्कोर्स में भाग लें, या जहाँ पर जीवन को परिष्कृत करने की, ऊँचाई पर ले जाने की बातचीत हो रही हो, उस वातावरण में भी अगर बच्चों को लेके जाने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप तो मोटिवेट होते ही हैं और बच्चों के अंदर भी ये खुशी बिखरती है, और इस वास्तविक बिखराव के प्रति जैसे जैसे आप गतिशील होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन संसार या बाल संसार बहुत सुखमय हो गया, और जिस उम्मीद के साथ आप इस जीवन को जी रहे थे, निश्चित तौर पर वो जीवन बहुत खुशनुमा बन गया और आनंद के साथ आप अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं जीने की नई स्थितियों की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है। तो चलिए इसी के साथ एक और प्रश्न का मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन वो प्रश्न आप अगले एपिसोड में ही लेंगे क्योंकि समय और इजाज़त नहीं देता। तो मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप क्या बताना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छी बात है, आज संपूर्ण चर्चा हमारी जो हुई है उसमें सार यही निकलता है भाई जी कि बच्चों की जो निष्पक्षता है और उस निष्पक्षता के प्रतिफल को हम बहुत सीरियसली ना लेते हुए उसके आगे के एपिसोड पर फोकस करें और उसकी अच्छी शुरुआत को हम एक लाइन से जरूर समअप करें, वेल डन बाय यू, और यही एक मोटिवेशन की लाइन उसके सामने जब प्रेजेंट हम करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज में एक कहीं ना कहीं नयापन हो और एक उत्साहजनक हमारा फेस हो, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ऐसी स्थिति में हम उसके बच्चे के कंधे पर हाथ रखें और इस बात की उम्मीद जताएं कि भविष्य में आपसे जो कुछ भी अभी आप प्रस्तुत कर रहे हो उससे बहुत अच्छा होने वाला है, और एक अच्छे लक्षण मुझे अपने बच्चों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट अगर हम देते हैं या कुल मिला के कहें तो आप अगर बहुत गर्व और गौरव से बोलें, मॉर्निंग सोज द डे, अर्थात सुबह होने से दिन का पता चल जाता है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये सारी इस प्रकार के मुहावरे या कहावतें अगर हम प्रयोग करते हैं अपने मन में और बच्चों के सामने, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण जगती है और बच्चे अपने निश्चल मन के द्वारा मन, बुद्धि और संस्कार के प्रति कॉन्शियस होते हैं और उनसे सब कुछ अच्छा हो इसके लिए वो प्रयत्नशील हो जाते हैं। जी
1: डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इस विषय पर। और आज के इस एपिसोड में जिस तरह से हम बच्चों की जिज्ञासा, बच्चों की जो मन बुद्धि और संस्कार, इस विषय को लेकर बातें की, उनकी रचनात्मक कल्पनाशीलता को हमने देखा, तो चलिए आगे हम लोग और बातें करेंगे। सहानुभूति और करुणा, नैतिक मूल्य, संस्कार, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इस पर बातें करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सुना है बाल संसार, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: निष्कर्ष: बचपन की निष्पक्षता बच्चों के मन, बुद्धि और संस्कार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समय उनके कौतूहल, रचनात्मकता, सहानुभूति, करुणा, नैतिकता और मूल्यों के विकास का होता है। बच्चों का निर्मल मन उन्हें नई चीजें सीखने, समझने और आत्मसात करने में मदद करता है। हमें बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहानुभूति और नैतिकता को प्रोत्साहित करे, ताकि वे एक सशक्त और संवेदनशील व्यक्ति बन सकें। धन्यवाद।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 सितंबर है। 3 सितंबर की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं किशन महाराज, प्यारे लाल, उत्तम कुमार, सीपी ठाकुर, कमलापति त्रिपाठी, साक्षी मलिक, जग्गी वासुदेव, रोशन, आरा बेगम, किरण देसाई, इन सभी का जन्मदिन है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करते ही हैं। आज इन सारे महान लोगों के बारे में कुछ कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी को भी इन बातों को सुनकर इनके जीवन कहानी से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलती है। तो आइए एक सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। जी हाँ, एक सफल व्यक्ति वो है जो औरों के द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। सोचिए इस विचार पर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को, और आइए कार्यक्रम के इस पड़ाव में शुरुआत में आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना और मैं आपको एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा और ये व्यक्ति अपने आप में खास व्यक्तित्व है, वासुदेव जग्गी सदगुरु। जी हाँ, इनका विशेष बात करें तो ये विश्वविख्यात प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के योगी हैं। वो बहुत प्रसिद्ध कवि थे। जीवन में उनका उद्देश्य लोगों की अपनी आध्यात्मिकता को प्रकट करने में मदद करना है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के कई योग केंद्र हैं जो कि भारत के विभिन्न शहरों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थापित किए गए हैं। जग्गी वासुदेव को भारत सरकार ने 25 जनवरी 2017 को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इनके परिचय में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सदगुरु जग्गी वासुदेव का जन्म आज के दिन 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में हुआ। उनके माता का नाम सुशीला वासुदेव था। उनके पिता एक डॉक्टर थे। बचपन से ही वासुदेव दूसरों की तुलना में काफ़ी अलग थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने श्री राघवेंद्र राव, जिन्हें मल्लडीहल स्वामी के नाम से भी जाना जाता था, उनसे प्राणायाम और आसन जैसे योग सीखे। मैसूर विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में विशेष सम्मान उपाधि प्राप्त की और जब वासुदेव 25 वर्ष के थे तो उन्होंने एक असामान्य घटना देखी जो उन्हें जीवन और भौतिक वस्तुओं दूर और त्याग की ओर ले गई। उनकी पत्नी का नाम विजया कुमारी व पुत्री राधे जग्गी है। तो आइए उनके बारे में और विशेष बातें जानते हैं। आप सभी उनको ईशा फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में जानते हैं और ईशा फाउंडेशन के माध्यम से जो है अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग शहरों में इनके संस्थान के कुछ सेंटर्स भी हैं और साथ ही साथ ये कार्यक्रम भी वहां पर ज़्यादा करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के खुद संस्थापक हैं और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन एक लाभ रहित मानव सेवा NGO है, संस्थान है जो लोगों की शारीरिक, मानसिक और आंतरिक कुशलता के लिए समर्पित है। ये 2,50,000 से भी अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्यालय ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में है। जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ईशा फाउंडेशन भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में विशेष योग के कार्यक्रम योग सिखाती भी है और साथ ही साथ ये कई आध्यात्मिक और सामुदायिक विकास योजना पर भी काम करती है। तो ये थी कुछ खास बातें जग्गू वासुदेव फाउंडेशन और जग्गू वासुदेव के बारे में आपके लिए। आप सुना है रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को और जैसे कि कैलाश खेर का एक गीत उतरे मेरे अंदर आदि योगी, इस तरह के बहुत सारे गीत भी इनके द्वारा जो है शिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है कोयम्बटूर में और वहाँ पर शंकर जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है और उनका पूरा फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम वहीं से निर्धारित होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को शिवरात्रि में बुलाया जाता है और उनके द्वारा जो है वो फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है और नए नए गीत संगीत वहाँ पर रचा जाता है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें जग्गी वासुदेव जी के बारे में। सदगुरु उनको कहते हैं सभी लोग। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूँ जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आइए अभी एक और व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। आज विशेष प्यारेलाल जी का जन्मदिन है और प्यारेलाल जी को अकेले अगर इंट्रोड्यूस करें तो बड़ा मुश्किल होगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये जोड़ी फेमस है, तो जब भी बात होगी तो दोनों की बात होगी संगीत के जगत में। और हिंदी सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक है प्यारेलाल। प्यारेलाल अपने 8 दशकों से अधिक लंबे करियर में हिंदी सिनेमा के सबसे सफल संगीतकारों में से एक हैं। महान संगीतकार प्यारेलाल ने संगीत सम्राट लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा जगत में असंख्य सुपरहिट गीत दिए हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी दोस्ती, हम सब उस्ताद हैं, आए दिन बाहर के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरा गांव मेरा देश, बॉबी, रोटी कपड़ा और मकान और सदाबहार गाने बनाए हैं। संगीतकार प्यारेलाल को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2024 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और संगीतकार प्यारेलाल लक्ष्मीकांत लक्ष्मण नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। तो आइए इन इनकी जीवन कहानी की कुछ बचपन की बातें मैं याद कराना चाहूँगा। प्यारेलाल का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी माँ का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखे। पिता के आर्थिक हालत ठीक नहीं थे, वे घर घर जाते थे जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिल जाता था, और साथ ही वो प्यारे को भी लेकर जाते थे। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर लेकर गए। लता जी प्यारे के वायलिन वादक वादन से इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्यारे को 500 रुपये इनाम में दे दिए, जो उस ज़माने में बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वायलिन का रियाज करते थे। अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपये मासिक वेतन मिलता था। अब उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और पर 3 रुपये की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालतों में भी उनके हौसले कम नहीं हुए। वे बहुत महत्वाकांक्षी थे और अपने संगीत के दम पर अपना नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना एक उनका सपना था और वो सपना विशेष रूप से उनका पूरा भी हुआ। वो एक जगह लिखते हैं कि मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता और वे लोग पारसी और ईसाई वादकों को अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैं कुछ सहन करके टिका रहा। पर मेरे पिता ये सब अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाने का जिम्मा उठाया और वो उन्हें संगीत नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 1500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी थी। तो उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुसैनदान भगत के साथ काम करते हुए मुझसे 3 साल बड़े थे उम्र में। धीरे धीरे एक दूसरे के घर आने जाने लगे तो बजाते और कभी कभी क्रिकेट खेलते और संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारा शौक और सपने एक जैसे होने के कारण बहुत जल्दी हमारी अच्छी दोस्ती हुई। और सी रामचंद्र जी ने एक बार मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूँ। वो लक्ष्मी से पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे और चेन्नई में हमने 2.5 साल साथ काम किया। फिर भी देवता कलाकार थे जमिनी गणेशन, वैजंती माला और सावित्री, जिनके हम 6000 रुपये मिले थे। ये पहली बार था अब मैंने इतने पैसे एक साथ देखे। मैंने इन पैसों से अपने पिता के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी जिसकी कीमत 1200 रुपये उस समय थी। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में, सॉरी सिर्फ प्यारेलाल के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और बातें कर रहे थे हम लोग विशेष 3 सितंबर की, और जिस तरह से प्यारेलाल जी की कहानी आपने सुनी बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक और व्यक्तित्व के बारे में। जी हाँ, ये है उत्तम कुमार। जी हाँ, इनके बारे में भी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि भारतीय सिनेमा में हिंदी और बंगाल फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता। इनका मूल नाम अरुण कुमार चटर्जी था। मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करने वाले उत्तम कुमार एक अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक, निर्माता, गायक और संगीतकार भी थे। जिस तरह हिंदी सिनेमा में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी याद की जाती है, उसी तरह बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन का कोई मुकाबला नहीं था। बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार को महानायक की पदवी दी गई थी। तो आइए इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और आशा करूँगा आप सभी को उत्तम कुमार की कहानी सुनकर अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे लोग उत्तम कुमार को जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे।
2: ये दास्तां है अरुण कुमार चटर्जी की, जिन्हें हम उत्तम कुमार के नाम से जानते हैं, और आगे जाकर ये महानायक के नाम से मशहूर हुए। ये सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गायक भी रहे।
3: कट! हाय हाय हाय हाय हाय, क्या शोर दिया है।
2: इनका जन्म हुआ 3 सितंबर सन 1926 में कोलकाता शहर में, इनके मामा के घर आहिर टोला में। हालांकि इनका पुश्तैनी घर गिरीश मुखर्जी रोड भवानीपुर में है। पढ़ाई लिखाई की इन्होंने साउथ सबर्बन स्कूल से, उसके बाद आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए ये पहुंच गए गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बदकिस्मती से ये अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके, और इन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में काम करना शुरू किया बतौर क्लर्क। इसी दौरान थिएटर भी शुरू किया। हालांकि इनके परिवार में भी थिएटर की रवायत रही। परिवार का एक थिएटर ग्रुप था सुहृद समाज। ये 3 भाइयों में सबसे बड़े रहे। इनके 2 छोटे भाई वरुण और तरुण हैं। इनके पिता का नाम श्रीमान सत्कारी चटर्जी और माँ श्रीमती चपला देवी। इनके सबसे छोटे भाई तरुण कुमार के नाम से मशहूर हुए। बंगाली सिनेमा में उन्होंने अपना दबदबा बनाया। अपने छोटे भाई तरुण कुमार के साथ ये कई फिल्मों में नजर आए, सप्तपदी, सोनार हारन, माया मृगा, शेष अंक वगैरह वगैरह। बतौर एक्टर इनकी पहली रिलीज फिल्म रही दृष्टिदान, जो कि सन 1948 में आई थी। हालांकि उससे पहले भी ये एक फिल्म माया डोर में काम कर चुके थे। तकरीबन 5 फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इनकी सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई हैं। ये अपना नाम भी परिवर्तित करते रहे, कभी अरुण चटर्जी तो कभी अरुण कुमार, और अंत में उत्तम चटर्जी तक बात पहुंची, और फिर ये उत्तम कुमार के नाम से ही फिल्मों में काम करने लगे। इन्हें फ्लॉप मास्टर जनरल कहा जाता था। जब भी ये स्टूडियो में घुसते तो लोग इनका मजाक उड़ाते और कहते, लो आ गया यह नया छवि विश्वास। ये बड़े आहत होते। ये इतने नाउम्मीद हो गए कि इन्होंने सोच लिया कि अब सिनेमा छोड़कर वापस कलकत्ता पोर्ट्स में जाऊंगा और बतौर क्लर्क काम करने लगूंगा। तब तक इनकी शादी गौरी चटर्जी से हो चुकी थी, और इनकी बीवी गौरी चटर्जी अक्सर इनसे कहती कि जिस काम में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, वहां पे क्यों जाना चाहते हो, क्यों क्लर्की की जिंदगी बिताना चाहते हो। किस्मत ने बाजी पलटी और एमपी स्टूडियोज ने इन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। फिल्म बनी बासु परिवार, और उसके बाद एक फिल्म आई जिसने सब कुछ पलट के रख दिया, वो रही अग्नि परीक्षा। इस परीक्षा में उत्तम कुमार सफल साबित हुए। यहां से ही शुरुआत हुई एक बड़े ही अनोखे रोमांटिक पेयर की, उत्तम कुमार और महान अभिनेत्री सुचित्रा सेन। हालांकि ये पहली बार नजर आए थे फिल्म शारे चौतौर में, जो कि सन 1953 में आई थी। इन्होंने बड़े अनोखे और नए निर्देशकों के साथ काम किया। ये एक ऐसी टीम बन के उभर रही थी जो मॉडर्न सिनेमा में एक गहरी छाप छोड़ने वाली थी, जिनमें हेमंत मुखर्जी का नाम था, अनिल बागची, सुधीन दास गुप्ता और सलिल चौधरी भी रहे।
4: अच्छा बेटा, पहली पिक्चर में डिस्कशन शुरू कर दिया, आते ही सवाल चालू।
2: उत्तम कुमार बड़ी आसानी से कोई भी किरदार निभा लेते, इनका चेहरा जब सिल्वर स्क्रीन पर आता तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते। यह भी बताया गया कि अक्सर फ्रेंच वाइन पिया करते थे, क्योंकि किसी डॉक्टर ने इनसे कह दिया था अगर अपने चेहरे की चमक बरकरार रखनी है तो फ्रेंच वाइन मदद करेगी। बहुत अनोखी अभिनेत्रियों के साथ इनकी जोड़ी खूब सराही गई, जिनमें सुचित्रा सेन, सुप्रिया चौधरी, सावित्री चटर्जी, माधवी मुखर्जी और यहाँ तक कि शर्मला टैगोर और अंजना भौमिक के साथ तनुजा सामर्थ और अपर्णा सेन का नाम भी आता है। 50 की दहाई में संध्या रानी और 60 की दहाई में अरुंधति देवी और माला सिन्हा के नाम भी उजागर हुए। 3 दशक तक उत्तम कुमार बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार बने रहे, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ सुपरस्टारडम से ये मुतमईन हो गए। इन्होंने बहुत से प्रयोग भी करे, जैसे कि खोखा बाबर प्रत्यवर्तन में भी इन्होंने बड़ा अनोखा काम किया और माया मृग में भी। कभी एक कातिल चोर की भूमिका निभाते नजर आते तो कभी एक बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन की। अपने अभिनय को लगातार सुधारने के लिए ये थिएटर में भी काम करते। एक बार तो पूरे बरस ये सावित्री चटर्जी के साथ स्टार थिएटर के एक नाटक श्यामली में काम करते रहे। बंगाली सिनेमा के अलावा उत्तम कुमार साहब ने 15 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। छोटी सी मुलाकात, जिसमें वैजयंती माला जी इनके साथ थी, अमानुष, आनंद आश्रम, दूरियां, जिसमें शर्मला टैगोर का भी साथ इन्हें मिला, सुलक्षणा पंडित के साथ बंदी और विद्या सिन्हा के साथ किताब। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि राज कपूर साहब ने इन्हें फिल्म संगम में राजेंद्र कुमार साहब का रोल ऑफर किया था, पर कुछ वजुवाद रहे और उत्तम कुमार ने फिल्म संगम में काम करने से इनकार कर दिया।
4: क्या ये काफी नहीं है? काफी, बिल्कुल काफी, 100% काफी।
2: फिर भी सत्यजीत रे साहब की फिल्म नायक सबसे अनोखी फिल्म मानी गई और इनकी अभिनय क्षमता को देखकर सत्यजीत रे ने खुद कहा था कि यदि उत्तम कुमार इनकार करते इस फिल्म में काम करने से, मैं कभी भी ये फिल्म नहीं बनाता। जब भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बनाई, तब उत्तम कुमार पहले अभिनेता थे जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फिल्म एंटनी फिरंगी और चिड़ियाखाना के लिए। ये फिल्में लिखने भी लगे, डायरेक्ट भी करने लगे और म्यूजिक भी कंपोज करने लगे थे।
5: राज पिक्चर्स, लव इन हवाई, सॉन्ग नंबर 1, टेक 1,
6: रेडी 1 2 3 4।
2: उत्तम कुमार साहब ने फिल्म छोटी सी मुलाकात को प्रोड्यूस किया। ये फिल्म एक कलर्ड फिल्म थी, बहुत पैसा खर्च हुआ और उत्तम कुमार और वैजयंती माला जी दोनों को ही बड़ी उम्मीदें थी इस फिल्म से और उम्मीदों पे खरी ना उतरी। इन्होंने एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी भी लॉन्च की, आमार आमी, जो कि सन 1979 और 80 के बीच लॉन्च की गई। उसके बाद ये अपनी जीवनी लिखने बैठे, हरानो दिंगोली मोर, लेकिन ये अपनी जीवनी मुकम्मल ना कर सके। इन्होंने तकरीबन 217 फिल्मों में काम किया। हालांकि हिंदी सिनेमा में इन्हें वो शोहरत ना मिली जो बांग्ला सिनेमा में मिली, पर अभिनय के क्षेत्र में इनका कोई सानी नहीं। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका पहला विवाह हुआ गौरी चटर्जी से, बेटा गौतम चटर्जी हुआ और इनके पोते गौरव चटर्जी आगे जाकर एक अभिनेता बने। सन 1963 में इन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दिया और फिर सुप्रिया देवी से इनका विवाह हुआ। उत्तम कुमार ने वो बुलंदियां छू ली थी जो कोई और अभिनेता नहीं छू पा रहा था। आज की तारीख में भी उत्तम कुमार के चाहने वाले बहुत हैं। अफसोस की बात ये कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। तारीख 24 जुलाई सन 1980। भारतीय सिनेमा के इतिहास की ये एक बेजोड़ कड़ी रहे और सदैव रहेंगे। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।

तो ये थी कहानी उत्तम कुमार के बारे में आपके लिए, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब बात करते हैं किशन महाराज के बारे में। भारत के बहुत ही पॉपुलर सुप्रसिद्ध तबला वादक थे, बनारस घराने के वादक थे। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1973 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ थे। जीवन की बात करें तो कबीर चौरा मोहल्ले में इनका जन्म आज ही के दिन 1923 को 3 सितंबर को काशी में इनका जन्म हुआ, एक संगीतज्ञ परिवार में। कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण इनका नाम किशन पड़ा और उन्होंने अपने आरंभिक वर्षों में पिता पंडित हरि महाराज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और पिता के देहांत के बाद उनके चाचा और पंडित बलदेव साय के शिष्य पंडित कंटे महाराज ने उनकी शिक्षा का कारोबार संभाला। किशन महाराज ने तबले की थाप यात्रा शुरू करने के कुछ साल में उस्ताद फयाज खान, पंडित ओमकार ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, वसंत राय, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां जैसे बड़े नामों के साथ संगीत की संगत की। कई बार उन्हें संगीत की महफिल में एकल तबला वादन भी किया। इतना ही नहीं, नृत्य की दुनिया के महान हस्ताक्षर शंभू महाराज, सितारा देवी, नटराज, गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज के कार्यक्रमों में भी इन्होंने तबले पर संगत की। एडिनबर्ग और वर्ष 1965 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर इन्होंने नाम अर्जित किया था। उनके शिष्यों में वर्तमान समय के जाने माने तबला वादक पंडित कुमार बोस, पंडित बाल कृष्ण अय्यर, सुखविंदर सिंह नामधारी सहित अन्य नाम शामिल हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात करें तो आदरणीय स्वर्गीय पंडित किशन महाराज प्रभावशाली व्यक्ति के धनी थे। माथे पर एक लाल रंग का टीका हमेशा लगा रहता था। वे जब संगीत सभाओं में जाते, संगीत सभाएं लय ताल से परिपूर्ण हो गंधर्व सभाओं की तरह गीत गति और संगीतमय हो जाती। तबला बजाने के लिए वैसे पद्मासन में बैठने की पद्धति प्रचलित है, किंतु स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी दोनों घुटनों के बल बैठकर वादन किया करते थे। ख्याल ज्ञान के साथ उनके तबले की संगीत श्रोताओं पर जादू का काम करते थे। उनके ठेके में एक भराव था और दाएं और बाएं तबले का संवाद श्रोताओं और दर्शकों पर विशेष प्रभाव डालता था। अपनी युवा अवस्था में पंडित जी ने कई फिल्मों में तबला वादन किया, जिनमें नीचा नगर, आंधिया, बड़ी माँ आदि फिल्में मुख्य रूप से हैं। कहते हैं ना, महान कलाकार एक महान इंसान भी होते हैं। ऐसे ही महान आदरणीय स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी भी थे, जिन्होंने बनारस में दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए भूख हड़ताल भी की और संगत कलाकारों के प्रति सरकार की ढुलमुल नीति का पुरजोर से विरोध किया था। तो ये थी कुछ खास बातें किशन महाराज जी के बारे में। आइए उनके बारे में और बातें सुनेंगे और इनकी दिनचर्या की बात, पसंद नापसंद की बातें भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: This is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. थैंक यू रेडियो मधुबन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बिंदास जीवन शैली की बात करें किशन महाराज जी की, तो ये एक अलग ही टाइप के व्यक्ति का है और अपने जीवन में कला के प्रति इनका जो समर्पण भाव था वो बहुत ज़्यादा था। किशन महाराज का जिंदगी जीने का अंदाज बहुत निराला और बिंदास रहा। उन्होंने ज़िंदगी को हमेशा आज के आईने में देखा और अपनी मर्जी के मुताबिक बिंदास जिया। लुंगी तुर्की में पूरे मोहल्ले की टहलना और पान की दुकान पर मित्रों के साथ जुटना ता जिंदगी उनका शागल बना रहा, और मर्जी हुई तो बैरो सरदार को इक्के पर साथ बैठाया और घोड़े को हाँक दिया। तबीयत में आया तो काइनेटिक होंडा में किक मारी और पूरे शहर का चक्कर लगाया। उनकी दिनचर्या पूजा पाठ, टहलना, रियाज, अपने शौक पूरा करने, मित्रों से गप्पे मारने तथा ये सब जिंदगी की आखिरी घड़ी तक जारी रहा। वे बड़ी बेबाकी से कहते थे कि मैं कोई उलझन या दुविधा नहीं पालता, बल्कि उसे जल्दी से जल्दी दूर कर देता हूँ ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। 60 साल पहले शेविंग के दौरान मूछें सेट करने में एक तरफ छोटी तो दूसरी तरफ बड़ी हो जाने की दिक्कत महसूस की तो जट से पूरी तरह से साफ करा दिया। इसके बाद फिर कभी मूछ रखने की जहमत नहीं उठाई। उनकी दिनचर्या बड़ी नियमित थी। प्रातःकाल 6 बजे तक उठ जाते थे, बगीचे की सफाई, चिड़ियों का दाना पानी और फिर टहलने निकल जाते। किशन महाराज का खान पान भी बड़ा ही अलग स्टाइल का था। दाल रोटी चावल के साथ छेना या केला और लौकी चाय उन्हें काफ़ी पसंद था। गर्मी के सीजन में दोपहर में सप्ताह में 2-3 रोज सत्तू भी खाते थे, परंतु परंपरागत बनारसी नाश्ता पूड़ी कचौड़ी उन्हें पसंद नहीं था। कभी कभार किसी पार्टी में पंडित जी पैंट शर्ट में भी जलवा बिखेरे दिखा देते थे, मगर अलीगढ़ पैजामा और कुर्ता उनका पसंदीदा पहनावा था। गहरेबाजी, पतंगबाजी और शिकार के शौकीन रहे पंडित जी क्रिकेट और हॉकी में भी खासी दिलचस्पी रखते थे। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो वैसे ये सम्मान तो हर जगह मिल ही जाता था इनको। लय भास्कर संगीत सम्राट, काशी स्वर गंगा सम्मान, संगीत नाट्य अकेडमी सम्मान, ताल चिंतामणि लय चक्रवर्ती, उस्ताद हाफिज अली खान व अन्य कई सम्मानों के साथ पद्मश्री व पद्म भूषण अलंकार से इन्हें नवाजा गया था। किशन महाराज 3 सितंबर 1923 की आधी रात को ही धरती पर आए थे और 4 मई 2008 की आधी रात को ही वे इस धरती को छोड़ स्वर्ग की सभा में देवों के साथ संगत करने हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने से भारत में एक युगजाई संगीत दिग्गज को खो दिया था। तो ये थी कुछ खास बातें किशन महाराज जी के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, वक्त हो गया है एक और व्यक्ति के बारे में परिचय देकर कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और ये है विशेष चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर चिकित्सक और सफल राजनीतिक, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री तथा भूतपूर्व राज्यसभा सांसद। अपनी शिक्षा के अंतर्गत MD डिग्री हासिल करने के बाद CP ठाकुर ने MRCP, FRCP की और कालाजार जैसे घातक बीमारी के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस उल्लेखनीय कार्य में उन्हें विश्व भर में पहचान मिली और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। CP ठाकुर को वर्ष 2024 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये थी कुछ खास बातें CP ठाकुर के बारे में। 3 सितंबर 1931 को दुभा नामक गांव में, जिला मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ। पटना मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने किया और फिर इस तरह से पढ़ाई पूरा करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए इंजीनियरिंग करने के बाद बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद वहाँ पर कुछ समय तक उन्होंने काम किया। फिर पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ पर कुछ काम किया। उसके बाद राजनीति का सफ़र उनका चालू हो गया। राजीव गांधी उन्हें राजनीति में ले आए और फिर 1984 में उन्होंने अपनी सहानुभूति की लहर पर सवार थी। तब कुछ वोट के ठेकेदार पैसे मांगने उनके पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने नकार दिया। किराए पर 6 कार ली और प्रचार में जुट गए। तब चुनाव में रेटिंग ऑफिसर RK सिंह थे। वोटों की गिनती शुरू हुई तो दियार क्षेत्र में 5000 से आगे रहने के बावजूद राम अवतार शास्त्री ने उन्हें जीत की माला पहना दी और कहा, मेरे गढ़ में इतने कम वोटों से पीछे है तो अन्य क्षेत्रों में बढ़त बना लेंगे। राजीव गांधी की इस दिन हत्या हुई थी, उसके एक दिन पहले वो पटना में डॉक्टर CV ठाकुर के साथ थे। तो ये थी कुछ खास बातें CV ठाकुर के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। चलिए, जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। किसी भी चीज़ से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा किसी चीज़ की तैयारी में कमी मत रखिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अभी बजे हैं शाम के 5। शाम

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आज युवाओं के इस मंच पर, वैसे तो हम जानते हैं 3 सितंबर तारीख है आज, और सितंबर महीने में भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तो त्यौहार अगस्त में भी आपने मनाए और कुछ वादे किए, कुछ नए इरादे भी किए, कुछ नयापन लाने का जीवन में सोचा भी। वैसे तो चाहे नया साल आ रहा हो, चाहे रक्षाबंधन हो या कोई और त्यौहार हो, एक नई शुरुआत सा महसूस कराता ही है। लेकिन आपको सबसे बड़ी ज़रूरत होती है आज जानकारी की, वो जानकारी जो हमें इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित रह सके। इसीलिए हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं हम युवा मंच पर खास इंटरनेट की ऐसी टिप्स जो आपको स्कैम से बचाती हैं। तो हम आपको ले चलेंगे साइबर दोस्त की ओर। आप फिलहाल एक सुंदर सा गीत सुनिए, लौट कर आएंगे कार्यक्रम युवा मंच पर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आज का सेशन एक ऐसे ऐप पर बेस्ड है जिसे हम रोज यूज करते हैं, लेकिन उसके साइबर रिस्क के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। फेक लिंक्स, हैक्ड व्हाट्सएप अकाउंट्स, ओटीपी स्कैम्स, फेक कस्टमर केयर, इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, बॉस स्कैम और आइडेंटिटी मिसयूज जैसे कई साइबर क्राइम्स की शुरुआत आज व्हाट्सएप से हो रही है। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीपीएस विदेश सक्सेना, सर्कल ऑफिसर शाहजहानपुर, जो साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस और पब्लिक अवेयरनेस में एक्टिवली काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप आज हर स्मार्टफोन यूजर के लाइफ का पार्ट है। साइबर क्रिमिनल्स व्हाट्सएप से लोगों को कैसे टारगेट कर रहे हैं?
1: जी देखिए समृद्धि जी, व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसका बहुत वाइड यूजर बेस है, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और एक व्हाट्सएप ऐसी फैसिलिटी देता है जो सीमलेस मैसेजिंग, सीमलेस आपको मीडिया शेयरिंग और इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पहले हम SMS करते थे, अब व्हाट्सएप के थ्रू ही सारे SMS, फोटो, वीडियोज सब शेयर किया जाता है। आई गेस हो ना हो 500 मिलियन प्लस यूजर्स इंडिया में ही होंगे इसके। तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा इसका यूजर बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये इजी टू अडेप्ट है। इसे बच्चे से लेके बूढ़ा कोई भी बहुत इजीली यूज कर सकता है, और क्रिमिनल्स यही टारगेट करते हैं कि जहां पे उनके पास वाइड एक डेमोग्राफी हो, जहां पे उनको विक्टिम बनाने में बहुत ईजी रहे। प्लस अगर आप देखें तो इस पर ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, अपने स्टेटस लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, तो जो भी दूसरा व्यक्ति से जिससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसको ट्रस्ट होता है कि यही बंदा एक्टिवली इसको इन्वॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हम देखा जाए क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स व्हाट्सएप को ही क्यों टारगेट करते हैं, तो इसमें जो है मीडिया की जो शेयरिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि आजकल हम देखेंगे APK फाइल से फ्रॉड हो रहा है, अननोन लिंक से फ्रॉड हो रहा है, तो वो SMS या उसमें से बेटर व्हाट्सएप पे ज्यादा रहता है, इसलिए साइबर क्रिमिनल्स के लिए काफी ईजी हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज, एक दो चीज और है कि आप व्हाट्सएप को जो है बिना सिम के भी लॉग इन किया जा सकता है। अगर आप देखें तो साइबर क्रिमिनल्स का जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो मेनली यही होता है, या तो वो आपका व्हाट्सएप हैक कर लेंगे या कोई ऐसा नंबर इशू करवा लेंगे जिसको वो सिम नहीं डालेंगे, बल्कि उसको बस लॉग इन करवा लेंगे वाईफाई कनेक्टिविटी से। सेकेंडली, एक और भी चीज है व्हाट्सएप में, एक फीचर है लिंक्ड डिवाइसेस का। मान लीजिए किसी तरह आपका जो हैकर है या फिर व्हाट्सएप जो के माध्यम से क्राइम करना चाह रहा है, वो आपके लिंक डिवाइसेस का यूज करके आपके व्हाट्सएप का एक्सेस ले सकता है। तो ये काफी सारे रीजन है जो क्रिमिनल फ्रेंडली बनाता है इस प्लेटफॉर्म को भी।
0: सर, आजकल व्हाट्सएप के थ्रू सबसे कॉमन साइबर क्राइम्स कौन से देखने को मिल रहे हैं?
1: जी देखिए समृद्धि जी, व्हाट्सएप एक बहुत काफी, क्योंकि मैंने जैसे बताया काफी वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म है, तो इस पे तरह तरह के क्राइम, जैसे डिजिटल रिस्क का क्राइम जो अभी चला था कि आपको एक पुलिस अधिकारी बनके या कोई भी एक एनफोर्समेंट ऑफिसर बनके आपको डराया धमकाया जाता था, तो व्हाट्सएप के थ्रू ही, मान लीजिए वीडियो कॉल आती थी उसी के थ्रू आपको फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाते थे। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट स्कैम है, इन्वेस्टमेंट स्कैम में आपको ग्रुप्स में ऐड कराया जाता था, जहां पे और भी बाकी जो साइबर क्रिमिनल उसके जो साथीगण थे वो भी एडेड होते थे उस ग्रुप में। उस ग्रुप में झूठा झूठा प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते थे ताकि आपको विश्वास दिलाया जा सके, उसी के एवज में वो आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा ठग लेते थे। इसके अलावा APK फाइल्स भेजी जाती है जो मलिशियस फाइल्स होती हैं, जो आपका डेटा हैक कर लेते हैं अगर आप उसे ओपन या डाउनलोड कर लें। URL फ्रॉड्स हैं, अननोन लिंक्स अगर आप को सेंड कर दिया जाए व्हाट्सएप के माध्यम से, आप क्लिक कर लें किसी भी अननोन, या अब आजकल एक PDF फाइल भी आ रही है जो मलिशियस फाइल होती है, तो ऐसे काफी सारे फ्रॉड्स हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से किए जा रहे हैं।
0: सर, हाल ही में बॉस स्कैम के केसेस भी सामने आए हैं, जहां व्हाट्सएप अकाउंट्स या आइडेंटिटीज का मिसयूज करके फेक पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भेजी गई हैं। ये स्कैम कैसे काम करता है और इससे कैसे बच सकते हैं?
1: जी देखिए, बॉस स्कैम का जो अगर हम जानना चाहें, बॉस स्कैम होता क्या है, इसी के नाम में है, बॉस मतलब योर सुपीरियर, एनीवन हु इज सुपीरियर टू योर अथॉरिटी दैट इज सुपीरियर टू यू, तो बॉस हो गए आपके सीनियर्स हो गए। आजकल क्या होता है, लिंक्डइन से हो गए या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल से जो कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स होते हैं उनके सबके फोटोज वहाँ अवेलेबल होते हैं, तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उन्हीं के फोटोज निकाल के एक अननोन नंबर से उसको प्रोफाइल DP लगा के, जो भी नीचे सबॉर्डिनेशन, जो भी सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनका डेटा, मैं बताना चाहूंगा डेटा सबका आजकल सब ओपन ही है, लीक भी हो जाता है, ऐसे मैसेज करते हैं कि आज मैं मीटिंग में हूँ, ये पेमेंट करा दो, अर्जेंट है, दिस इज अर्जेंट एंड डू नॉट कॉल, आई एम बिजी। तो जो जो जो सबॉर्डिनेट जो एक स्टाफ होता है वो ऑब्लिगेशन में वो पैसा पे कर देता है, और इसी तरह से वो ठग लिया जाता है। बाद में जब पता लगता है कि ये तो बॉस नहीं था, ये कोई और ही था, तो इस तरह से बॉस स्कैम आजकल चल रहा है।
0: सर साइबर क्रिमिनल्स आई थिंक इस केस में अर्जेंसी का फैक्टर यूज करते हैं,
1: बिल्कुल
0: और जैसे एम्प्लॉयज है या फिर जो फाइनेंस टीम्स है उनको आदत होती है कि बॉस के ऐसे सिमिलर मैसेजेस उन्हें पास्ट में आए हुए होते हैं जहां उनको
1: जी,
0: कोई पेमेंट रिलीज करनी होती है, तो आई थिंक जल्दबाजी में या बेध्यानी में बिना ध्यान दिए वो इस पेमेंट को आगे प्रोसेस कर देते हैं।
1: देखिए यही होता है, जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, या तो अर्जेंसी दिखाएंगे, या भय दिखाएंगे, या लालच दिखाएंगे। इस केस में बॉस स्कैम में अर्जेंसी दिखाते हैं, क्योंकि बॉस हमेशा एक अर्जेंट एक मोड में रहता है, या पैनिक मोड में। जब काम जब सीनियर जब होता है तो इंसान जो सबॉर्डिनेट साहब होता है पैनिक मोड में आ जाता है, अर्जेंसी में वो काम करता है कि कहीं बॉस बुरा ना मान जाए, कहीं डिले ना हो जाए, कोई चीज मेरी वजह से खराब ना हो जाए। तो जो भी अकाउंट सेक्शन के होते हैं लोग, वो तुरंत जैसे ही बॉस से मैसेज प्राप्त हुआ, चाहे वो मौखिक हो या फिर लिखित हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही हो, वो उसको अनुमति या फिर परमिशन मान के पेमेंट्स होती हैं, या भी कोई भी तरह की जो भी बिल पेमेंट हो गई उसको प्रोसेस कर देते हैं।
0: सर अगर किसी का व्हाट्सएप अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसके कौन से साइंस हो सकते हैं और यूजर्स को तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए?
1: जी देखिए, इसके कई सारे साइंस होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपका जो व्हाट्सएप, आप जब उसे खोलेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज दिखाया जाएगा, दिस नंबर इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड। तो मतलब आपका कहीं अगर कहीं और लॉगिन होता है तो आप लॉग आउट हो जाते हैं अपने जो बेसिक जो आपका व्हाट्सएप होता है। दूसरा, आपको कई बार कॉल्स आने लगेंगे आपके ऊपर कि भाई आपके यहाँ से व्हाट्सएप से डिमांड की जा रही है पैसों की। तो वो मनी फ्रेंड इन नीड वाला जो होता है, एक स्कैम होता है व्हाट्सएप के थ्रू, वही होता है कि आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है। हैक करके आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज किया जाता है कि आई एम इन एन अर्जेंसी, मेरे को एक इमरजेंसी सिचुएशन में मैं आ गया हूँ। तो वो जब कॉन्टैक्ट्स को मैसेज जाता है तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी आपको बताना शुरू कर देंगे कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया। दूसरा, एक और होता है, अगर आप अपने व्हाट्सएप ऑप्शंस में जाए, लिंक डिवाइसेस में अगर ऑप्शन खोले, वहां पे कोई अननोन डिवाइस आपका अगर दिख जाए, तो मान लीजिए आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज हो गया, कहीं और डिवाइस में भी वो पैरेलली ऑपरेट हो रहा। ये कुछ साइंस है जिससे हम व्हाट्सएप हैकिंग का पता लगा सकते हैं।
0: सर हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी सेटिंग्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें हर यूजर को आज ही एनेबल कर लेना चाहिए?
1: जी, कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो मैंने खुद भी कर रखी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना प्रोफाइल पिक्चर या फिर जो स्टेटस है वो सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को ही विजिबल करना है, क्योंकि जो आप कॉन्टैक्ट सेव करेंगे वो आपके ट्रस्टवर्दी लोग होंगे, आप जानते होंगे किसी ना किसी तरह, कोई अननोन आदमी को वो विजिबल नहीं होगा, वो आपके पिक्चर या फिर स्टोरी या फिर उससे स्क्रीनशॉट लेके मिसयूज नहीं कर सकते। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी हैकिंग होने से क्या बचा सकते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप एनेबल कर सकते हैं। कभी भी देखिए, व्हाट्सएप हैकिंग कैसे होती है कि आपका ओटीपी आपसे ले लिया जाता है, वो या तो कॉल फॉरवर्डिंग के माध्यम से ले लिया जाता है, या फिर एपीके फाइल से आपका एसएमएस फॉरवर्डर लग जाता है। तो कॉल या एसएमएस के माध्यम से भी ओटीपी प्रोवाइड किया जाता है। जब ये दोनों चीजें आपके मोबाइल में या आपके एपीके फाइल के माध्यम से ले लिए जाते हैं तो व्हाट्सएप हैक होता है। इसलिए हमें टू लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, दैट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, एक पासवर्ड वो आपसे 6 डिजिट का मांगेगा, वो आपको एनेबल कर दीजिए। अगर कहीं से कोई आपका हैक भी करना चाहेगा तो विदाउट दैट पासवर्ड वो आपको लॉग इन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स और है, जैसे आप एक अननोन नंबर को साइलेंस कर सकते हैं, आपकी सेटिंग्स में ही होता है, उसको भी अननोन नंबर को साइलेंस कर दीजिए, काफी हद तक आप साइबर क्रिमिनल से बच सकते हैं। और ऑटो डाउनलोड को भी आप पॉज कर दीजिए, ऑटो डाउनलोड कोई फाइल ना हो। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं।
0: सर अगर किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या ऑफिस कलीग के व्हाट्सएप से अचानक पैसे मांगे जाए या अर्जेंट रिक्वेस्ट आए तो उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने का सबसे सेफ तरीका क्या है?
1: जिस देखिए, जब भी अर्जेंसी हो, ऑनलाइन माध्यम पे मैं हमेशा ये एडवोकेट करता हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई आपको अर्जेंसी दिखाए तो उस पर बिल्कुल मत जाइए, उस पर रुकिए, सोचिए और फिर एक्शन लीजिए, जैसे हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। इसके अलावा वेरिफिकेशन के काफी और तरीके होते हैं। आपका जो जो भी आपका पर्सन जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, जो आपसे पैसा डिमांड कर रहा है अर्जेंसी में, आप उससे एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉल करके देखिए, अगर कॉल नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आपको दिस शुड रेज एन अलार्म कि हो सकता है कुछ दिक्कत है। फिर भी आप एक क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं, कि जो आप ऐसी बातें पूछ लीजिए जो सिर्फ आप दोनों को पता हो, तो आप वेरिफिकेशन के ऐसे पर्सनल मोड भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो मैं एडवोकेट करता था, I4C की जो वेबसाइट है, जो हमारा पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर भी एक ऑप्शन आता है जहां पे आप सस्पेक्ट रिपोजिटरी में जाके सस्पेक्ट नंबर्स को जाके वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी नंबर से, अननोन नंबर से आपको ये बताया जा रहा है या किसी नंबर से ये आ रहा है कि मेरे को अर्जेंटली पैसे के रिक्वायरमेंट है और कहीं पे उसके ऊपर कंप्लेंट हो चुकी हो, कहीं पे मान लीजिए किसी ने पैसा भेजा, उसका कंप्लेंट का डेटा जो है एनसीआरपी के डेटाबेस में होता है। तो आप जब सस्पेक्ट रिपोजिटरी में जाके वो नंबर को चेक करेंगे तो हो सकता है उस पर कंप्लेंट फाइंड हो, और अगर उस पर कंप्लेंट आ गई हो आप मान लीजिए किसी फ्रॉडसर का नंबर, तो कुछ वेज ऐसे हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकते।
0: सर, आखिर में अगर किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाए या उसके नाम से फ्रॉड किया जा रहा हो तो तुरंत उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
1: देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए अगर उसका व्हाट्सएप हैक हुआ है तो उसे पता लग जाना चाहिए कि, क्योंकि वो लॉग आउट हो जाएगा, तो तुरंत उसे कोशिश करनी चाहिए लॉगिन की, दोबारा लॉगिन करने की, दोबारा लॉगिन करने की। अब पहले रीजंस भी हमें देखने पड़ेंगे किस वजह से उसका जो है व्हाट्सएप हैक हुआ है। अगर हैक हुआ है तो या तो हो सकता है कॉल फॉरवर्डिंग, तो उसको कॉल फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग का चेक करना होगा कि कॉल फॉरवर्डिंग अगर लगी है तो उसे डिसेबल करें। दूसरा कोई ऐसी एपीके फाइल तो उसके मोबाइल में नहीं आ गई है जिसके वजह से उसके एसएमएस फॉरवर्ड हो रहे, तो वो उस एपीके फाइल को ढूंढ के डिलीट भी करना होगा, तब जाके उसे लॉगिन करना होगा अपना जो व्हाट्सएप है उसे, या तो ऐप डिलीट करें, रीइंस्टॉल करके फिर से लॉगिन करें। अगर ये इससे भी काम नहीं बन रहा है, इससे भी आप अगर व्हाट्सएप को रिट्रीव नहीं कर पा रहे, तो आप 1930 पे जाके 1930 जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है उस पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और इमरजेंसी केसेस में आपके नियरेस्ट साइबर सेल पे भी जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे यूपी में हमारे हर थाने पे एक साइबर हेल्प डेस्क हम लोगों ने स्टैब्लिश की है, तो आप हर थाने में भी जाके साइबर हेल्प डेस्क की भी हेल्प ले सकते हैं।
0: जी सर, व्हाट्सएप के थ्रू बढ़ते साइबर क्राइम्स, अकाउंट सिक्योरिटी और हिडन वार्निंग साइंस पर आपकी गाइडेंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही। हमें उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद लोग व्हाट्सएप पर आने वाले हर मैसेज, लिंक और पेमेंट रिक्वेस्ट को वेरीफाई जरूर करेंगे और अपने अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग्स भी जरूर चेक करेंगे। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वीक साइबर सेफ लाइव ब्रॉट टू यू बाय साइबर दोस्त, द ऑफिशियल साइबर सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आज साइबर जागरूकता दिवस है, जो गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सिटीजन्स में साइबर सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल प्रैक्टिसेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना है। और आज साइबर जागरूकता दिवस के अवसर पर हम बात करने वाले हैं फेक वेबसाइट्स के थ्रू होने वाले साइबर फ्रॉड्स के बारे में, एक रियल केस के थ्रू। इस केस में फ्रॉडस्टर्स ने बिहार टूरिज्म हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर एक फेक वेबसाइट क्रिएट की थी, जहां पटना, राजगीर, नालंदा और बोधगया जैसे डेस्टिनेशंस के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग और पेमेंट की सुविधा दी जा रही थी। वेबसाइट को जेन्युइन टूरिज्म बुकिंग पोर्टल की तरह प्रेजेंट करके सिटीजन्स को ऑनलाइन पेमेंट के लिए टारगेट किया जा रहा था। बिहार पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े अक्यूज को अरेस्ट किया, डिजिटल डिवाइसेस और रिकॉर्ड्स रिकवर किए और फ्रॉडुलेंट वेबसाइट को डीएक्टिवेट करवाया। आज इसी केस को समझने और फेक वेबसाइट से बचने के प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करने के लिए हमारे साथ है मिस संगीता कुमारी, डीएसपी का मैसेज साइबर क्राइम पटना, बिहार पुलिस। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
1: थैंक यू।
0: और व्यूअर्स, अगर आपके पास फेक वेबसाइट्स या ऑनलाइन बुकिंग स्कैम से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब सेशन के दौरान या सेशन के बाद दिया जा सके। मैम, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इस केस में फ्रॉडस्टर्स ने सिटीजन्स को टारगेट करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज की?
1: इस केस में फ्रॉस्टर ने बिहार टूरिज्म का एक वेबसाइट बनाया था जो देखने में बिल्कुल ही असली था। प्रोफेशनल डिजाइनिंग थी उसकी, उसमें प्रॉपर कॉन्टेक्ट डिटेल्स था, पेमेंट डिटेल्स थे और पैकेजेस थे। इस तरीके से उन्होंने अपना एक वेबसाइट बना के रखा था और उससे फ्रॉड कर रहे थे।
0: तो मैम, आज फेक वेबसाइट्स काफी प्रोफेशनल और जेन्युइन दिख सकती हैं। ऐसे में कोई सिटीजन कैसे चेक कर सकता है कि वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं?
1: हाँ, आजकल तो साइट्स बहुत ही जेन्युइन दिखाई दे रही है, बट इसको चेक किया जा सकता है। जैसे इस केस में बिहार टूरिस्ट डॉट कॉम यूज, कोई सरकारी वेबसाइट होता है तो वो सेफ होता है, उसमें .gov.in या फिर NIC.in इस टाइप से वो वेबसाइट्स होती है। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स देखा जा सकता है। इस केस में बिहार टूरिज्म का स्पेलिंग गलत था, टू EOUREST यूज किया गया था। तो इन चीजों का अगर ध्यान देंगे हम लोग तो शायद हम लोग वेबसाइट्स पहचान सकते हैं कि हाँ, ये गलत वेबसाइट है।
0: हम मान लीजिए कोई सिटीजन गूगल सर्च, सोशल मीडिया, किसी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी बुकिंग वेबसाइट पर पहुंचता है, तो पेमेंट करने से पहले उसे क्या-क्या वेरीफाई करना चाहिए?
1: हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो गूगल में सबसे पहले ऊपर में स्पॉन्सर्ड एड्स करके वेबसाइट्स खोलते हैं।
0: जी
1: पहली बात तो आप स्पॉन्सर्ड एड्स वाले वेबसाइट ना खोलें, फिर एक जेन्यून वेबसाइट का आप डायरेक्ट टाइप करें उसमें ब्राउजर में और उस तरीके से खोलें। तो इससे आप पहली बात आप गलत वेबसाइट पे ही नहीं पहुंचेंगे। फिर अगर आप पहुंच भी गए हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आप उसके UPI ID को देखें, उसमें जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है उसको ऑथोराइज डायरेक्टरी से एक बार ही चेक कर लें, फिर तब जाके आप पेमेंट करें उस पर।
0: मैम, और कई बारी QR कोड, जैसे आपने बताया, अकाउंट का नेम भी वेरीफाई किया जा सकता है, या फिर अगर उधर अगर बिजनेस अकाउंट है तो यूजुअली वहां मेंशन होता है कि एक बिजनेस अकाउंट है, तो आई थिंक वो भी वेरीफाई किया जा सकता है।
1: हाँ,
0: मैम, इस केस की इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस ने अक्यूज तक पहुंचने में किस तरह से मदद की, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या इंपॉर्टेंट लीड सामने आए?
1: इस केस में बेसिकली हमें वेबसाइट से तीन चीजें मिलती थी। एक तो वेबसाइट वेबसाइट कहाँ होस्ट हो रहा है वहां से डिटेल्स निकलते हैं। फिर UPI दिया था इन्होंने, नावी ऐप का यूज कर रहे थे ये लोग। और तीसरा एक कॉन्टेक्ट डिटेल दिया था जिसपे व्हाट्सएप चैट कर रहे थे। इन तीन बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेट किया था और वहां से ही सारे डिटेल्स निकल के आए।
0: हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ्रॉडुलेंट वेबसाइट को डीएक्टिवेट भी करवाया गया था, तो ऐसे केसेस में फेक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करके उस पर टाइमली एक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है?
1: ये बहुत जरूरी है। जैसे ही कभी भी हमें कोई फेक वेबसाइट मिलता है तो उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो वायरल होता जा रहा है और उस पर बहुत सारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा फ्रॉड हो रहा है उसकी वजह से। तो
0: मैम, आई थिंक जैसे साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर तो रिपोर्ट किया भी जा सकता है, क्या और कोई तरीका है जिससे लोग पहले पहचान, जैसे हमने डिस्कस किया कि नाम देखें, स्पेलिंग देखें, गवर्नमेंट का अगर जीओवी डॉट इन या एनआईसी डॉट इन जरूर देखें, तो
1: हाँ
0: और कोई तरीका है अगर उन्हें पता चल गया है कि ये गलत वेबसाइट है तो फिर उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए?
1: नहीं, आप 1930 पे कॉल करके भी एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, फिर वहां से भी एक्शन होता है। दूसरा एक वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, जो आपको पता है उस पर कर सकते हैं। लेकिन ना, कंप्लेंट करने से पहले जब भी आपको फेक वेबसाइट्स का पता चल रहा है तो डिजिटल एविडेंसेस सेव करें, से स्क्रीन ले उसका, उस वेबसाइट का URL सेव कर ले, ये सब जरूरी होता है।
0: हम जैसे कि आपने बताया फेक वेबसाइट्स का थ्रेट सिर्फ टूरिज्म या ट्रैवल बुकिंग सब तक अब लिमिटेड नहीं रहा है आज, और किन तरह के फेक वेबसाइट्स के थ्रू सिटीजंस को टारगेट किया जा रहा है, और इन्हें पहचानने के लिए कौन से कॉमन वार्निंग साइंस पर हमें ध्यान देना चाहिए?
1: आजकल हर फील्ड में ही फेक वेबसाइट्स बन रहे हैं। सबसे ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बन रहा है। एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना होता है, वो बिल्कुल ही फेक होता है। तो आपको मेनली वही देखना है कि कोई भी ऑथोराइज वेबसाइट है तो उसका .com वाला सीन देखना है आपको, कि वो .com .co.in यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप ऑथोराइज डायरेक्टरी सर्च कीजिए गूगल पे, वहां से कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैच कीजिए। अभी आपके पास ट्रू कॉलर का भी ऑप्शन है, बहुत सारे केसेस में वो नंबर स्पैम में दिख जाता है ऑलरेडी, फिर भी लोग पे अटेम्प्ट कर दे। तो इन सब चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो बच सकते हैं।
0: हम हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, अगर किसी सिटीजन से फेक बुकिंग वेबसाइट पर पेमेंट हो जाए तो उन्हें तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अपने बैंक में कॉल करके आप अपना अकाउंट फ्रीज करवा दीजिए, फिर उसके बाद 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट कीजिए, या फिर cybercrime.gov.in पे। हाँ, लेकिन जब पेमेंट कर रहे थे तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, उस ट्रांजेक्शन आईडी।
0: मैम, आखिर में ऑनलाइन बुकिंग या पेमेंट करने से पहले एक सिटीजन को आप कौन सी एक हैबिट जरूर अडॉप्ट करने की सलाह देंगी?
1: हाँ, एक हैबिट है जो आप लोग का शायद मोटो भी है, पहले सोचे फिर करें, पहले थिंक देन एक्ट।
0: थैंक यू मैम, आज के सेशन में हमें एक रियल फेक टूरिज्म वेबसाइट केस के थ्रू समझ आया कि ऑनलाइन कोई वेबसाइट प्रोफेशनल या जेन्युइन दिखने भर से ट्रस्टवर्दी नहीं हो जाती। हमें ये भी जानना है कि फेक वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं, सिटीजन्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और पेमेंट से पहले क्या वेरीफाई करना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन बुकिंग या पेमेंट करते वक्त एक सिंपल सा रूल याद रखिए, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस साइबर जागरूकता दिवस स्पेशल साइबर सेफ लाइव सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वेंसडे सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे साइबर अलर्ट। थैंक यू।
1: थैंक यू फॉर
0: दिस वीक्स

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बेहतरीन गीत के बाद मैं मोना आज पुनः आप दोस्तों के बीच आ चुके हूँ। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, कुछ बेहतरीन बातों के साथ, सवाल के साथ और कहानियों के साथ आप दोस्तों के बीच जरूर आऊंगी। और कल है श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। विशेष ब्रह्मा कुमारीज भी इस चीज को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन प्रांगण में हमने झांकी आयोजित की है। तो प्लीज आप सभी इस झांकी को देखने के लिए आबू निवासी खास आ सकते हैं और आप सभी का बेहद स्वागत है कार्यक्रम में, रेडियो के कार्यक्रम में भी और उस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए भी जो शाम के 7 बजे से शुरू होगा, प्रारंभ होगा और रात्रि 10 बजे तक चलेगा। तो आप इस दौरान 3 दिन में, कल से शुरू होने वाला है, कल है शुक्रवार का दिन, शनिवार और रविवार तक ये पूरा 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो आबू निवासी दूर दराज से अपने रिश्तेदारों के साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि आप उड़ान के साथ जुड़े हैं। तो थोड़ी देर में 3 अनोखे दोस्तों की कहानी आपके लिए लेकर आ रही हूँ मैं उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

इंसाफ की डगर पर इंसाफ मिलने का हक सभी को है और इंसाफ के लिए ही तो कई बार यहाँ तक लोग बाग पहुंच जाते। अब दो ऐसे शब्द हैं जिनका आम तौर पर किस जगह से संबंध है। चार्जशीट और प्राथमिकी आम तौर पे किसके साथ संबंधित शब्द हैं? चार्जशीट, प्राथमिकी आम तौर पर इनमें से किसके साथ संबंध शब्द हैं? ए पुलिस स्टेशन, बी स्टेडियम, सी पार्क। ए पुलिस स्टेशन, बी स्टेडियम, सी पार्क। सही जगह सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर।

नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर? हेलो हेलो, नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है, बताइए सर।
1: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग
1: को नमस्कार।
0: थैंक यू।
1: सभी को नमस्कार। अच्छा प्रोग्राम चल रहे है और अच्छे गीत भी चल रहे है, जानकारी भी चल रही है और सवाल का जवाब ऑप्शन ए।
0: ऑप्शन ए ठीक है। थैंक यू। चलिए,
1: थैंक यू, शुक्रिया।

0: शिव शक्ति योगेश्वरी। चार्ज शीट और प्राथमिकी आमतौर पर इनमें से किससे संबंधित शब्द हैं? ए
1: पुलिस स्टेशन, बी है स्टेडियम, सी है पार्क।
0: जी झटपट जवाब देना, नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर,
1: सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए वेलकम बैक। दोस्तों रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में मेरे साथ हैं
2: रूहानी।
1: चलिए काफी दिनों बाद हमारी सहेली आ चुकी है तो अमेजिंग जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। वैसे खेलों की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी ही नहीं है, आज तो कई ऐसे नए खेल लोकप्रिय बनते जा रहे हैं और इनमें से एक खेल है पैडल।
2: पैडल एक रैकेट खेल है जिसमें टेनिस और स्क्वैश दोनों की झलक मिलती है। यह आमतौर पर दो दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। यह टेनिस जैसा दिखता है लेकिन इसमें चारों ओर कांच की दीवारें होती है। खिलाड़ी गेंद को दीवार से टकराकर भी खेल सकते हैं, यही इसे और भी रोमांचक बनाता है।
1: चलिए इसके बाद मैं बात कर रही हूँ पिकल बॉल की। ये खेल टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस का शानदार मिश्रण है। छोटे से कोर्ट और हल्के पैडल के साथ खेला जाने वाला ये खेल बच्चों को लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। पिकल बॉल दुनिया के सबसे तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पहले ये मुख्य रूप से अमेरिका में ही खेला जाता था लेकिन अब ये 80 से भी ज़्यादा देशों में खेला जा रहा है।
2: ओमेगा बॉल, जरा सोचिए अगर मैदान में दो नहीं बल्कि तीन टीमें एक साथ खेले तो कैसा होगा। यही ओमेगा बॉल की खासियत है। यह त्रिकोणाकार मैदान में खेला जाता है और इसमें तीन गोला पोस्ट होते हैं। ओमेगा बॉल में तीन टीमें एक साथ खेलती हैं। भीड़ में भी अब इसकी शुरुआत हो चुकी है।
1: वहीं पर फ्रिस्बी भी है। इस खेल में गेंद नहीं बल्कि उड़ने वाली तश्तरी होती है, डिस्क होती है जिसका इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे अनोखी बात है कि इसमें आमतौर पर रेफरी नहीं होते, खिलाड़ी ईमानदारी से खुद ही अपना नियम पालन करते हैं।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इस खेल में खिलाड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल दीवार पर तेजी और फुर्ती से चढ़ते हैं। इसमें ताकत, संतुलन और साहस तीनों की परीक्षा होती है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग अब ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है। अब भारत में भी कई शहरों में क्लाइंबिंग सेंटर खुल चुके हैं।
1: और अब बात कर रहे हैं हम आगे की, वो है टेक बॉल की। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो टेक बॉल भी मज़ेदार लगेगा। इसमें घुमावदार टेबल पर फुटबॉल खेली जाती है। इस खेल की खासियत ये है कि इसमें खिलाड़ी हाथों का उपयोग नहीं करते। यह खेल फुटबॉल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है, मतलब किक से एक्चुअली ये बॉल पूरी तरह से खेला जाता है।
2: योगासन स्पोर्ट्स, योग अब सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतियोगी खेल भी बन चुका है। इसमें खिलाड़ी कठिन योग मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं और संतुलन, लचीलापन तथा एकाग्रता के आधार पर अंक प्राप्त करते हैं।
1: तो आपने कई ऐसे खेलों के विषय पर जानकारी प्राप्त की, तो चलिए सवाल पुनः दोहरा देते हैं। सवाल है, चार्ज शीट और प्राथमिकी आम तौर पर इसमें से किस से संबंधित शब्द है। ए
2: पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी है स्टेडियम, ऑप्शन सी है पार्क।
1: चलिए जब खेल की बात हो तो छलांग लगा ले।
3: हर प्लेयर के लिए सबसे जरूरी होते हैं तीन एस, स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। एक में भी कमी रहेगी तो प्लेयर में कमी रहेगी। क्या क्या?
4: स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ।
3: शाबाश।

0: अरे ले छलांग, खेलों की दुनिया का जादू खेल हमें सिखलाते। आओ बच्चों, आज तुम्हें मैं एक बात बतला दूं।
1: खेलों का कितना महत्व है यह तुमको समझाऊं। खेलों से सब कुछ मिल सकता, हमको हंसाते गाते, खेल खेल खेल में सारे बच्चे सेहत खूब बनाते,
0: उछल कूद कर मस्ती करते, जीवन का सुख पाते। यह आनंद बिना पैसे का है, हम खेलों से ही तो पाते।
1: खेल खेलने से ही बच्चों खेल भावना आती है, खेल खेल में जीवन के सब बिगड़े काम बनाते हैं। हार जीत के ऊपर उठकर हम आदर्श बनाते हैं।
0: रुपया पैसा धन दौलत सब खेलों से ही मिल जाते हैं। सचिन घुमा घुमा कर अपना बल्ला लाखों लाख कमाता है, नाम और धन पाकर दोनों फूले नहीं समाते हैं।
1: खेल की दुनिया का जादू खेल हमें सिखलाते हैं।
0: बिल्कुल, खेल की ये खूबसूरत दुनिया है। तो चलिए, ये गाना एक और आपके लिए है, पर उससे पहले सवाल है, चार्ज शीट और प्राथमिकी आम तौर पर इनमें से किससे संबंधित है? ए
1: पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी स्टेडियम, ऑप्शन सी पार्क।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बहुत साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उस नाई के घर पर उसकी बीवी और उसका एक बेटा रहता था। नाई के मन में बिल्कुल शांति नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा दीनानाथ चूंकि 20 साल का था, लेकिन वो नाई का काम सीखना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा हुनर था और वो
1: दिनू, आ दिनू, उठ जा, अभी तेरा पिताजी आ जाएंगे घर पे, जल्दी उठ, उठना दिनू।
2: माँ, पिताजी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो अभी भी बाल काट रहे हैं, मुझे कैंचे की आवाज आ रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए,
3: मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना।
1: ओह, एक बात भी इसको सुनाई नहीं देती है। एक काम कर, जब तेरे पिताजी इस दुकान से निकलेंगे ना, तब तू मुझे आवाज दे देना, तब मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी, ठीक है?

0: माँ पिताजी आ रहे हैं, खाना तैयार रखो।
1: ठीक है।
2: अच्छा महाराज, अभी भी बिस्तर पर पड़े हो? कुछ काम धंधा वगैरह नहीं करोगे? जरा हाथ भी तो बटा सकते हो, आके मेरे साथ काम भी तो सीख सकते हो।
0: काम? और वो भी बाल काटना? ये मैं हरगिज नहीं करूँगा। मैं दूर दूर की आवाजें सुन सकता हूँ, ये क्षमता है मेरे पास। बाल काटने से भी बड़ा काम करूँगा मैं एक दिन।
2: तो फिर क्या करेगा बताओ जरा।
0: मैं राजा जी के पास जाऊँगा और राजकुमारी से शादी करूँगा और उनका राज्य मैं चलाऊँगा।
2: इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देख, अगर सच में कुछ करना है तो घर से बाहर निकल और देख जरा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
0: इतनी सी बात के लिए आपने मुझे खरी खोटी सुनाई? माँ मैं आज ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
2: मैंने बिल्कुल सही कहा, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और ये लेटे लेटे राजकुमारी से शादी के सपने देखता रहता है। जा, निकल निकल जा, अभी के अभी जा, जा।
0: हाँ हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, आप लोगों को छोड़ के मैं अभी चले जाता हूँ।
1: दीनू, दीनू बेटा सुन मेरी बात, कहाँ जा रहा है तू बेटा, मत जा बेटा। दीनू
0: बात कुछ भी नहीं थी और मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी उन्होंने। मैं अब घर कभी नहीं जाऊंगा, उनके बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा और मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा। और अब जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूं मैं घर लौटूंगा ही नहीं। ओ भाई, सारे आम तुम खा लोगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे? इतना सारा आम खाना बंद करो, इतने मत खाओ। तुम कौन हो?
3: मेरा नाम कानू है, मैं जितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं, इसलिए मैं खाते रहता हूँ।
0: ये तुम क्या बोल रहे हो?
3: हाँ तो आज तक मेरा पेट कभी भरा ही नहीं, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि तेरा हाथी जैसा पेट भरना मेरे बस की बात नहीं है।
0: अगर तुम इतना खाते रहोगे तो कोई भी पेड़ में एक भी फल नहीं बचेगा, फिर बाकी लोग क्या खाएंगे बताओ जरा। उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो।
3: राजमहल?
0: हाँ राजमहल, राजमहल पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रहेगी। चलो चलो चलो, अब मेरे साथ चलो।
3: हाँ ठीक है, चलो चलो राजमहल चलते हैं।
0: हाँ तुम्हारे जैसा ही मेरे पास भी एक खूबी है, चलो चलते चलते तुम्हें बताता हूँ।
3: तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा गुण है, देखना राजा जी राजकुमारी का विवाह तुमसे कराएंगे।
0: दोस्त तुमने कोई आवाज सुनी? पता नहीं यहाँ पर कौन जोर जोर से खराटे मार के सो रहा है। हाँ बहुत दूर से आवाज आ रही है, चलो चल के देखते हैं, पता नहीं कौन सो रहा है।
4: अरे शांति से सोने दोगे या नहीं? घर पर भी कोई सोने नहीं देता और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो।
0: किसने तुम्हारी नींद खराब करी बताओ जरा?
4: अरे अब मैं क्या बताऊँ, ऊपर से एक पत्ता नीचे गिरा और जमीन कांपने लगी। अब इतनी जोरों से जमीन कांपेगी तो बंदा कैसे सोएगा? इतनी जोरों से जमीन हिलेगी तो बंदा कैसे सो पाएगा?
0: ये तुम क्या बोल रहे हो, ऊपर से एक पत्ता गिरा जमीन हिलने लगी तुम्हारी नींद खुल गई?
4: अब बोलो मत, मैं तो ऐसा ही हूँ, सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए तभी तो मैं सो पाऊंगा। कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। पत्ते की क्या बात कर रहे हो, एक चींटी भी सरक के जाती है ना तो मेरी नींद खुल जाती है, एक केचुआ भी चलता है ना तो उससे मुझे गुदगुदी होती है, उससे मेरी नींद तुरंत खुल जाती है।
0: अरे वाह, तुम्हारे पास भी अद्भुत कला है, चलो मेरे साथ राजमहल चलो, वहाँ तुम आराम से सो पाओगे।
4: पर तुम कौन हो ये तो बताओ, अपने बारे में कुछ तो बताओ।
0: वो हम तुम्हें जल्दी जल्दी बताएंगे।

0: ए, तुम लोग कौन हो? अब क्यों आए हो मुझसे मिलने?
1: हम आपकी राज्य की प्रजा है राजा जी।
0: ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें?
1: राजा जी, ये कानू और भानु को राजमहल में खाने और सोने की जगह दे दीजिए। और मैं हूँ दीनानाथ, मैं आपकी बेटी मधुबाला जी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ।
0: शादी हा? राजकन्या से शादी? बहुत बढ़िया, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, पर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकता। ऐसे कैसे संभव है राह चलते आदमी के साथ शादी करा दूँ? मैं उसके लिए काबिल इंसान ढूंढ रहा हूँ।
1: हाँ, मैं भी तो एक काबिल इंसान हूँ। अगर आप मेरी काबिलियत देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, हम तीनों के पास अलग अलग विशेष गुण है।
2: हाँ राजा जी, मैं कानू हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, आप कितना भी खिलाइए मेरा पेट भरता ही नहीं।
3: और मैं हूँ भानु, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे सोने के बाद हर चीज सही चाहिए। आप मुझे कितना भी अच्छा बिस्तर दे दीजिए, अगर उसमें कुछ गलती हुई तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा और मैं सो भी नहीं पाऊंगा।
1: और मैं बहुत दूर की ध्वनि सुन सकता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो हम तीनों अपनी अपनी कला दिखा सकते हैं।
0: ठीक है, तुम दिखाओ तुम्हारा हुनर, अगर हमें जो भी दिखाए पसंद ना आए तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, समझ गए ना?
1: हाँ ठीक है, अगर हम तीनों ने अपनी अपनी कला आपको दिखा दी तो आप कानू को जिंदगी भर खिलाएंगे और भानु को जिंदगी भर सोने देंगे और अपनी राजकुमारी से मेरी शादी तुरंत कर देंगे। बताइए, आपको शर्त मंजूर है? मंजूर है ना?
0: मंजूर है। सुनो, तुरंत खाने का प्रबंध करो।
4: हम देख रहे हैं कि कानू बैठकर खाना खा रहा था और राजा जी, दीनू और उसके दोस्त उसे खड़े रहकर देख रहे थे और कानू ने आंख झपकते ही सारा खाना खत्म कर दिया और राजा जी तो हैरान रह गए। वो ताली बजाकर फिर से खाना लाने के लिए कहते हैं और कानू फिर से सारा खाना खत्म कर देता है। इसी तरह बार बार खाना आता रहता है और कानू उसे खत्म कर देता है और इस तरह ऐसा वक्त

0: कि राजा जी का रसोई घर पूरा खाली हो गया। राजा जी फिर से ताली बजाते हैं। तब रसोईया आकर कहता है,
1: और खाने के लिए कुछ नहीं बचा है राजा जी, सब खाना खत्म हो गया है, सब कुछ।
2: देख लिया राजा जी, अब कानू का हो गया भानु की बारी है।
3: ए, तू जा और 7 गद्दियों से एक बिस्तर बना दे, जा जल्दी जा। हमारे सेवकों ने बहुत अच्छे से साफ करके बिस्तर बनाया है, मैंने खुद सोकर देखा है, इसमें कोई खोट नहीं है। अब मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, चलो बिस्तर पर सो जाओ। क्या हुआ, क्यों उठ गए?
4: मुझे नींद नहीं आ रही है राजा जी, बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा है।
3: चुभ रहा है? क्या चुभ रहा है?
4: ये 6 और 7 गद्दे के बीच में छोटा सा बाल है, वही बाल मुझे सोने नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे सोऊं?
2: देखा राजा जी, भानु का कमाल, अब मेरी बारी है।
3: इन तीनों में सच में हुनर है, इनका और हुनर नहीं देखूंगा मैं। इस लड़के के साथ में मेरी इकलौती बेटी की शादी नहीं कराऊंगा मैं। ना ना ना ना ना, ना ये संभव है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें और हुनर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब घर जा सकते हो।
2: घर पर शर्त के हिसाब से तो मुझे।
3: अरे शर्त की बात मत सुनाओ मुझे, मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई भी शर्त मेरे लिए मायने नहीं रखती।
2: पर आप राजकुमारी का रिश्ता मेरे से नहीं करना चाहते, ठीक है? हाँ सुन लीजिए, मैंने अभी सुना कि घोड़े के अस्तबल में मंत्री और सेनापति आपको मारने का तरकीब सोच रहे हैं, मैंने अभी सुना है।
3: क्या बकवास कर रहे हो तुम?
2: मैं सही कह रहा हूँ राजा जी, मानिए मेरी बात। ये देखो वो वही बात कर रहे हैं, आपको मारने की ही बात कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने कमरे में सोएंगे, वो आप आज रात को ही वो आपको मारेंगे। सेनापति और मंत्री दोनों मिलकर आपको मारेंगे।
3: क्या बात कर रहे हो, किंतु?
2: कोई किंतु नहीं राजा जी, आज रात को आपके साथ हमें रहने दीजिए। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है कि कैसे मैं आपको बचा सकता हूँ।
0: देर रात हो जाती है, राजा के शयन कक्ष के बाहर मंत्री और सेनापति आकर खड़े हो जाते हैं। वो धीरे से राजा के शयन कक्ष का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बिस्तर पर एक चादर के नीचे कोई सोया हुआ है। वो दोनों बिस्तर के पास पहुंचते हैं और मंत्री सेनापति को इशारा करता है और सेनापति जोर जोर से उसे तलवारों के वार से मारने लगता है और मंत्री तब कहता है,
4: आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ।
3: और मैं मंत्री हूँ।
4: छोड़ो मुझे, क्यों मुझे पकड़ा है? छोड़ो, मैं आज से नया राजा हूँ।
5: राजा जी, आपने हमें बेवकूफ बनाया।
4: छोड़ दीजिए महाराज, गलती हो गई हमसे।
3: हमारे साथ दगाबाजी, ए जाओ इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो, इनकी व्यवस्था मैं बाद में करता हूँ, ले जाओ इन्हें। दीनानाथ, मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम ना होते तो आज मैं जान से हाथ धो बैठता और इस राज्य का सर्वनाश हो जाता। तुम ही मेरे योग्य दामाद और राज सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी, मैं आज ही मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा।
0: और इसी वक्त से दीनानाथ का सपना पूरा हो जाता है, पूरे राज्य में खुशियाँ फैल जाती हैं, सारे नगर के लोग खुशियाँ मनाते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं, ढोल

0: हम दीपक छोटे छोटे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सवाल पुनः एक बार और दोहराते हैं।
1: चार्जशीट और प्राथमिकी आमतौर पर इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी है स्टेडियम, ऑप्शन सी है पार्क।
0: बिल झटपट जवाब देना और हम सबको कोमल मत समझना, क्योंकि गीत ऐसा ही है आपके लिए। दोस्तों कोमल जरूर समझना, कमजोर नहीं समझना, ये वाक्य है।

0: कोमल है पर कमजोर नहीं, इस गीत के साथ साथ आज के सवाल का जवाब भी आप दोस्तों को जरूर देना चाहेंगे। चार्ज शीट और प्राथमिकी आमतौर पर इनमें से किससे संबंधित है? हमने आपके सामने ऑप्शन रखा था, ए पुलिस स्टेशन, बी स्टेडियम, सी पार्क। तो रूहानी, पार्क है ना सही जवाब?
1: नहीं।
0: फिर स्टेडियम?
1: नहीं।
0: तो
1: ऑप्शन ए, पुलिस स्टेशन।
0: वेल, डरावनी सी जगह है, लेकिन कई बार इन जगह पर जाकर ही हमें न्याय भी मिलता है और सही समय पर इनका आज के दिन पर उपस्थित होना आवश्यक भी है। ये काफ़ी हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। साथ ही साथ हम यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इनकी तरफ कभी भी हमें रुख ना करना पड़े, हमारा जीवन इतना स्वस्थ और सुंदर हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे,
0: और कल हम खास लेकर आएंगे जन्माष्टमी पर पूरा कार्यक्रम। हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल को कभी नहीं भूल पाते। जिस गाँव और जिस अंचल में हम पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे, वो गाँव को हम स्वर्ग जैसे मानते हैं। क्यों नहीं, गाँव अपना ही होता है। मेरा गांव मीन्स मेरा शब्द जहाँ लगता है वहाँ स्नेह खुशी आनंद शक्ति मिल जाता है। तो मेरा में इतना ममत्व है। तो मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम को लेकर आज हम रेडियो मधुबन की तरफ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के और राजकीय विद्यालय सहयोग से आज बच्चों का हुनर को बारी बारी सुनने को मिलेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा में पहुंचे जो कि रेबदर तहसील में। तो हमें खुशी मिलता है जब गांव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, पोषार को लेकर, स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम पहुँचते हैं। तो आज जन जन तक पहुँचाने के लिए विद्यार्थियों का आवाज़ को रखेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा का आवाज़ आज आपके पास रखने जा रहे। तो पहला प्रस्तुति के लिए हमारे सभी बच्चे तो उपस्थित है, लेकिन जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, इतना बच्चे हैं लेकिन सिलेक्टेड विद्यार्थी आए हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। जैसे ललिता, सजना, सभी को नाम का साथ स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम को एक प्रार्थना के रूप में प्रस्तुतकरण करेंगे। माँ सरस्वती को याद करते हुए, उनको दिल में बसाते हुए, हृदय से एक माँ सरस्वती की भक्ति भरा भजन सुनेंगे, हृदय से दिल से। तो शुरू होंगे बच्चे, शुरू।
1: मेरा नाम ललिता कुमारी है, मैं सोडा से आती हूँ व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा में पढ़ती हूँ 11 क्लास में।
2: मेरा नाम सजना कुमारी है, मैं सोडा से आती हूँ और 11 क्लास में पढ़ती हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा।
3: मेरा नाम केतु कुमारी है, मैं सोडा से आती हूँ और 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय।
4: मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम सोरडा है।
5: मेरा नाम रोशनी कुमारी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा गांव में पढ़ती हूँ, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए और हमें खुशी है। बच्चे तो सच्चे होते हैं और बड़े होकर गांव का, विद्यालयों का और खुद का नाम रोशन करेंगे, उसके लिए मेहनत करते हैं और माँ बाप का जो उम्मीद है, जो भरोसा है, जो आशा है, तो जरूर कामयाब तक पहुँचाकर मम्मी पापा हो चाहे परिजन को विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। आज तो बच्चों को एक मौका मिल रहा है, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः ललिता, सजना, मीनाक्षी और रोशनी को स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। पहला बार आए, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, तो इससे पता चलता बच्चों का संगीत में कितना रुचि है। इस तरह कार्यक्रम को जब सजाते हैं विद्यालय का स्टाफ भी खुशी से झूमते हैं और साथ भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, क्यों नहीं, बच्चे विद्यार्थी हमारा होवनहार है, आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे, बागडोर संभालेंगे, तो बच्चे रेडी शुरू करेंगे, वेरी गुड, शुरू करिए।
1: गुरु ज्ञान की बातें सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। और खासकर गुरु जब नाम सुनते हैं, गुरु तो मार्गदर्शक है और हमें अज्ञान से भी ज्ञान की ओर चलाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, तो उनको भूल नहीं पाते। नेक्स्ट टू माँ बाप कहते हैं, माँ बाप तो है ही है गुरु, और माँ बाप का बाद हमारा शिक्षकगण हमें जो रास्ता बताते हैं, जो अच्छा मार्ग दर्शाते हैं, तो उनको भी गुरु कहते हैं। तो हर चीज़ में जब हम सीखने को ललक रहता है, उमंग उत्साह आता है, तो उनसे भी हम गुरु का दर्जा देते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है, और गुरु का बिना सदगति नहीं है, और सदगुरु तो है ही है, सबके लिए सदगति दाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और हमारा साथ विद्यार्थियों ने अपना अपना आवाज को गीत का माध्यम से, भजन का माध्यम से और भाव का माध्यम से पकड़ कर रहे हैं। तो और एक प्रस्तुति, खासकर स्पीच, भाषण के रूप में, खासकर एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा जीवन का फाउंडेशन है, उसका आधार से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और जिसके पास शिक्षा नहीं तो उनको क्या कहेंगे, इसलिए तो हमारा शिक्षालय में, विद्यालय में आकर शिक्षा अर्जन करते हैं। और शिक्षा का महत्व का बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए हमारा एक छात्रा उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं। अबाउट एजुकेशन है ना, तो चलिए शुरू करिए।
1: मैं आज एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस युग में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मशीनीकरण के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो हम कह सकते हैं कि आज का युग प्रदूषण का युग है। इस प्रदूषित युग का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मनुष्य के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य का बड़ा योगदान है, जबकि स्वास्थ्य शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य संचारी रोगों से बचाव, स्वस्थ अवस्था, बीमारियों का इलाज, पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम व रहम सहन का स्तर अच्छा होना आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिस पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। आज का बालक कल का भविष्य है। उसको इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि अपने तन तथा मन को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है। एक प्राचीन कहावत है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, लेकिन यदि स्वास्थ्य को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सुखी जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, समाज तथा देश के लिए हर प्रकार से सेवा प्रदान कर सकता है, जबकि अस्वस्थ या बीमार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर रूप में अपना भाव को स्पीच का माध्यम से, भाषण का माध्यम से बताए। और शिक्षा का जो महत्व, खासकर चरित्र निर्माण में शिक्षा का कितना आवश्यकता हम भलीभांति जानते हैं। नैतिक शिक्षा हो, चाहे भौतिक शिक्षा हो, चाहे व्यावहारिक शिक्षा हो, शिक्षा तो शिक्षा होता है, एजुकेशन। इसलिए शिक्षा हमारा जीवन में होना चाहिए, जिसका चलते आज बच्चे शिक्षालय में आकर शिक्षा अर्जन कर रहे। शिक्षा हमारा जीवन में अति आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए इस कड़ी में ही और एक कड़ी जोड़ देते हैं, एक श्रृंखला बन जाएगा चेन जैसे। तो और एक छोटा सा प्रस्तुति, गुरु का महत्व जानेंगे। जैसे शिक्षा का महत्व सुने तो गुरु हमारे लिए कितना अनुशासक रूप में उभा होते हैं, जो हमें अनुशासित कराते हैं। तो एक गुरु का ऊपर में भाषण सुनेंगे, है ना? तो रेडी, चलिए शुरू करिए।
1: मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आज गुरुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दीपक बनकर राह दिखाते, अज्ञान का अंधकार मिटाते, सच्चे गुरु ही जीवन को सफलता की मंजिल तक पहुँचाते। अपने ज्ञान की ज्योति से शिक्षा का दीप जलता, जो हमें आगे बढ़ना सिखाते, कभी डांट से कभी प्यार से हमारी गलती बताते हैं। जो हमें अनुशासन सिखाते हैं वो गुरु कहलाते हैं। अज्ञानता का अंधेरा हटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं, जो सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेहनत करना हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं, जो हमें संस्कार सिखाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर रूप में अपना भाव को गुरु को अर्पित किए हैं, क्योंकि शिक्षक मैंने टीचर हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है, क्योंकि हर कदम में हमें शिक्षा देते हैं। जिससे हम शिक्षा लेते हैं वो हमारा एक टीचर है, चाहे माँ हो, चाहे हमारा बड़े हो, जो भी हमें शिक्षा देते हैं वो हमारा टीचर है। तो सुंदर प्रस्तुति दिए, एक का बाद एक प्रस्तुतियाँ सुना रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा, जो कि तहसील रेबदर में आता है। तो आज आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा का बच्चों का आवाज भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे, चाहे गीत का माध्यम से, चाहे प्रार्थना का माध्यम से, चाहे स्पीच का माध्यम से। जैसे अभी सुन रहे थे शिक्षा कितना आवश्यकता, शिक्षा मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, चरित्र निर्माण में अति आवश्यकता, और खास मोरल एजुकेशन जो है नैतिक शिक्षा, वो भी कितना आवश्यकता है। तो धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और हमारा साथ विद्यार्थियों ने अपना अपना आवाज को गीत का माध्यम से, भजन का माध्यम से और भाव का माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो और एक प्रस्तुति तो सुनते हैं और एक आवाज माँ सरस्वती जी का वंदना रूप में, प्रार्थना का रूप में सुनते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो इस कार्यक्रम को सजा रहे, सभी का आवाज आपको सुनने को मिल रहा है और खासकर आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, जो कि सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो आज सामुदायिक का आवाज, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोडा का आवाज सुनने को मिल रहा है। तो पहला प्रस्तुति हम सुने थे एक भजन के रूप में माँ सरस्वती का, तो और एक सरस्वती भजन सुनने के लिए उपस्थित है। सभी बच्चों को स्वागत करते हैं, सभी अपना अपना नाम तो सुना रहे हैं और कोई कोई नाम नहीं सुना पा रहे, कोई बात नहीं, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा, नाम पता चलेगा ये उनका आवाज है, तो वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, तो सुनते हैं। और एक आवाज माँ सरस्वती जी का वंदना रूप में, प्रार्थना का रूप में सुनते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर रूप में आपने सजाए कार्यक्रम, तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो गया और सभी बच्चे इस तरह उमंग उत्साह लेकर साहस का साथ, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए फिर भी बच्चे सच्चे मन से, हृदय से, दिल से अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं। क्यों नहीं, क्योंकि यह मंच बच्चों का मंच है, विद्यार्थियों का मंच है जो आज उनको प्राप्त हो रही है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और एक कुछ प्रस्तुतियां आपका पास रखने के लिए, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में और एक कड़ी को जोड़ देते हैं और ललिता एंड पार्टी उपस्थित है, तो दोनों छात्रा को स्वागत करते हैं कार्यक्रम को सजाने के लिए। दुरुस्त जगह से आए तो दुरुस्त होकर तंदुरुस्त होकर अपना दिल का बात रख रहे हैं, भाव और भावना को एक भक्ति भरा गीत सुनेंगे अभी, क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है सही में हमें महसूस होता है, क्योंकि शक्ति बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना शक्ति नहीं, दोनों एक दूसरे से परिपूरक हैं। तो लेते हैं छोटा सा भक्ति भरा गीत ललिता एंड पार्टी।
1: मेरा नाम ललिता कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा।
2: मेरा नाम सजना कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ और विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा है।

बहुत खूब, बहुत खूब सुंदर रूप में जोड़ी जो है ना, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा, और हमारा ललिता और सजना दोनों मिलकर इस प्रस्तुति को सजाएं। पहला बार आए, कोई सूचना नहीं था, फिर भी बच्चों के अंदर में जो एक अंतरा हो, चाहे एक मुखड़ा हो, एक स्टांजा अपना भाव को प्रकट किए, खासकर स्वर और लय, पता चलता है कितना सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

चलते हैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और एक प्रस्तुति के लिए उपस्थित है, खासकर देशभक्ति को लेकर आए हैं, क्योंकि देश का प्रति जो भावना है, जो वीरत्व है, जो खून में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता है, आन बान और शान का साथ एक देशभक्ति गीत के लिए प्रस्तुत है। तो चलिए प्रस्तुति को सुनेंगे और बच्चे प्रस्तुत है ना, रेडी? ओके, शुरू करिए।

0: जुबानी।
1: क्या खूब, क्या खूब, सुंदर रूप में देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना बात को, भाव को, भावना को डेडिकेट किए, जो कि हमारा शहीद हुए उनके लिए वो वीरत्व को समर्पित इस गीत का माध्यम से भाव और भावना को प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं और एक आवाज़।

देशभक्ति का मैंने जज्बा देखने को मिल रहे हैं। आन बान शान का साथ देश का हित में एक देशभक्ति गीत प्रस्तुति किए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सब सुन पा रहे खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा जो की रेबदर तहसील से आपका पास हम पहुंच रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

चलिए एक के बाद एक प्रस्तुतियां आपका पास हम रख रहे हैं। हमारा श्रोता मित्र भी इस तरह कार्यक्रम को जब सुनते हैं तो उन्हें भी खुशी मिलता है। क्यों खुशी नहीं मिलती, इतना दूरस्थ जगह से हम कलेक्शन करके सभी का आवाज़ को एक गुलदस्ता बनाकर आपका पास प्रस्तुतिकरण कराते हैं। तो आप भी रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से, प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन का माध्यम से, लिंक का माध्यम से

0: सुन पाते हैं और हमारा मेहनत को चार चांद लगाते हैं, जिसका चलते हमें और मेहनत करके कोई उलाना ना दे, कोई भी गांव, कोई भी अंचल छूट ना जाए, सभी का आवाज़, सभी का भावना को आपका पास रख रहे। तो ये अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे, आप सब सुन पा रहे। दूरस्थ जगह सरोडा जो कि तहसील रेबदर से हम आपका पास गुलदस्ता के रूप में भिन्न भिन्न आवाज़ को विद्यार्थियों का उमंग उत्साह और बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते हैं उन सब का भाव को आपका पास रख रहे हैं। तो अंतिम प्रस्तुति में और एक प्रस्तुति जोड़ देते हैं जो कि मारवाड़ी गीत के माध्यम से संगीत के रूप में प्रस्तुतकरण करेंगे, क्योंकि मारवाड़ी में जो आवाज़, जो सुंदरता, जो मधुरता है, सही में सभी भाषा में अपना अपना महत्व होता है। जैसे हमारा आदिवासी लोकगीत में जो मिठास है, जो अपनापन है, ऐसे सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए एक प्रस्तुति सुनेंगे। तो देर किस बात की, सभी बच्चे रेडी है, अंतिम प्रस्तुति होगी, है ना बच्चे रेडी? ओके शुरू करिए।
1: मिश्री सुमीठी बात थारी मन है प्रेम गुजरनो सा, काच पिता सुशर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा, बनी थारो चांद सरी सो मुकड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए, बनी थारो चांद सरी सो मुकड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे।

ले चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिसरी सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम गुजरनो सा। कांच पिता सु शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सा। ओ बन

0: कोई मोच नहीं पड़ जाए।
1: सुंदर प्रस्तुति के लिए ताली के साथ स्वागत किए और धन्यवाद दिए, आभार प्रकट करते सभी को नाम का साथ आज का कार्यक्रम को जिन्होंने सजाए, और इसका श्रेय तो संस्था के संस्था प्रधान, सभी स्टाफ, गुरुजन और खासकर माता पिता, अभिभावक, दोस्त लोग को जाता है, क्योंकि उनका तत्वावधान में बच्चे आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई का साथ साथ इस तरह सभी जो एक्टिविटीज होता है स्कूल में वो एक्टिविटीज को लेते हैं, और आज तो बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे आज इस कार्यक्रम को सजाए, क्योंकि सभी का पास संगीत में रुचि का कला बा संगीत का कला नहीं होता है। जो बच्चों का पास संगीत का कला है, जो गायन का श्रद्धा है, वो बच्चे ले पा रहे। तो आज जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, और किस बात को लेकर आज आप सब सुन पा रहे, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा का विद्यार्थियों का आवाज, और संस्था प्रधान, सभी स्टाफ, सभी सहयोग को धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अली डब्बा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शमा मुस्कुरा कर जला, रश्क से कोई बुझ बुझ के जलने लगा। क्यों हो कोई आने को है? वाह वाह वाह।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कब कहेंगे कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं, इसी को जीना कहते। खास करके जब महिलाओं की बातचीत करते हैं तो एक मानसिक चित्र होता है कि महिला का मतलब शादीशुदा हो, बच्चे पाल रही हो, घर का काम कर रही हो या फिर नौकरी कर रही हो। इससे ज़्यादा तो हम ज़्यादा उम्मीद या फिर ज़्यादा चित्रण नहीं कर पाते हैं या ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, महिलाओं का काम या महिलाओं की जो प्रोफेशन इतना तक ही सीमित है या महिलाएं यहाँ तक सीमित है? नहीं, महिलाएं देश के हर वो काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। न सिर्फ देशभक्ति लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी वो बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भावना है वो बहुत उनको आगे बढ़ाती है। दोस्तों, आध्यात्मिकता और हमारी जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहे कि हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो वो जीवन बहुत ही नीरस या दिशाविहीन होता है। ऐसे में आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपना कर ना सिर्फ अपनी जीवन को लेकिन अनेकों को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय कविता दीदी जी आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में हैं। वो अपनी आध्यात्मिक जीवन से आप सभी को रूबरू कराएंगे और हम जानते हैं कि एक महिला होते हुए उन्होंने कैसे ये सादगी समर्पण जीवन को चुना है और वो कैसे इस जीवन में सफल रहे हैं। कविता दीदी जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति दीदी, हम सबसे पहले ही आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आपने कहाँ जन्म लिया और आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली, और क्या आपकी जीवन में या आपके बचपन में आपके परिवार में धार्मिक परिवार से थे, क्या वो जीवन रहा आपका बचपन और लौकिक जीवन?
1: हम लौकिक जन्म तो महाराष्ट्र गोंदिया में लिए हैं, जो नागपुर के बाजू में ही है, महाराष्ट्र में, और वहाँ से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लौकिक में, हमारे लौकिक में चाचा जी और चाची ज्ञान में चलते थे। बचपन से ही वो गीता पाठशाला चलाते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो भी बहुत छोटे आयु में ज्ञान में आए। उनके बाद में उनका विवाह हुआ तो जो हमारी लौकिक चाची थी उनको भी ज्ञान में लेके आए और दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके बाद में लौकिक चाचा जी, उनका गाँव जो गोरेगाँव था, तो इस कारण से वो गोंदिया में रहते थे और गोंदिया में हमारे पास रह करके प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर की। तो उस समय हमारी जो मम्मी थी बहुत भावभक्ति में पूजा आदि करती रहती थी। तो मात्र मेरी आयु जो 7 वर्ष की थी, तो जैसे वो पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, आरती करती थी, तो मैं उसको देख देख के वैसे ही करती रहती थी। तो चाचा जी को एक दिन बहुत संकल्प चले कि बाकी सब बच्चे तो सोए पड़े हैं लेकिन यही मतलब मम्मी के पीछे पीछे जाके सब कुछ करती है, इसको लगता है बहुत इंटरेस्ट और इन सब बातें इसको अच्छी लगती है। तो देखते देखते मेरे एक बार मम्मी को कहा कि भाभी मैं घर जा रहा हूँ अपने, तो मैं इस गुड़िया को लेके जाऊँ, कुछ दिन मेरे पास रहेगी। तो छोटी थी तो उस समय को कोई बात नहीं, भाई के बेटी है तो भाई के पास ही जा रही है। तो बड़े इजीली माता पिता ने छुट्टी दिया और वो मुझे लेके गए। लेकिन वहां देखा तो लौकिक में तो पूजा आराधना चलती थी, लेकिन जब चाचा जी के पास गई तो वो सारा दिन बाबा को याद करना, मुरली पढ़ना, कोर्स करना, शिव बाबा के गीत सुनना, शिव बाबा करते रहते थे। तो मुझे कुछ परिचय नहीं था, कुछ समझ में नहीं, छोटी आयु के कारण। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो बात हर बात मुझे सिखाते थे, समझाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो जैसे जैसे मुझे गाइड करते थे मैं वैसे करती जाती थी।
0: तो ये क्या उम्र रही है?
1: 7 साल की उम्र थी मेरी मात्र आयु।
0: जी, मतलब आपकी लौकिक और अलौकिक जीवन में बहुत सारा अंतर नहीं रहा, बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग से चलने लगे।
1: जी,
0: तो फिर आपकी पढ़ाई और ये सब चीजें कैसे आगे बढ़ी?
1: पढ़ाई चाचा जी के पास भी हुई और लौकिक माता पिता के पास भी हुई, क्योंकि जब मम्मी पापा के पास में थी तो गर्मी की छुट्टी में जो है तो चाचा अपने पास लेके चले जाते थे, बाकी तो मम्मी पापा के पास रह के पढ़ाई किया और कुछ पढ़ाई वहाँ किया। तो लेकिन ज्ञान में लगातार चलती रही हूँ, वो आते रहते थे, वहीं आते थे, एक सेंटर पर मुझे लेके जाते थे। और उस समय जो मेरा नाम था लौकिक में, तीजा नाम अच्छा। था मेरा अभी तो जो कविता नाम है ये मेरा अलौकिक नाम है। okay. तीजा बाई बिसेन करके मुझे जाना जाता था। okay. मेरी सरनेम है बिसेन और मुझे तीजाबाई, क्योंकि तीजाबाई जो नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो जन्म है, जो हरतालिका होती है ना, माताएं व्रत करती है, कन्याएं बहनें व्रत करती है, तो उस समय महाशिवरात्रि के लक्ष्य में भी करती है, तो हरतालिका बहुत ही धूमधाम से दुनिया में मनाई जाती है। तो मेरा उसी दिन सोमवार का दिन था, जन्म हुआ, तो उस त्योहार का नाम है तीज। तो तीज के बाद कहा कि इसका नाम हम तीज ही रखेंगे, क्योंकि गौरी पूजा के दिन इसका जन्म हुआ, तो हमारे घर में गौरी ने जन्म लिया, ऐसे करके वो मानते थे हमारे महाराष्ट्र में। तो जब उन्होंने कहा कि गौरी माना देवी आई हमारे घर में, तो इसका नाम ही हम तीज रखते हैं, तो मेरा नाम ही तीज, तीजा से फिर तीजा कर दिया।
0: अच्छा,
1: स्कूल में जा करके।
0: दीदी फिर जैसे आप इस तरफ घर में आते हैं तो भक्ति मार्ग चल रहा था, और अब चाचा के पास जाते हैं तो फिर आध्यात्मिकता, मेडिटेशन और ये सारी जीवन, तो दोनों की चीजों के बैलेंस कहे, या फिर आपकी घर में भाई बहन ने आपकी, उनका कैसा रहा आप लोगों का?
1: वो ज्ञान में नहीं चलते थे, काफी विरोध होता था। जैसे मुझे भोजन करने में बहुत तकलीफ होती थी, तो जैसे चाचा जी ने एक बात बताते कि जो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान सुनते हैं वो तामसिक भोजन नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं जब घर में आती थी तो दूध के साथ भोजन लेती थी, या तो दही होता था घर में उसके साथ भोजन लेती थी। तो माता पिता बहुत विरोध करते थे कि ये कौन सा ऐसा धर्म है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, ऐसा तो हमने कभी कोई धर्म देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुत पूजा करते, परिवार पूरा धार्मिक था, वो भी शिव की पूजा करते थे, देवियों को मानते थे, आराधना करते थे, लेकिन वो लहसुन प्याज बहुत प्यार से खाते थे, कहते थे लहसुन प्याज मैंने औषधि है, और मुझे भी जबरदस्ती वो करते थे कि आपको खाना ही चाहिए, और नहीं खा देती तो थोड़ी सी डांट तो पड़ती ही थी, लेकिन फिर भी मैं बाबा बाबा करके चुपके चुपकाते करते बाद में खा लूंगी करके, ज्यादातर हमारे घर का ही दूध होता था, खेती के कारण गाय वगैरह रखी थी, तो घर के दूध में ही दही इसी के साथ में रोटी खा लेती थी।
0: फिर आपकी कितने भाई बहन है? वो
1: तो हम चार बहने और एक भाई, पांच लोग थे
0: जी।
1: तो सभी लोग मतलब मम्मी पापा के साथ मिलकर के मुझे छेड़ते रहते थे, और मैं फिर उनको ज्ञान सुनाती रहती थी कि देखो बाबा ऐसे कहते, बाबा वैसे कहते, तो पंडिता इन करके मुझे छेड़ते रहते थे देव जो, तो पंडिता इन लोग ज्ञान सुनाती है। मैं पढ़ाई भी करती थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इसमें होता था, क्योंकि हमारे लौकिक चाचा ने एक ही बात सुनाई कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं ये सतयुग की पढ़ाई नहीं आएगी, लौकिक दुनिया की, लौकिक दुनिया में काम आएगी, लेकिन अगर हम नई दुनिया सतयुग के लिए जाते हैं तो उसमें ये पढ़ाई तो काम नहीं आएगी। तो इसलिए अधिक महत्व बाबा की मुरली में देना है, बाबा से योग करना है,
0: बाबा
1: तो
0: मैं मतलब
1: अधिक
0: परमात्मा,
1: परमात्मा के ऊपर परमात्मा का चिंतन करना है, और परमात्मा जो शिक्षाएं देते है और इसी अनुसार चलना है। तो ये बात मैंने अपने दिल में गांठ बांध ली कि जैसे परमात्मा की वाणी में बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं मुझे ऐसे ही चलना है। और मुझे एक लक्ष्य मिल गया था कि जैसे चाचा जी ने एक ही बात मुझे सिखाई थी कि अच्छे कर्म करते हैं तो हम देवी देवता बनते हैं, और थोड़ा भी गलत कर्म करते हैं तो आसुरी वृत्ति के कारण हमारे पद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए। और उन्होंने फिर एक बात मुझे बहुत अच्छा सिखाया था कि हम कुछ भी काम करते हैं तो सोचते भी है, लेकिन भगवान सब देखते हैं, सब सुनते हैं। तो जब बचपन में भी ये बातें मुझे बहुत याद रहती थी कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ भले मुझे कोई ना देखे, लेकिन भगवान मुझे देखते हैं। तो ये बात मुझे आज तक याद रहती है कि परमात्मा की संपूर्ण नजर हम पर होती है, और हम क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या सुनती है, क्या करते है, वह हर प्रकार के हम पर अटेंशन रखते है। और
0: तो बाल्यकाल में ही आपको इन चीजों का अटेंशन
1: जी अटेंशन था। हाँ जी।
0: तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी छोटी हूँ, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके भाई बहनें भी वो भी अपनी जीवन एंजॉय कर रहे हैं, और मैं पता नहीं क्या कौन सी रास्ते में जा रही हूँ?
1: नहीं, खेलती तो थी उनके साथ में, खेलती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उनके साथ जो वो भोजन करते थे उस समय अपने आप को साइड कर लेती थी, क्योंकि वो चाचा ने बड़े प्यार से समझा के बताया था, चाची ने भी, कि आप खेलना जरूर लेकिन भोजन उनके साथ बैठ के नहीं करना है, भोजन अलग से करना है, वो भी घर में जो कुछ हो तो बाबा, और वो भी बाबा की याद करना है, पहले योग करना है तभी खाना है। तो विरोध सब करते थे, लेकिन फिर मैं बाबा की मदद मिलती है तो बाबा की मदद से ही चलती थी, बाबा पर अटूट विश्वास। उन्होंने जिस मुझे कोर्स कराया तो कोर्स में ही मेरा निश्चय हो गया, और मुझे समझ में आने लगी सारी बातें, और मुझे भी लक्ष्य, और फिर मुझे सेंटर पर लेके जाते थे, जो बड़ा सेंटर था हमारा, आश्रम था गोंदिया में, आज भी है, तो वहाँ लेके जाते थे, और वहाँ दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर वो भी मुझे सिखाती थी ऐसे करना ऐसे करना, तो मैं उसी अनुसार करती थी। फिर हमारे चाचा जी बताते, देखो ये ऐसे बनना है, ऐसी ड्रेस पहननी है, ऐसी सेंटर की सेवा करनी है, तो ऐसे तुम दीदी बन जाओगी। तो ये मुझे जैसे आकर्षण हो गया था।
0: तो ज्ञान में वो कौन सी बात थी जिसे आपको लगा कि ये सत्य ज्ञान है, यही मेरे जीवन परिवर्तित करेगा और मुझे ये फॉलो करना है?
1: अपनापन बहुत लगा मुझे, दीदियों से, जैसे कोई परिचय नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मेरे तो मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, मेरे बाल ठीक करना, मुझे ड्रेसेस तैयार करके देना, और वो अपने बेड पर भी बिठा के अपने साथ सुला लेती थी, मुझे गोद में का प्यार देती थी। और फिर जब भी डांस सिखाती थी सेंटर पर, जब इस प्रोग्राम होते थे तो मुझे डांस सिखाती थी, मैं स्टेज पर डांस करती, वेलकम डांस करती थी, और दीदियाँ जहाँ जाती थी मुझे अपने साथ साथ लेके जाती थी और कुछ मुरली की बातें अच्छी अच्छी सुनाती थी, तो वो मुझे बहुत आकर्षण किया।
0: लेकिन एक उम्र के बाद तो आपको समझ में आया होगा ना, वो तो बचपन में प्यार मोहब्बत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्ञान के ऊपर जो निश्चय है, जब आप थोड़ी सी उम्र आई और ज्ञान को समझने लगे, तो वो कौन सी बात थी जिसे आपको निश्चय
1: हुआ? जब मैं स्कूल में गई एक बार, स्कूल में मेरी फ्रेंड थी, मतलब बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उनके ना सातवीं क्लास में थे हम दोनों, तो उन दोनों के जुड़वा बहनें थी और दोनों की शादी हो गई, तो शादी हुई और
0: छोटी उम्र में
1: दोनों की शादी हो गई। सातवीं क्लास में पढ़ते थे हम लोग, मतलब हम 14 साल की तो थी, नहीं 14 साल की भी नहीं थी, 12 साल की थी, तो 12 साल की उम्र में दोनों बहनों की शादी हो गई। फिर एक साल जैसे हम आठवीं कक्षा में गए, तो आठवीं कक्षा में गए और गर्मी के दिन में छुट्टी दिन होते हैं, तो उनकी शादी हुई, तो शादी हुई तो मुझे भी बुलाए, मैं भी देखने के लिए गई। मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, वो सब देखते हुए पता नहीं ऐसा लग रहा था ये गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ज्ञान योग करती हूँ ये भी करना चाहिए। फिर 6 महीने भी शादी को हुए नहीं और उनको दोनों को जला के मार डाले, और दहेज के कारण मार डाले। जब मैंने वो सीन पहले सुना और फिर मैं उनको देखने के लिए गई, तो पूरी तरह से जल के उनकी लाशें पड़ी हुई थी। जैसे वो देखा मैंने सीन, और जैसे मुझे मन में एक संकल्प चला कि आज के बाद तो शादी का कभी जिंदगी में नाम भी नहीं लेना चाहिए। शादी के बाद देखो कितनी अच्छी थी दोनों, मैं बहुत रोती थी उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी थी वो, बहुत ही दैवी संस्कार वाली आत्माएं थी, पर परिवार था, ज्ञान में चलते नहीं थे, तो उनकी शादी हो गई और उनको जला के मार दिए दहेज के लिए। उस समय मैंने संकल्प लिया दृढ़ता, चाहे मुझे परिवार कितना भी प्रेशर दे, कितना भी मुझे गलत ठहरा दे, लेकिन मैं तो शादी नहीं करूंगी, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। और मुझे तो ज्ञान वैसे मिल चुका था और मुझे पता चल गया था कि विकार क्या चीज है, शांति क्या चीज है, अच्छाई क्या, बुराई क्या, तो ये सातवीं क्लास में तो फिट बैठ गया था। और फिर आठवीं क्लास के बाद तो मैं संपूर्ण चाचा के पास सेंटर पर ही आ गई थी। फिर उसके बाद में मैं
0: तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की?
1: पढ़ाई तो 12वीं तक क्लास में गई, लेकिन 12वीं के एग्जाम नहीं दे पाई, क्योंकि 12वीं की जिस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरे परिवार वाले बहुत प्रेशर देके, क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी तो उनकी भी शादी करनी थी, वो मेरे से कद काटे में छोटी लग रही थी और मैं थोड़ी हेल्थ में अच्छी लग रही थी, तो सारे परिवार में एक ही कह रहे थे कि दोनों बहनों की शादी साथ में कर दी जाए। अब उनकी तो शादी जुड़ी नहीं रही थी, तो कहा कि छोटी वाले की शादी जोड़ो तो बड़ी वाले की शादी जुड़ जाएगी। मेरी फोटो, मैं चाचा के पास रहती थी, तो फोटो दिखा के उन्होंने शादी जोड़ लिया। अब शादी जोड़ लिया तो मुझे कहा देखने आपको आना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, हम तो नॉर्मली फ्रॉक पहनते थे। फिर बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हमको देखने के लिए आए करके, तो पूरे परिवार में मेहमान आदि बैठे हुए हैं, मुझे कहा गुडे चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, तो मैं जैसे गई, कहा आप भी बैठिए, तो हम भी बैठे। तो जब हम बैठे साथ में, तो मुझे पूछा, मेरा नाम पूछा, तो हम तो बाबा के ज्ञान में चलते थे, तो बाबा का नशा था, तो मैंने जैसे आपका नाम क्या है, तो हमने कहा मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम तीजाबाई बिसेन है। तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैंने कहा मैं परमधाम निवासी हूँ, मेरे अलौकिक परमात्मा का नाम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो परमात्मा शिव कहते हैं, और मेरा जो नाम है वो कविता बिसेन है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि बोल क्या रही है, आत्मा परमात्मा। तो मेरे पिताजी गुस्से से मुझे देख रहे थे कि आप ऐसे कुछ नहीं बोलो, बस अपना सीधा सीधा नाम बताओ कि आपका अमुक नाम है। तो मैंने कहा मेरा ऐसा ही नाम है, मेरे को ऐसे ही बोला जाता है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये देह आपसे मिली है, तो आप देहधारी पिता हो, आत्मा तो परमात्मा की है। तो वो सारे परिवार वाले मुझे देखने लगे। फिर कहा आपको खाना बनाना आता है, तो मैंने कहा हाँ जी बनाना आता है, मैं तो पहले खाना भगवान के लिए बनाती हूँ, फिर भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं, फिर हम सब खाते हैं। तो कहा कौन से भगवान को खिलाती हो, तो मैंने कहा निराकार शिव परमात्मा, जिस परमात्मा की अब शिवलिंग के रूप में पूजा करते, उस परमात्मा को हम भोजन स्वीकार कराते हैं, उसके बाद हम और उन्हीं याद में बनाते हैं, तो भोजन शक्तिशाली बनता है, फिर हम भोजन खाते हैं। फिर कहते हैं कि आपने खाना बनाया हो तो आपको पता है कि अगर एक

0: किलो चावल होगा तो उसमें कितने दाने हो सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत प्यार से, मैंने कहा कभी गिनती तो नहीं किया है मैंने, लेकिन गिनती करके मैं जरूर बताऊंगी आपको कल। ऐसे मैंने कहा
1: जी।
0: फिर उसके बाद में उन्होंने और कोई सवाल किया, तो मैंने सोचा सवाल का ये करते ही जा रहे हैं, तो मैं बाबा को याद करने लगी, बाबा मुझे इनके जाल में फंसना नहीं है, मैं आपकी हूँ, आप आओ बाबा मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इनके कोई सवालों के जवाब अभी देने नहीं, आप कुछ तो ऐसा युक्ति रचो कि ये मुझे इस जगह से मुक्त करे और मैं जल्दी चाचा के पास चली जाऊँ। तो ऐसे देखने लगी, जस्ट दो चार लोगों के पास मुझे पेन दिखाई दी उनके जेब में, तो मुझे कभी संकल्प भी नहीं आया कि मुझे कुछ सवाल पूछने भी आएगा, पर जस्ट बाबा को याद किया और जस्ट टचिंग हुआ और उनका पेन को देखते हुए मुझे जैसे याद आया कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स बैठे थे मुझे आँख दिखाने लगे, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं पूछने का, मैंने कहा बस मैं एक ही बार पूछना चाहती हूँ, तो कहा भले पूछो क्या पूछना है, क्योंकि बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा पूछो, मैंने कहा आपके जेब में ना पेन है, आप इसे कितने अक्षर लिख सकते हो, आप बताएंगे इसमें, तो एकदम से गुस्से में आके खड़े हो गए, ये कैसे बेहुदा सवाल है। मैंने कहा सही बात है,
1: अब चावल पूछ सकते,
0: एक
1: तो
0: किलो चावल आज तक किसी ने गिनती नहीं की है, दाने छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो वो कोई गिनती आज कर भी नहीं सकता, तो एक पेन है जिसमें कितनी स्याही होगी और कितने अक्षर आप लिख सकते हो, अगर आप हिसाब बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं भी कल चावल गिनती करके बताऊंगी। तो एकदम गुस्से में आके वो लाल चेहरा हो गया और खड़े हो गए, मेरे माता पिता भी साथ में थे, बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, ये कैसे हमारी इंसल्ट कर दिया, इनको बहुत बुरा लगा, अभी क्या सोचेंगे। जैसे वो दरवाजे के बाहर विदाई करने के लिए गए, फिर मेरे पिताजी आए और बहुत गुस्सा होकर मुझे चमाट मारी, कहा आज के बाद तो तुमको बिल्कुल बाहर नहीं लेके आना, अब तो तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, अब जो भी मिले। तो बोले रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, फिर उनके पास जाके मेरे पिताजी हाथ पैर जोड़े कि मेरी बेटी ने बहुत गलत सवाल किया, मेरी बेटी से आपने परेशान हुए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सब देख रही थी, रोते जाके देख रही थी क्या क्या हो रहा है। माताजी ने तो सर ही छोड़ दिया था, फिर पिताजी क्या किए, हमको घर में बंद कर दिए सारी बहनों को।
1: माताजी ने कब शरीर,
0: माताजी ने मुझे लगता है 25-30 साल हो गए सर ही छोड़ दिया था,
1: मतलब छोटी थी, बारहवीं से पहले,
0: हाँ बारहवीं से पहले माताजी ने सर ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में पिताजी ने क्या किया, हम सब बच्चों को गर्मी के दिन चले, सब बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिए, और घर के अंदर सब कुछ था, तो वाड़ा था हमारा, तो उधर से क्या किया उन्होंने, पूरा घर बाहर से बंद करके चले गए और खेत में चले गए, कहा कोई लड़कियों को बच्चों को घर के बाहर निकलना नहीं है। तो सब रोने लगे, आपस में छोटे छोटे थे तो रोने लगे, अभी दीदी आपके कारण हमको ऐसी पनिशमेंट मिली, हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते, ऐसे करके। तो मैं बोली बाबा है ना, उनको कुछ कुछ बातें सुनाने लगी अच्छी अच्छी। उसी बीच में हमारी पड़ोस में एक चाची रहती थी जिनको चाबी देके गए थे कि भाई मैं तो जा रहा हूं, तो बीच में आप बच्चों का ध्यान रख लेना करके। तो वो आई और जैसे दरवाजा खोला और सब बच्चों को पूछने लगी कैसे हो, कुछ खाए नहीं खाए, और मैं रोने लगी, फिर मेरे को कुछ खिलाने लगी, तो कुछ फल रखे हुए थे, अमृत रखा हुआ था, वो कहता तुम ये खा लो, तुम तो खाना नहीं खाओगे ना लहसुन प्याज का, तुम ये खा लो, तो मैंने वो खा लिया। फिर करते करते मुझे अचानक याद आया कि कुछ तो मैं करूं ऐसा और यहीं से छुटकारा पाऊं, तो बाजू में किराना की दुकान थी हमारे घर के सामने, तो बहुत अच्छे थे हमसे इस रिलेशन में, तो जस्ट वहां गई और ड्रिंग ड्रिंग वाले पहले टेलीफोन होते थे और चाचा का नंबर मालूम था मुझे, तो वहां जाके फोन किया और फोन करके तुरंत बोला कि चाचा ऐसे ऐसे हुआ, सारी कहानी सुनाई, तो कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मेरी दादी थी पापा की मौसे भाई, क्योंकि चाचा जो थे पापा के मौसे भाई थे और वो ज्ञान में चलते थे, तो मेरी दादी, मेरी बुआएं, मेरे चाचा चाची फोर व्हीलर से आए, फिर जैसे वो चाची थी 15 मिनट लगते थे आने में, तो बैठी थी, तो कहा क्या हुआ कैसे हुआ, तो कहा हम तो इसको लेके जाएंगे गुड़िया को, तो कहा नहीं नहीं इसके पिताजी है नहीं, आप इसको कैसे लेके जा सकते हो, तो मेरे चाचा ने लेटर लिखा लेटर पैड पर, कहा देखो ये बेटी हमारी है और हमने इसको गोद ले लिया है और अब हम इसको लेके ही जाएंगे क्योंकि ये नहीं रहेगी यहाँ पर, और मैंने भी कहा मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ पर ना, मैं शादी के लिए तैयार हूँगी, अगर यहाँ रहूंगी तो फिर तो वो शादी कर देंगे मेरी और मुझे नहीं करनी है शादी, बाबा मुझे पक्का निश्चय हो गया था। फिर उसके बाद में चाचा जी और मैंने भी लिख दिया कि अभी मैं वापस कभी नहीं आऊंगी।
1: फिर समर्पण का कैसे हुआ,
0: फिर उसके बाद में चाचा के पास में रहने लगी, तो फिर शाम को जैसे शाम हुई तो गांव के कुछ लोगों को मेरे पापा आए लेकर के कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए करके, तो चाचा ने तब तक मुझे बुआओं के पास छोड़ दिए थे, घर में थी नहीं, तो कहा बेटी यहाँ है पर वो चली गई है यहाँ है नहीं, तो बहुत विरोध किया, झगड़े हुए कि हमारी बेटी वापस दो, को आपकी बेटी नहीं है वो तो परमात्मा की बेटी है और वो हो गई है, तो काफी दिन चाचा और पापा से विरोध रहा, बातचीत नहीं रही, फिर रहती रही सेंटर पर, उसके बाद से बड़े सेंटर पर मेरी बुआ भी सेंटर इंचार्ज थी, तो उनके पास मेरी बुआ के पास भेज दिया था, वहां पर ही रही। जब मेरा समर्पण होने का दिन आया तो समर्पण चाचा बोले समर्पण कराना जरूरी है, और जो भी खर्चा लगेगा तो हम करेंगे लेकिन हम तो करना है। तो माता जी आई थी एक बार मिलने के लिए कि इसके पिताजी बहुत विरोध कर रहे हैं, हम साइन नहीं देंगे, तो कभी सिग्नेचर नहीं देंगे, माता पिता की साइन तो फाड़ के फेंक देंगे, ऐसे ऐसे। और फिर आए एक दिन मिलने के लिए, दोनों भी समझाने लगे, तो मैंने कहा मैं तो शादी शिव बाबा से करूंगी, तो कहा ये फोटो से शादी करूंगी ऐसे ऐसे मुझे बोलने लगे। तो मैंने कहा फोटो नहीं है, ये परमात्मा शिव है, निराकार है, कितनी सारी बहने परमात्मा से शादी करके ब्रह्मा कुमारी बनी, सेंटर के उदाहरण दिए, नहीं मान रहे थे। फिर भी मैंने चाचा चाची को मैंने कहा चाचा मैं तो करूंगी। फिर चाचा चाची ने सिग्नेचर किया, सब कुछ किया, माता पिता का कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मेरी चाची गीत बहुत गाती थी, तो मुझे भी गीत गाना सिखाया, तो मुझे कभी बोलती थी बहुत प्यार से। तो चाचा कहते हैं ऐसा करते हैं, इसके माता पिता तो सिग्नेचर देने वाले नहीं है, इसका नाम भी बदल देंगे, फिर तो क्यों इसका नाम रखे लौकिक नाम, तुम तो कवि कहती हो, इसको ता जोड़ देते हैं, बन गई बाबा की कविता। तो इस तरह से मेरा एक अलौकिक नाम हो गया, और तब से मेरा सेंटर से लेके आज तक अलौकिक नाम ही चलता है।
1: बहुत सुंदर। तो फिर आप जब समर्पित हुए, आपकी भाई बहन भी आपसे मिलने आए?
0: हाँ, मिलने आए, लेकिन जब समर्पण हुआ माउंट आबू में ही हुआ, दादी प्रकाशमणि जी के रहते, लेकिन मेरे परिवार से, लौकिक परिवार से कोई भी नहीं आए, बल्कि वो और भी नफरत करने लगे कि ये क्या किया, पिताजी मान नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे है, फिर भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो चाचा जो तो ज्ञान में भाई बहने चलते थे, गीता पाठशाला थी, और कुछ रिश्तेदार तो जो ज्ञान में चलते थे वो सब आए। फिर क्या हुआ, जब स्टेज पर आए तो दादी जी कहने लगी कन्या के माता पिता को बुलाओ, कन्यादान करे, हाथों में हाथ देवे दादी जी के। जब मैं सभी बहनों को देख रही थी, सभी बहनों के साथ में उनके माता पिता साथ में थे, और मेरे माता पिता तो थे ही नहीं जो मेरे हाथ में हाथ देवे। तो जैसे मैं चाचा को देखी और मैंने कहा मेरे तो माता पिता है ही नहीं जो दादी के हाथ में हाथ, और मुझे अचानक ही रोना शुरू आ गए, और मैं रोने लगी। तो दादी कहती क्या क्यों रो रही हो, मैंने कहा दादी सबके माता पिता है, मैं तो कितना अच्छा काम कर रही हूँ परमात्मा से शादी, तो भी मेरे माता पिता नहीं आए हैं, तो मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ ना उनकी नजरों में, तो ऐसे करके मैं रोने लगी। तो फिर दादी प्रकाशमणि ने देखा कि ये रो रही है, तो कहा क्यों रो रही है आपकी लड़की, क्या हुआ, कहती इसके माता पिता नहीं आए ना, तो बोले क्यों इसके माता पिता नहीं ज्ञान में चलते। तो फिर दादी ने थोड़ा शॉर्ट में बताया कि विरोध करते हैं वो, और ये पक्की चलना चाहती है, लेकिन हमें ना इनके साथ में, ये चाचा चाची इसके माता पिता के रूप में ही है, और हमें हाथ में हाथ देंगे, और ऐसे करके फिर दादी ने समझाया, और फिर मेरा समर्पण हुआ, डायमंड हॉल में हुआ।
1: बहुत सुंदर। तो आपके जीवन में रोल मॉडल कौन थे, किनको आप ज्यादा आदर्श मानते थे?
0: तो मैं सेंटर की दीदियों को ही देखती थी, अपने लक्ष्य को देखती थी कि ऐसे बनना, और जो लौकिक चाचा चाची थे तो मुझे समय प्रति समय बहुत अच्छी अच्छी धारणा की और मधुबन की मुरली की बातें सुनाते रहते थे, और जो प्रोग्राम होते थे तो आए दिन मुझे चाचा सेंटर पर लेके जाते थे, नागपुर सेंटर पर लेके जाते थे। तो पुष्परानी दीदी से मिलना, सावित्री दीदी जो हमको बहुत प्यार करती थी, और हमारी सेंटर की बहनें बड़ी बड़ी जो माला दीदी है अपने, उनको देखती थी, बड़ी बहनों को देखती थी कितना सुंदर जीवन है। तो उनकी ड्रेस मुझे बहुत भाती थी, जो व्हाइट साड़ी पहनती थी ना दीदी लोग, तो मुझे भी ऐसे बनना, मैं इनके जैसे सेवा करूंगी, इनके जैसे भाषण करूंगी, ऐसे मुझे बहुत आकर्षित मैं तो हुआ। और तब मुझे बहुत पक्का मान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी। तब से मेरे परिवार से, मेरे परिवार वालों ने फिर मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया, तो कहा आपके बाद आप मर गई हमारे लिए, कभी नहीं आना हमारे पास। तो 7 साल तक कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा घर से, कुछ भी नहीं रहा।
1: चाहे आप उनकी पसंद की शादी करो या फिर अपनी पसंद की शादी करो, एक महिला के जीवन में संघर्ष तो देखना ही है
0: जी।
1: चाहे वो मायके से हो या फिर ससुराल से हो, हर बात में खुद का निश्चय, खुद के जीवन के प्रति खुद का मार्गदर्शन। तो आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी क्लैरिटी कि मुझे यही जीवन जीना है और इसी को जीवन जीना कहते हैं, ये कब महसूस हुआ?
0: मुझे ये महसूस तब हुआ जब मैं अमृत वेला मेरे लौकिक चाचा चाची करते थे, और वो बाबा से बहुत दृष्टि लेके, शक्ति लेकर के वो जो भी कहते थे वो सिद्ध होता था। बाबा की बातें सुनाते थे, गांव गांव जाते थे, सेवा करते थे, गरीब आत्माओं को देखते थे, दान धर्म करते थे, अनेक आत्माओं के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया, खुद भी परिवर्तन करते थे अपने जीवन में। और वो बातें सब मुझे देखती थी मैं आंखों से और सीखती थी, खुद भी करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि ये जीवन बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन है। तो धीरे धीरे मुझे बहुत निश्चय होने लगा और ऐसा लगता था जैसे बाबा की मुरली रोज मुझे पढ़ने के लिए देते थे। मैं स्टेज पर बैठ के मुरली पढ़ती थी और एक बार तो ऐसा होता था हमारे लोग के चाचा चाची कितना मतलब ध्यान खिंचवाते थे जब प्रचंड मार्ग लगाई जाती थी, तो मेरे लौकिक परिवार के कम से कम 10 लोग बैठे होते थे। अब मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ ना, तो लौकिक में बोलती थी हिरण दादी, शालिकराम चाचा जी, सावित्री चाची। कहती थी कौन है आपका यहाँ चाचा चाची, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम आत्मिक रूप से बैठे हैं। इस दीवार के बाद जाओगी ना तुम्हारा लौकिक परिवार आएगा, यहाँ कोई लौकिक नहीं, यहाँ सब अलौकिक और बाबा के बच्चे बैठे होते। जब तक तुम हम शालिकराम भाई नहीं बोलोगे, हिरण बहन नहीं बोलोगे, तब तक हम ओम शांति भी नहीं बोलेंगे। इतना मुझे उन्होंने पक्का कराया था। तो जब मैं अपने लौकिक चाचा चाची का नाम लेती थी, दादी का, मेरे फूफा जी, मेरे मौसा जी सब बैठते थे, जब तक हमारा नाम नहीं लोगी तुम हम ओम शांति नहीं करेंगे, बाकी सबका नाम लेती हो तो हमारा भी नाम लो। तो इतना उन्होंने आत्मिक स्थिति को भी पक्का कराया। तो मुझे एक दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा आए हैं हमारे लिए और हमें अपना संपूर्ण जीवन इतना सच्चाई से अच्छे से श्रेष्ठ जीवन जीना है ताकि हम अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सके।
1: बहुत सुंदर। तो जब आप इतनी दृढ़ता और इतनी क्लैरिटी के साथ अपने जीवन का निर्णय लिया और उस पर अडिग रहे और पिछले 4 दशकों से अधिक समय से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, इस पवित्र जीवन को जी रहे हैं, सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो आप अपनी जीवन में ऐसी क्या उपलब्धियां या प्राप्तियां या जीवन में ऐसे कौन से परिवर्तन को आप देखते हैं?
0: कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी मुझे चिड़चिड़ापन होता था, तो जब कोई भी कुछ कहता था तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब मैं माउंट आबू आई, मैंने दादियों को देखा, जब माउंट आबू सेंटर पर रहने लगी, बाद में मेरा परिवर्तन हो गया, माउंट आबू आने लगी, और माउंट आबू मैंने मनोहर दादी, दादी प्रकाश मने, दादी ईशो जी, मैंने सब दादियों को देखा, तो सब दादियों में जैसे ना गुणों की खान, इतना प्यार, इतनी शांति, इतनी सुकून, हर प्रकार से जब उनको जीवन को देखती थी तो लगता था कि दादियों को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता है, न कभी जोर से भी नहीं बोलते हैं, कभी इसे गुस्से में आंख भी नहीं दिखाते, कितना प्यार। तो उनकी सब दादियों को देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि इन जैसे बनना है, ऐसे दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना, और निश्चय मेरा बढ़ता गया कि जो दादियों ने बाबा की शिक्षाओं को लेके इतना ऊंचा जीवन बनाया, आज विश्व में नंबर 1 जीवन जी रही, आदर्श जीवन है सभी दादियों का। दादी नहीं कहती लेकिन दादी माँ के रूप में प्रत्यक्ष हो गई है। तो बस ये मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे दादियाँ, और आज भी वही है कि उन जैसा बनना है और बाबा की शिक्षाओं को, जो बाबा शिक्षा देते उनको संपूर्ण रीति से अपने जीवन में धारण करना है। ऐसी कोई बात न हो जाए जो मेरे से छूट जाए। तो इसीलिए मैं रोज अमृत वेला भी 2 बजे उठती हूँ, 2 बजे उठ के स्नान करके मैं 3-3:15 तक अमृत वेला करने बैठ जाती हूँ, और 5:30 तक मेरा अमृत वेला चलता है, उसके बाद भी स्नान करके फिर मुरली क्लास में जाती हूँ। तो ये मेरे लाइफ का एक लक्ष्य है कि मुझे जीना है। संकल्प बचपन से एक था कि जीवन जीना है तो ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीना है, जीना है तो एक आदर्श जीवन जीना है और सच्चा और अच्छाई के साथ जीना है।
1: बहुत सुंदर। तो वर्तमान समय में आप तो इस ब्रह्म कुमारी इस मुख्यालय परिसर में रहते हैं, तो आपकी क्या सेवाएं होती हैं?
0: अभी तो खास मतलब इस प्रकार की दीदियों ने विशेष मुझे निर्धारित नहीं किया सेवा के लिए, लेकिन जो सेवाएं सुचारू रूप से दादी जी के कॉटेज में चलती थी कि काफी भाई बहने मिलने आते हैं, उनसे हम मिलते हैं, ज्ञान की रोरियान करते हैं, और आध्यात्मिक रीति से जो भी स्टूडियो में बुलाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, कई जगह मुरली सुनाने के लिए जाते हैं, ज्ञान की रोरियान चलती रहती है। तो जहाँ भी बुलाते हैं ऑल इंडिया में, वहाँ भी हम जाते रहते हैं और हमारी सेवाएं हम देते रहते हैं।
1: बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच दीदी जी, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए, और एक महिला और उसमें भी खास एक छोटी सी बच्ची को जब आध्यात्मिक ज्ञान की स्पष्टता जब मिलती है, उनके अंदर एक दृढ़ता और उनकी अपनी जीवन को सजने संवारने की एक ताकत क्या होती है और वह कैसे आगे बढ़ती है, आज हमने आपके जीवन से देखा, और इसे ही कहते हैं जीना, इसी का नाम है। थैंक यू सो मच दीदी।
0: ओम शांति।
1: दोस्तों, यहीं पर हम आप सभी से विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए अनुभव, एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
2: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर

0: अदर भाषाएं हैं। तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
1: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
2: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
1: दादी, जानवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
2: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
1: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
3: चांदनी क्यों फंसा रही है वीरू को?
1: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
0: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप? वीर वीर।
4: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
0: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
4: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया। किसने चलाया था ये गाना?
5: तुमने।
4: हाँ, वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
0: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
2: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, भूम भूम भूम, तू कर।
5: भूम नहीं दादी, ग्रू।
2: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही। अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
0: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
2: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन में एक निकाल के। आखिर एक लौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
1: और हम क्या है दादी?
6: इस सवाल का जवाब है किसी के पास। पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को। वैसे अंबिका देवी राठौर शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे हैं, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी। लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
7: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
8: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
7: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
8: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
7: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
8: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
7: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
9: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
7: हे राम मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
9: कम उम्र?
0: हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
7: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
9: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
0: लो आ गए वो।
10: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाईसा घर में। हाँ, चलो
11: हाँ, बढ़िया
10: चलो,
11: बढ़िया
10: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
11: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
10: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
12: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
10: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
12: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है, और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं, ना कोई।
11: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
10: शांति चुप हो जा। जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
12: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
13: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है?
12: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
13: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
12: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
10: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
0: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
8: हाँ जाती हूँ।
0: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
8: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
0: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
8: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
0: इसी बात का तो डर है।
8: हा? कुछ कहा आपने?
0: नहीं नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
8: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
0: क्या?
8: अरे मजाक कर रही थी।
0: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
14: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
0: चल ठीक है अब नाश्ता करने चले।
6: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया, और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
15: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
6: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
16: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

आप सभी को शीतला सप्तमी जो गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है आज इस त्योहार को, तो शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। जो भी आप करें नियम व्रत कथा, तो उसको आप सच्चे दिल से करिए तो मन की मनोकामना जरूर पूरी होती है। कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कटहल खाने के क्या फायदे हैं, कौन सी बीमारियाँ ठीक करते हैं, जरूर आप जानेंगे। फिर शीतला सप्तमी कैसे मनाते हैं, अभी दशा माह के दिन भी चल रहे हैं, तो इन त्योहारों की बात करेंगे। और रेसिपी भला कैसे भूल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं बताइएगा, नहीं तो फिर हम अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, कौन सी रेसिपी सिखाएंगे वो जरूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, आशियाना सुनिए जान जाएंगे। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग आशियाना में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि सलाह दो तो सही दो, जो भी करो नियम से करो, दिल से करो तो वो सार्थक होता है, और सलाह सही देंगे तो हमारा ही भला होगा, नहीं तो कभी भी लौट के हमारे ऊपर आ सकता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में आज शीतला माँ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। तो दो देहरानी जेठानी होती है। जेठानी रोज शीतला माँ को ठंडा करने जाती है, कोरा कलश झलका भर के लेके जाती है, माता रानी के चढ़ाती है, और शीतला सप्तमी के दिन रांधा पुआ करके जो भोजन रात का बना होता है वो सुबह लेके जाती है, पूजा भी करती है, चढ़ाती भी है माता रानी के, और इस तरह वो व्रत उपवास करती है। और देरानी की परिस्थिति बहुत गरीब होती है, जेठानी पैसे वाली होती है, तो देरानी जेठानी के घर पे काम करने आती है, वो उनके गाय भैंस होती है उनका काम करते हैं, इसके बदले में जेठानी थोड़ा सा खाना बचा हुआ रात का दे देती है, उससे देरानी के परिवार का गुजारा चल जाता है। इस तरह चल रहा था तो देरानी के भी मन में आया कि ये हमारी भाभी जी रोज पूजा करने कहाँ जाते हैं, अच्छा लगता है उसको भी, वो भी चाहती है कि पूजा करे, तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस तरह माता रानी की पूजा करूँ, जिनकी भी ये पूजा करते हो क्या करते हैं मैं भी पूछूँ। तो उसने अपनी जेठानी से पूछा कि भाभी जी बताएं ना, आप रोज जाते हैं जल का लोटा ले करके और आज भी आप पूजा करके आए, मुझे नहीं पता आप कहाँ जाते कैसे करते, लेकिन मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी करूँ, तो आप मुझे बताओ ना कैसे क्या करता है। तो बोलेगी अरे इसमें करना क्या है, सुबह उठ करके हंडी चढ़ानी है चूल्हे पर, अच्छा सा पानी गर्म हो जाए, वो गर्म गर्म पानी माता रानी को चढ़ा देना है। बोले अच्छा ऐसे करते हैं? बोले हाँ ऐसे करते हैं। तो ठीक है, देरानी सीधी सादी थी, भोली भाली थी, तो उसने तो ऐसा ही किया, हंडा चढ़ा दिया, अच्छा सा गर्म हो गया और ले गई और माता रानी के चढ़ा के आ गई। तो माता रानी ने कहा कि हे पापी दुष्टि, तूने मेरा पेट जलाया, तूने मुझे जलाया, जा तेरे पेट जलेगा। तो घर पे आके देखा तो बच्चे तो रो रहे, अरे जल गए जल गए जल गए, बच्चे तो रो रहे। तो देरानी को तो विचार आया कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो आज आराम से श्रद्धा से मैं माता रानी के जल चढ़ा के आई और ये क्या, घर पे तो सभी जलू जलू कर रहे, अब क्या करें। अड़ोस पड़ोस के इकट्ठे हो गए बच्चों की आवाज़ सुनकर के, अरे तुम्हारे बच्चे इतने क्यों रो रहे, क्या हो गया क्या हो गया। बोले कि पता नहीं, मैं तो माता रानी को ठंडा करने गई थी और इधर आके देखा तो बच्चे रो रहे और बोल रहे जल रहे जल रहे, और फपोले कहाँ से पड़ गए पता ही नहीं चल रहा है, कैसे जले मुझे तो कुछ पता नहीं। बोले कि अच्छा तुम माता रानी को ठंडा करने गई तो क्या किया तुमने? तो बोले कि मैंने तो अपने जेठानी से पूछा था, उन्होंने कहा हंडा गर्म चढ़ाना, उसमें से तुम पानी ले जाना और माता रानी को चढ़ा देना। तो पड़ोसियों ने डांटा, गिर ऐसे थोड़ा होता है भाई, रात को कोरा कलश में पानी भर के रखो, वो पानी माता रानी को चढ़ाने का होता है, तूने तो गड़बड़ कर दी। बोले कि अब मैं क्या करूं? बोले अब तुम्हें वापस माता रानी का मतलब उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और अच्छी तरह तुम ऐसे खाना बनाओ, और रात का खाना सुबह ठंडा खाना है, और पहले माता रानी को पूछ के आना है। तो उसने कहा ठीक है, फिर उसने ऐसे ही किया, रात को जो जो भी पड़ोसियों ने बोला है इधर उधर से ला करके उसने बनाया, और बना करके सुबह श्रद्धा प्रेम से प्रायश्चित करते हुए या सुबहाते हुए माता रानी की पूजा की और बोला कि माता रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा कैसे होती है, लेकिन आज मेरी पूजा को स्वीकार करना, और बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से पूजा की। पूजा की तो माता रानी को पता था कि ये तो भोली भाली है, इसको तो जो कहा गया वही उसने किया है। तो माता रानी की कृपा से पूजा करके आई तो देखा कि घर की झोपड़ी तो उड़ गई, महल बन गया, बच्चे तो बड़े किलोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। बोले अरे ये क्या हो गया? उधर जेठानी ने कहा कि आज देरानी काम करने नहीं आई, भाई क्या बात हो गई, जाके देखती हूँ। तो देखा तो झोपड़ी का तो ठिकाना ही नहीं, और महल है मतलब अच्छा सा पक्का मकान है, और बच्चे झूले झूल रहे खेल रहे हैं। तो बोले कि अरे ये तूने क्या किया, क्या मेरे घर से चोरी करके तूने ये इकट्ठा किया क्या, ये तेरा घर कब से बन गया, मुझे तो पता ही नहीं और मुझे बताया भी नहीं तूने। उसने कहा कि देखो
भाभी जी मुझे तो कुछ पता नहीं, आपने तो मुझे ऐसी शिक्षा दी जो मैं गर्म पानी चढ़ा के आई, मेरे बच्चे तो जल गए थे, लेकिन वो तो अड़ोस पड़ोस के कहने पर मैंने माता रानी के सच्चे दिल से पूजा की, ठंडा पानी चढ़ाया, तो ये माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है। लेकिन आपने तो मुझे सही सलाह नहीं दी और अब मैं आपके घर पर नहीं आऊँगी काम करने, आप अपना करो मैं अपना करूँगी। तो जेठानी समझ गई कि भाई अब इसके पैसा भी हो गया, मकान भी हो गया, और गलती तो मेरी थी कि मैंने गलत सलाह दी। तो वो चुपचाप चली गई और तब से देरानी के घर में शांति रही। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये तो देखिए दृष्टांत आपको दे रहे हैं, लेकिन हम सही मायने भी में भी जीवन में सच्चाई सफाई से चले, और किसी को सलाह देना हो तो हमें अच्छी सलाह देना आते हैं तो देवे, नहीं तो नहीं देवे, ठीक है। और जो भी व्रत नियम हम अगर करते हैं तो शुद्ध मन से करिए। तो मन का कहते ना कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं जरूर पूरी होती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुनते हैं कि तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देंगे. कटहल खाने के क्या फ़ायदा है और कमरक खाने के क्या फ़ायदा है. ठीक है, तो पहले कटहल के बारे में बता रही हूँ. देखिए, कटहल वैसे हमारे राजस्थान में अब तो मिलने लगा है, बाकी पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी मिल रहा है. तो आप छानिएगा कि आप कैसे खाएंगे, क्यों खाएंगे. देखिए, वैसे तो कच्चा कटहल क्या है, कसेला, दाहक और मल बांधने वाला होता है. ठीक है, घरिष्ठ और वात पैदा करता है यह. तो कसेला होता है, दाहक होता है, मल बांधने वाला होता है, घरिष्ठ होता है और वात पैदा करने वाला होता है. जो ये कच्चा कटहल अगर आप खाते हैं तो, और पक्का फल मतलब कटहल जब पक जाता है, इसके खाने से शीतल, दुष्पाच, पित्त व वायु का नाश होता है, शक्तिदायक होता है, मांस बढ़ाता है, मृदु रेचक होता है, रक्त स्तंभक है, क्षत क्षय आदि विनाशक होता है. मतलब क्षत और क्षय की बीमारी, जो टीबी की बीमारी है, उसमें कटहल खाना ज़रूरी हो जाता है, तो उसको ठीक करता है. फिर देखिए कमरक. कमरक क्या है, पित्त विकार को ठीक करता है. कमरक का अगर आप शरबत बना करके पीते हैं तो पित्त विकार ठीक करता है. वह कहते हैं ना, शरीर में तीन बीमारियां मुख्य है, कफ, वात, पित्त और कफ. ये तीन मेन है, इनसे ही फिर सारी बीमारियां है. ठीक है, तो किसी के शरीर में पित्त ज़्यादा होता है, किसी के कफ ज़्यादा होता है, किसी के वात ज़्यादा होता है. तो पित्त विकार ठीक करना हो तो कमरक का शरबत बना करके लीजिएगा. फिर देखिए, कफ, पित्त, रक्त विकार में कच्चा कमरक को कूट पीस करके रस निकाल करके आप एक चौथाई रहने तक धीमी अग्नि पर पका करके थोड़ी देर जमीन पर रस नितारिए और इसको रखिएगा. ठीक है, फिर ऊपर से आप नितार दीजिए. फिर उचित मात्रा में सेंधा नमक, धनिया, पिसा हुआ जीरा मिला करके इसमें सिरका तैयार कर लीजिए. सिरका भी डाल दीजिए और इसे 10-10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए, रोगी को दीजिए. ठीक है, तो इससे रक्त विकार ये सब ठीक हो जाता है. तो इस तरह भी आप कर सकते हैं. फिर देखिए, विसर्प है तो कमरक का रस जौ के आटे में मिला करके लेप करके बांध दीजिए, तो इससे विसर्प ठीक हो जाएगा. और देखिए, पक्का फल अपने माधुर्य, रुचिकर, शक्तिदायक, पित्त को शांत करने वाला, वात कफ बढ़ाने वाला, रक्त विकार नष्ट करने वाला तथा प्यास को शांत करता है पक्का कमरक. इसमें भी कच्चा और पक्का दोनों ही. तो कच्चा से क्या फ़ायदा है, पक्का से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो आपने जाना है. और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं. आज की पहेली बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा और फिर आप जवाब दीजिएगा. आधी रात को आती हूँ, खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते, भजन होते, कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ. तो ये आज का प्रश्न है. जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के पहेली का जवाब दे सकते हैं. अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भूरीलाल जी जुड़ चुके हैं मानपुर से। नमस्कार भूरीलाल जी।
1: नमस्कार बहन जी। नमस्कार।
0: हाँ जी,
1: अभी खाना बना करके बैठा है।
0: हाँ?
1: और अब मेरे पहले का विचार तो ये है कि भाई सपना हो सकता है सपना।
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: ठीक है। देखो चलो जो कुछ होगा जो बाद में आएगा। अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ दुकान पे।
0: अच्छा
1: जरा गाड़ी है नीचे बुला रहे हैं इसलिए मैं फोन करके फिर जाऊँ।
0: अच्छा अच्छा चलिए
1: जी, को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। देखिए दुकान पर जाना है, जल्दी है, फिर भी आप जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज गुजरात में शीतला सप्तमी है और दशा माँ का त्यौहार भी चल रहा है। कल जन्माष्टमी है पूरे भारत देश में और फिर गुजरात में दशा माँ का त्यौहार भी आ रहा है और बहुत सारे त्यौहार। सावन भादवा तो त्यौहारों से ही भरा हुआ है, इसलिए सावन आता है उसका सभी को इंतज़ार रहता है कि अरे वाह सावन आ रहा है, क्या बात है, अब ये तो खुशियाँ खुशियाँ लेके आ रहा है हरा भरा। इसलिए हरा भरा कहते हैं सावन भादो को, क्योंकि दोनों ही महीने इतना त्यौहार रहता है कि अच्छी बात है ना। वैसे तो हमेशा ही त्यौहार मनाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी त्यौहारों का एक अपना ही आनंद है, एक अपनी ही रौनक है। त्यौहार आते तो अपने आप ही मन में वो ही संकल्प चलते हैं, अरे भाई कल तो जन्माष्टमी आने वाली है, कल तो कन्हैया का जन्म है। जबकि आप हम सभी जानते हैं कि जन्म कन्हैया का हर साल हम मनाते हैं इसी तरह जन्माष्टमी, तो हर साल थोड़े ना किसी का जन्म होता है, फिर भी मनाते हैं, खुशी है। तो मन हमेशा कैसे भी करके इन प्रकारण मन हमेशा खुश रहना चाहिए। तो खुश रहने के तो फायदे ही फायदे हैं। अब आप सुना सकते हैं खुश रहने के क्या फ़ायदा है ना। तो किस तरह त्यौहार मनाते हैं, या फिर मन में हर दिन त्यौहार होना चाहिए। ठीक है त्यौहार तो एक दिन दो महीना आके चले जाएगा, उसके बाद क्या हम उदास हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो कौन उदास नहीं होगा वो आप जुड़िएगा, जिनको उदास रहना हो वो नहीं जुड़े। जो सोचते हैं कि नहीं त्योहारों पर डिपेंड नहीं है, हम रोज़ खुश रहते हैं, वो ज़रूर जुड़े और अपनी बात को ज़रूर रखे। ठीक है, और कैसे इन त्योहारों को मना रहे हैं जरूर बताइएगा। हेलो
2: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई।
0: नमस्ते सुरेश भाई, क्या बात है, आप तो हमेशा खुश रहते हैं।
2: रहना ही चाहिए दीदी
0: जी, बिल्कुल।
2: हम ऐसे ही बैठेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, ऊपर से नुकसान है, ना करके बस खुश रहे पूरे दिन। और मैं तो दीदी बताऊं तो खुश रहने तो कई सारे फायदे हैं। एक तो हमारे माइंड में टेंशन नहीं आता और कोई दूसरा ऐसा विचार भी नहीं आता, तो कई सारे फायदे हैं खुश रहने के लिए। मतलब खुश रहना ही चाहिए दीदी, क्योंकि आज जो दुनिया में हो रहा है सभी घर में परिवार में कुछ ना कुछ तो लोगों को ऐसा कोई टेंशन तो रहता ही है। ऐसा नहीं कि सबको टेंशन रहता है, लेकिन टेंशन रखने का कोई फायदा नहीं है।
0: जी जी जी जी,
2: जो आया वो चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, सुख आया भी चला जाएगा
0: जी।
2: कई सारी मुसीबतें देखो, आज जो नेपाल में वो बाढ़ आई है, कितने लोगों को कितनी परेशानी, कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए हैं।
0: जी जी जी,
2: तो ऐसा होता रहता है, लेकिन बाद में सुख आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा सभी। तो मेरा तो मतलब दीदी है कि चाहे कुछ भी हो बस खुश रहो, अच्छे अच्छे त्योहार आ रहे हैं, परिवार के साथ रहो
0: जी,
2: परिवार
0: जी,
2: के साथ खुशियाँ मनाओ, कहीं बाहर जाओ घूमो।
0: अभी तो गुजरात में आठम के बाद छुट्टियां ही छुट्टियां है, कहाँ जा रहे हैं आप?
2: बस बहुत अच्छा था दीदी, अब तो जो आज से शीतला सप्तम है, कल गोकुलाष्टमी है, कल भी कार्यक्रम रात को पूरा होगा, बहुत कार्यक्रम जोरों से होगा मंदिरों में, सभी मंदिरों में
0: जी।
2: और बाद में सावन महीना पूरा, और बाद में भाद्र आएगा, भाद्र में कई सारे पूरा महीना देखो, कोई अंबाजी जाता है, कोई तो रणुजा जाता है, कोई कहीं ना कहीं जाता है, गांव में भी पूरा माहौल हरा भरा रहता है मंदिरों में
0: जी।
2: तो बस हर दिन खुशियाँ है दीदी मानो तो, वरना तो कई लोग ऐसे दीदी बोलना बुलाते थे बोलते नहीं, ऐसा बैठ रहते है भाई, ऐसे क्यों बैठते हैं,
0: सही बात है,
2: इतना कष्ट हुआ है आपको।
0: सही बात,
2: तो ऐसा नहीं रहना है, बस खुशियाँ मनाते रहो जीवन में
0: जी जी जी जी,
2: तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा कोई, बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी। नमस्ते
0: जी,
2: हमारे सभी मित्रों को आज को शुक्ला शासन की बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी।
2: नमस्ते,
0: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। त्योहार का आनंद लेते हैं सभी, लेकिन हमेशा खुश रहना ये बहुत बड़ी विशेषता है। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि आप हर दिन खुश रहते हैं। परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, किसके जीवन में नहीं आती है। और परिस्थितियों के बिना तो हमें अनुभव भी कहाँ से मिलेगा, एहसास भी कहाँ से होगा, क्या दुख होता है क्या सुख होता है कोई अनुभव ही नहीं। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। हमें खुश रहने के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं रहना है, ठीक है। बाकी गुजरात में शीतला सप्तमी है आज, कल तो सभी ने, आपने भी सुना, सगुणाबेन भी जुड़े, सुरेश भाई भी बता रहे थे, कंचन भाई भी बता रहे थे, भाई खाने की तैयारी चल रही है, तो कल खाना बना के रख दिया, आज पूरे दिन ठंडा खाएंगे। जैसे राजस्थान में चैत्र महीने में मनाते हैं रांधन छठ के दिन, एक दिन पहले, वही प्रोसेस वही है, मनाने का तरीका बस थोड़ा सा अलग अलग है। बाकी इसी तरह छठ के दिन बनाते हैं खाना, सातम के दिन पूरे दिन ठंडा खाते हैं। और गुजरात में रिवाज है महिलाएं खाली, मतलब ऐसे जल चढ़ा के आ जाती है, इतना पूजने का जितना जो राजस्थान में रिवाज देखा मैंने। राजस्थान में शीतला सप्तमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। गुजरात में मेले लगते हैं जगह जगह, जहाँ शीतला माँ के मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है, तो वहाँ पर भक्तों का आना जाना रहता है, भीड़ रहती है, मेले की रौनक तो आप सभी जानते ही है। और बाकी जो पूजा करने का रिवाज है वो यहाँ नहीं देखा, लेकिन मेले का रिवाज राजस्थान से भी ज़्यादा गुजरात में है। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार।
3: जय माता दी, जय श्री हरि
0: जी,
3: और नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
3: और बस गुजरात वासियों को, गुजरात के सभी भाई बहनों को शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं, और आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी।
3: और मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों को आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और सुना, शीतला सप्तमी आई तो
0: जी,
3: गुजराती
0: जी,
3: तो बस आज तो गुजरात वासियों के लिए, बहनों के लिए आज तो छुट्टी होगी, रजा होगी, तो मेरा तो
0: आज खाना बनाने की छुट्टी।
3: हाँ, तो सभी बहनों से ये गुजारिश है कि आज के दिन तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा रेडियो में जुड़ो।
0: सही बात है, आज तो भोजन बनाना ही नहीं है।
3: हाँ, तो आज तो जुड़ सकते हैं ना।
0: बिल्कुल, जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं।
3: जुड़ना चाहे तो नहीं, जुड़ना चाहिए।
0: वही तो, हम तो यही कहेंगे, जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, और जुड़ना भी चाहिए।
3: जुड़ना चाहिए,
0: क्योंकि चाहना अपने

0: अंदर रहती है तभी जुड़ पाते हैं ना, जैसे आप लोग इच्छा होती है अंदर चाहना होती है तो आप जुड़ जाते हैं, कोई भी परिस्थिति हो कहीं पर भी हो, चाहे सफर में हो कहीं पर भी, है ना जी।
1: वो मन जुड़ने को कहता है ना तो जुड़ जाते हैं
0: जी।
1: मन जुड़ने को कहता है तब तन फोन की तरफ भाव चलाता है, फिर फोन से हो जाता है काम और मुंह फिर बातें करने लग जाता है
0: जी।
1: और मन और तन का जब मिलन होता है तो सब काम हो जाते हैं ना। और आज क्या है टॉपिक?
0: आज टॉपिक यही है कि क्या हमें खुश रहने के लिए इन त्योहारों पर आश्रित रहना पड़ेगा या हमेशा खुश रहेंगे?
1: तो वो तो मैंने कल बात बताई थी ना। अगर इंसान हर दिन को एक त्योहार माने ना दीदी, त्योहार तो आते जाते रहते हैं ठीक है, मगर अपने अंदर खुशी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान हर दिन एक त्योहार माने तो कभी खुशी कम होगी नहीं ना। हर दिन को अपने आप एक हर दिन एक नई किरण के साथ में आता है ना
0: जी।
1: हर दिन एक सूर्य की नई किरण के साथ में दिन आता है तो हर दिन एक नया दिन हुआ ना, हर दिन एक त्योहारी हुआ ना
0: जी।
1: तो हर दिन एक त्योहार आप मानोगे तो जरूर आपके जीवन में खुशियां रहेगी। आपके जीवन को बेरंग नहीं करना है, हर दिन को रंगीन करना है। आपके जीवन अगर रंगों को हटा दिया, बेरंग हो गया तो फिर खुशियां चली जाएगी रंगों के साथ।
0: बिल्कुल,
1: आपको जीवन को हरा भरा कर रखना है
0: जी।
1: देखिए कि अपन हर दिन मतलब अपन सूर्य की नई किरण के साथ में जोश उल्लास से अपन घर का मतलब जो भी काम है वो करते हैं तो खुशी को शामिल क्यों नहीं कर सकते
0: जी।
1: आप हर चीज जोश के साथ में करते हैं कि देखिए कि आज ही देखिए सुबह हो गई तो जोश के साथ में हर चीज आप सुबह उठते हो फिर करते हो तो खुशी भी तो उसमें शामिल होनी चाहिए ना
0: जी।
1: हर एक चीज करते हो तो खुशी को शामिल क्यों नहीं करते, उसको भी शामिल कीजिए। फिर आपके देखिए आपके जीवन कैसे रंगों से भर जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। मन को सदा खुश रखिए तो वो अपना तन को खुश रखेगा
0: जी।
1: अगर नेगेटिव विचार भी आते हैं तो उनको बाहर फेंको और पॉजिटिव विचार लेके आओ तो दुख आएगा भी नहीं
0: जी।
1: सबसे मेन बात की वो श्लोक भी है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, परमात्मा को हर समय सिमरन करना चाहिए, हर समय याद करना
0: जी जी जी।
1: सही है ना?
0: बिल्कुल।
1: परमात्मा अगर आप लोगों के ऊपर आश्रय रहते हो इससे बेहतर परमात्मा के ऊपर आश्रय रहिए तो आपके जीवन हर दिन एक त्योहार बन के रहे
0: जी।
1: किसी को दोष इसमें दोष देने की बात नहीं है, वो अपन को खुश रहना।
0: अच्छा,
1: तो कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता
0: जी जी।
1: सही है ना? गलत बोल रहा हूँ?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: हाँ मतलब अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दो कुछ लोग क्या है जैसे इतना बड़ा कुछ हो गया तो वो इतने दुखी होंगे जैसे कि कोई पहाड़ गिर गया हो। मगर मैं तो कहता हूँ छोटा बड़ा हो गया तो हो गया, बाबा के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, अपनी डोर तो उसी के हाथ में, वो जितने में रखे उतने में रहो
0: जी,
1: आपको खुशी रखेगा। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी हो, वो तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी रह सके।
0: चलिए
1: बाकी तो आप अपने मन अंतर आत्मा से पूछिए कि हम कैसे खुश हैं।
0: अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: क्या है पहेली?
0: आधी रात को आती हूँ खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते हैं काना के, जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन?
1: जन्माष्टमी।
0: चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। आप कार्यक्रम सुनिए, कार्यक्रम के अंत में हम जवाब देंगे, ठीक है?
1: नहीं सही, हाँ ठीक है ओके।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों

0: भी स्वागत। आपको भी थोड़ी को ट्रेजेडी हुई थी, कोई फ्रैक्चर वैक्चर हुआ था।
1: ठीक है,
0: सुरेश ने बताया था
1: जी
0: कि दीदी अभी तो करते ही है।
1: जी जी जी ठीक है,
0: हाँ तो ठीक हो गए आपको?
1: जी चल रहा है अभी तो।
0: हाँ,
1: अभी प्लास्टर है, फिर कटेगा, फिर पता चलेगा।
0: हमारी दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाए।
1: जी जी बिल्कुल, थैंक यू।
0: सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। आज तो शीतला सातम है और कल जन्माष्टमी है, कल खाना पधारेंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: तो सभी खुशियां तो मनाएंगे।
1: जी जी,
0: अभी सुरेश बात कर रहा था कि खुशी खुशी खुश कहना चाहिए, खुशी कहाँ से मिलती है?
1: जी,
0: खुशी तो कोई दीदी दिखाने वाली चीज तो है नहीं।
1: बिल्कुल,
0: खुश तो अंदर दिल से रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, फिर भी वो खुशी की झलक चेहरे पर दिखाई देती है भाई जी।
0: हाँ, दिखाई देती है। हाँ। लेकिन अब थोड़ी देर खुशी आती है, लेकिन बाद में कोई संबंधी के इधर किधर घर में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई,
1: जी जी जी,
0: तुरंत खुशी चली जाती है।
1: स्थाई नहीं रह सकती खुशी।
0: हाँ, स्थाई नहीं रहती, क्षण भंगुर है खुशी, तो क्षण भंगुर है
1: जी।
0: बस खुश कैसे रहना चाहिए, बस परमात्मा की प्रार्थना करो कि हमको इंसान बनाया।
1: सही बात,
0: नहीं तो पशु पक्षी बनाया होता तो क्या करते हम। खुश इसमें रहना चाहिए, खुशी इससे मनानी चाहिए, परमात्मा से एक लगाव रखना चाहिए, कांटेक्ट रखना चाहिए ना
1: जी।
0: हर देश रात को हम सो जाते हैं ना
1: जी,
0: तो हम चले जाते हैं, सुबह हमारा दूसरा नया जन्म होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो सुबह उठ के तुरंत परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम जिंदा है
1: जी।
0: बस इसमें खुश रहना चाहिए
1: जी।
0: सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। मधुबन रेडियो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए, बहुत बहुत आभार, ऐसे आप कभी बीच बीच में आते रहिए।
0: ठीक है दीदी, आना है मन रामो में, आना है।
1: आइए आइए, स्वागत आपका, पधारिए।
0: सबको मिलना है
1: जी, अभी वैसे ही गुजरात में आठम की छुट्टियां रहती ना, तो आ जाइए आठम पे।
0: आप दो तीन दिन से तो छुट्टियां है ना
1: जी, आठम के बाद छुट्टियां रहती है, थोड़ा लोग इधर उधर ही जाते हैं घूमने।
0: हाँ, एक दो दिन रहती है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ओके
1: जी, आभार आपका। तो ये थे ठाकुर भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, और आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी खुशी क्या त्योहारों पर डिपेंड करेगी, या फिर हम अंदर से हमेशा खुश रहेंगे? हाँ, जैसे कि ठाकुर भूपत सिंह जी बता रहे थे कि कभी कभी कुछ परिस्थितियां आ जाती है कि मन उदास हो जाता है, तो वो स्वाभाविक है। देखिए, सभी हम इंसान ही है ना, और इंसान हमेशा समाज में ही रहता है, और समाज में परिवार में रहते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि थोड़ी देर के लिए उदासी आ जाती है, लेकिन उदासी को स्थायी नहीं रखना है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते, ओम शांति।
1: ओम शांति, नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे है, आज तो हमारा त्योहार है सातम का।
1: जी जी जी जी। और क्या किया
2: आपने? और खुश रहना सदा अच्छा ही है
1: जी,
2: खुशी जैसी खुराक नहीं बोलते ना।
1: बिल्कुल, तो कैसे मनाया आज के त्योहार को, क्या किया आपने?
2: हम तो देखो जल्दी उठे सुबह, पहले तो बाबा की याद में बैठे
1: जी,
2: फिर नहा धो के पूजा किया
1: जी,
2: चाय नाश्ता करके गए दुकान पे।
1: पूजा घर में ही करते हैं, घर में करते हैं या बाहर जाते
2: हैं? मैं तो घर में ही करती।
1: अच्छा,
2: सब लोग बाहर जाते हैं, लेकिन मैं तो देखो पहले तो मेरे बाबा को भोग लगाती हूँ
1: जी,
2: फिर सबको, सब रचना तो उसकी है
1: जी।
2: हाँ, अभी भाई जी ने बताया प्रभु को याद करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो पहले बाबा को याद करते हैं।
1: जी जी, पहले मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद ही सारा कार्य। बहुत हाँ, अच्छी बात है।
2: नहीं तो खुशी तो खुश रहना बहुत अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल, सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, और खुशी बरकरार रहती
2: है।

0: बहुत अच्छा
1: जी
0: लगा आपका कार्यक्रम, जैसे दिन होता है ऐसे आप कार्यक्रम रखते, बहुत अच्छा लगता है दीदी।
1: थैंक यू। और आज की पहेली का जवाब देंगे?
0: पहेली का जवाब तो है शीतला माता।
1: अच्छा, शीतला माता, ठीक है।
0: हाँ, हाँ।
1: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सगुना बहन।
0: ओम शांति।
1: हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, और आपने भी कैसे शीतला माँ का मतलब आज सुबह से शुरुआत की है, मेडिटेशन से शुरुआत की है, फिर आपने पूजा वगैरह की है, बहुत अच्छी बात है। और गुजरात में मैंने देखा है कि देखिए दशा माँ का भी त्यौहार अभी धूमधाम से चलता है, तो दशम तक इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है और सांडनी ला करके घर में स्थापित की जाती है। फिर आसपास वाले, मतलब हर घर में नहीं होती है, जैसे मोहल्ले में एक घर फिक्स होता है, वहाँ फिर आसपास की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर के सुबह शाम माता रानी की आरती करेगी, पूजा करेगी, और शाम को भी घंटों घंटों पूजा और आरती में जाता है। सुबह भी जैसे घर का काम से फ्री हुई नहीं 11-12 बजे, उस समय आरती पूजा करेंगे, और आज के दिन तो पूजा करके प्रसाद भी वितरण किया जाता है और पूरे दिन ठंडा खाया जाता है। तो ये सानने का रिवाज गुजरात में देखा मैंने, इधर राजस्थान में नहीं है। हाँ, राजस्थान में वो आबू क्या है, थोड़ा सा टच में है ना, बॉर्डर आ गई गुजरात की, तो आधा कल्चर गुजरात का, आधा राजस्थान का। बाकी आप मध्य राजस्थान में चले जाएंगे तो ये रिवाज नहीं है। वो इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ, 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी। आप एक से दूसरी जगह जाएंगे तो काफ़ी कुछ भिन्नता आपको नज़र आएगी, लेकिन खुशियाँ वही है। तो हमेशा खुश रहिए, खुश रहने के लिए हमें डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, परिस्थितियाँ आती है, परिस्थितिवश कभी कभी हम उदास भी हो जाते हैं। भाई अपने ही सगे रिश्तेदार, मतलब भले यार दोस्त के या कोई रिश्तेदारों के यहाँ कुछ घटित घट जाता है, कुछ हो जाता है, तो भी उदास हो जाते हैं, वो स्वाभाविक है, ठीक है। अपने ही घर में किसी के भी साथ कुछ भी होता है, कोई बीमार है, सिमार है या कुछ भी होता है, तो हम उदास हो जाते हैं, वो भी एक स्वाभाविक है, वो उदासी आना वो स्वाभाविक है। लेकिन कोई कोई तो आप देखिएगा हमेशा उनका मुँह चढ़ा ही रहेगा बिना कारण ही। अगर आप रास्ते में क्रॉस हो गए, आमना सामना हो गया, और आपने बोल दिया जय श्री कृष्ण राम राम सा, तो मुंह फेर के निकल जाएगा, ऐसे करके निकलेंगे, तब आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। अरे अभी कह रहे थे कि ठाकुर भूपत सिंह जी भी कह रहे थे कि देखिए इंसान बने ये सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, अच्छी बात है कि इंसान का चोला है, फिर हम जानवर भी बेचारे ऐसे नहीं करते होंगे, ऐसे हम हूँ करके निकल जाते हैं, तो कैसा लगेगा वो व्यवहार देखिए आप। और कोई सामने जब क्रॉस होता है और हम नमन करते हुए खुशी से जय श्री कृष्ण या राम राम सा, जो भी हमारे हम संबोधित करते हैं वो करते हैं, ठीक है, तो कैसे खुशी से हम करते हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स मिलता है, तो बोलो एनर्जी से एनर्जी टकराती है, कितनी खुशियाँ बढ़ जाती है ना। तो हमेशा मिलिए किसी से भी, कोई भी आपको सामने मिल जाए तो खुशी से पेश आइए, उस समय क्या उदास और हूँ करके निकलना है। और देखा है कि कभी कभी कभी कभार कोई उदास होता है तो तुरंत लोग पूछते हैं क्या हुआ, हमेशा वो खुश रहते हैं, आज क्या हो गया उनको, तो 10 जने पूछेंगे क्या हुआ हमें भी बताइए, तो बताएंगे कि भाई आज ये बात हो गई। लेकिन हमेशा मुंह फुला रहता है, कभी कभार खुश दिखाई देते हैं तब लोगों का आश्चर्य होता है, फिर उनकी खुशी का राज कहते हैं, अरे आज क्या हुआ, रोज़ तो मुँह फुला रहता है, आज क्या हुआ, आज कैसे आप खुश हो, बोलो, पूछते हैं ऐसे ही, डायरेक्ट पूछते हैं लोग, फिर बोलते हैं अरे आज तो बात ही ऐसी इसलिए हम खुश है। अरे तो क्या रोज आप उदास ही रहोगे क्या जीवन में, खुशियाँ तो कभी कभार आएगी। कोई हाँ भाई बच्चा पढ़ने में अच्छा अव्वल आ गया है, एक दिन का रिजल्ट, वो एक दिन आप खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, तो ऐसे थोड़ा होता है, खुश हमेशा रहिए। उदासी कभी कभी आती है, लोग समझ जाते हैं कि जरूर इनके घर में कोई मुश्किल आई है, तो वो शेयर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि आप बताइए, फिर वो कहते हैं आश्वासन भी देते हैं। देखिए इंसान सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो स्वाभाविक है कुछ होता है तो एक दूसरे को आश्वासन भी देते, घबराइए नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो उससे क्या हिम्मत आ जाती है कि चलो अपनों ने कहा है, चलो क्यों घबराना है, सब ठीक है। लोग हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर कहेंगे आप क्यों चिंता करते हो, हम आपके साथ हैं, कुछ भी काम हो तो बोलना, ठीक है। तो तुरंत ही इंसान कहेगा नहीं कि ये काम है आप कर लो, लेकिन एक मन के अंदर ताकत मिलती है कि चलो कोई तो है जिन्होंने हमें मोरल सपोर्ट किया कि भाई कोई भी बात हो हमें बताइएगा और हम आपके साथ हैं। इतना कहना भी बहुत कुछ मायने रखता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसलिए कभी दुखी नहीं होना है, ठीक है सिचुएशन आई है वो बात अलग है, वो चली जाएगी और चली भी जाती है और वापस हम खुश भी रहते हैं, लेकिन हमेशा मुंह फुलाए रखना ये अच्छी बात नहीं है। ईश्वर ने इतना सुंदर चेहरा दिया है तो इसको हमेशा मुस्कुराहट के साथ रखिए, और मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की नहीं अंदर की होनी चाहिए। अंदर की जो खुशी होती है ना वो चेहरे पर आती है, तो आप देखिएगा उसका चेहरा ऐसे खुशनुमा नजर आएगा, चमकता हुआ नजर आएगा, और व्यंग्यात्मक हंसी जो हंसते हैं ना वो भी पता चलता है कि भाई ये तो व्यंग में हंस रहा है, तो हमें ऐसी हंसी नहीं हंसनी है, ठीक है। और त्यौहार मनाइए आराम से, और हम भी यही चाहेंगे कि भाई हर त्यौहार का आनंद लीजिए, हर दिन को खुशनुमा बनाइए, हर पल को खुशनुमा बनाइए बस। और विषय अब यही समाप्त करते हैं और आइए आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली बड़ी ही सुंदर है, सरल है, आप चाहे तो जुड़ करके अपनी बात को रख सकते हैं। आधी रात को आती हूँ, खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते हैं, कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे हम आशियाना के किचन में मेथी का थेपला। मेथी का थेपला के लिए सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। आज तो वैसे शीतला सप्तमी है, घर घर में थेपले बने होंगे क्योंकि थेपले तो बनाते हैं, बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं खाना, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन थेपला तो ज़रूर बनाते हैं। हर घर में थेपला बनता है क्योंकि थेपला क्या है, ऐसी चीज़ है कि आप सफ़र में ले जा सकते हैं, आप 8 दिन 10 दिन का भी आप इकट्ठा बना करके ले जा सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा थेपला का। आजकल तो जैसे कल हमारे कौन श्रोता बंधु बता रहे थे कि थेपला भी मोल मिलता है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन एक अपना हाथों का जो हम बनाते हैं ईश्वर की याद में भोजन, तो स्वाद ही अनोखा होता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं बनाने की कोशिश करें भोजन, बाकी दूसरा काम आप करवाइए, लेकिन भोजन स्वयं बनाइए। अच्छे भाव के साथ बनाएंगे तभी तो कहते हैं ना कि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो मन शुद्ध कब होगा, जब हम स्वयं भोजन बना करके अपने इष्ट देव को भोग लगा करके फिर खाते हैं, तब मन शुद्ध होता है। और मन शुद्ध होता है तो अच्छे कर्म होते हैं। तो चलिए थेपला के लिए आपको मैं सामग्री लिखवा रही हूँ। आप ले लीजिए मेथी की भाजी, फिर आप लीजिए हरी मिर्च, अदरक, दूध, फिर दही, अब आप लीजिएगा तेल, आपको लेना है नमक, लाल मिर्च पाउडर, तिल लीजिएगा, आप बाजरी का आटा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, और हरा धनिया। तो ये हो गई सामग्री, थोड़ा सा अजवाइन भी लीजिएगा। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री। आप मेथी की भाजी लीजिएगा, दूध लीजिए, दही लीजिए, आप लीजिएगा गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, तिल। तो ये हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप मेथी की भाजी साफ कर दीजिए, धुलाई करके इसको बारीक काट लीजिए, ठीक है। और गेहूं का आटा लिया है उसको छानिएगा, उसमें थोड़ा सा बाजरी का आटा भी डाल दीजिए छान करके। और इसी में अब आप ये मेथी जो साफ की है धुलाई करके काट के डाल दीजिए आटे में, फिर आप तिल डाल दीजिए आटे में ही, अदरक हरी मिर्च की पेस्ट करके आप आटे में ही डाल दीजिएगा, और आप डालिएगा थोड़ा सा अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब आप डाल दीजिए इसी आटे में, ठीक है। और अच्छा सा तेल का मोवन डालिए, और खटास के लिए भले आप नींबू डालिए, भले आप दही खट्टा है तो दही डालिए, हाँ। और आपको अब डालना है शक्कर, शक्कर डाल दीजिए, शक्कर पीसी हुई होगी तो अच्छी बात है, पीसे हुए शक्कर पाउडर डाल दीजिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए आटे को, फिर आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा दूध डालिए, क्योंकि आटा अभी भी बिखर रहा है, क्योंकि इतना गीला तो हुआ नहीं है। हाँ, दही आपने, अगर दही ज़्यादा खट्टा नहीं है और थोड़ा सा खटास मिठास का टेस्ट आप कर सकते हैं, जैसा भी खट्टा मीठा आपको पसंद है उस अनुसार आप उसको आटे को गूंदिए, ठीक है, आटे में डालिएगा। और फिर अगर ऊपर से डालना चाहे तो आप दूध डालिए, दूध डाल के इस आटे को गूंद लीजिए, टाइट गूंदना है और अति टाइट भी नहीं, जैसे हम गेहूं की चपाती बनाते हैं इससे हल्का सा टाइट, पूरियां बनाते हैं ना ऐसा आटा आपको गूंदना है। फिर गूंद करके इस आटे को आप आधे घंटे के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए, क्योंकि जितना आटे को हम गला के रखते हैं ना उतने पूरी में, मतलब वो बनाते तो लोच अच्छी आती है, और दूसरी बात है कि पूरियां हमारी सॉफ्ट बनती है, ठीक है। तो आधा घंटा आपने लपेट लिया गीले कपड़े में, और अब आप उसका लुआ तैयार करिए, लुआ बना करके थेपला बनाइए गोल गोल चपाती की तरह, और फिर इसको आप तवे पर सेकिए, दोनों तरफ तेल की पोती लगानी है, अच्छी तरह सिक जाए तो फिर आप इस तरह सारे थेपले सेक दीजिए।
बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ऐसे ही खाइए कोरे। वैसे तो इसका आप सूखी सब्जियां, जैसे आप आलू बैंगन की सब्जी है, खाली आलू की सूखी सब्जी है, या फिर चटनी है, अचार है, केरी का छुंदा है, मुरब्बा है, आप हर एक के साथ खा सकते हैं। और कुछ नहीं है तो अचार के साथ भी अच्छा लगेगा, और भी कुछ नहीं तो आप ऐसे ही खाइएगा तो भी टेस्टी लगेगा। और ये जो थेपले आप सफ़र में भी लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर जाते हैं, अरे मैंने तो देखा है कि जैसे लोग विदेश घूमने जाते हैं ना 10-10, 15-15 दिन के लिए, तो विदेशों का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए थेपले लेके जाते हैं, बना करके इकट्ठे लेके जाते हैं, ताकि थोड़ा वहाँ का जो खाना मिल जाए वो, और थोड़ा अपना खुद का खाना खाए। तो ऐसे थेपले भी बना के ले जाते हैं। यहाँ पर भी जैसे भारत में भी कहीं टूर पर जाते हैं लोग, तो इस तरह थेपले बना करके लेके जाते हैं। थेपले ऐसी रेसिपी है जिससे अन मना नहीं आता है, कभी ऐसा नहीं होता अरे बार बार क्या थेपला खाना है, मन अपने आप ही प्रिपेयर रहता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और ये खाएंगे तो संतुष्टि मिल ही जाएगी। तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत दूसरा खाएंगे, लेकिन लास्ट में एक दो थेपला खा लेंगे, फिर कहेंगे हाँ अब संतुष्टि मिली। इसलिए आप थेपला ज़रूर बनाइएगा, एक बार किसी ने नहीं बनाया हो तो ज़रूर बनाइएगा, बना करके ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन कैसे, अपने इष्ट देव को भोग लगा करके, ठीक है। तो चलिए फिर से आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, आधी रात को आती हूँ, खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते, कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मुझे लड़का ही चाहिए।
1: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
3: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
4: को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और रेसिपी में जो आपको थेपला बनाना सिखाया है मेथी का, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बड़ी सुंदर थी जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आधी रात को आती हूँ खुशियों की सौगात लाती हूँ, झूले सजते भजन होते कान्हा के जन्म का उत्सव मनाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। इतनी सरल पहेली फिर भी हमारे कुछ कुछ श्रोताबंधों के जवाब गलत है। तो सही जवाब देने वालों का मैं नाम सुना रही हूँ। एक तो मैसेज आया है जय माता दी लिखा हुआ, आपने सही जवाब दिया है। आज की पहली का जवाब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। फिर सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, फिर शोभा जी कपासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, अलका जी कपासन से, भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, दीपा बहन कपासन से, सगुणा बहन ने गलत जवाब दिया है, शीतला सप्तमी बोला है जो गलत जवाब है, ज्ञानेंद्र जी यादव, राधेश्याम जी चित्तौड़गढ़ से, राम नारायण जी आबू राज से, आप सभी का जवाब सही है, इसलिए आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आप सभी विषय में भी जुड़े, जो भी विषय में जुड़े उनके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। आज का मीठा मोती है कर्मों द्वारा सत्य और असत्य को परखना सहज है, सत्य मार्ग में सुख होता है और असत्य मार्ग में हमेशा दुख ही होता है। अब मैं आपको श्री कृष्ण जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ। और आप जाते जाते हम फिर से शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और गोकुल अष्टमी जो कल आ रही है उसका स्वागत करते हैं और इन एडवांस में आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। तो आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सांवरे से मिलने का सत

0: मंदिर में पाया है भक्तों के हृदय में, मेरे श्याम का बसेरा है सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है।
1: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

आजाद हवा में सांस लेते हैं, आजादी का जश्न हर वर्ष मनाते हैं। वतन पर मर मिटे जो परवाने, कुछ गीत उनके देश प्रेम को आज भी गाते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा में। जरा सोच कर देखिए, आज शहर हो या गांव, कोने कोने में इंटरनेट पहुंच गया है। कोई वीडियो या तस्वीर डालो और देश दुनिया में वायरल यानी पहुंच सकती है। लेकिन एक गीत एक नारा ऐसा भी था जो वायरल होने के लिए किसी माध्यम का मोहताज नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंदे मातरम की, हमारे राष्ट्रगीत की, जो उस वक्त बिना इंटरनेट बिना सोशल मीडिया के ही सबके दिलों तक पहुंच गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन कुछ पंक्तियों ने ऐसी शक्ति ज्वाला के रूप में जगाई कि वो देश को स्वतंत्र करने की मुहिम बन गई। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक अनोखे सफर पे, एक नारे से राष्ट्रगीत बनने के बेमिसाल सफर पे। पर ये कहानी आपको मैं नहीं सुनाऊंगी, सुनाएगी वंदे मातरम खुद। तो फिर चलिए आपकी मुलाकात राष्ट्रगीत से करवाते हैं।

मैं एक गीत हूँ। क्या आपको पता है कि मुझे जन्मते ही बैन यानी प्रतिबंधित कर दिया गया था? क्यों? क्योंकि मेरा जुर्म देश प्रेम था और उस वक्त भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन्हें देश से प्रेम करने वालों से खतरा था। देशभक्ति से भरे गीत उनके मन में खौफ भर देते थे। इतनी ताकत थी मुझ में जन्म से। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक प्रतिबंधित गीत आज हर स्कूल कॉलेज की किताबों में, हर बच्चे की जुबान पर देश प्रेम की शान एक राष्ट्रगीत कैसे बना? तो चलिए मेरे साथ ताल से ताल, सुर से सुर मिलाकर शुरू करते हैं मेरी ये यात्रा, एक गीत की यात्रा, जन्म से आज तक।

0: dire left, right, left. Left, right, left. Ecto, ecto, daemol. Left, right, left. Ecto, ecto, out. अरे हटो मेरे रास्ते से, क्यों खड़े हो बीच में? और ये सब, ये क्या पहन के रखा है? अक्षरों और शब्दों से बने कपड़े और स्वरमाला, स्वरमाला पहने हुए हो? ताल की पायल सजाकर रास्ते के बीच में क्यों खड़े हो?
1: मैं तो यहाँ बरसों से खड़ी हूँ, तुम यहाँ कैसे पहुँची? इतनी नन्ही सी जान, क्या काम है तुम्हें? और वैसे कौन हो तुम?
0: सत्यार्थी हूँ मैं, टांगे मेरी सवारी है। सारथी भी हूँ मैं, मेरे मन की मालिक हूँ मैं। जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ मैं। आजाद भारत की बेटी हूँ मैं, माँ भारत की सुपुत्री। और मेरा नाम पता है क्या है? मेरा नाम बन्नो है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ, 12 साल की हूँ। मगर आप कौन हो?
2: भूत हो क्या?
1: मैं भूत नहीं, भूत काल से हूँ। मैं एक गीत हूँ, एक नारा हूँ, तुम्हारी दुलारी माँ भारती की आजादी का एक अंग हूँ। मेरा नाम पहले वंदे मातरम था, अब मुझे वंदे मातरम बोला जाता है। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में कितने प्रेम से मेरे जन्मदाता श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी ने मुझे गढ़ा है, भारत माँ को अर्पित करने के लिए। तब से लेकर आज तक लोग मुझे वही प्यार और सम्मान देते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और मेरे स्वरों का लुत्फ उठाते हैं।
0: अच्छा, कुछ अपने स्वरों के बारे में बताओ ना दीदी।
1: देश राग में मैं गढ़ी हूँ बेटा, जिसका ठाट है खमाज, जाति औधाव संपूर्ण, वक्र ऋषभ और पंचम वादी और संवादी है, आरोह है सारे मापा नीसा, अवरोह है सानी धापा मागा रेसा।
2: बस बस बस करो, इतना भारी भरकम ज्ञान मुझे समझ नहीं आता।
0: अरे अरे, कहाँ चली गई? ये क्या, आप तो जादू से गायब हो जाती हो। कहाँ हो, कहाँ गए आप? कहाँ हो आप? मैं आपको देख नहीं सकती, कहाँ हो?

0: ये जो सुन रहे हैं ना आप, ये पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की आवाज है। 1947 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय संसद में मध्य रात्रि को वंदे मातरम गाया गया था। अगले दिन आकाशवाणी में सुबह 6:30 बजे वापस बजाया गया था। और ये जो सुन रहे हैं आप, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। अभी तक आपने सुना कैसे बन्नों की मुलाकात वंदे मातरम गीत से तो हो गई, पर अब वो किसी और से भी मिलने वाली है। किसी खास से, किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने भारतीय होने का एहसास हर भारतीय को दिलवाया था। वैसे ये गीत गायब कहाँ हो गई? मुझे लगता है हम सबके दिलों में जाकर छुप गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में तो राष्ट्रगीत कई बार गाया और सुना है, लेकिन इसका जन्म कैसे और क्यों हुआ? तो चलिए बन्नों को और आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां हमारे राष्ट्रगीत के निर्माता तो हैं, लेकिन तब तक वंदे मातरम का निर्माण नहीं हुआ था।
1: सर, एक मिनट।
2: आज से 1858 में अंग्रेजों ने भारत पर पूरा कब्जा कर लिया है। 1858 में भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। मैं पत्रकार हूं और आज जेसोर डिस्ट्रिक्ट आ पहुंचा हूं। अभी हम खड़े हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में।
3: देखो ना, मैं खुद बिजी हूं। मैं प्लीज बाद में बात करते।
0: ये है श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी, डिप्टी ऑफ जेसोर डिस्ट्रिक्ट, और आगे जाकर यही हमारे राष्ट्रगीत की रचना करने वाले हैं। लगता है हमारी 21वीं शताब्दी की बन्नों 19वीं शताब्दी में पहुंचकर काफी उत्साहित है, और ये तो बंकिम चंद्र चैटर्जी जी से बात करने पहुंच गई है। चलिए सुनते हैं क्या बात हो रही है।
4: आज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना अत्याचारी शासन से मुक्त कर दिया है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अपना शासन छीन लिया है, किंतु हमारे मन में एक तूफान सा है, ये सोचकर कि ब्रिटिश क्राउन सीधे नियंत्रण ले लिया है भारत पे। कैसे लोग अपना कर्ज चुकाएंगे? उनके खाने के भी पैसे नहीं है। बंगाल को खोखला करने के पीछे पूर्वी इंडिया कंपनी का ही हट है।
5: काकू, क्या आपने गीत को देखा है? ओ काकू, क्या आपने गीत को देखा है? बोलो ना।
6: हैं? काकू? के काकू?
7: अमी बंकिम चंद्र। और ये गीत कौन है? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? और आपकी माँ कहाँ है?
0: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना कंठालपाड़ा नेहाती में जन्मे। उनके पिता का नाम यादव चंद्र चैटर्जी था। बंकिम चंद्र ने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की। वो हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। 1857 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले वो पहले भारतीय थे। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर रहे, जहां उन्हें राय बहादुर और CIE की उपाधियां भी मिली। 1869 में तो उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की और 1891 में सेवानिवृत्त हो गए। उनकी शादी 1849 में 11 साल की कम उम्र में ही हो गई थी। वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 वर्ष बाद ही 1859 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनकी दूसरी शादी लक्ष्मी देवी से सन 1860 में हुई। बंकिम चंद्र जी हमेशा से ही साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने कई लेख और उपन्यास लिखे। उन्होंने अपना पहला उपन्यास राजा मोहन्स वाइफ, जो अंग्रेजी भाषा में था, 1864 में लिखा था। उन्होंने 1865 में दुर्गेश नंदिनी, 1866 में कपाल कुंडला जैसी रचनाएं की। उन्होंने अपनी कृतियों में सामाजिक कुरीतियों से होने वाले उत्पीड़न को दर्शाया और तत्कालीन समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। बंकिम चंद्र जी ने कई ऐसी रचनाएं की जिसके कारण दार्शनिक श्री अरबिंदो घोष और अन्य लोग उन्हें ऋषि या दृष्टा मानते थे। वैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना की तो अब तक बात ही नहीं हुई है। कौन सी? अरे बताऊंगी, पहले हमारी बन्नों को वापस वर्तमान में तो ले चलूं, क्योंकि अगर यहाँ बन्नों को बंकिम चंद्र जी के पास छोड़ दिया तो बन्नों की बातें सुन सुनकर वो अपनी रचनाएं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बन्नों और आप सबको ले चलती हूँ फिर से आज के समय में।
5: अरे काकू कहाँ गए और ये क्या, मैं वापस सड़क के किनारे कहाँ से आई?
1: कैसा रहा तुम्हारा सफर बन्नों?
5: गीत, मैं तो अभी अभी काकू से मिलके आ रही हूँ।
1: हाँ मुझे पता है, तुम मेरे जन्मदाता

0: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: देश का हर बच्चा बन्नों की तरह राष्ट्रगीत को सुर में गाए या ना गाए, पर गर्व से जरूर गाता है। वैसे सुना ना आपने अभी, बन्नों को बंकिम चंद्र चटर्जी से और बातें करनी है। और आपको भी तो जानना है ना कि ऐसी कौन सी घटना घटी या ऐसा कौन सा विचार आया जिसने वंदे मातरम की उत्पत्ति की। आप ये सब कुछ जान पाएंगे एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले अध्याय में। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद जय भारत। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद जय भारत।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल को कभी नहीं भूल पाते। जिस गांव और जिस अंचल में हम पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे, वो गांव को हम स्वर्ग जैसे मानते हैं। क्यों नहीं, गांव अपना ही होता है। मेरा गांव मीन्स मेरा शब्द जहाँ लगता है वहाँ स्नेह खुशी आनंद शक्ति मिल जाता है। तो मेरा में इतना ममत्व है। तो मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम को लेकर आज हम रेडियो मधुबन की तरफ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के और राजकीय विद्यालय सहयोग से आज बच्चों का हुनर को बारी बारी सुनने को मिलेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा में पहुंचे जो कि रेबदर तहसील में। तो हमें खुशी मिलता है जब गाँव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो चाहे मनरेगा हो चाहे आंगनबाड़ी हो, पोषण को लेकर स्वच्छता को लेकर स्वास्थ्य को लेकर हम पहुँचते हैं। तो आज जन जन तक पहुँचाने के लिए विद्यार्थियों का आवाज़ को रखेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा का आवाज़ आज आपके पास रखने जा रहे। तो पहला प्रस्तुति के लिए हमारे सभी बच्चे तो उपस्थित है, लेकिन जो सिलेक्टेड बच्चे इतना बच्चे लेकिन सिलेक्टेड विद्यार्थी आए हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, जैसे ललिता सजना सभी को नाम का साथ स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम को एक प्रार्थना के रूप में प्रस्तुतकरण करेंगे। माँ सरस्वती को याद करते हुए उनको दिल में बसाते हुए हृदय से एक माँ सरस्वती की भक्ति भरा भजन सुनेंगे हृदय से दिल से। तो शुरू होंगे बच्चे, शुरू।
1: मेरा नाम ललिता कुमारी है, मैं सोडा से आती हूँ व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा में पढ़ती हूँ 11 क्लास में।
2: मेरा नाम सजना कुमारी है, मैं सोडा से आती हूँ और 11 क्लास में पढ़ती हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा।
3: मेरा नाम केतु कुमारी है, मैं सोडा से आती हूँ और 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय।
4: मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम सोरडा है।
5: मेरा नाम रोशनी कुमारी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा गांव में पढ़ती हूँ, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमें खुशी है, बच्चे तो सच्चे होते हैं और बड़े होकर गांव का, विद्यालय का और खुद का नाम रोशन करेंगे, उसके लिए मेहनत करते हैं, और माँ बाप का जो उम्मीद है, जो भरोसा है, जो आशा है, तो जरूर कामयाब तक पहुंचाकर मम्मी पापा हो चाहे परिजन को, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। आज तो बच्चों को एक मौका मिल रहा है, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः ललिता, सजना, मीनाक्षी और रोशनी को स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। पहला बार आए, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, तो इससे पता चलता बच्चों का संगीत में कितना रुचि है। इस तरह कार्यक्रम को जब सजाते हैं विद्यालय का स्टाफ भी खुशी से झूमते हैं और साथ भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। क्यों नहीं, बच्चे विद्यार्थी हमारा होवनहार है, आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे, बागडोर संभालेंगे। तो बच्चे रेडी, शुरू करेंगे? वेरी गुड, शुरू करिए।
1: गुरु ज्ञान की बातें सभी है, दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा।

0: जग घूमियादार जैसा न कोई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। और खासकर गुरु जब नाम सुनते हैं, गुरु तो मार्गदर्शक है और हमें अज्ञान से भी ज्ञान की ओर चलाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, तो उनको भूल नहीं पाते। नेक्स्ट टू माँ बाप कहते हैं, माँ बाप तो है ही है गुरु, और माँ बाप का बाद हमारा शिक्षकगण हमें जो रास्ता बताते हैं, जो अच्छा मार्ग दर्शाते हैं, तो उनको भी गुरु कहते हैं। तो हर चीज़ में जब हम सीखने को ललक रहता है, उमंग उत्साह आता है, तो उनसे भी हम गुरु का दर्जा देते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है और गुरु का बिना सदगति नहीं है, और सदगुरु तो है ही है, सबके लिए सदगति दाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका ATM कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना OTP या ATM पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और हमारा साथ विद्यार्थियों ने अपना अपना आवाज को गीत का माध्यम से, भजन का माध्यम से और भाव का माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो और एक प्रस्तुति खासकर स्पीच भाषण के रूप में, खासकर एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा जीवन का फाउंडेशन है, उसका आधार से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और जिसके पास शिक्षा नहीं तो उनको क्या कहेंगे, इसलिए तो हमारा शिक्षालय में, विद्यालय में आकर शिक्षा अर्जन करते हैं। और शिक्षा का महत्व का बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए हमारा एक छात्रा उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं अबाउट एजुकेशन, है ना। तो चलिए शुरू करिए।
1: मैं आज एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस युग में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मशीनीकरण के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो हम कह सकते हैं कि आज का युग प्रदूषण का युग है। इस प्रदूषित युग का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मनुष्य के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य का बड़ा योगदान है, जबकि स्वास्थ्य शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य संचारी रोगों से बचाव, स्वस्थ अवस्था, बीमारियों का इलाज, पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम व रहम सहन का स्तर अच्छा होना आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिस पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। आज का बालक कल का भविष्य है। उसको इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि अपने तन तथा मन को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है। एक प्राचीन कहावत है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, लेकिन यदि स्वास्थ्य को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सुखी जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, समाज तथा देश के लिए हर प्रकार से सेवा प्रदान कर सकता है, जबकि अस्वस्थ या बीमार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर रूप में अपना भाव को स्पीच का माध्यम से, भाषण का माध्यम से बताए। और शिक्षा का जो महत्व, खासकर चरित्र निर्माण में शिक्षा का कितना आवश्यकता हम भलीभांति जानते हैं। नैतिक शिक्षा हो, चाहे भौतिक शिक्षा हो, चाहे व्यावहारिक शिक्षा हो, शिक्षा तो शिक्षा होता है, एजुकेशन। इसलिए शिक्षा हमारा जीवन में होना चाहिए, जिसका चलते आज बच्चे शिक्षालय में आकर शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। शिक्षा हमारा जीवन में अति आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए इस कड़ी में ही और एक कड़ी जोड़ देते हैं, एक श्रृंखला बन जाएगा चेन जैसे। तो और एक छोटा सा प्रस्तुति, गुरु का महत्व जानेंगे। जैसे शिक्षा का महत्व सुने तो गुरु हमारे लिए कितना अनुशासक रूप में उभा होते हैं, जो हमें अनुशासित कराते हैं। तो एक गुरु का ऊपर में भाषण सुनेंगे, है ना। तो रेडी, चलिए शुरू करिए।
1: मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आज गुरुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दीपक बनकर राह दिखाते, अज्ञान का अंधकार मिटाते, सच्चे गुरु जीवन को सफलता की मंजिल तक पहुँचाते। अपने ज्ञान की ज्योति से शिक्षा का दीप जलता, जो हमें आगे बढ़ना सिखाते, कभी डांट से कभी प्यार से हमारी गलती बताते हैं। जो हमें अनुशासन सिखाते हैं वो गुरु कहलाते हैं। अज्ञानता का अंधेरा हटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। जो सत्य का मार्ग दिखाते हैं, मेहनत करना हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं, जो हमें संस्कार सिखाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर रूप में अपना भाव को गुरु को अर्पित किए हैं, क्योंकि शिक्षक मैंने टीचर हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है, क्योंकि हर कदम में हमें शिक्षा देते हैं। जिससे हम शिक्षा लेते हैं वो हमारा एक टीचर है, चाहे माँ हो चाहे हमारा बड़े हो, जो भी हमें शिक्षा देते हैं वो हमारा टीचर है। तो सुंदर प्रस्तुति दिए, एक का बाद एक प्रस्तुतियाँ सुना रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा, जो कि तहसील रेबदर में आता है। तो आज आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरडा का बच्चों का आवाज भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे, चाहे गीत का माध्यम से, चाहे प्रार्थना का माध्यम से, चाहे स्पीच का माध्यम से। जैसे अभी सुन रहे थे शिक्षा कितना आवश्यकता, शिक्षा मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, चरित्र निर्माण में अति आवश्यकता, और खास मोरल एजुकेशन जो है, नैतिक शिक्षा, वो भी कितना आवश्यकता है। तो धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और हमारा साथ विद्यार्थियों ने अपना अपना आवाज को गीत का माध्यम से, भजन का माध्यम से और भाव का माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो और एक प्रस्तुति तो सुनते हैं और एक आवाज माँ सरस्वती जी का वंदना रूप में, प्रार्थना का रूप में सुनते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो इस कार्यक्रम को सजा रहे, सभी का आवाज आपको सुनने को मिल रहा है और खासकर आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जो कि सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो आज सामुदायिक का आवाज, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोडा का आवाज सुनने को मिल रहा है। तो पहला प्रस्तुति हम सुने थे एक भजन के रूप में माँ सरस्वती का, तो और एक सरस्वती भजन सुनने के लिए उपस्थित है। सभी बच्चों को स्वागत करते हैं, सभी अपना अपना नाम तो सुना रहे हैं और कोई कोई नाम नहीं सुना पा रहे, कोई बात नहीं, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा, नाम पता चलेगा ये उनका आवाज है, तो वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, तो सुनते हैं। और एक आवाज माँ सरस्वती जी का वंदना रूप में, प्रार्थना का रूप में सुनते हैं।

0: प्रभु।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर रूप में आपने सजाए कार्यक्रम, तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो गया और सभी बच्चे इस तरह उमंग उत्साह लेकर साहस का साथ, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए फिर भी बच्चे सच्चे मन से, हृदय से, दिल से अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं। क्यों नहीं, क्योंकि यह मंच बच्चों का मंच है, विद्यार्थियों का मंच है जो आज उनको प्राप्त हो रही है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और एक कुछ प्रस्तुतियां आपके पास रखने के लिए, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में और एक कड़ी को जोड़ देते हैं और ललिता एंड पार्टी उपस्थित है, तो दोनों छात्रा को स्वागत करते हैं कार्यक्रम को सजाने के लिए। दुरुस्त जगह से आए तो दुरुस्त होकर तंदुरुस्त होकर अपना दिल का बात रख रहे हैं, भाव और भावना को एक भक्ति भरा गीत सुनेंगे अभी, क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है सही में हमें महसूस होता है, क्योंकि शक्ति बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना शक्ति नहीं, दोनों एक दूसरे से परिपूरक हैं। तो लेते हैं छोटा सा भक्ति भरा गीत ललिता एंड पार्टी।
1: मेरा नाम ललिता कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा।
2: मेरा नाम सजना कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ और विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा है।

बहुत खूब बहुत खूब सुंदर रूप में जोड़ी जो है ना, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा, और हमारा ललिता और सजना दोनों मिलकर इस प्रस्तुति को सजाएं। पहला बार आए, कोई सूचना नहीं था, फिर भी बच्चों के अंदर में जो एक अंतरा हो, चाहे एक मुखड़ा हो, एक स्टांजा अपना भाव को प्रकट किए, खासकर स्वर और लय, पता चलता कितना सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

चलते हैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और एक प्रस्तुति के लिए उपस्थित है, खासकर देशभक्ति को लेकर आए हैं, क्योंकि देश का प्रति जो भावना है, जो वीरत्व है, जो खून में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता है, आन बान और शान का साथ एक देशभक्ति गीत के लिए प्रस्तुत है। तो चलिए प्रस्तुति को सुनेंगे और बच्चे प्रस्तुत है ना, रेडी? ओके, शुरू करिए।

0: बानी।
1: क्या खूब, क्या खूब, सुंदर रूप में, देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना बात को, भाव को, भावना को डेडिकेट किए, जो कि हमारा शहीद हुए उनके लिए वो वीरत्व को समर्पित इस गीत का माध्यम से भाव और भावना को प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं और एक आवाज़।

सुंदर प्रस्तुति देशभक्ति में ओत प्रेत होकर भारत का परचम लहरा रहे हैं और ऐसे खून में ही बच्चों का अंदर में जो देशभक्ति का मैंने जज्बा देखने को मिल रहा है, आन बान शान का साथ देश का हित में एक देशभक्ति गीत प्रस्तुति किए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सब सुन पा रहे, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोडा जो की रेबदर तहसील से आपका पास हम पहुंच रहे हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: करके सभी का आवाज को एक गुलदस्ता बनाकर आपका पास प्रस्तुतिकरण कराते हैं, तो आप भी रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से, प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन का माध्यम से, लिंक का माध्यम से सुन पाते हैं और हमारा मेहनत को चार चांद लगाते हैं, जिसका चलते हमें और मेहनत करके कोई उलाना ना दे, कोई भी गांव, कोई भी अंचल छूट ना जाए, सभी का आवाज, सभी का भावना को आपका पास रख रहे। तो ये अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे, आप सब सुन पा रहे। दूरस्थ जगह सोरडा, जो कि तहसील रेबदर से हम आपका पास गुलदस्ता के रूप में भिन्न भिन्न आवाज को, विद्यार्थियों का उमंग, उत्साह और बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते हैं, उन सब का भाव को आपका पास रख रहे। तो अंतिम प्रस्तुति में और एक प्रस्तुति जोड़ देते, जो कि मारवाड़ी गीत के माध्यम से संगीत के रूप में प्रस्तुतकरण करेंगे, क्योंकि मारवाड़ी में जो आवाज, जो सुंदरता, जो मधुरता है, सही में सभी भाषा में अपना अपना महत्व होता है। जैसे हमारा आदिवासी लोकगीत में जो मिठास है, जो अपनापन है, ऐसे सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए एक प्रस्तुति सुनेंगे। तो देर किस बात की, सभी बच्चे रेडी है, अंतिम प्रस्तुति होगी, है ना बच्चे रेडी? ओके शुरू करिए।
1: मिश्री सुमीठी बात थारी मन है प्रेम गुजरनो सा, कांच पिता सुशर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा, बनी थारो चांद सरी सो मुकड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए, बनी थर चांद सरी सो मुकड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो

बेचा लो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिश्री सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम गुजरनो सा। कांच पिता सुशर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सा। ओ बन

0: कोई मोच नहीं पड़ जाए।
1: सुंदर प्रस्तुति के लिए ताली के साथ स्वागत किए और धन्यवाद दिए, आभार प्रकट करते सभी को नाम का साथ आज का कार्यक्रम को जिन्होंने सजाए, और इसका श्रेय तो संस्था के संस्था प्रधान, सभी स्टाफ, गुरुजन और खासकर माता पिता, अभिभावक, दोस्त लोग को जाता है, क्योंकि उनका तत्वावधान में बच्चे आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई का साथ साथ इस तरह सभी जो एक्टिविटीज होता है स्कूल में वो एक्टिविटीज को लेते हैं, और आज तो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे आज इस कार्यक्रम को सजाए, क्योंकि सभी का पास संगीत में रुचि का कला बा संगीत का कला नहीं होता है। जो बच्चों का पास संगीत का कला है, जो गायन का श्रद्धा है, वो बच्चे ले पा रहे, तो आज जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, और किस बात को लेकर आज आप सब सुन पा रहे, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोडा का विद्यार्थियों का आवाज, और संस्था प्रधान, सभी स्टाफ, सभी सहयोग को धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल।

0: लटकाए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को, और रेडियो मधुबन के हमारी तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
1: तो श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं, और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी जरूर। सर्वप्रथम तो संदीप सर, पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
1: अच्छा।
2: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
1: निश्चित रूप से,
2: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया। तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहाँ पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहाँ से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है, वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी। लेकिन जहाँ मैथमेटिक्स की, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री की बात आती थी, तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। तो क्या होता था कि सेवेंथ में आते आते जैसे कोई नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है। ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें और स्क्विंट भी आई मेरा, हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि
1: अच्छा, परिवार में,
2: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी, मतलब नॉट इन माई फैमिली, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं, तो होता है, तो वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया, ठीक है, तो बस गया ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं गया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे, कि उस तरह से बिजनेस, पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ रीजंस की वजह से, तो बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना, तो ऐसे करके 10th आ गया। 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां पर डॉक्टर ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके, तो आई वेंट ओके और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना, तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्याएं चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी दौरान मुझे टाइफाइड हो गया, तो उसमें पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे और उसका साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसके बाद मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी, मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। प्लस टू में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया, तो
1: क्या बात है,
2: हाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत, मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए,
1: ये प्लस टू का बता रहे हैं आप, 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने टॉप किया, 12th
2: का बता रही हूँ जी, 12th में मैंने
1: क्या सब्जेक्ट उस समय, 12th में सब्जेक्ट क्या रहे आपके,
2: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और हिंदी जो इंग्लिश मीडियम, 10th तक देखिए मैं, 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने प्लस टू किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय दो ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय, तो उसके बाद जो अब आई प्लस थ्री के बाद, तो प्लस थ्री में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मेनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला प्लस थ्री, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक को चक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में मैंने पाया, तो तो आई वॉज सो हैप्पी. लेकिन सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं. तो हाँ जी समझ आया. तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था. एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना. हमारा
1: आंखों का क्या ठीक हो गया था, वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था.
2: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था.
1: अच्छा मतलब आपकी रोशनी वापस से ठीक होने लग गई थी.
2: नहीं रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था तिरछापन जो था पुतलियां
1: टेढ़ापन था
2: वो सही हो रहा था. तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई एंड आई वाज फोर्स टू मैरी.
1: ओके तो आपकी एंगेजमेंट आपके जैसे व्यक्ति से हुई थी या सामान्य व्यक्ति से?
2: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें.
1: आप इस स्थिति में नहीं रहे कि आपको

0: कह सकें, अपनी बात रख
1: हाँ
0: सकें परिवार
1: बिल्कुल
0: में।
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनएबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था, आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धराकट्टा रह गया, वो हम दे नहीं पाए। ठीक, तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर, लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
0: हर कोई यही सोचता
1: हाँ
0: है
1: जी, तो
0: भाई।
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख दिन के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं ना।
0: हाँ,
1: तो यहाँ भी मैं
0: दुख
1: बहुत
0: भरे दिन
1: अनलकी
0: भी तेरे
1: रही
0: भैया।
1: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
0: ओहो,
1: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई। ठीक है, वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
0: जॉब वगैरह थी,
1: कुछ नहीं था सर, अपने
0: कुछ भी
1: फैमिली के
0: नहीं
1: टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
0: नहीं नहीं कोई
1: क्योंकि
0: बात नहीं,
1: यहाँ
0: कोई
1: पे,
0: बात
1: हाँ जी हाँ,
0: नहीं।
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो
1: जो
0: वैसे
1: भी
0: भी
1: बात
0: पर्सनल,
1: है
0: हाँ वो वैसे भी
1: जी,
0: पर्सनल लाइफ है,
1: हाँ
0: रही है आपकी,
1: जी,
0: तो कोई बात
1: तो
0: नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया। ठीक है, देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000। यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
0: ओहो ओहो
1: 2004 में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैनॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता। आप
0: एक
1: इतनी
0: ऐसी
1: शिकायत कर
0: परेशानी
1: रहे
0: से
1: हैं
0: आप
1: और
0: जूझ रहे हैं जो ठीक
1: सालों
0: नहीं हो
1: से,
0: सकता।
1: कई सालों से मतलब, है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
0: अच्छा।
1: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस, आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते
1: हाँ
0: नहीं है, न जाने क्या
1: हाँ तो
0: हुआ है
1: बोले कि
0: जो।
1: हाँ, वो कहते नहीं यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूँ और मैं आराम से खाना पका लूँ या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूँ, इस तरह का स्विमिंग, इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके, फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया। आई वॉज इन यू नो डिप्रेशन, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या, जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस
0: और
1: एंड
0: उन्हें
1: है नहीं। हाँ
0: बेटे का लालन पालन भी साथ में चल
1: वो
0: रहा
1: सब
0: है
1: तो मैं,
0: ये
1: हाँ
0: सब।
1: वो सब तो देखिए, सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होते हैं ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को, और शक्तियां दे देता है। तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालू पाल, सब कुछ अपने आप चलता गया। यस, और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहाँ पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए। तो वहाँ पर जैसे वाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को, और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला, जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने।
0: और आपने ब्रेल लिपि भी सीखी मैडम?
1: जी, मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर। एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है, उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना। कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से। देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया। फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीज़ें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था, और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ, और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स, ये दोनों चीज़ें मांगी थी जो मुझे मिल गई। थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे, कुछ 2-3 लाख रुपए, वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना, तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की, जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे, जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश। तो मैं खुद भी, मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद भी पढ़ रही है, कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है। सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया, मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया, मैंने हाथ में सीखा, कहते हैं, है ना। तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक, कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ। वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी की किताबें होती थी सब मुझे, बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट। तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी, तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झारसुगुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैनेजर डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो आज वो नहीं है, बट वट एवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
0: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है।
1: बड़ा रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ, सब कुछ मेरे पिताजी ने किया। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती।
0: हम समझ रहे हैं कि आप भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो, मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
1: तो ही वाज अ बैकबोन टू मी, एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूं तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से। वो कहते थे यू नो, मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना, तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते।
0: वाह, क्या बात है।
1: मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहां, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे। है ना, ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था।

0: है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है ना, लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: जी, है ना। तो ये बात है, तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है,
1: जी
0: बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा,
1: वाह,
0: और
1: क्या
0: भगवान
1: बात है।
0: ने बहुत बहुत तरक्की दी। मोर देन 4 to 5 thousand स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स
1: क्या
0: ट्रेनिंग दी
1: बात
0: है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा
1: बहुत बढ़िया,
0: स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारी, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाई अप किया, टाई अप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाई अप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपर्णा एक है इसमें उन लोगों ने टाई अप किया, तो
1: जी
0: इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन उनके सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वॉज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
1: उस समय
0: टू
1: मतलब आपने यही लक्ष्य बना
0: हाँ
1: लिया
0: नाइन
1: कि
0: टू
1: बस अब तो
0: नाइन
1: मुझे।
0: यस हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी, तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो दो मैंने
1: अरे वाह,
0: कोर्स बुक लिखी सर और दो लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये
1: क्या
0: हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहूजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए, तो ये जो दो कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और दो हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें
1: अच्छा
0: हैं, और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के, तो
1: जी
0: मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे मैं उनको फ्री ऑफ
1: जी
0: कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से, ये मेरा
1: क्या
0: एक
1: बात
0: रहा
1: है,
0: था
1: वाह
0: जी,
1: वाह,
0: और
1: बहुत बहुत
0: कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया, कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जो हमारे एरिया था ना वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए, तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले है इस तरह के, तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक OTV है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को, तो उस समय पे, और तो
1: क्या
0: काफी
1: बात,
0: मतलब बहुत बहुत फोन आते थे, और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे, अच्छा जी जी
1: आपने कहा
0: ये
1: होगा
0: भी
1: भाई ये
0: हुआ
1: गलती
0: नहीं
1: दोबारा नहीं करनी है।
0: नहीं सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना, हमारे समाज में

0: हम
1: एक
0: जिस
1: बात
0: तरह
1: है।
0: के माहौल में
1: और
0: रहे
1: फिर
0: हैं
1: क्या
0: या
1: होता है ना
0: परिवेश में,
1: कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी
0: नहीं
1: नहीं है।
0: सोचता इंसान है ना, नहीं सोचता बस
1: अच्छा।
0: है ना, क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फिनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। 25 ईयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और
1: बहुत
0: स्टार्टअप है उसका
1: गुड,
0: अभी। हाँ जी,
1: वेरी
0: तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी
1: गुड।
0: जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन
1: क्या बात
0: मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, दैट्स। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है। देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो। तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बात भी, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ कि
1: जी
0: 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया, इट वॉज
1: अच्छा।
0: ओरल कैंसर जी, तो ओरल कैंसर हो गया। और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए, और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा। तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर्जरी भी हुई पिताजी की है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन द ईयर 2018 ही वाज एक्सपायर्ड, तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने से रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था। एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो के, फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए। और यहाँ से फिर कहते हैं ना, अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, दैट इज। तो ये
1: छत्तीसगढ़ में
0: रहा।
1: कौन से
0: और
1: शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है, वहां
1: अच्छा
0: से
1: अच्छा
0: हूँ
1: अच्छा
0: मैं वहाँ
1: वहाँ
0: जी।
1: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: जी हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया,
1: ओके
0: एंड उन्होंने
1: ओके
0: ही
1: ओके
0: हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ है ना एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर, फिर जमीन वगैरह खरीद
1: 2008 से
0: के
1: लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में
0: जी
1: ही अपने आप को
0: बचपन से
1: मतलब
0: ही पूरा
1: सरवाइव
0: मतलब
1: भी किया,
0: हाँ
1: फ्लरिश भी
0: हाँ
1: किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर
0: बिल्कुल
1: वहीं देखे आपने।
0: सब
1: एक बात
0: सब
1: बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टिबाधित लोगों को लेकर के
0: यस
1: जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में,
0: जी
1: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी। लेकिन जब आपने
0: यस
1: कोचिंग शुरू की
0: जी
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके
0: जी
1: पास जाएं पढ़ने के लिए, और
0: यस
1: फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे
0: बिल्कुल
1: मिलने लगे?
0: जी, मैं वही बताती हूँ। सी देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नो बडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये। तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही है है ना, जिसने एक प्लस एड ऑन किया,
1: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि
0: जी
1: उनको पढ़ाने वाला
0: हाँ
1: टीचर जो है वो शायद
0: हाँ
1: ब्लाइंड है।
0: ब्लाइंड है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी, है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को, ओके। और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है, इनके पास जाओ, सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ जो भी आता था, और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला, उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में, है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत
1: तो
0: तरीके
1: वहां
0: से
1: आपने
0: करती हूँ।
1: रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी या अपना कुछ खुद का ही खरीद
0: जी
1: लिया था,
0: हाँ
1: कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
1: उसी पर ही
0: पहले
1: करते रहे
0: था,
1: थ्रू आउट आप?
0: हाँ बस एक हॉल जैसे था, तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी, तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, दैट वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहां पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग को ऑपरेट करते थे, तो
1: ये
0: इस तरह
1: ओडिशा में कौन
0: से
1: सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा,
1: जादूगुड़ा है?
0: जी झारसुगुड़ा सर, JHAR
1: झारसुगुड़ा।
0: झारसुगुड़ा, हाँ ये बिल्कुल राउरकेला के नजदीक है सर, और ये
1: ओके।
0: वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: जी,
0: यस
1: तो एक बात बताइए,
0: जी
1: जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए,
0: जी
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर, कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा,
1: ये क्योंकि मेरे मन में एक
0: जी
1: बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया, है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात
1: बिल्कुल
0: बेटे
1: ठीक
0: को भी
1: बात
0: पता
1: है,
0: है बहुत अच्छी तरह से। जी
1: बिल्कुल ठीक बात है। बहुत जबरदस्त, मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम हैं आप। दिल्ली में हैं, एक नीतू सिंह मैम हैं, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया, मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए। उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर, सबका अपना अपना संघर्ष होता है।
0: जी सबके
1: अब
0: होते
1: इस
0: हैं सर,
1: कार्यक्रम
0: किसी के
1: के
0: सामने
1: माध्यम
0: आते
1: से
0: हैं
1: जो
0: किसी के
1: लोग
0: नहीं आते
1: आपको
0: हैं।
1: सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं। अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। हम बात
0: जी
1: कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही, बहुत अच्छी, और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर, तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई?
0: जी अब मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ, अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो
0: लेखन
1: हमें यह समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं
0: जी
1: एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है, कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं उस
0: बिल्कुल
1: और
0: जी।
1: तो
0: और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो
1: अरे
0: मैं
1: वाह,
0: उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो
1: बिल्कुल
0: रहता है
1: बिल्कुल
0: कि,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो भी
1: डेफिनेटली
0: रहा
1: डेफिनेटली जी, आप
0: जी।
1: बताइए
0: और
1: अब आप।
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो
1: हाँ
0: काम
1: जी,
0: कर
1: हाँ
0: रहे थे उस
1: जी,
0: समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को
1: आपको
0: रखते
1: याद हो तो
0: थे
1: मैम दो लाइनें हो जाए
0: जी बिल्कुल सर होती है। तो वो
1: जी
0: पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है वह मंजिल यही कहीं या पूरा आकाश है, सपनों
1: वाह।
0: का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है अधरों पर भी प्यास है,
1: वाह वाह वाह,
0: अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे
1: वाह,
0: तलाश।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत
0: तो ये
1: जबरदस्त।
0: सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया
1: अरे
0: है ना,
1: वाह, क्या
0: काफी
1: बात
0: मतलब
1: है।
0: बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊजी की किताब की दुकान थी, तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़े सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: जबकि
0: महादेवी
1: आंखों की
0: वर्मा,
1: रोशनी भी धीरे धीरे कम
0: सत्यमान
1: हो रही थी,
0: सेन
1: तो तब तब
0: जी,
1: ये हाल
0: हाँ
1: है ना।
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है, मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है तो
1: मैं श्रोताओं को
0: पढ़ना
1: बताना चाहता
0: इतना
1: हूं कि श्रोताओं देखिए, पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है
0: जी।
1: जी।
0: तो मैं
1: जी
0: किताब
1: मैम,
0: लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही। तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना, लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना। तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना, लिखने मतलब 5-5 6-6 डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है चल रहा है, कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना, वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर, और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी
1: जी
0: मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा, और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, तो कल्पनावादी संसार होता है ना, उसमें बस उड़ रहे थे कि
1: उसमें
0: कल्पनाओं की
1: बस
0: उड़ान, तो बस
1: घुस, एक
0: हाँ
1: बार जब घुस गए तो निकलने का कोई
0: घुस
1: मतलब
0: गए।
1: नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र है, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के, तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनईबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया, और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा, और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया, और बोला मम्मी आप
1: सिखाया।
0: इसमें क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही, बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना, जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास में, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े, जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं, दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कौन मुझे पढ़ा दे, तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए, फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी, इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे तो जी, तो इस तरह की चीजें हुई, तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस, और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां
1: बिल्कुल
0: पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं, तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी, क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां, और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक
1: अरे वाह,
0: आर्टिकल
1: क्या
0: आता था
1: बात है
0: पर्सनालिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने
1: जी।
0: वहां पे भी लिखा हुआ है, मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं
1: ग्रेट।
0: काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी, चूंकि लेखन का ही काम है ये सब, तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, उसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी, इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना, और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोग, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से
1: जी
0: पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना, तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ, ओके ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ,
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं दिखता है, ओके तो ये रही, तो उस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ, तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से,
1: जी
0: और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के, तो
1: जी
0: मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था, तो
1: अच्छा
0: वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में, तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा, तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग विम्स की स्थापना करने के लिए
1: जी,
0: जी, तो
1: यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक
0: जी
1: कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर
0: यस
1: दिया है,
0: सोशल
1: कनेक्टिंग
0: वेंचर,

0: הפסד של קליין.
1: People often talk about the African